0: सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़। प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम। इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर। देखिए सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है, देश भर से कांवड़ यात्रा की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आस्था के अलग अलग रंग दिखा रही हैं। कहीं पर प्रेम मन्नत बनकर कंधों पर सवार है, तो कहीं पर कठिन तपस्या श्रद्धा की नई मिसाल बन रही है, तो कहीं पर भव्य और अनोखी कांवड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महादेव के प्रति समर्पण का यही भाव करोड़ों शिव भक्तों को लंबी यात्रा की ताकत दे रहा है।
3: आदि अनंत फिर भी अंगिनत रूप हैं शिव के। वो साधक हैं, योगी हैं, वैरागी हैं और इसके साथ ही प्रेमी हैं और गृहस्थ भी। सोचिए तो ये बात निराली है कि जो खुद कैलाश पर धुनी रमाए बैठे हैं, वो मनचाहे जीवन साथी और शादी के लिए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि शादी विवाह में बाधा सावन में शिव की आराधना से दूर हो जाती है, और इसी भरोसे इसी उम्मीद पर ये जोड़ा निकल पड़ा है कांवड़ यात्रा पर। कहते हैं कि भोले बस भावना देखते हैं, सच्चे मन से चाहे जो मांग लीजिए मिल जाता है।
4: विनम्र निवेदन है कृपया अपनी कावड़ इस बिजली घर के पास से हटा लें।
3: इस जोड़े की ख्वाहिश बस इतनी है कि इनका विवाह हो जाए। इनका प्रेम सच्चा है, इसका प्रमाण देने के लिए दोनों ने एक साथ कावड़ उठाई, विवाह के लिए मन्नत मांगी और बोल बम का जयकारा लगाते हुए हरिद्वार पहुंच गए।
5: किस तरह की कावड़ है, क्या मन्नत है आपकी? कावड़
6: यही मन्नत है कि हम दोनों की शादी हो जाए।
5: आप कितने घंटे चल रहे रोजाना एक साथ कावड़ लेके चल रहे, कितने घंटे चलते हैं, कैसे चलते हैं?
6: 10-15 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर चल लिए, 15 किलोमीटर चल लिए, ऐसे चल रहे हैं। छोटा वाला भाई आया, दीदी आई है साथ में, ऐसे वो सब लोग पीछे, हम लोग आ गए हैं।
5: आपने जल उठाया था?
6: हमने 28 तारीख को उठाया था।
5: वो जाना कितना चल रहे हो?
6: 15 या 20।
5: तो क्या कहना चाहेंगे भोले बाबा से?
6: यही कहना चाहूंगी बस शादी हो जाए दोनों की।
3: हरिद्वार से गंगा जल उठाने के बाद कावड़ का वजन ज्यादा हो गया तो दोस्तों ने भी कंधा लगा दिया। 111 लीटर गंगा जल के साथ रोज करीब 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए मयंक और दीपिका बुलंदशहर पहुंचने ही वाले हैं। इनका प्रेम गहरा है लेकिन शादी के लिए अभी घर वालों की मंजूरी नहीं मिली है, पर महादेव पर विश्वास है और इसीलिए आस है कि बात बन जाएगी। महादेव की कृपा से सभी की सहमति मिल जाएगी।
7: ये हमारी मन्नत की कावड़ है।
5: किस तरह की मन्नत?
7: जी मन्नत मांगे कि हाँ हम दोनों की शादी हो जाए।
5: कैसे मुलाकात हुई आपकी, कितने साल पहले मुलाकात हुई?
7: जी 1 साल होने वाली है।
5: हाँ।
7: तो जब ही मुलाकात हुई, कहने का मतलब ये है कि बुलंदशहर में पहली बार गया और शादी में जब मुलाकात सी होगी। जी कावड़ लाने के तो विचार हमारा पहले से हुआ, पर हमने बाद में विचार बनाया कि डीजे फीजे हर चीज़ लेके चलेंगे। तो हमारा सारा ग्रुप भी है, बहुत बालक हैं, आधे कुछ पीछे हैं कुछ आधे हैं, सारे गैल में हैं। तो हमारी मन्नत यही कि दोनों जने हम कावर घर तक अपने मंदिर पर चढ़ा देंगे।
3: एक साथ भारी भरकम कावड़ उठाए इस जोड़े को देखकर लोग भी दंग हैं, पर खुशी भी है क्योंकि ईश्वर से प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। मयंक और दीपिका ने भी अपने प्रेम को भक्ति से जोड़ दिया। दोनों ने कावड़ उठाकर कठिन परीक्षा दी, अब परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है। वैसे तो भोले की कृपा एक लोटा जल से ही मिल जाती है, लेकिन अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भक्त कड़ी तपस्या करते हैं। हाथों के बल कावड़ यात्रा पर निकले राजकुमार ऐसी ही तपस्या की एक मिसाल है। बिच्छू के आकार में दोनों पैर हवा में और हाथ के पंजों से आगे बढ़ते हुए राजकुमार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और नतमस्तक भी होते हैं।
8: हम पिछले 2 साल से भारत यात्रा कर रहे हैं, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 51 शक्तिपीठ में 21 शक्तिपीठ यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। मथुरा, वृंदावन, खाड़ोशी अम्बा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जीन माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा जी जैसे, बागेश्वर धाम, चित्रकूट धाम, अनुसुईया माता मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिच्छूबम यात्रा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल 1 महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है। थोड़ा इस साल पीछे चल रहे, जो कि पिछले साल हमारे भैया चल रहे थे साथ में और इस साल हम अकेले चल रहे, जो कि पीछे में साइकिल है तो साइकिल लेकर हमको चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दूरी हो रहा है। और आप बोले जो कैसे मन में आया, ये तो हम जब बागेश्वर धाम गए थे तो पहले हम बागेश्वर धाम गए तो फिर हमें एक अलग शक्ति मिला हमें, तो फिर लगा जो नहीं हम और जा सकते हैं, और दूर जा सकते हैं, और मंदिर दर्शन कर सकते हैं, लोगों के दर्शन करा सकते हैं, तो बस ऐसे करके चलते रहे। हमें तो ऐसे कोई कठिनाई दिक्कत नहीं लग रहा है क्योंकि हम लगभग चलते रहते, जब राम मंदिर उद्घाटन हुए थे तब भी हम जो है वो टर्निंग से मंदिर तक गए थे, बागेश्वर धाम जो टावर है टावर से बागेश्वर धाम तक गए थे ऐसे हाथ से चल के, तो ऐसे ऐसे छोटा मोटा जगह जाते रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है।
3: बिच्छू बम बनकर राजकुमार ने जब पिछले साल पहली बार यात्रा की थी तो पूरे 1 महीने का वक्त लगा था, लेकिन इस साल सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यात्रा में उनकी रफ्तार अच्छी है। एक बार में राजकुमार 60 से 70 फीट चलते हैं, थोड़ी देर ठहरते और फिर चलने लगते हैं। पिछले दो साल में 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धाम और 21 शक्ति पीठों का दर्शन कर चुके हैं राजकुमार। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बिच्छू बम के तौर पर काफी चर्चा में है। चर्चा धनबाद के अजय विश्वकर्मा की भी हो रही है और उसकी वजह है उनकी डमरू के आकार वाली कांवड़, जिसे देखने के लिए दूसरे कांवड़िए ठहर जाते हैं। लकड़ी और फाइबर से बना ये विशाल काय कांवड़ भव्य है लेकिन वजनदार है। हाँ, जब लोग इसकी सराहना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोल बम का जयकारा लगाते हैं, तो अजय विश्वकर्मा को परम आनंद मिलता है।
9: बाबा का डमरू है ये, भगवान गणेश और जो पहली बार पद यात्रा में आया भगवान श्री राम, ये छवि है।
10: क्या चीज से बनाए?
9: ये एक लोहे की चदरे की बनी हुई है और ये इसमें कुछ फोम का भी आइटम मिला हुआ मिक्स है। वजन तो वेट नहीं की लेकिन एक अंदाज बता सकता हूँ, ये 15 kg से ऊपर है, 18 kg लमसम है। ये खुद से बनाया है, इसकी कोई लागत कोई आंका नहीं जा सकता है।
10: आप इसको खुद से
9: और ये हर एक साल कुछ न कुछ यूनिक।
3: शिव भक्तों की जो भीड़ हर दिन बाबा धाम जा रही है उसमें आस्था और भक्ति की अनगिनत चमकीली तस्वीरें हैं। पर चांदी की इस कावड़ की तो बात ही निराली है। पटना सिटी से विशाल शिवधारी कावड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था 54 फीट के इस कावड़ को लेकर देवघर के लिए निकला है। खूबी ये है कि कावड़ 54 फीट लंबी है और इसमें 54 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है। साथ ही ज्योतिर्लिंग और माँ दुर्गा काली की प्रतिमाएं भी हैं।
9: इसमें अलग यही है कि चांदी की 54 किलो चांदी का है, इसलिए ये सब लोग का श्रद्धा के अनुसार पूरा ये कावर गई है। वो श्रद्धा के अनुसार 54 किलो चांदी सब लोग सहयोग से ये प्रणाम हुआ और ये आगे भी विकसित होगा। कुछ सोना के भी लगने वाली है, सोना से जितना श्रद्धा बनेगा लोग का उतना ही आगे बढ़ते रहेगा कावर में। और तरह तरह की चीज उसमें भारी की होती है। हाँ, ज्योतिर्लिंग है, बड़ी माँ है, दुर्गा माँ है, काली माता है, सब लोग है उसमें।
3: बैद्यनाथ धाम में दोनों मंदिरों के बीच 54 फीट की दूरी है और इसीलिए 54 फीट की कावड़ और यात्रा भी 54 घंटे में पूरी की जानी है। नंगे पांव केसरिया वस्त्र, सर पर रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए श्रद्धालुओं की टोली कावड़ मार्ग पर शिव भक्ति का दिव्य रंग घोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कांवड़ यात्रा अब सिर्फ गंगाजल लाने की परंपरा नहीं रही बल्कि संस्कार, सेवा और समर्पण का महापर्व बन चुकी है। कहीं नन्हे शिव भक्त अपनी आस्था से प्रेरित कर रहे हैं, कहीं पर परिवार रिश्तों की नई मिसाल पेश कर रहे हैं, तो कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच व्यवस्था और भाईचारे की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। देश भर से सामने आ रहे ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य बता रहे हैं कि महादेव की भक्ति हर उम्र हर रूप में जीवंत है। रिपोर्ट देखिए।
11: ये घुंघरू किसी कलाकार के पैरों की पहचान नहीं है बल्कि शिव भक्ति की आवाज है। छोटे छोटे कदम, पैरों में बंधे घुंघरू, कंधों पर कांवड़ और होठों पर महादेव का नाम। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पहुंची ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बनारस से आए ये छात्र 7वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज से गंगा जल लेकर अपने शहर लौट रहे हैं। इनके पैरों में घुंघरू इसलिए बंधे हैं ताकि चलते समय लगातार आवाज आती रहे और रास्ते में कोई अनजाने ही उनकी कांवड़ से न टकराए। साथ ही उनके साथी भी एक दूसरे की मौजूदगी आसानी से समझ सके। ये बच्चे पिछले 4 वर्षों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं और इस बार 5वीं बार इस यात्रा पर निकले हैं। उनकी कामना है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, पढ़ाई में सफलता मिले और महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे।
12: सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ जो है प्रयागराज के दशा सुमेध घाट पर पहुंच रहे हैं। हर कांवड़ियों के अपने रूप है, रंग है और हर किसी का संकल्प भी अलग है। प्रयागराज का एक ऐसा ही ग्रुप है जो पायल पहनकर पैरों में कांवड़ लेकर चल पड़ा है। उसके पीछे ऐसा है कि वो जिन रास्तों से गुजरे उनके लोगों के बीच में आने वाले लोग उनके कांवड़ को खंडित न करे, लिहाजा पैर में उन्होंने पायल पहना है। और ये काशी के रहने वाले हैं, ये प्रयागराज का जल भरकर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करेंगे, लिहाजा प्रयागराज में ये ग्रुप पहुंचा है।
13: मेरा नाम है अमन, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और कांवड़ का रहा हूँ। मैं 4 साल मेरा कांवड़ हो गया और मेरा गाँव है काशी में।
14: पायल क्यों पहना?
13: पायल इसलिए पहना कि कांवड़ खंडित ना हो।
14: किस क्लास में पढ़ते कांवड़ क्यों उठाया?
13: मेरा नाम प्रियांशु सरोज है, मैं काशी से रहने वाला हूँ। मैंने कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके मुझे।
15: युवराज कुमार नाम है मेरा, मैं काशी का रहने वाला हूँ। कांवड़ ये मेरा 3रा साल है।
11: उधर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने सबसे व्यस्त दौर में पहुंच चुकी है। हर की पैड़ी, मालवी द्वीप, शिव सेतु और राष्ट्रीय राजमार्ग हर ओर सिर्फ भगवा रंग दिखाई दे रहा है। ड्रोन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। बोलबम, हर हर महादेव के जय घोष पूरे वातावरण को शिवमय बना रहे हैं। अंदाजा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पंचक समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज और हरिद्वार ही नहीं बल्कि सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हरिद्वार से चंडीगढ़ जा रहा एक परिवार अपनी बुजुर्ग माता जी को कांवड़ में बैठा कर यात्रा कर रहा है। करीब 260 किलोमीटर के सफर में कभी बेटा, कभी बहू तो कभी पोता बारी बारी से कांवड़ उठाकर माँ को आगे ले जा रहे हैं।
16: श्रवण कुमार कांवड़ बोलते हैं इसको, और माँ बाप से प्यार था। 4-5 साल से आया नहीं था माँ बाप के मम्मी के कारण। एक्चुअली पापा थोड़ा घर पे कोई है नहीं इसलिए पापा रह गए नहीं, तो दोनों को लाने का मन था, तो माँ बाप का प्यार था इसलिए मैं माँ को लेके आ गया।
17: तो अभी कौन कौन कांवड़ी उठा करके लेके
16: जा? अभी मैं हूँ, वाइफ है और अपना भतीजा है और भाभी भी है और एक वो अपना भांजा है।
17: कैसा लग?
16: बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। भोले बाबा की कृपा है, चल रहे हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं।
11: परिवार इस यात्रा को श्रवण कुमार कांवड़ कहता है। कई वर्षों बाद उन्हें कांवड़ लाने का अवसर मिला, इसलिए इस बार उन्होंने अपनी माँ को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा में माता जी भी बेटे बहू के स्नेह से बेहद खुश हैं।
16: जितने भी है आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने देखा है आजकल नेट पे देखता हूँ बहुत गलत गलत हो रहा है, तो माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा करोगे उतने ही जन्नत में जाओगे, बड़ा प्यार मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, माँ बाप से प्यार है वो करते रहो।
11: हरियाणा के रवि और उनकी पत्नी नीशू हरिद्वार से करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ का एक सिरा पति के कंधे पर है, दूसरा पत्नी के कंधे पर। दोनों मिलकर गंगा जल अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उससे अपने बुजुर्ग सास ससुर को स्नान करा सके। परिवार की जिम्मेदारी केवल बेटे की नहीं होती, बहू भी उसी प्रेम और सम्मान के साथ उसे निभा सकती है।
18: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार से चंडीगढ़ लेके जाना है, बहुत अच्छा लग रहा है।
17: कैसे विचार आया
18: आपको? ये बस हस्बैंड सोचते हैं, हम सोचने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो तो थोड़ा नॉर्मल है, चलता रहता है, पर इतना नहीं है।
17: सासू जी क्या कह रही हैं?
18: सासू जी भी अच्छा बोल रही हैं, ये अच्छी बात है, कह रही है अच्छी बात है, लेके जा रहे हैं।
11: जब तक माता पिता चलने फिरने में सक्षम हैं, तब तक वो हर साल गंगा जल लाकर उनका अभिषेक कराएंगे। राजकुमार का आगे चलकर उन्हें श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराने का भी सपना है। कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से सामाजिक सौहार्द की भी एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और जेलुम का जुलूस एक ही मार्ग के करीब 170 मीटर हिस्से से गुजरना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से विस्तृत तैयारी की है। रास्ते के बीच करीब 10 फीट ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं ताकि दोनों आयोजन अपने अपने मार्ग से शांतिपूर्वक आगे बढ़ सके। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है।
19: जो शहर में एक 170 मीटर का भाग है हनुमान चौक के बाद, वहाँ पे कावड़ और चेहल्लुम दोनों एक साथ चलेंगे, और एक साथ चलने के लिए जितने हमारे स्टेक होल्डर है सबसे बातचीत हो गई है, जितने हमारे फिजिकल अरेंजमेंट्स हो गए सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट हो गया, और मात्र 170 मीटर का वो मार्ग है जिसपे स्थलीय निरीक्षण डीएम साहब द्वारा, एसएसपी साहब द्वारा, हम सभी द्वारा कर लिया गया है, और सकुशल इन दोनों जुलूसों को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है।
11: कहीं घुंघरुओं की छमछम में शिवभक्ति सुनाई देती है, कहीं बेटे बहू के कंधों पर माँ के प्रति सम्मान दिखाई देता है, कहीं एक बहू रिश्तों की जिम्मेदारी निभाते हुए सेवा का नया उदाहरण पेश कर रही है। भक्ति और भावना के ये इंद्रधनुषी रंग ही कांवड़ यात्रा को भव्य बनाते हैं। प्रयागराज से आनंद राज, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: और आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आस्था, अनुशासन और उत्साह की अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर केसरिया समंदर लहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
1: कंधे पर कांवड़, दिल में देवाधिदेव भोलेनाथ और जुबान पर हर हर महादेव। शिव भक्तों का ऐसा जमघट शायद ही किसी स्टेशन पर दिखे, और उसकी वजह भी है। जिन कांवड़ियों को यूपी या देश के दूसरे हिस्सों से बिहार के भागलपुर जाना है, उनकी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से मिलती है। रेलवे के मैप पर डीडीयू यूपी और बिहार के दरमियान है, जहां से पूरे सावन कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। हैरत की बात नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है, जिसको नियंत्रित करने और कांवड़ियों को सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने संभाल रखा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए हजारों की तादाद में शिवभक्त पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं।
2: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के वैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है। ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप?
3: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
2: कहां से आए आप?
3: रायबरेली से।
2: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
3: बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहां जल भरे हैं जो है कि यहां पर दर्शन किए हैं अपना। अब यहां से निकल रहे हैं जो है सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा वैद्यनाथ धाम।
2: कितनी आस्था है बाबा में?
3: बहुत बड़ी आस्था है जो है। हम लोग सावन आने का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आया, वो शुभ घड़ी आई, वो पर्व आया, आज जो है इतना सारा मेला में सम्मिलित होने का उपलक्ष्य मिला और मौका मिला, ऐसा तो बहुत सारा आया।
2: देखा जा सकता है कितना उत्साह है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
4: भीम शंकर।
2: क्या कहना है आपका?
4: बहुत बढ़िया,
2: अच्छा लगता है बाबा धाम जाना।
4: बहुत, बहुत।
2: आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप?
4: रायबरेली से।
2: अभी रायबरेली से हैं, तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
4: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
2: पहली बार जा रहे हैं?
4: हाँ भैया।
2: कैसा लग रहा है, कितना उत्साह?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
2: आपका क्या नाम है?
5: सुनील कुमार।
2: आप बताइए आप कब से जा रहे हैं और कितना उत्साह है?
5: पहली बार जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया जा रहे हैं।
2: पैदल चल लेंगे 120 किलोमीटर?
5: हाँ पैदल चल लेंगे, बाबा की इच्छा होगी तो।
1: सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही न सिर्फ डीडीयू बल्कि इसके आगे बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन केसरिया रंग में नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की अच्छी खासी तादाद ट्रेनों के जरिए भागलपुर पहुंचती है और वहां से गंगा जल लेकर देवघर जाती है, इसीलिए यूपी से बिहार तक की ज्यादातर ट्रेनों में बोल बम का जय घोष है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो जैसे शिवमय हो चुका है।
2: ये तमाम उत्साह से लबरेज श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए कांवरिए हैं। आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा, ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांवरिए ही कांवरिए दिखाई दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से भगवामय हो गया है और ये कांवरिए यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे, वहां से जल उठाएंगे और जल उठाने के बाद ये तमाम कांवरिए जो है वो वैद्यनाथ धाम देवघर की तरफ पैदल कूच करेंगे और वहां जाने के बाद लोग जलाभिषेक करेंगे। एक और श्रद्धालु हैं, कहां से आए हैं आप?
6: प्रकल्डिया से।
2: ये बताइए, इधर आ जाइएगा कि क्या कहना है आपका, कब से जा रहे हैं आप?
6: हम तो 20 साल से जा रहे हैं।
2: कैसा लगता है?
6: अच्छा लगता है,
2: बाबा में भक्ति है?
6: पूरी भक्ति है। पूरी मनोकामना पूर्ण होती है,
2: पूरी मनोकामना पूर्ण होती है ये कह

0: इन श्रद्धालुओं का श्रद्धा और भक्ति का लगातार जमावड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देखा जा रहा है। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता, राष्ट्रपति भवन में भी होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है। लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये एक खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं, इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है, जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई शैली से तैयार रेशम और सूती धागों वाले अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक स्वागत समारोह है जिसका आयोजन हर राष्ट्रपति की मेजबानी में किया जाता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या जूते चप्पल के प्रयोग से आप अपने रोजगार में स्थिरता ला सकते हैं? क्या जूते चप्पलों के प्रयोग से आप जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या गलत जूते और चप्पल आपको जीवन में अपयश दे सकते हैं? जूते और चप्पल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
5: शिवमय हुई धर्मनगरी हरिद्वार, चरम पर है कांवड़ियों का उत्साह। अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरकर अपने शिवालयों की ओर किया प्रस्थान। सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों का देश भर में हो रहा है सम्मान। अब ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने का सपना संजो रहे हैं खिलाड़ी। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों की छुट्टी की घोषणा। वाराणसी में बढ़ रहा बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है फायदा, कारोबारियों में खुशी की लहर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

एक राजा हुए विदर्भ देश के, उनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो, भीष्मक। पांच बेटे थे उनके, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मरथ। एक बेटी थी, बेटी का नाम था रुक्मणी। राजा का मन था हमारी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश से हो जाए, लेकिन बेटा राजनीति में फायदा लेने के चक्कर में अपनी बहन का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। वो आके सीधा पिताजी को बताया, पिताजी शादी तय हो गई परसों बारात आ रही। कहां, कैसे, क्यों, किसके साथ? बोले ये बातें छोड़ो, दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ शादी तय हो गई, परसों बारात आ रही है, तैयारी करो। इतनी जल्दी? अरे छोड़ो पिताजी, तैयारी करो। अब बेटा के सामने बेचारे क्या बोले, पिताजी से चुप हो गए, शांत हो गए। अब देखो क्या हुआ, इधर रुक्मणी जी को पता लगा, वो तो मन में सपने सजो रही थी द्वारकाधीश के साथ विवाह के लिए, पर हो गई दूसरी जगह तय। अब बड़ी टेंशन, अपनी भाभी को बात बताई कि हमने जब से द्वारकाधीश के बारे में सुना, ऐसे हैं, वैसे हैं, नटखट हैं, नटवर हैं, नागर हैं, वो नंदनंदन हैं, बड़े प्यारे दिखते हैं, स्वभाव भी बड़ा प्यारा है, तो हम उनसे ही मन प्रेम करने लगे। अब हमारा मन गोविंद के अलावा कहीं लगता नहीं है। अच्छा हाँ, तो भाभी ने कहा कि एक उपाय है, पत्र लिखो। सात श्लोकों का पत्र लिखा रुक्मणी जी ने भगवान के लिए, और लास्ट में लिखा, महाराज परसों शादी है, इमरजेंसी है, हाँ अति आवश्यकता है, जल्दी आ जाना, और यदि आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, और उपाय भी है हमारे पास। पत्र में लिखा उपाय, उपाय क्या, हमारे गांव में नियम है जब लड़की की शादी होती तो गांव के बाहर देवी पूजा करने जाती है, हम जब देवी पूजा करने जाएं सोई आप आ जाना, हमें ले जाना, ये उपाय। पत्र एक पंडित जी को दिया, सुनो जल्दी जाना। पंडित जी बेचारे भागे भागे गए भगवान के पास, पत्र रखा, महाराज इमरजेंसी कॉल है। जैसे ही पत्र पढ़ा ठाकुर जी ने, तुरंत सोचने लगे अब देरी ना करें, श्री गणेश हुआ ही नहीं है, कम से कम इसी बहाने शादी का श्री गणेश तो हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान के पास चार घोड़े, द्वारकाधीश के पास सैब, सुग्रीव, मेघ पुष्पक, बलाहक, चारों घोड़ों के नाम। चारों घोड़ों को रथ में निभाया, रथ में बांधा, और भगवान चले पवन की तरह दौड़ने वाले घोड़े। जब तक भगवान पहुंचे तब तक बारात भी पहुंच गई। अब हो गया लफड़ा, बारात पहुंच गई सो तो ठीक है, दूल्हा दो घंटा बिफोर पहुंच गया। जो दूसरा वाला दूल्हा था वो और ज्यादा जल्दी में था, शादी की बिफोर टाइम पहुंच गया। अब खतरा हो गया, इधर भगवान आए उधर बारात आ गई। जैसे ही बारात आई तो रुक्मणी का भाई अपने पिता से बोला, पिताजी पिताजी बारात आ गई, बारात आ गई, जल्दी से जनवासा जाओ, दूल्हे राजा के हाथ में सगाई का सामान रख आओ, सगाई नहीं हुई विदाई ना होगी, वरना पहले सगाई तो हो जाए फिर भांवर पड़े। ठीक है, बढ़िया। भीष्मक महाराज ने रथ घोड़े हाथी में सामान सोना चांदी रखा, वस्त्र रखे, जवाहरात रखे, मोतियों की माला रखी, ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे तब तक भगवान द्वारकाधीश उसी नगर में पहुंच गए, सो पूरे गांव में हल्ला हो गया, द्वारकाधीश आ गए, द्वारकाधीश आ गए। तो भीष्मक महाराज ने सोचा सगाई को जा रही है, द्वारकाधीश का स्वागत कर ले फिर सगाई कर लेंगे। तो भीष्मक महाराज गए थे स्वागत करने, मंत्रियों ने सोचा यही दूल्हे राजा हैं, सो सगाई का सामान चढ़ना था शिशुपाल को, चढ़ गया नंदलाल को, ठाकुर जी को चढ़ गया। और जहां चढ़ा सामान सोई भीष्मक महाराज नाराज होके बोले, हे ये क्या कर रहे हो? महाराज सगाई का सामान है, अरे ये दूल्हा थोड़ी है, ये तो द्वारकाधीश है, दूल्हे राजा तो जन्माष्टमी में रायता पी रहे हैं, ये नहीं है,
और सब मंत्री बोले गलती हो गई गलती हो गई। भगवान मन ही मन बोले ससुर जी बढ़िया हुआ, नियम पूरा हो गया। कल के दिन हमारी शादी होती तो लोग कहते सगाई हुई नहीं, शादी कर ली, नियम पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच ससुर जी, मन ही मन बोले, सामने नहीं बोले, मन ही मन बोले। अब भीष्मक महाराज बोले महाराज आप हमारे नगर में आ गई हो, चरण रखो थोड़ा नगर घूम लो। चलो भीष्मक महाराज के साथ हमारे ठाकुर जी नगर की प्रदक्षिणा करने घूमने निकले तो गांव के लोग देखने निकले। हा हा हा हा भैया कुछ भी कहो दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। तो मंत्री डांटने लगे ये दूल्हे राजा नहीं है, द्वारकाधीश है। दूल्हे राजा तो जनवासी में अभी रसगुल्ला का सीरा छुटा रहे, हाँ ये नहीं है, ये तो दूसरे हैं। तो एक बूढ़ी माता जी खड़ी खड़ी कहने लगी हे भगवान कोई और दूल्हा हो, इससे अच्छा है ये जो सुंदर जा रहा, यदि यही दूल्हा हमारी रुक्मणी बिटिया का बन जाए तो जब जब ये लेने आएगा लेने के बहाने के चक्कर में हम लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। बोलो सीताराम। भगवान मन ही मन बोले माता जी चिंता ना करो हम ही आते रहेंगे, हाँ हम ही आएंगे। अंत तो गत्वा आहा हा, भगवान ने सोचा कहीं हम लेट ना हो जाए, रुक्मणी जी वहां से निकल जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान बीच में ही बोले अच्छा महाराज हमें इमरजेंसी काम है जरूरी, हम जा रहे, आप अपना काम धाम देखो। ठीक है प्रभु जो आज्ञा। प्रणाम किया भीष्मक महाराज ने। अब द्वारकाधीश जी गांव के बाहर देवी के मंदिर के पास पहुंच गए। बोलो सीताराम। तब तक एक लफड़ा हो गया, पूछो क्या, जोर से पूछो, अरे और जोर से पूछो भैया। लफड़ा ये हुआ कि शिशुपाल की बारात में जरासंध आया था और जरासंध भगवान से 17 बार लड़ाई में पिटाई खा चुका और हार चुका, 18वीं बार भगवान स्वयं रणछोड़ बन करके भाग गए थे। जरासंध को पता लगा कि द्वारकाधीश आए हैं तो उसने शिशुपाल के पास जाके कहा सुनो जो तुम्हारी होने वाली घरवाली है उसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले हमने सुना द्वारकाधीश आया है और ये जहां भी जाता है वहां दाल में काली नहीं होती, पूरी दाल ही काली होती। बोलो सीताराम। दाल में काला नहीं होता, दाल ही काली होती है, इसलिए उपाय करो। शिशुपाल ने पूरी अपनी सेना रुक्मणी जी के साथ लगा दी कि जहां जहां जाए पूजा करने ड्यूटी निभाओ। अब रुक्मणी जी टेंशन में कि हमने तो कहा था कि हम सखियों के साथ अकेले गांव के बाहर आएंगे, यहां तो सुरक्षा लग गई, अब भागेंगे कैसे, और इतनी भीड़ में हमने कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, वो हैं कहां, कैसे दिखते, कभी देखा ही नहीं। अब भगवान ने भी सुरक्षा देखी। इधर रुक्मणी जी पूजन करके बाहर निकली, सोई रथ पर ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठे थे, रुक्मणी जी की आंखें ठाकुर जी से मिली, ठाकुर जी की आंखें रुक्मणी जी से मिली। भगवान ने सारे में ही बोले कहो देवी जी ये सेना क्या है सुरक्षा। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। रुक्मणी जी आंखों ही आंखों में बोली प्रभु हमें नहीं है पता कैसे आई। भगवान बोले हमें क्या लेना देना, अब तुमने तो कहा था अकेले रहेंगे, हम सेना लेके नहीं आए वरना लड़के ले जाते, अब तुम ही कुछ उपाय करो वरना हम ना ले जाएंगे। रुक्मणी जी ने इशारा किया अभी उपाय कर रहे प्रभु चिंता ना करो। अब रुक्मणी जी ने उपाय क्या किया जरा सुनो। रुक्मणी जी जितने सैनिक सिक्योरिटी में आए थे सबकी तरफ देख कर मुस्कुराने लगी तो सुरक्षा वालों को लगा हम सुंदर लग रहे हैं, तब तो ये होने वाली बहू हमें देखकर हंस रही। तो जो सुरक्षा वाले सिक्योरिटी में खड़े थे वो कोई अपनी काला ठीक करने लगा, कोई जुल्फे ठीक करने लगा और कोई शर्ट को ठीक करने लगा, कोई बगल वाले बगल में खड़े हो और दांत निकाल निकाल हंसने लगा। और रुक्मणी जी जिसकी तरफ देखें और हंस दे सिक्योरिटी गार्ड का इतने में ही दिमाग खराब हो गया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा सुरक्षा वालों को लगे कि हम सुंदर लग रहे और माता
रुक्मणी माता जी हंसती जाएं और जाती जाएं रथ की तरफ। अब सुरक्षा वाले बात क्या कर रहे हैं जरा सुनो। एक सुरक्षा वाला बोला, आहा बहु रानी की जरा चाल तो देखो, क्या चाल है, हाथी की तरह गज गामनी। तब तक दूसरा बोला, चाल क्या देख रहे, बाल देखो, बाल नागिन की तरह है। तीसरा बोला, बाल क्या देख रहे, गाल देखो। चौथा बोला, आंखें देखो, आंखें एकदम काली। पांचवा बोला, ए चुप रहो, तुम आंखें देख रहे, रथ देखो, रथ कितना सुंदर है। छठवा बोला, रथ क्या देख रहे, जो रथ पे बैठा है उसे देखो, कितना प्यारा लग रहा। तब तक रुक्मणी जी रथ पे पहुंच गई, भगवान ने हाथ बढ़ाया, ऊपर खड़ी हो गई और मुस्कुरा रही सैनिकों की तरफ। सातवां बोला, रथ क्या देख रहा है, जोड़ी देखो, जोड़ी क्या गजब लग रही है, जोड़ी देखो, जोड़ी क्या अद्भुत लग रही है। और भगवान बोले, बेटा हरो फंसे रहो। और रुक्मणी जी से कहा, एक बार और मुस्कुरा दो। सो फिर मुस्कुराई। तब तक आठवां बोला, कुछ भी कहो, जोड़ी तो कमाल की है। और धीरे धीरे भगवान ने रथ दौड़ाना शुरू किया। तब तक जब रथ ओझल हो गया, तब सैनिक एक दूसरे से पूछने लगे, एक बात बताओ, हम लोग आए क्यों थे? तो किसी ने कहा, सुरक्षा के लिए। बोले, किसकी? बोले, होने वाली लड़की, जो बहू होने वाली थी उसकी। बोले, वो कहां गई? बोले, वो तो चली गई। तो तब चिल्ला के पड़े, अरे ले गाओ, ले गाओ, ले गाओ, ले गाओ, ले गाओ। तब तक भगवान सही में ले गए। बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान ले गए। बीच में दाऊ भैया मिले, युद्ध हुआ रुक्मी के साथ। रुक्मी लड़ने आया भगवान से, तो भगवान दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने ठाकुर जी को डांटा कि अकेले नहीं आना चाहिए, हमें बताना चाहिए, शादी करनी ही थी, हमें बता देते। उस जमाने में भगवान से ज्यादा किसी को कोई डरता था तो दाऊ भैया को। इनका हल मूसर कब उठ जाए और कितने खत्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं। बोलो सीताराम। तो जहां ठाकुर जी को रुक्मी ने रोका, तब तक पीछे से आवाज आई, द्वारकाधीश भगवान की। अरे दाऊ भैया आ गए, दाऊ भैया। तो आधे सैनिक तो तुरंत दौड़ करके चले गए। बोलो सीताराम। कौन मरे? आधे बचे। तो युद्ध करने लगे। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा की जय हो। दाऊ दादा बोले, पहले ये बताओ कन्हैया, अकेले अकेले अकेले अकेले क्यों आए, बिना बताए क्यों आए? शादी ही करनी थी, हमें बता देते, हम रोकते क्या? हम भी साथ आ जाते, बढ़िया प्रेम पूर्वक शादी कराते, भाग दौड़ के शादी क्यों करनी, हमें समझाते, हम बढ़िया विस्तार से दोनों परिवार को बैठा करके शादी करवा देते। भगवान इशारों में बोले, दाऊ दादा बहू रानी साथ में है, कम से कम इनके सामने तो मत डांटो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम जो दोनों जाओ, हम पीछे से आते हैं निपटा के मामला। और भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका आ गए। और द्वारका में क्या हो रहा है जरा एक भजन से सुनिए।

जल्दी चले चलो ताकि जो सुबह से लाइन में लगे उन्हें मौका मिल जाए। और कथा सुननी हो तो बाहर निकलकर बीच पंडाल में आ जाओ, थोड़ी सी जगह खाली है तो कथा भी सुनने को

0: क्या जूते चप्पल के प्रयोग से आप अपने रोजगार में स्थिरता ला सकते हैं? क्या जूते चप्पलों के प्रयोग से आप जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या गलत जूते और चप्पल आपको जीवन में अपयश दे सकते हैं? जूते और चप्पल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: शिवमय हुई धर्मनगरी हरिद्वार, चरम पर है कांवड़ियों का उत्साह, अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरकर अपने शिवालयों की ओर किया प्रस्थान। सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों का देश भर में हो रहा है सम्मान, अब ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने का सपना संजो रहे हैं खिलाड़ी। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों की छुट्टी की घोषणा। वाराणसी में बढ़ रहा बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है फायदा, कारोबारियों में खुशी की लहर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही हैं एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी विशाल कांवड़। भक्ति के अनोखे रंग के हो रहे हैं दर्शन। यात्रा मार्ग से गुजर रही कांवड़ियों के जरिए हो रहे भोलेनाथ के अलग अलग रूपों के दर्शन। कांवड़ियों ने अपने अपने तरीके से की है अपने आराध्य की मूर्तियां तैयार। कांवड़ में कहीं दिखी भगवान भोलेनाथ के आदि स्वरूप की झलक तो कहीं कांवड़ यात्रा में दिखी हनुमान जी और राम परिवार की झलक। भोलेनाथ के एक श्रद्धालु ने केदारनाथ की थीम पर बनाई कांवड़। कांवड़ियों ने अपनी अपनी कांवड़ को दिया आकर्षक रूप। कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रही महाकाल के भव्य स्वरूप वाली विशाल कांवड़ भी बनी आकर्षण का केंद्र। अलग अलग कांवड़ों की तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहे हैं लोग। बिहार के मुंगेर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिखी 54 किलो चांदी से सजी हुई 54 फीट लंबी अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है कांवड़। कांवड़ में स्थापित है बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग। बड़ी दुर्गा माँ और मां काली की मूर्ति चांदी से बनाई गई है। बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की प्रतिकृति। श्रावणी मेले के मौके पर पटना सिटी से दिव्य कांवड़ लेकर बाबा धाम देवघर की ओर बढ़ रहा 600 कांवड़ियों का जत्था। भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूरी आस्था और भक्ति और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं कांवड़िये। भक्तिमय हुआ कांवड़ यात्रा पथ। इस कांवड़ संघ के मुताबिक साल 2008 से चल रही ये परंपरा श्रद्धालुओं का कहना है नियमों का पालन करते हुए 54 घंटे में पहुंचते हैं बाबा धाम। कांवड़ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। हरिद्वार से अब तक करीब 2 करोड़ कांवड़िये गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों के लिए हो चुके हैं रवाना। हर उम्र के कांवड़िये कर रहे हैं यात्रा। बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक कांवड़ यात्रा में शामिल। भारी कांवड़ भी नहीं रोक पा रही है हौसले। भगवान शिव की भक्ति में लगातार बढ़ रहे हैं आगे। मुराद पूरी होने पर परिवार के साथ यात्रा। कई श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। झांकियां कलश और गहरी आस्था का संगम। सभी कांवड़ियों के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। कांवड़ यात्रा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों से भरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा पूरा स्टेशन। कांवड़ियों की सुरक्षित और सुलभ यात्रा के लिए प्रशासन ने किए भरपूर इंतजाम। आरपीएफ और जीआरपी को भीड़ को नियंत्रित करने और सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा सौंपा। श्रावण के महीने में उत्तर भारत में पूरी आस्था के साथ जारी है कांवड़ यात्रा। अलग अलग स्वरूपों और आकार की कांवड़ को लेकर कर रहे हैं यात्रा। शिवालयों में भोले शंकर का जलाभिषेक जारी। प्रयागराज के घाट पर हर दिन अलग अलग रूप नजर आ रहे हैं तो वहीं पैर में घुंघरू बांधे हुए दशा सुमेध घाट पहुंचा शिव भक्तों का समूह। अपनी कांवड़ को खंडित होने से बचाने के लिए सीटी बजाते हुए पैरों में घुंघरू बांध कर चलते हैं कांवड़िये। पिछले 4 सालों से हर साल ले जा रहे हैं पवित्र कांवड़। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ प्यार का भी एक अनोखा रंग। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर एक प्रेमी युगल 111 लीटर गंगा जल पैदल यात्रा करता हुआ नजर आया। इस प्रेमी युगल की भोले शंकर से एक ही मुराद, उनकी कामना पूरी हो, शादी के लिए राजी हो जाएं दोनों के परिवार। मुजफ्फरनगर पहुंची पीएम मोदी और सीएम योगी की अनोखी कांवड़। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी ये कांवड़ खींच रही है लोगों का ध्यान। बुलंदशहर के 6 शिव भक्तों की एक टोली हरिद्वार से लेकर आ रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी नाम की एक कांवड़ ये टोली पिछले साल भी लाई थी। मोदी और योगी नाम की कांवड़। इस टोली ने गंगा मैया से मांगी है खास मन्नत। योगी के दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम बनने और नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभालने की कामना। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कांवड़िए का सफल रेस्क्यू किया गया। पीएसी के आपदा राहत दल के जवान ने दिखाई फुर्ती, नदी में डूब रहे कांवड़ियों को सकुशल बाहर निकाला। हरिद्वार में शिव घाट पर स्नान के दौरान दिल्ली के रहने वाले कांवड़िए राजेंद्र कुमार का फिसला था पैर। कांवड़िए को डूबता हुआ देखकर रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित बाहर। यूपी के सहारनपुर में डीआईजी और कमिश्नर ने सड़क पर उतरकर कांवड़ियों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। कांवड़ शिविरों का भी निरीक्षण किया। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद की गई 4 पहिया गाड़ियों की एंट्री। कांवड़ियों के लिए तय नियमों का कराया जा रहा है पालन। यूपी के संत कबीर नगर में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को मंदिर में शादी कराई तो वहीं 5 बच्चों की मां ने शादी के 21 साल बाद पति को छोड़कर प्रेमी के साथ किया विवाह। अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। राम दरबार दर्शन के लिए खास पास व्यवस्था हुई खत्म, जबकि रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास। मंगला और श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले मिलेगा पास, जबकि शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। प्रतिदिन रामलला की आरती के लिए 45 और राम परिवार की आरती के लिए 15 पास किए गए निर्धारित। यात्री सुविधा केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से बनवा सकते हैं आरती दर्शन का पास। दर्शन व्यवस्था ज्यादा सुगम बनाने के लिए श्रद्धालुओं का समय बचाना है जरूरी। नई दर्शन व्यवस्था से सरल होंगे दर्शन। श्रावण मास के अलावा भी रोजाना देश और दुनिया से दर्शनों के लिए आते हैं हजारों लाखों भक्त। सभी के लिए नई दर्शन व्यवस्था एक शानदार पहल। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां हुई शुरू। गणपति बाबा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्ति कलाकार। बाबा की मूर्ति बनाने वालों में महिलाएं भी शामिल। पुणे के नारायण गांव के किरण साबले परिवार के साथ बना रहे गणपति बाबा का फेटा और पगड़ी। बाबा के लिए बनाए रंग बिरंगी और बेहद खूबसूरत फेटे और पगड़ी। गणपति उत्सव को लेकर बाजारों में दिखने लगी रौनक। गणपति उत्सव के लिए बनाई गई बापा की एक से बढ़कर एक मनमोहक मूर्तियां। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होगा भव्य और दिव्य गणपति उत्सव। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बापा की मूर्ति निर्माण में श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। कोर्ट ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा निर्माण पर दिया है जोर। अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए अभिनेता धनुष का नेक काम सामने आया। चेन्नई के हजारों स्कूली बच्चों को मिली स्कूल की नई बिल्डिंग की सौगात। अभिनेता धनुष ने बचपन में जो स्कूल में पढ़ाई की थी उस स्कूल को दान की इमारत। धनुष ने थाई सत्य स्कूल के लिए अपने पैसों से बनवाई 3 मंजिला बिल्डिंग। स्कूल को अभिनेता धनुष की ओर से दान की गई इमारत का नाम रखा गया धनुष ब्लॉक। धनुष ने स्कूल में LKG से 10वीं तक की पढ़ाई की थी। स्कूल को दान की गई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में अभिनेता धनुष, उनके बैच के स्टूडेंट्स और सिनेमेटोग्राफर कुमरान के साथ 1999 बैच स्टूडेंट्स और उनकी बहनें भी हुई शामिल। स्कूल को दान की बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में धनुष ने अपने शिक्षकों का सम्मान किया। धनुष ने शिक्षकों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भारत के स्ट्रीट फूड को फिर से मिली वैश्विक पहचान। टाइम आउट मैगजीन के साल 2026 के दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड वाले शहरों में भारत के 3 शहरों को मिली जगह। दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड वाले शहरों की सूची में मुंबई को 10वां, जयपुर को 15वां, दिल्ली को मिला 19वां स्थान। बिहार के कोसी इलाके में लोगों के लिए आई गुड न्यूज। सुपौल से नई दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, सहरसा, बरौनी, हाजीपुर, बलिया, वाराणसी होते हुए पहुंचेगी दिल्ली। एक जिला एक उत्पाद योजना ने बदली वाराणसी के बुनकरों को आर्थिक हालत। वहीं कारीगरों को अब छोटे मोटे काम के लिए भटकना नहीं पड़ता। योजना लागू होने के बाद साड़ी और सिल्क मटेरियल के काम से उद्यमियों का बढ़ा काम। कारीगरों की भी बढ़ी आमदनी। योजना के बाद 5 गुना बढ़ा बनारसी साड़ी का निर्यात। दिल्ली में अब पुराने और इस्तेमाल के योग्य कपड़े को दान करने को लेकर जरूरतमंदों की मदद कर सकेंगे लोग। पर्यावरण की भी होगी रक्षा। दिल्ली सरकार ने शुरू की अर्पण योजना। अर्पण योजना के तहत संग्रह, रिसाइकल और अपसाइकल किए जाएंगे कपड़े। तो वहीं टेक्सटाइल वेस्ट को कम करना और जरूरतमंदों की मदद करना है इसका उद्देश्य। पुराने कपड़े दान करने के लिए पहले चरण में दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन पर खोले गए अर्पण केंद्र। आने वाले समय में 10 स्टेशन पर अर्पण केंद्र खोलने की योजना। पुराने कपड़े दान करने के लिए QR कोड स्कैन करके एक आसान सा फॉर्म भरना होगा, जिसमें अपना नाम, नंबर और दान देने वाले कपड़ों का वजन दर्ज कराना होगा। अर्पण केंद्र पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कपड़े दान कर सकेंगे लोग। इस्तेमाल के योग्य कपड़े जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाएंगे। गुजरात के भावनगर से आई राहत वाली गुड न्यूज। ट्रेन के अलर्ट चालक ने बचाई एशियाई शेरों के झुंड की जान। ट्रेन चालक ने शेरों के झुंड को देखकर रोकी ट्रेन। समय रहते ट्रेन के रुकने से बची रेल ट्रैक पार कर रहे शेरों की जान। महाराष्ट्र के जालना के किसानों की मेहनत का कमाल देखने को मिला। भिंडी की ऑर्गेनिक खेती ने बदली किसानों की किस्मत। भिंडी की खेती से किसानों को हो रहा है लाखों का फायदा। जालना के पिठोरी सिरसाओ गांव के किसानों की ने उगाई भिंडी। जर्मनी, जापान, इंग्लैंड के लोगों का जायका बढ़ा रही यहां की भिंडी। करीब 30 परिवार कर रहे हैं ऑर्गेनिक भिंडी की खेती। कंपनी देती है बीज और दवाएं। खेत से ही भिंडी खरीद कर विदेश निर्यात करती है कंपनी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों,
9: क्या जूते चप्पल के प्रयोग से आप अपने रोजगार में स्थिरता ला सकते हैं? क्या जूते चप्पलों के प्रयोग से आप जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या गलत जूते और चप्पल आपको जीवन में अपयश दे सकते हैं? जूते और चप्पल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में भगवान शिव की कृपा से आप अपनी तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत है, तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के महीने से धन प्राप्त करने का, समृद्धि प्राप्त करने का क्या संबंध है। देखिए, सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, हर तरह की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे आदमी प्रयास भी उतना नहीं करता और उतनी सफलता भी नहीं मिलती, सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। सावन के महीने में ज्यादातर लोगों को धन और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सावन के महीने में धन समृद्धि

भगवान शिव हैं जिनकी पूजा उपासना से जीवन में धन की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। यहां तक कि भगवान शिव के विशेष प्रयोग से, भगवान शिव की विशेष पूजा करने से दरिद्र योग को भी नष्ट किया जा सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो आपका भविष्य है, जो आपका प्रारब्ध है, वो केवल भगवान शिव मिटा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। तो भगवान शिव की कृपा से धन कैसे प्राप्त होगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। दैनिक जीवन में सामान्य रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिए। इसके बाद नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। रोज शाम को पूजा के दौरान शिव जी की आरती करिएगा और तामसिक आहार मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। ये प्रयोग आप सावन से शुरू कर लें और लगातार लंबे समय तक ये प्रयोग करते चले जाएं, आपको सामान्य जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी पैसा आता है, कभी पैसा बिल्कुल नहीं आता, धन आता है नहीं आता है, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ करने के बाद प्रसाद लोगों में बांटिएगा। ये उपाय सावन में जितने दिन आप करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और सावन में घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा, बेलपत्र का पौधा गमले या जमीन में लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावन में धन प्राप्ति के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। बहुत बार जीवन में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि धन की स्थिति काफी खराब हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है, एक एक पैसे को लेकर जीवन में दिक्कतें रहती हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए। संभव हो तो जल अर्पित करने के बाद सफेद चंदन भी लगाइए और इसके बाद दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका पाठ करिए, एक पाठ या तीन पाठ। रोज रात को शिव जी के सामने घी

एक दीपक जलाइए और इस समय भी कम से कम एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा और सावन के महीने में एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा धारण कर लीजिएगा और सावन के बाद भी रोज सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, चुकाना चाहते हैं लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। सावन के बाद हर मंगलवार को शिव जी को लाल फूल चढ़ाकर इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने करियर में स्थिरता चाहते हैं तो अपनी कुर्सी बार बार मत बदलिए और अगर ऐसा कर सकें तो अपनी कुर्सी का प्रयोग किसी और को मत करने दीजिए। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को पीले फूल और जल अर्पित करिए। इसके बाद भगवान शिव से अपनी प्रार्थना करिए। अगर आप दिन की शुरुआत में ऐसा करेंगे तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: शिवमय हुई धर्मनगरी हरिद्वार, चरम पर है कांवड़ियों का उत्साह, अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरकर अपने शिवालयों की ओर किया प्रस्थान। सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों का देश भर में हो रहा है सम्मान, अब ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने का सपना संजो रहे हैं खिलाड़ी। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों की छुट्टी की घोषणा। वाराणसी में बढ़ रहा बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है फायदा, कारोबारियों में खुशी की लहर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौत।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जूते और चप्पल के बारे में, क्या जूते और चप्पल का हमारे भाग्य के साथ कोई कनेक्शन होता है, कि हमारे भाग्य का इस पर कोई असर पड़ता है, हमें जूते चप्पल को लेकर किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का गुड लक मंत्र।
6: अगर रोजगार में चाहे आपकी नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, अगर रोजगार में हमेशा समस्या रहती हो तो शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को काले जूते का या काले या नीले चप्पल का दान करिएगा। साल में एक बार अगर आप ऐसा कर दें तो आपके रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएंगी।
4: और आइए जान लेते हैं 6 अगस्त 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
6: दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 6:52 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 8:13 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जूते और चप्पलों के बारे में, तो आइए जानते हैं जूते चप्पल का ज्योतिष में आखिर क्या स्थान है, क्या स्थान है जो वो रखते हैं।
6: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके जूते और चप्पलों के बारे में। आपके जूते चप्पल आपके भाग्य से, आपके जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पैरों का संबंध होता है मीन राशि से, सर का संबंध होता है मेष राशि से। इसके अलावा शनि और राहु, इन दोनों का संबंध भी आपके इस स्थान से, जूते चप्पलों से होता है। जैसे ही आप जूते चप्पल का प्रयोग करते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, वैसे ही शनि और राहु सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। गलत तरीके से जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सामान्य लगता होगा कि मैं किसी भी रंग का जूता पहन लूं, मैं कैसे भी जूता चप्पल पहन लूं, मैं मोजे के बिना पहनूंगा, मोजे के साथ पहनूंगा, मैं अलग अलग रंग के जूते पहनूंगा। तो आप अगर बिना सोचे विचारे जूते चप्पलों का प्रयोग करेंगे तो आपको स्वास्थ्य की, यश की और धन की समस्या परेशान करेगी। यानी आपके जूते चप्पल बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन में, और जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए जूते चप्पलों के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए।
4: और चलिए अब जानेंगे आज के राशिफल के बारे में। तो जानते हैं पहली तीन राशियों के बारे में, यानी कि मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के बारे में।
6: मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे जूतों का रंग कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में।
6: हम जूते जब खरीदते हैं तो बहुत सारी चीजों पर विचार करते हैं। जूता कितना आरामदायक है, जूते की आवाज कैसी है, चलने पे ज्यादा आवाज तो नहीं करता, जूते का रंग कैसा है, बहुत सारी चीजों पर हम विचार करते हैं। जूतों का रंग कितना महत्वपूर्ण है ये जानिए। देखिए फैशन में, आजकल के फैशन में लोग तमाम रंगों के जूते पहनते हैं। आपको गुलाबी रंग के जूते भी दिख जाएंगे और हरे रंग के जूते भी दिख जाएंगे। अलग अलग रंग के जूते अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। और जैसा आपको पहले बताया कि जूते चप्पल वास्तव में शनि और राहु से संबंध रखते हैं, इसीलिए पैरों में काले, भूरे या नीले रंग के जूते पहनना बहुत अच्छा है। सफेद रंग के जूते भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि सफेद कोई रंग नहीं है। सफेद का मतलब है सारे रंगों का परफेक्ट बैलेंस। अगर आप काला, नीला, भूरा इस रंग का जूता नहीं पहनना चाहते, किसी और रंग का जूता पहनना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए कि कहीं उस रंग का ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आपकी कुंडली का बुध बड़ा फेवरेबल प्लेनेट है और आपने क्या किया, हरा जूता पहनना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपने बुध को अपने पैरों में पहुंचा दिया, तो बुध भी मौका मिलने पर आपको नीचे पहुंचा देगा। तो आप जिस रंग का जूता ले रहे हैं ये ध्यान रखिए, नीला, भूरा, काला और सफेद छोड़कर लाल, पीला, हरा, गुलाबी, अगर ये सब जूते ले रहे हैं तो जरा अपने ग्रहों पर भी विचार करिएगा। भूल कर भी पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल मत पहनिएगा। पीला रंग देव गुरु बृहस्पति का रंग है और पैरों में पीला रंग पहनना शुभ नहीं होता। अगर आप पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल पहनते हैं तो इससे अपयश, दरिद्रता और बाधा सब पैदा होगी। इसलिए कृपा करके पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल मत पहनिए।
4: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को।
6: कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, काम में रुकावट आ सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
4: और गुडलक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाबों का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका लेने वाले हैं।
6: जी आज का पहला प्रश्न निमिषा ने हमें लिखा है और निमिषा हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 फरवरी 2002। जन्म का समय सुबह के 8:35। जन्म स्थान है भोपाल। निमिषा कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। निमिषा आपकी कुंडली के हिसाब से आपको MPSC की तैयारी करनी चाहिए और शिक्षा क्षेत्र की सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। MPSC और शिक्षा क्षेत्र की सरकारी नौकरी में आपको सफलता जल्दी और बेहतर प्राप्त होगी। अपनी एकाग्रता के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
4: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उस सवाल का जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और हमें अपने सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
6: जी अगला प्रश्न दिलीप कुमार यादव ने हमें लिखा है और दिलीप यादव हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1980। शाम के 3:40। जन्म स्थान है संभल, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं आगरा से। दिलीप जी कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार भी करता हूं और थोड़े समय के लिए नौकरी भी करता हूं, तो क्या मुझे नौकरी पूरी तरह से छोड़ करके व्यापार में आना चाहिए, क्या व्यापार करना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। दिलीप जी आपकी कुंडली व्यापार वाली ही है और आप व्यापार में ही रहिए, उसी में सफल होंगे। धीरे धीरे नौकरी से बाहर निकलिए और व्यापार की तरफ चलिए, पूरी तरह से व्यापार में सफलता आपको जून 2027 के बाद मिलेगी, तो आप व्यापार में लगे रहें। सफलता पाने के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये दो काम आप करें, आपका व्यापार और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
4: तो चलिए जान लेते हैं कि जूते चप्पल का हमें किस तरह से प्रयोग करना चाहिए और किन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए।
6: अब ये जानते हैं कि जूते चप्पल के प्रयोग में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जूते चप्पल आप जब भी पहन रहे हैं, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, जूता पहनने जा रहे हैं, कपड़े से झाड़ लें, ब्रश से झाड़ लें, पॉलिश हो सके तो पॉलिश कर लें, जूते चप्पल जब भी पहने हमेशा झाड़ करके पहने। अगर आप मिट्टी लगा हुआ जूता चप्पल पहन के घर से जाएंगे तो व्यर्थ की दौड़ भाग आपको पूरे दिन भर करनी पड़ेगी। आप ऑफिस से काम से लौटकर आए और जूते चप्पलों को इधर उधर फेंक दिया तो ये उचित नहीं है। जूते चप्पलों को इधर उधर फेंकेंगे तो आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। अगर रोजगार की समस्या है या नौकरी व्यापार में बदलाव चाहते हैं तो साल में एक बार किसी गरीब आदमी को काले जूते, नीले जूते या काले नीले चप्पल का अगर दान करें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, जूते चप्पल इतने महत्वपूर्ण हैं कि जूते चप्पल आपके व्यक्तित्व पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। तो आप किस तरीके के जूते चप्पल पहनते हैं, किस तरीके से उनका रख रखाव करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व के बारे में सूचना देता है।
4: और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
6: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता हो सकती है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जूते चप्पलों को घर से बाहर रखें, तो जूते चप्पल के प्रयोग से कैसे दूर करें दरिद्रता, आइए जानते हैं।
6: देखिए, जूते चप्पल से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब है, अगर दरिद्रता बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, शनिवार को एक पुराना जूता या चप्पल ले लें जो आप अब इस्तेमाल ना करते हो, जो अनुपयोगी हो, इसको रात में पहनकर पैदल अपने घर से निकलकर चौराहे तक जाइएगा और चौराहे पर जूता या चप्पल निकालकर पैरों से वहीं छोड़ दीजिए और इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए और वहां से सीधे मुड़ करके अपने घर वापस आइएगा। पीछे से कोई कितनी भी आवाज दे, कोई कितना भी बुलाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। शनिवार को लेट नाइट में, शनिवार को देर रात में अगर आप ये उपाय कर लें, एक साल में एक बार से ज्यादा ये उपाय नहीं करना है। जैसे ही आप ये उपाय एक बार करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू होगा, आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे।
4: और अब गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
6: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए अब जानेंगे आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
6: जी, अगला प्रश्न आरती ने हमें लिखा है और आरती हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1994। जन्म का समय शाम के 7:35। जन्म का स्थान है लखनऊ। आरती कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन परिवार वालों की तरफ से उसमें दिक्कत आ रही है। क्या मेरे परिवार वाले मानेंगे? क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से होगा? आरती, आपकी कुंडली तो कहती ही है कि आप स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगी, कोई माने या ना माने, आप अपनी इच्छा से इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में विवाह करेंगी। हालांकि मुझे लगता है कि परिवार वालों को अगर समझाएं और सारी स्थिति बताएं तो परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो लड़के की कुंडली है वो आपके हिसाब से ठीक ठाक मैच कर जाती है। थोड़ा सा शांति पूर्वक इस मामले का हल निकालिए, मुझे लगता है कि परिवार वालों की सहमति भी मिलेगी और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से भी होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: और चलिए अब जान लेते हैं आज के आखिरी सवाल के बारे में। तो जानेंगे पंडित जी से ही आज का आखिरी अंतिम और चौथा प्रश्न, वो किसका लेने वाले हैं
6: जी। आज का अंतिम प्रश्न करण कपूर ने हमें लिखा है और करण कपूर हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1979 1979। जन्म का समय रात में 9:10 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। करण कह रहे हैं कि मेरे पिता की एक प्रॉपर्टी थी और उनका देहांत हो जाने के बाद उसमें पारिवारिक लफड़े पैदा हो गए हैं, पारिवारिक झंझट पैदा हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि सुलह समझौते से मामला हल हो जाए। तो क्या मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मुझे मिल सकेगा और क्या ये मामला सुलह समझौते से हल हो पाएगा? करण, आपकी कुंडली के हिसाब से ये मामला आपसी सुलह समझौते से ही हल होगा, इस साल के आखिरी तक हल हो जाएगा और जो आपका पिता की संपत्ति में अधिकार है वो आपको मिलेगा। आप चिंता मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य बनाए रखिए। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को गुड़ का या मीठी चीज का दान करिए, बहुत बेहतर होगा।
4: पंडित जी, एक सवाल था, जैसा कि आपने बताया कि हमें जूते चप्पल दान में दे देने चाहिए, तो क्या हम किसी को जूते या चप्पल, अधिकतर जैसे हम लोग गिफ्ट देते हैं, तो क्या हम गिफ्ट कर सकते हैं?
6: जी देखिए, जूते चप्पल भी आप बिल्कुल गिफ्ट में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे घड़ी गिफ्ट में देने पे थोड़ा प्रतिबंध है, थोड़े नियम हैं, वैसा जूते चप्पलों के साथ नहीं है। आप जूते चप्पल किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, काले रंग के जूते चप्पल गिफ्ट में मत दीजिएगा, क्योंकि काले रंग की चीजें उपहार में देना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से संबंध टूटने की या बिखरने की संभावना बन सकती है। आप नीले रंग का दे दें, सफेद रंग का दे दें, ब्राउन कलर का दे दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने भाई को, अपने परिवार में, अपने मित्र को जूते चप्पल गिफ्ट करने, बिल्कुल करिए, लेकिन कोशिश करिए कि काले रंग के जूते या काले रंग के चप्पल, फुटवेयर जो ब्लैक कलर के हों, ये उपहार में ना दिए जाएं, क्योंकि इनको उपहार में देने से रिश्तों के टूटने का खतरा हो सकता है।
4: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: जिनका जन्मदिन 6 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी आपकी, करियर में बदलाव भी होगा और उत्तम सुधार भी होगा, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है, विवाह के मामलों में इस साल विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र का उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए। देखिए, मंत्र का एक एक शब्द, अगर लंबा मंत्र है तो शब्द, छोटा मंत्र है तो एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किस तरीके से आप मंत्र पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके उच्चारण का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही शब्द और सही तरीके से जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र परम शक्तिशाली होता है और आपको लाभ पहुंचाता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं 6 अगस्त 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में। तो आइए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मकर। आपको नियमित रूप से सूर्य देव के मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप स्वास्थ्य की समस्या से और तमाम दुर्घटनाओं से बच जाएंगे।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए, आज महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह एक बार जल अर्पित करने के बाद शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करिएगा और सप्ताह में एक दिन हर शनिवार को निर्धनों में खाने की वस्तु बांटिएगा या खाने की वस्तु का दान करिएगा। अगर ऐसा सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करें तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो हमने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: और अब बात करते हैं सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा के रंगों की। सावन का पावन महीना आते ही देश भर में भगवान शिव की भक्ति का उत्साह देखने को मिलता है। जगह जगह पर कांवड़ यात्रा की रौनक रहती है, जहां लाखों शिव भक्त गंगा जल को लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। वहीं हर साल कांवड़ यात्रा में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। हरिद्वार से लेकर देवघर तक शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कंधों पर कांवड़, होठों पर बोलबम और दिल में आस्था, यही सावन की सबसे सुंदर पहचान बन गई है। देखिए
8: सावन का पवित्र महीना आते ही शिवभक्ति का रंग और निखर जाता है। कहीं पारंपरिक कांवड़ तो कहीं भव्य और अनोखी कांवड़, और हर शिव भक्त बोलबम के जय घोष के साथ महादेव की भक्ति में लीन दिखाई देता है।
9: कांवड़ उतार रहा हूं मैं, 4 साल मेरा कांवड़ हो गया और मेरा घर है काशी में।
10: पायल क्यों पहना?
9: पायल इसलिए पहना कि कांवड़ ठंडी ना हो।
11: मैंने कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके।
8: हरिद्वार में हर जगह कांवड़िये ही दिखाई दे रहे हैं। हाईवे कांवड़ियों से पटा है और हर की पैड़ी पूरी तरह से कांवड़ियों से गुलजार है। हर की पैड़ी पूरी तरह से भगवामय हो चुकी है। शिव सेतु समेत सभी जगह कांवड़िये ही दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िये गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। कांधे पर कांवड़, मन में देवाधिदेव भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और जुबान पर बम भोले, ये कांवड़िये झारखंड में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की तरफ कूच कर रहे हैं। ये शिव भक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर सुल्तानगंज रवाना होने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है। ये कांवड़िये ट्रेन से सुल्तानगंज पहुंचेंगे और वहां से गंगा का पवित्र जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकलेंगे, जहां ये अपने आराध्य देव का जलाभिषेक करेंगे।
12: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के बैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है, ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप?
6: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
12: कहां से आए आप?
6: रायबरेली से।
12: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
6: बहुत ज्यादा उत्साह है, हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहाँ जल भरे हैं जो कि यहाँ पर दर्शन किए हैं अपना, अब यहाँ से निकल रहे हैं जो सुल्तानगंज, सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम।
12: तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
10: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
8: कांवड़ यात्रा के दौरान एक शिवभक्त कांवड़िया गोल्डन बाबा को अपने कंधे पर बैठा कर यात्रा करता हुआ मुजफ्फरनगर पहुंचा और जिसने भी इसे देखा देखता रह गया, क्योंकि इस शिवभक्त ने जहां लाखों रुपए की गोल्ड ज्वेलरी पहनाई हुई थी तो वहीं यह खुद भी सोने के आभूषण धारण किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड 24 कैरेट सोने की ये आभूषण है जिनकी कीमत लाखों में है।
13: ये मेरी एक गोल्ड की कावड़ी लगाओ आप, क्योंकि इसके ऊपर जो चैने पहनी है बोले ने मैंने पहनी है, ये गोल्ड प्लेटेड होती है 1 ग्राम, इनके ऊपर 24 कैरेट सोने की परत होती है।
14: कितने किलो सोना होगा
13: ये? देखो वैसे तो 3-4 किलो गोल्ड है, पर इसके ऊपर जो गोल्ड हो रखा है वो लगा लो 4-5 तोला हो रखा है।
8: कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ प्यार का भी एक अनोखा रंग देखने को मिला। यूपी के मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर एक प्रेमी जोड़ा 111 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर पैदल चलता नजर आया। इस प्रेमी युगल की एक ही मन्नत है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हंसी खुशी से उनकी शादी हो जाए। यात्रा के दौरान ये दोनों रोजाना करीब 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर ये सफर पूरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके साथ कुछ दोस्त और परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। ये है हरियाणा के रहने वाले दंपति जो करीब 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस यात्रा की सबसे खास बात पति का साथ नहीं बल्कि उसके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही पत्नी निशु है, जो हरिद्वार से गंगा जल ले जाकर सास ससुर को स्नान कराने के लिए पति संग पैदल चल रही है।
15: मन का कुछ नहीं है, बस अपने मम्मी पापा को नहलाना है जाके, उनके मतलब उनको सही सलामत रखे भगवान, बस यही इच्छा है।
16: पति के साथ जा रही हो, कैसे ख्याल आया? और मम्मी पापा का मतलब सास ससुर या कौन?
15: पूरा सास ससुर।
16: थोड़ा सा पूरा बताओ कि आपके पति जाते थे?
15: हाँ मेरे पति जाते थे, पहले अकेले लेके आते थे, लेकिन पिछली बार से मेरा भी मन किया कि मैं भी साथ में चलूँ। अब की बार दूसरी कावड़ है हमारी जोड़े से और हम अपने सास ससुर को नहलाते हैं जाके, बहुत अच्छा लगता है।
8: मुंगेर के असरगंज कच्ची कांवड़िया पथ पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़िया पथ पूरी तरह भगवामय हो चुका है, बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मार्ग गूंज रहा है। लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल का ये कांवड़िया हाथों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकला है। ये बिच्छू के आकार में दोनों पैरों को ऊपर कर हाथ के बल महादेव को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया। बता दें ये पिछले 2 वर्षों से पूरे भारत की धार्मिक यात्रा कर रहे हैं।
17: हम पिछले 2 साल से भारत यात्रा कर रहे हैं, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 51 शक्तिपीठ में 21 शक्तिपीठ यात्रा कम्प्लीट कर चुके हैं। मथुरा, वृंदावन, खाडूश्यम बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जैन माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा जी जैसे, बागेश्वर धाम, चित्रकूट धाम, अनुसुईया माता मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिच्छूबम यात्रा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल 1 महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है।
8: पटना सिटी के विशाल शिवधारी कांवड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था अजगैबीनाथ धाम से 54 फीट लंबी विशाल कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इस विशाल कांवड़ की विशेषता इसकी भव्य बनावट है। 54 फीट लंबे इस कांवड़ में 54 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ माँ दुर्गा और माँ काली की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं चांदी से बाबा बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की आकर्षक कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं, जो श्रद्धालुओं और राहगीरों को आकर्षित कर रही हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव उपाध्याय, मुंगेर से गोविंद कुमार, प्रयागराज से आनंद राज के साथ चंदौली से उदय गुप्ता, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां की करनाल में पनप रही करनाल की बॉक्सिंग नर्सरी, यहां पर बेटियां जी जान से बॉक्सर बनने में जुटी हुई हैं ताकि देश और परिवार का नाम रोशन कर सकें। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा से मिले हैं और इसीलिए करनाल की रिंग में भविष्य की चैंपियन बेटियां तैयार हो रही हैं।

0: अब सिर्फ कुश्ती में ही नहीं बॉक्सिंग में भी धाक जमाने की तैयारी में जुट गई हैं।
1: छोटी लड़कियां भी बहुत ज्यादा आ रही है और करीबन आप मान के चलिए 15 किलोमीटर 20 और 25 किलोमीटर से लड़कियां आ रही है और सुबह शाम पेरेंट्स भी इनके साथ ही आ रहे हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के 5 बजे ग्राउंड टाइम है आ रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, लेट तक 8 8 9 9 10 10 बजे तक घर पहुंच रहे हैं और काफी अच्छा रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर करीबन 20 से 25 लड़कियां हैं सर, जिनमें इंटरनेशनल लड़कियां हैं सर, एशियन मेडलिस्ट लड़कियां हैं, मानसी है, तमन्ना है और बहुत सारी लड़कियां नेशनल लेवल की मेडलिस्ट है और आगे भी इनकी संख्या बढ़ेगी सर।
0: हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। हरियाणा ने कुल 11 मेडल जीते हैं, इनमें 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा मेडल बॉक्सिंग में आए हैं और उसमें भी लड़कियों ने कमाल किया है। ग्लासगो में बॉक्सिंग रिंग में हरियाणा की बेटियों ने जो कमाल कर दिखाया उससे पूरा देश गदगद है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मेडल जीतकर लौटी बेटियों को बॉक्सिंग की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया।
2: विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं, ये बड़े गर्व की बात है।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड हैं और इनमें से बॉक्सिंग में 4 गोल्ड हरियाणा की लड़कियों ने जीते हैं। प्रीति पवार 54 किलोग्राम भार वर्ग, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग, साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम भार वर्ग, प्रिया घंघास 60 किलोग्राम भार वर्ग। जाहिर है इस खेल में भारत की बढ़ती ताकत बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहा रही इन लड़कियों के लिए बड़ी प्रेरणा है।
3: बॉक्सिंग में बस मेन टारगेट तो ओलंपिक है, बस सीनियर्स को देख के यही है कि भाई उनकी तरह मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, फैमिली भी मतलब किसी चीज की कमी नहीं रहने देती और फैमिली के साथ कोचेस का भी पूरा सपोर्ट है।
0: निकिता नेशनल खेल चुकी है, इनकी निगाह ओलंपिक पर है, सो सुबह शाम बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहा रही है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बॉक्सिंग में मिली बड़ी कामयाबी से हौसले बुलंद हैं। कहती है कि माता पिता का साथ हो तो लड़कियां आसमान छू सकती हैं।
4: लड़कियों के लिए मुश्किल जब है इस अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं देन बॉक्सिंग ईजी है। मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बट फिर उसके बाद आपको इजी लगेगी अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। सुविधाएं सारी अच्छी मिलती है, मतलब सरकार काफी सपोर्ट कर रही है और उम्मीद है आगे भी करती रहेगी। अगर बच्चे निकल रहे मेडल आ रहे तो सरकार भी सपोर्ट करेगी। अभी मेरा टारगेट 2030 कॉमनवेल्थ का है और 2032 का ब्रिस्बेन ओलंपिक है उसका।
0: करनाल के कर्ण स्टेडियम के बॉक्सिंग रिंग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ओलंपिक में भी बॉक्सिंग का दबदबा होगा और उसमें हरियाणा की छोरियों की हिस्सेदारी अहम होगी। कमलदीप करनाल, गुड न्यूज टुडे।
5: चाइना के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइझोउ से एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जिसने संगीत और प्रकृति के अनोखे संगम को दुनिया के सामने पेश किया है। यहां करीब 1,20,000 वर्ग मीटर में फैले सीढ़ी नुमा फूलों के खेतों का एक भव्य ओपन एयर कॉन्सर्ट में इसे बदल दिया गया, जहां हजारों दर्शकों ने प्राकृतिक माहौल के बीच पारंपरिक चाइनीज संगीत का आनंद लिया। दर्शक सीढ़ी नुमा खेतों पर बैठकर संगीत का आनंद लेते हुए दिखाई दिए, जबकि चारों ओर फैली हरियाली और रंग बिरंगे फूल इस आयोजन को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। ऊंचाई से देखने पर यह पूरा इलाका किसी अनोखी कलाकृति जैसा नजर आ रहा है और यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर इसे लैंड आर्ट का शानदार एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये विशाल शहरी टेरेस स्थानीय प्रशासन की उस सोच का प्रतीक है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य और शहरी विकास को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। संगीत, प्रकृति और संस्कृति के इस अद्भुत संगम ने न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि दूर दूर से आए पर्यटकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है।

0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
1: सावन का महीना है, शिव जी का महीना है, ऐसे में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है। इन तस्वीरों में भी नहर के किनारे ये तमाम बच्चे मिलकर यहाँ रेत से बने हुए कई शिवलिंग की आराधना में जुटे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मौज मस्ती के साथ बच्चों की पूजा का ये तरीका सोशल मीडिया पर सबको लुभा रहा है। बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के खतरों के बारे में बताता ये वीडियो अब हर कोई देख रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक नाटक के जरिए इन खतरों को बताया जा रहा है। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ा मोबाइल और उस पर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे छोटे बच्चों को मकरजाल में फंसा लेते हैं और बच्चा फिर वास्तविकता से दूर होकर अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर उसे इन प्लेटफॉर्म से काट दिया जाए तो उसे उसकी वास्तविकता से परिचय कराया जा सकता है। ये वीडियो वायरल है और अब स्कूलों में भी दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे इसके खतरों को समझ सकें। स्टेज पर सामूहिक डांस शो के बीच एक बच्ची स्टेज पर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कोई मूवमेंट नहीं करती। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बाकी बच्चियां तो डांस कर रही हैं, लेकिन ये बच्ची पहले तो खड़ी रहती है, फिर ऐसा इशारा करती है मानो उसे भूख लगी है और वो शायद दर्शकों के बीच बैठे अपने पेरेंट्स से कह रही है कि खाना खिला देते तो डांस ठीक से हो जाता। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्ची के हाव भाव देख कर उससे सहानुभूति रख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे ये अंकल जेंजी के सामने भी जबरदस्त एनर्जेटिक साबित हुए हैं। एक बच्चे ने उनको कुछ करतब दिखाए और फिर उनको आमंत्रित किया। फिर क्या था, अंकल ने साबित कर दिया कि उनकी उम्र बस एक नंबर है। उन्होंने जो एनर्जी दिखाई, तमाम जेंजी बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये वायरल तस्वीरें भावुक कर रही हैं। ये पुलिस वाला पुलिस अफसर बनने के बाद जब घर गया तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है। दोनों की मुलाकात सबके दिल को छू रही है क्योंकि उस दोस्त को न सिर्फ ये अफसर गले लगाता है बल्कि खर्च के लिए पैसे भी देता है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस अफसर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: शिव में हुई धर्मनगरी हरिद्वार चरम पर है कावड़ियों का उत्साह, अब तक 2 करोड़ कावड़ियों ने जल भरकर अपने शिवालय की ओर किया प्रस्थान। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी नकली पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। CWG के पदक वीरों का देश भर में हो रहा है सम्मान, अब ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने का सपना संजो रहे हैं खिलाड़ी। दिल्ली NCR के कई इलाकों में सुबह से हो रही है रिमझिम बरसात, तापमान में आई कमी, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूल्स और आंगनबाड़ी में छुट्टी, उत्तर प्रदेश के भदोही और प्रयागराज में भी 8वीं तक के स्कूल बंद।

0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: शुभ समाचार की शुरुआत कावड़ यात्रा के साथ होगी। हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर कावड़ मार्ग तक सावन मास की दिव्य छटा छाई हुई है। पूरा शहर शिवमय हो चुका है, हर तरफ कावड़िए ही कावड़िए दिख रहे हैं, जो जल भरकर अपने ठिकाने की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां हर दिन जल भरने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। सावन मास में अब तक 2 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल भर चुके हैं, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
2: और बात मानसून की भी होगी, जहां देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों मानसून अपने तेवर दिखा रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जमकर बादल बरस रहे हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में भी नॉनस्टॉप बारिश से लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर मिशन जिंदगी चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे।
0: तो साथ ही बात दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो की पहल की भी करेंगे। अलमारी में रखे आपके पुराने कपड़े अब सिर्फ जगह नहीं घेरेंगे, बल्कि किसी की जिंदगी में खुशियां भी ला सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है अर्पण केंद्र। यहां आप अपने अच्छे और इस्तेमाल लायक पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। तो कैसे आप दे सकते हैं यहाँ कपड़े, आगे आपको बताएंगे।
2: तो वहीं देश का मान बढ़ाने वाले पदकवीर आज पूरे देश की शान बने हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगा बुलंद करने वाले इन खिलाड़ियों के स्वागत में शहर से लेकर गांव तक जश्न का माहौल बना हुआ है। देश इन पदकवीरों के संघर्ष, मेहनत और जज्बे को भी सलाम कर रहा है, तो इन सभी के बारे में भी आगे विस्तार से बात करेंगे।
0: तो इसके अलावा बात टीम इंडिया के क्रिकेटर्स की भी करेंगे। आईसीसी ने मेंस वनडे खिलाड़ी की ताजा रैंकिंग जारी की है। वनडे बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट में कप्तान शुभमन गिल अपने 3 भारतीय जो है उसमें शामिल हैं, और शुभमन टॉप पर काबिज हैं। वहीं इस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हैं। किस स्थान पर ये खिलाड़ी, बताएंगे आगे आपको, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
2: श्रावण मास के दौरान हरिद्वार में कांवड़ मेले में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, और जहां अब तक 2 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य और शिवालयों की ओर रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
0: ये तस्वीरें हरिद्वार की है। यहाँ पर हर की पैड़ी के शिव घाट पर नहाते समय एक कांवड़िए का पैर फिसल गया और वो गंगा जी की तेज धारा में बहकर डूबने लगे। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने कांवड़ मेला ड्यूटी पर तैनात 40वीं बटालियन PAC को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही बचाव टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर शख्स की जान बचा ली।

0: देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां मूर्तिकार भगवान बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, वहीं महिलाएं भी बप्पा की मूर्ति बना रही हैं। पुणे के नारायण गांव की किरण साबले परिवार के साथ गणपति बप्पा का फेटा और पगड़ी बना रही हैं। दिल्ली सरकार ने अर्पण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत पहले चरण में दिल्ली के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर दान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपने साफ और पहनने योग्य पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। अच्छे कपड़ों को जरूरतमंदों को दिया जाएगा, जबकि अनुपयोगी कपड़ों से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा थैले, नए कपड़े और धागे जैसे उत्पाद बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन ने राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 50 और सीटों की मंजूरी दे दी है और इससे कॉलेजेस की क्षमता 100 से बढ़कर अब 150 हो गई है। इस कदम से राजौरी और पुंछ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और जाहिर है इससे राजौरी और पुंछ जिलों के छात्रों और मरीजों को फायदा भी मिलेगा। यहां मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। गुजरात के भावनगर में लोको पायलट की सतर्कता और संवेदनशीलता का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में रेलवे ट्रैक के पास एशियाई शेरों का एक झुंड नजर आ रहा है और उससे थोड़ी दूरी पर एक ट्रेन रुकी हुई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेर पहले तो खतरा भांपते हैं और फिर निश्चिंत हो जाने पर धीरे धीरे ट्रैक को पार करते हैं। एशियाई शेरों के ट्रैक पार करने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। साउथ इंडियन फिल्मों के पॉपुलर एक्टर धनुष ने चेन्नई के सालीग्रामम स्थित थाई सत्य मैट्रिकुलेशन स्कूल में अपने ही खर्च पर एक नई 3 मंजिला कंक्रीट इमारत का निर्माण करवाया है। इस नई इमारत का नाम धनुष ब्लॉक रखा गया है। ये वही स्कूल है जहां धनुष ने एलकेजी से 10वीं तक की पढ़ाई की थी और इस कार्यक्रम में धनुष अपने स्कूल के दिनों के दोस्त और सिनेमेटोग्राफर कुमारन और 1999 बैच के अन्य साथियों के साथ शामिल हुए।
1: आईसीसी ने मेंस वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। वनडे बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट में कैप्टन शुभमन गिल समेत 3 भारतीय हैं। शुभमन टॉप पर काबिज हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल दूसरे नंबर पर हैं। गिल ने पिछले हफ्ते मिशेल से बादशाह छीनी थी। भारत ने आखिरी वनडे 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे जबकि रोहित शर्मा चौथे पायदान पर काबिज हैं।
0: दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत के आसमान में दिखा शानदार नजारा देखने को मिला और यहां के हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज पर भव्य ड्रोन शो आयोजित होता है, जो इस ब्रिज पर एक नियमित आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यह अद्भुत ड्रोन लाइट शो हर शाम 9 बजे शुरू होता है, जो 15 मिनट तक चलता है। वीकडेज में 300 ड्रोन के जरिए आसमान रोशन होता है, जिसके जरिए अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जबकि वीकेंड पर 1000 ड्रोन शो में हिस्सा लेते हैं।

शुभ समाचार में सबसे पहले बात शिव के सावन की। जब जब सावन आता है शहर शहर शिव के रंग रंग जाते हैं। हर कदम पर बम बम भोले की गूंज होती है, हर सांस में महादेव का स्मरण और हर राह शिवमय होती है। आस्था के इसी विराट उत्सव में कांवड़ यात्रा इस बार भी अपने अनोखे रंग बिखेर रही है। शहर शहर भगवा रंग में रंगा हुआ है, सड़कों पर शिव भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। कहीं केदारनाथ धाम की भव्य झांकी वाली कांवड़ श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कहीं आदि योगी शिव की विशाल प्रतिमा वाली थीम हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। डमरू की धुन, हर हर महादेव के जयकारे और कंधों पर गंगा जल लेकर बढ़ते शिव भक्त, हर दृश्य भक्ति उत्साह और समर्पण का अद्भुत संगम बन गया है। सावन का ये पावन महीना सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि शिव में स्मरण, सेवा और सनातन आस्था का जीवंत उत्सव बनकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहा है।

0: भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, तो भक्तों का उनके प्रति प्रेम और समर्पण भी अटूट और निराला है। ये उसी की दिव्य छटा है। कंधों पर सजी कांवड़, भगवा रंग में रंगे भक्त और बोल बम के जय घोष के साथ पूरे भक्ति भाव से आगे बढ़ते शिव भक्तों की ये तस्वीरें हरिद्वार की है, जहां हर तरफ इन दिनों बस कांवड़िए ही कांवड़िए दिख रहे हैं। हर की पैड़ी से गंगाजल भरने वालों का तांता लगा हुआ है, तो रास्ते जल भरकर जाने वाले कांवड़ियों से गुलजार है। जल लेकर जाने वाले कांवड़ियों में बड़ों से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। कोई भारी कांवड़ के साथ है तो कोई हल्की कांवड़ के साथ, कोई ट्रॉली में भगवान शिव को विराजमान कर तो कोई कंधे पर लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पैदल जल भर के ले जा रहे कांवड़ियों के चेहरे पर थकान का कोई भाव नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक दिख रही है, शिव भक्ति की चमक।
1: बोले तो बाप के भूखे होते हैं, जल कितना भी हो।
0: किसी ने मनोकामना पूरी होने पर कांवड़ उठाया है तो कोई कांवड़ उठाने के पीछे भोले की इच्छा की बात बता रहा है। युवाओं और बच्चों में तो इस कांवड़ यात्रा को लेकर आस्था और भक्ति का एक अलग ही उत्साह दिख रहा है।
2: भोले की कृपा है, जा रहे हैं, उसकी मर्जी है, बुलाया उसने जा रहे हैं, उसने बुलाया तो आगे, वरना तो अपने घर रहते।
3: पहले भी लेके गया होगा?
2: हाँ, मैं पहले लेके गया था, फिर अब लेके आया हूँ। अब के साथ में दोस्त आया, भाई है।
4: क्या 1 लीटर जल है और जी पूरे महादेव जाएगी जी, सब भोले की कृपा है, ऊपर वाले की बराबर काम।
0: हर की पैड़ी कांवड़ियों से भरी हुई दिखाई दे रही है, चाहे मालवीय द्वीप हो चाहे शिव सेतु, हर पुल पर कांवड़िए ही दिख रहे हैं। ट्रेन कांवड़ों से लदी दिखती है, तो हाईवे पर कांवड़ियों का हुजूम दिख रहा है। हर कोई जल भरकर अपनी राह पर बढ़ता चला जा रहा है, ताकि अपने ठिकाने पर पहुंचकर वो पास के शिवालय में जाकर भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर सके। हरिद्वार से गंगा जल भरकर 2 करोड़ से अधिक शिव भक्त अपने शिवालयों की ओर निकल चुके हैं। जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर की पैड़ी पर आपदा राहत टीमें भी तैनात रहती हैं। शिव घाट पर नहाते समय जब एक श्रद्धालु गंगा की तेज धारा में बहने लगा, तो कांवड़ मेले में ड्यूटी पर मुस्तैद PAC के 40वें बटालियन की आपदा राहत टीम तुरंत एक्शन में आ गई। दिल्ली के रहने वाले शिव भक्त राजेंद्र कुमार का गंगा में स्नान करते वक्त पैर फिसल गया था और वो तेज धारा में बहने लगे, लेकिन आपदा राहत की टीम तुरंत हरकत में आई और फिर उन्हें बचाकर सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लाई। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो शिव भक्ति के तमाम रंग, कांवड़ मेले के तमाम रंग भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ धाम के लाइव दर्शन करवाते हैं। काशी शिव की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है और मान्यता है कि ये शिव का स्थायी धाम है। मोक्षदायिनी गंगा तट पर बसी शिव की इस नगरी का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। मान्यता है कि सावन के महीने में जो काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है, महादेव का जलाभिषेक करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वहीं सोमनाथ धाम की महिमा भी अपरंपार है। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान दिया गया है। सावन में सोमनाथ धाम के दर्शन का विशेष महत्व है। आप इस वक्त काशी विश्वनाथ और सोमनाथ धाम के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि जहां सोमनाथ धाम के दर्शन से जीवन में आरोग्यता और समृद्धि आती है, वहीं काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन से साधक को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, दिव्य दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। GNT के माध्यम से घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर के।
6: तो आस्था जब कल्पना से मिलती है तो भक्ति का स्वरूप और भी ज्यादा भव्य हो जाता है। सावन की कांवड़ यात्रा में इस बार आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनी है आदि योगी थीम वाली कांवड़। भगवान शिव के विराट आदि योगी स्वरूप को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसे देखने के लिए रास्तों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव भक्त पूरे उत्साह के साथ हर हर महादेव के जय घोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कांवड़ सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति, कला और शिव भक्ति का अद्भुत संगम भी इसे देखते ही बनता है।

0: सावन में केदार बाबा की झलक अब भक्तों के बीच खुद चली आई है। कांवड़ यात्रा में इस बार केदारनाथ थीम वाली कांवड़ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाबा केदार के धाम के जैसी दिखने वाली इस कांवड़ को सुंदर ढंग से सजाया गया है और इसे देखने के लिए रास्तों पर लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ उमड़ी हुई है। केदारनाथ धाम की तरह इस कांवड़ को बनाया गया है, इसे सजाया गया है। तो सावन मास में पूरा देश बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। कांवड़ मार्गों से गुजरने वाले शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान तरह तरह की कांवड़ लोगों को बेहद आकर्षित कर रही हैं, जो अलग अलग थीम पर बनाई गई हैं। महिलाओं में भी कांवड़ मेले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: हाईवे पर कांवड़ लेकर जाते शिव भक्त, रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों का हुजूम, भगवान शिव के प्रिय मास सावन में हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ रही है। देश के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर एक से बढ़कर एक आकर्षक कांवड़ दिखाई पड़ रहे हैं, तो कांवड़ ले जा रहे शिव भक्तों के समर्पण के कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार से जल भरकर यूपी के अलग अलग शहरों से गुजरने वाले कांवड़ियों या फिर बिहार के मुंगेर के रास्ते सुल्तानगंज में जल भरने जा रहे कांवड़िये, हर चेहरा शिव भक्त के रंग से सराबोर दिख रहा है। कांवड़ यात्रा में हर दिन अलग अलग तरह के ऐसी कांवड़ देखने को मिल रही है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यूपी के सहारनपुर से होकर गुजर रही इन कांवड़ों को देखिए, किसी में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप दिख रहे हैं, तो किसी में हनुमान के साथ भगवान राम के परिवार की झलक दिखाई दे रही है। महाकाल के भव्य स्वरूप वाली कांवड़ के साथ ही केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार कांवड़ भी दिख रही है। इन विशाल कांवड़ों की सजावट भी मुग्ध करने वाली है। कांवड़ियों ने अपनी आस्था और मेहनत से इन कांवड़ों को बेहद आकर्षक रूप दिया है। अलग अलग रंगों, लाइटिंग और स्वरूपों से सजी कांवड़ सहारनपुर की सड़कों से हर दिन गुजरती दिखती है, जो हर किसी को आकर्षित करती है। कांवड़ यात्रा में हर कांवड़िया की भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था दिखाई पड़ती है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। अब प्रयागराज में महिला कांवड़ियों के इस दल को देखिए। इस दल में शामिल महिलाएं एक रंग के कपड़े में भगवान भोले शंकर की भक्ति में झूमती हुई दशाश्वमेध घाट पहुंची। यहाँ इन महिलाओं ने पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। ये सभी महिलाएं प्रयागराज की हैं, जो पूजा अर्चना के बाद दशाश्वमेध घाट पर जल भरने पहुंची।
2: सावन का महीना आते ही हर कांवड़िया अपने अलग अलग रंग और रूप में नजर आता है। हम मेरे पीछे देखेंगे सब महिलाएं हैं और सब ने ग्रीन साड़ी यानी हरी साड़ी पहनी है। हरी साड़ी यानी सावन का प्रतीक कहा जाता है, हरा रंग। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आप लोग निकली हैं?
3: जी, महिला सशक्तिकरण। हम लोग घर से महिलाएं भी बाहर निकले, हर एक चीज में महिला आगे रहती हैं, तो अब कावर के लिए भी महिला बढ़ के आगे ले भाग ले आगे आगे के लिए। इसलिए हम लोग पिछली बार 4-5 की संख्या में थे, इस बार हम लोगों की संख्या देखिए बहुत बढ़ के हो गई है। अगले साल और भगवान चाहेंगे तो और बढ़ेगा।
4: भगवान हम लोगों का घर परिवार भी अच्छा रखे।
2: माँ दशाश्वमेध घाट से जल भर कर ये मनकामेश्वर मंदिर में जाके जल अभिषेक करेंगी।
1: जल भरने के बाद बोलबम के जयकारे लगाते हुए ये महिलाएं भक्ति भाव से झूमते हुए मनकामेश्वर मंदिर के लिए निकल पड़ी, जहां पवित्र जल से उन्हें भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना था। सहारनपुर से राहुल कुमार और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो सावन के पावन महीने में हर तरफ आस्था उमड़ रही है। कांवड़ियों की भक्ति साधना से पूरा माहौल शिवमय हो गया है और अब तैयारियां सावन की शिवरात्रि की हैं। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तमाम कांवड़िये इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी यात्रा संपन्न करेंगे।

0: सावन के पावन माह में हर तरफ भोले की भक्ति के अद्भुत रंग बिखरे हैं। शिव भक्तों की कांवड़ साधना के रंग निरंतर गहराते जा रहे हैं। पवित्र नदियों से कांवड़ लेकर लाखों कांवड़िए शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए निकल पड़े हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और सावन की शिवरात्रि पर तो शिवालयों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। इस बार सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त सुबह 4:53 पर शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि 12 अगस्त की रात 1:51 तक रहेगी। ऐसे में शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ज्यादातर कांवड़िए इस पावन दिन ही पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिवलिंग के अभिषेक से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तो हर तरफ कांवड़ियों के जत्थे ही दिख रहे हैं। यहाँ से कांवड़िए ट्रेन में सवार होकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इनमें से कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो यहाँ से निकलकर सुल्तानगंज पहुंचेंगे, वहां से पवित्र गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ेंगे। कांवड़ियों की भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सावन के पावन महीने का शिव भक्तों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस विशेष माह में पवित्र नदियों से लेकर शिवालयों तक भक्ति की अविरल धारा आस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के जयकारों से आसमान गूंज उठता है और कई दिनों की साधना के बाद कांवड़ यात्रा संपन्न करके शिव भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। चंदौली से उदय गुप्ता और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: महाकाल की भस्म आरती, महाकाल का दिव्य अभिषेक और महाकाल की भव्य आरती, सावन का हर सवेरा इन दिव्य दृश्यों के साथ शिव भक्ति में डूबा नजर आता है। देवघर से लेकर काशी तक, हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक, पूरा देश इन दिनों शिवमय हो चुका है। कहीं बोल बम के जय घोष से वातावरण गूंज रहा है तो कहीं कांवड़ यात्रा में आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। सावन में चारों ओर बस शिव भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। दरअसल सावन भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है। यही वजह है कि इस महीने देशभर में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ता है।

भगवान महाकाल के दिव्य धामों में भी इन दिनों आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। महाकाल धाम में ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालु लंबी कतार में लगे हुए नजर आए हैं।

0: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सावन में देखिए कैसे भीगी दिल्ली।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
8: है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: शिव में हुई धर्मनगरी हरिद्वार, चरम पर है कांवड़ियों का उत्साह। अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरकर अपने शिवालय की ओर किया प्रस्थान।

0: महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी नकली पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर पाबंदी लगी। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। सीडब्ल्यूजी के पदक वीरों का देशभर में हो रहा है सम्मान। अब ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने का सपना संजो रहे हैं खिलाड़ी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से हो रही है रिमझिम बरसात। तापमान में आई कमी, उमस भरी गर्मी से मिली राहत।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: ब्रेक के बाद आपका शुभ समाचार में बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं सावन में रिमझिम बारिश की। सुबह की शुरुआत आज बारिश की फुहारों के साथ हुई है। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। वहीं जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई वहां भी आसमान घने बादलों से ढका हुआ है और मौसम पूरी तरह से सावन के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें अनुमान है कि दिन भर अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर तेज बारिश की भी संभावना बनी हुई है। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट लाकर लोगों को राहत दी है, वहीं सुबह के समय दफ्तर जाने वालों को कई जगहों पर धीमी रफ्तार वाले ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और मौसम से जुड़े हुए ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखने की अपील की है। तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सावन की शुरुआत रिमझिम नहीं बल्कि झमाझम बारिश के साथ हुई है। सुबह सुबह हुई बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को आखिरकार राहत मिल ही गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और दिन भर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली की रौनक देखते ही बन रही है। हरियाली की चादर ओढ़े दिल्ली का हर कोना पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। पेड़ों की धुली हुई पत्तियां, बारिश की बूंदों से चमकती सड़कें और ठंडी हवाओं का एहसास शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। लोधी गार्डन, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका हो या दिल्ली की चौड़ी चौड़ी सड़कें, हर जगह सावन की पुहारों ने प्रकृति की नई तस्वीर उकेर कर रख दी है। बारिश के बाद साफ हुए आसमान और घने बादलों के बीच हरियाली और भी निखर कर सामने आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए क्या हो अगर आपका बच्चा सिर्फ पिज्जा खाए नहीं, उसे बनाना भी सीख ले। आपको जायके के एक ऐसे अड्डे की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर छोटे शेफ बड़े कमाल दिखा रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में छोटा भीम थीम पर अनोखा कैफे खोला गया है जहां पर बच्चे शेफ की कैप पहनकर किचन में जाते हैं, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में पिज्जा बनाते हैं, अपनी पसंद का फूड बनाते हैं। इस कैफे का जूनियर शेफ क्वेस्ट बच्चों को खूब भा रहा है। टेस्टी फूड के साथ ही यहां बच्चे शेफ गिरी भी सीख रहे हैं और साथ ही यहां बच्चों के लिए कलर पेंटिंग जैसी दूसरी एक्टिविटीज भी रखी गई हैं। बेशक टेस्टी फूड, मनोरंजन और लर्निंग का अनुभव यहां बच्चों और पेरेंट्स को खूब पसंद आ रहा है।
1: खाना बनाना सिर्फ बड़ों का काम नहीं रहा। हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट में ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया है जहां पर बच्चे भी अपना हाथ खाना बनाने पर लगा सकते हैं। मेरे अभी इस रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे हाथों से सिर्फ खा नहीं रहे बल्कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम वर्क की एक कोशिश के साथ किया गया है। जूनियर शेफ ये कॉन्सेप्ट यहाँ के रेस्टोरेंट में शुरू किया गया है जहाँ पर बच्चे अपना पिज्ज़ा खुद बना रहे हैं। एक मास्टर शेफ की गाइडेंस में बच्चे यहाँ पर आते हैं, ना ही सिर्फ खाना खाना बल्कि एक घंटा या दो घंटे तक ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं और साथ ही कई सारे डिशेज ऐसी अनोखी क्रिएटिविटी वाली करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और इसी जगह नन्हे नन्हे बच्चे आगे चलकर मास्टर शेफ बनने की एक आस, एक आशा लेकर चलते हैं। इसी रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ से बात करते हैं, जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की वजह क्या है और क्या ये करना चाहते हैं। आपका नाम बताइए।
2: सर, मेरा नाम सार्थक है, शेफ सार्थक। सो बेसिकली आई वर्क इन मेनी डिफरेंट होटल्स एंड ऑल। सो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि वो छोटे हाथ से खेल रहे हैं, उनको नर्चर करना है। ठीक है, एक खाना बनाना भी एक उतना ही बेसिक और उतना ही इम्पोर्टेंट टास्क है जितना पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल एसेंशियल काम पे काम आता है, हर दिन के काम में आता है। प्लस बच्चों के लिए जैसे केटर किया है, ऑल वेजिटेबल्स जो बच्चे खाते नहीं हैं उनको हम लोग ब्लेंड करके सॉसेज में कन्वर्ट करते हैं जिससे बच्चों को भी मन लगा रहे, कलर के साथ भी वो खेले, उनको और अपील हो। बच्चों को खाने में पकाने में मज़ा आना चाहिए जिससे वो आगे जाके भी बेटरमेंट कर सके और हमारे जैसे शेफ बन सके।
1: आपका नाम बताइए।
3: दात्विका।
1: तो आपने क्या बनाया है और कैसा आप इसको महसूस कर रहे
3: हैं? I am very happy to prepare this pizza and drinks.
1: एक अलग ही एहसास पेरेंट्स को मिलता है जहां पर वो सिर्फ खाना बनाकर बच्चों को खिलाना नहीं बल्कि बच्चे उनको कोई डिश प्रिपेयर कर खिलाते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।
0: देश का मान बढ़ाने वाले चैंपियंस आज पूरे देश की शान बने हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगा बुलंद करने वाले इन खिलाड़ियों के स्वागत में शहर से लेकर गांव तक जश्न का माहौल है। देश इन पदक वीरों के संघर्ष, मेहनत और जज्बे को भी सलाम कर रहा है और अब इन चैंपियंस की नजर अगले बड़े लक्ष्य यानी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पर है।

0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में हिंदुस्तान का नाम बढ़ाने वाले चैंपियंस की जब वतन वापसी हुई तो ढोल नगाड़ों के साथ इनका शानदार स्वागत हुआ। खेल के मैदान में देश का नाम बढ़ाने वाले चैंपियंस आज पूरे देश के हीरो बन चुके हैं। इनके सम्मान में कहीं फूलों की माला पहनाई जा रही है तो कहीं विजय यात्रा निकल रही है। ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है जहां हर कोई अपने पदक वीरों पर गर्व कर रहा है। राजस्थान की बेटी अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग के 70 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। जयपुर से कोटा के रास्ते में जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। महिलाओं ने आरती उतारी, बच्चों ने तस्वीरें खिंचवाई और पूर्व सैनिकों से लेकर खिलाड़ियों तक ने अपनी चैंपियन बेटी का सम्मान किया। इस कामयाबी के लिए अरुंधति के संघर्ष में उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ दिया। अब उनका अगला सपना ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है।
1: तो सर सबसे बड़ा तो ओलंपिक्स ही है कि वहाँ जाना है एक बारी और गोल्ड लेकर आना है, क्योंकि अभी तक भारत की किसी लड़की ने वो किया नहीं है और वो करने का सपना मैं 16 साल की थी तभी से देख रही हूँ, तो जरूर पूरा करूंगी उसे।
0: उधर उत्तराखंड की जूडो पदक विजेता उन्नति शर्मा के स्वागत में देहरादून की सड़कों पर जश्न का माहौल दिखा। खुले विजय रथ पर सवार उन्नति का लोगों ने जोरदार अभिनंदन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच शहर ने अपनी चैंपियन बेटी का दिल खोलकर स्वागत किया। हर कोई उनकी एक झलक पाने को उत्साहित दिखा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 39 पदकों में से 7 पदक पैरा खिलाड़ियों ने जीतकर साबित कर दिया कि हौसलों के आगे कोई चुनौती बड़ी नहीं होती।
2: गुरुग्राम में गोल्ड मेडल विजेता सोमन राणा
0: और सिल्वर मेडल विजेता शुभम जुयाल का सम्मान किया गया। दोनों खिलाड़ियों ने साफ कहा कि उनका पूरा फोकस पैरा ओलंपिक तैयारी पर है ताकि देश के लिए और बड़ी कामयाबी हासिल की जा सके।
3: मैं 2 टाइम ओलंपिक खेला है, अभी मतलब और मेडल हो गया मेरा, अभी ओलंपिक मेडल के कोशिश में हूँ क्योंकि मैं ओल्ड चैंपियनशिप मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल और एशियन मेडल विनर हो गया। अभी ओलंपिक 2 बार खेला लेकिन ओलंपिक में थोड़ा कुछ कम ही हो रहा है, अभी उसके लिए पूरा करने के लिए तैयारी है। अभी मेन फोकस होगा 2028 ओलंपिक के लिए।
4: फिलहाल मेरा फोकस वर्ल्ड चैंपियनशिप में है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में बढ़िया प्रोग्रेस के साथ ओलंपिक के लिए कोटा मिले, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही आपको कोटा मिलता है पैरालंपिक्स का, तो मुझे लगता है कि वो सबसे मेजर इवेंट मुझे दिख रहा है अभी।
0: पदक वीरों के सम्मान का ये सिलसिला सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि उन सालों की मेहनत को सलाम है जिसने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। अब पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि कॉमनवेल्थ के ये चैंपियंस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भी तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराएं। टोंक से मनोज तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने एक अच्छी पहल की है। दरअसल वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अरिलोबा में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की शुरुआत करने वाली हैं। इसी एकेडमी का भूमि पूजन राज्य के कैबिनेट मंत्री नारा लोकेश ने किया। इस मौके पर पीवी सिंधु के परिवार वाले भी यहां शामिल रहे। देखिए एक अच्छी पहल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में की जा रही है। अरिलोबा में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की शुरुआत होने वाली है। इसी एकेडमी का भूमि पूजन राज्य के कैबिनेट मंत्री नारा लोकेश ने किया और इस मौके पर पीवी सिंधु भी अपने परिवार के साथ वहां शामिल हुई। पंद्रह अगस्त को टीम इंडिया एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आपको बता दें इस दिन भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद 600 टेस्ट खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के इस सफर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और जाहिर है कि खिलाड़ियों का जोश हाई है। सफर के दौरान गिल एंड कंपनी मौज मस्ती करती हुई दिखाई दी। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है। कल से भारत एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगा। रेड बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लिहाजा श्रीलंका टूर कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पहला टेस्ट गोल में 15 अगस्त से और दूसरा कोलंबो में 23 अगस्त से शुरू होगा।

और चलिए अब बात दिल्ली मेट्रो की एक नेक पहल की कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC और दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक खास मिशन की शुरुआत की है, अर्पण केंद्र। इस पहल का मकसद है कपड़ों की बर्बादी कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करना। इस पहल के बाद अलमारी में रखे पुराने कपड़े अब सिर्फ जगह नहीं घेरेंगे बल्कि किसी की जिंदगी में खुशियां भी ला सकते हैं। यहां आप अपने अच्छे और इस्तेमाल लायक पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। ये कपड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेंगे और महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया भी बनेंगे।

0: कपड़ों के बने इन आकर्षक सामानों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये किसी के दान किए हुए पुराने कपड़ों से बने हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते लेकिन अभी भी अच्छी हालत में हैं, तो अब उन्हें संभाल कर रखने की जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार ने अर्पण केंद्र शुरू किए हैं, जहां आप अपने पुराने लेकिन इस्तेमाल करने लायक कपड़े दान कर सकते हैं।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से नए नए कियोस्क शुरू किए गए हैं। इनका नाम है अर्पण। अब अर्पण में आप लोग आकर अगर आपके कपड़े पुराने हो गए हैं, उनका रंग उड़ गया है, फट गए हैं वो, तो यहाँ आकर आप उन कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं।
0: इस पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC और दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर की है। इसका मकसद है कपड़ों की बर्बादी कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना।
1: पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है जहां पर चिट्ठियां छोड़ा करते थे, वैसे ही यहां पर एक छोटा सा सुंदर सा बॉक्स बनाया गया है सिंबॉलिक, कि आप यहां पर अपना कपड़ा छोड़ पाएं, यहां पर दे पाएं। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा एक कियोस्क बनाया गया है। भले ही यहां पर आपके खराब कपड़े डोनेट किए जाते हों, लेकिन इसे सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत प्यारे प्यारे इसमें कोड भी लिखे हुए हैं, जो कपड़े थे बेकार अब बन गए शानदार। और इस तरह से आप देखिए कि मदद आप उन महिलाओं की भी करते हैं। सस्टेनेबल क्रिएशंस हैंडीक्राफ्टेड बाई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि महिलाओं का वो समूह जो अपने आप से खराब चीज़ों से कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ कमाल कर रहे हैं, आप उनकी भी मदद करेंगे, क्योंकि जब वो आपके खराब कपड़ों से कुछ नया पाउच बनाएंगे, नए बैग बनाएंगे, तो उनकी भी कमाई का एक रास्ता खुलेगा।
0: मेट्रो स्टेशन पर खास कलेक्शन कियोस्क लगाए गए हैं। आप अपने साफ और इस्तेमाल लायक कपड़े वहां आसानी से जमा कर सकते हैं। दान की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल भी है। QR कोड स्कैन करके कपड़े दान किए जा सकते हैं और आपको तुरंत एक डिजिटल रसीद भी मिल जाती है।
2: लगा हुआ उसको स्कैन करते हैं, जैसे वो स्कैन करते एक फॉर्म होता है, उनके फॉर्म में जो आता है उसमें उनको कोई अपना नाम डालना होता है प्लस फोन नंबर, और जितने भी कपड़े डोनेट किए हैं वो कपड़ों की क्वांटिटी डालनी होती है। तो उसके बाद में जैसे ओके करेंगे वो डोनेशन पे, तो हमारे पास एक लिंक है उसमें सारा डेटा आ जाता है उनका, और वहाँ से हम ओके कर देंगे। उसके बाद में उनको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो अर्पण वस्त्र केंद्र के नाम से होगा, और वो इन फ्यूचर उनको, अभी तो नहीं, इन फ्यूचर उनको उसमें फायदा हो सकता है।
0: इन कपड़ों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी छटाई होगी, जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा, और कुछ कपड़ों को नए सामान में भी बदला जाएगा। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कपड़ों का बेहतर इस्तेमाल भी होगा।
2: ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, वो यही काम करती हैं सिलाई का, तो कुछ कपड़े 20% उनको जाएंगे, उनको धो के साफ करके प्रेस करके उन कपड़ों को काट कूट के फिर बैग्स बनाएंगी, चटाई बनाएंगी, और ये नैपकिन पाउच वगैरह बनाएंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। उनसे ये है कि उन महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल जाएगा।
0: एक छोटा सा कदम कई बड़ी खुशियां ला सकता है। आपकी अलमारी में पुराने कपड़े किसी की नई उम्मीद बन सकते हैं। अर्पण केंद्र सिर्फ कपड़े दान करने की जगह नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी, पर्यावरण की सुरक्षा और समाज की मदद का एक नया रास्ता है।
1: जिन कपड़ों को आप लैंडफिल साइट तक भेजते थे, कूड़े के डिब्बे में डालते थे, आप भी अपनी धरती को गंदा करने से बचाएंगे, और साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उनके भी हिस्से कुछ ना कुछ खुशियाँ आपके खराब कपड़ों के जरिए आ जाएगी। तो फिर देरी किस बात की, आइए इस अर्पण कियोस्क पे, और दिल्ली के कई अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर यह बनाया जा रहा है। अभी ये 10 की संख्या में है, लेकिन अगर आपका, दिल्ली वालों का अच्छा रिस्पांस मिला, तो इसके नंबर और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, और दूसरे राज्यों को भी अब दिल्ली से कम इस मामले में सीखने का मौका ज़रूर लेना चाहिए। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
3: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बचपन की उन मीठी यादों में, जब गली मोहल्ले में खेल हर बच्चे की पहली पसंद हुआ करता था।

0: कहीं पीछे छूट गया, लेकिन अब इसी पुराने खेल को अमेरिका में एक नया ट्विस्ट मिला है। वहां एक प्रोफेसर ने ऐसी कमाल की मशीन बनाई है जिससे रस्सी कूद खुद ब खुद घूमती रहती है, यानी ना किसी को रस्सी पकड़ने की जरूरत है ना किसी साथी का इंतजार। पहली नजर में ये मशीन भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी सोच और कहानी इसे बेहद खास बना देती है।
1: ये मशीन अपने आप रस्सी घुमाती है और खिलाड़ी बिना किसी मदद के आराम से रस्सी कूद सकता है। इस मशीन का नाम है जंप ड्रीम्स और इसे बनाया है इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा रीड स्मिथ ने। ये कोई साधारण रस्सी कूद नहीं है, इसे डबल डच कहा जाता है। इसमें दो रस्सियां एक साथ उल्टी दिशाओं में घूमती हैं और बीच में खिलाड़ी कूदता है। भारत में भी रस्सी कूद पुरानी पीढ़ी का बेहद पसंदीदा खेल रहा है। स्कूलों, गलियों, मोहल्लों में बच्चे घंटों तक रस्सी कूदा करते थे। तब रस्सी घुमाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती थी, लेकिन अब ये काम मशीन खुद कर रही है। करीब 40 साल पहले जब ताहिरा तीसरी कक्षा में थी, तब उनकी टीचर ने पूछा था कि वो ऐसा क्या बनाना चाहेंगी जो दुनिया में नहीं है। तब ताहिरा ने कागज पर ये मशीन बनाई थी। जिसे अब उन्होंने हकीकत में बदल दिया है। ताहिरा बताती है कि वो इकलौती थी, घर में उनके साथ रस्सी घुमाने वाला कोई नहीं होता था। यही छोटी सी परेशानी जिंदगी का सबसे बड़ा आइडिया बनकर आई। आज वही सपना जंप ड्रीम्स मशीन के रूप में दुनिया के सामने है। ताहिरा की मशीन उन लोगों को खासी पसंद आ रही है जिन्होंने किसी जमाने में जमकर रस्सी कूद का आनंद लिया था। ताहिरा ने हाल ही में शिकागो में आयोजित 40 प्लस डबल डच क्लब की 10वीं वर्षगांठ समारोह में अपनी मशीन का प्रदर्शन किया, जहां उनकी मशीन काफी पसंद की गई। जंप ड्रीम्स का ये प्रोटोटाइप बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ताहिरा का कहना है कि दुनिया भर से लोग उनके इस आविष्कार में रुचि ले रहे हैं। अब उनका अगला सपना इस मशीन को बड़े पैमाने पर बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए अपेक्षा मालवीय की फनी इंस्टा स्टोरी।
2: सुनो।
3: हाँ जी
2: भैया, भाभी आ रहे हैं तुम्हारे।
3: मैं चाय पकौड़ी बना रही
4: हूं। एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी?
3: कौन सा सवाल?
4: तुम्हारा नाम क्या है?
5: पतले होने लोकी की नहीं करते, जिम करते ने, डाइट करते ने, तू क्यों नहीं कुछ करती?
6: तेनू की लगता मैं जिम नहीं कर सकती, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती? जे मेरे दिल दी प्रॉब्लम ना होती तो मैं सारा कुछ कर लेना सी।
5: क्यों होया तेरे दिल नु?
6: यार मेरा नहीं दिल करता कुछ करन नु, की करा?
0: और इन्हीं तमाम खबरों के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती है तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
3: शिवमय हुई धर्म नगरी हरिद्वार, चरम पर है कांवड़ियों का उत्साह। अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरकर अपने शिवालयों की ओर किया प्रस्थान। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों का देश भर में हो रहा है सम्मान, अब ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने का सपना संजो रहे हैं खिलाड़ी। दिल्ली NCR के कई इलाकों में सुबह से हो रही है रिमझिम बरसात, तो वहीं तापमान में आई कमी, उमस भरी गर्मी से भी मिली राहत। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी, यूपी के भदोही और प्रयागराज में भी 8वीं तक के स्कूल बंद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में भगवान शिव की कृपा से आप अपनी तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत है, तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम के 6:52 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र रात के 8:13 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और बृहस्पति विद्यमान है कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के महीने से धन प्राप्त करने का, समृद्धि प्राप्त करने का क्या संबंध है। देखिए, सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, हर तरह की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे आदमी प्रयास भी उतना नहीं करता और उतनी सफलता भी नहीं मिलती, सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। सावन के महीने में ज्यादातर लोगों को धन और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सावन के महीने में धन समृद्धि प्राप्ति के उपाय करना आवश्यक है। सावन के महीने में अपनी एनर्जी बनाए रखें और धन संपत्ति प्राप्त करने के उपाय करते रहें। सावन के महीने के स्वामी अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा उपासना से जीवन में धन की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है।
यहां तक कि भगवान शिव के विशेष प्रयोग से, भगवान शिव की विशेष पूजा करने से दरिद्र योग को भी नष्ट किया जा सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो आपका भविष्य है, जो आपका प्रारब्ध है, वो केवल भगवान शिव मिटा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। तो भगवान शिव की कृपा से धन कैसे प्राप्त होगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। दैनिक जीवन में सामान्य रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिए, इसके बाद नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। रोज शाम को पूजा के दौरान शिव जी की आरती करिएगा और तामसिक आहार मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। ये प्रयोग आप सावन से शुरू कर लें और लगातार लंबे समय तक ये प्रयोग करते चले जाएं, आपको सामान्य जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी पैसा आता है, कभी पैसा बिल्कुल नहीं आता, धन आता है नहीं आता है, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा, इसके बाद शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ करने के बाद प्रसाद लोगों में बांटिएगा।
ये उपाय सावन में जितने दिन आप करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और सावन में घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा, बेलपत्र का पौधा गमले या जमीन में लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावन में धन प्राप्ति के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, काम में रुकावट आ सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार जीवन में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि धन की स्थिति काफी खराब हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है, एक एक पैसे को लेकर जीवन में दिक्कतें रहती हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए, संभव हो तो जल अर्पित करने के बाद सफेद चंदन भी लगाइए और इसके बाद दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका पाठ करिए, एक पाठ या तीन पाठ। रोज रात को शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और इस समय भी कम से कम एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा। और सावन के महीने में एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा धारण कर लीजिएगा और सावन के बाद भी रोज सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, चुकाना चाहते हैं लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा
और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है। और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। सावन के बाद हर मंगलवार को शिव जी को लाल फूल चढ़ाकर इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता हो सकती है, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने करियर में स्थिरता चाहते हैं तो अपनी कुर्सी बार बार मत बदलिए, और अगर ऐसा कर सकें तो अपनी कुर्सी का प्रयोग किसी और को मत करने दीजिए। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को पीले फूल और जल अर्पित करिए। इसके बाद भगवान शिव से अपनी प्रार्थना करिए। अगर आप दिन की शुरुआत में ऐसा करेंगे तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

एक राजा हुए विदर्भ देश के, उनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो, भीष्मक। पांच बेटे थे उनके, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मरथ। एक बेटी थी, बेटी का नाम था रुक्मणी। राजा का मन था हमारी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश से हो जाए, लेकिन बेटा राजनीति में फायदा लेने के चक्कर में अपनी बहन का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। वो आके सीधा पिताजी को बताया, पिताजी शादी तय हो गई परसों बारात आ रही। कहां, कैसे, क्यों, किसके साथ? बोले ये बातें छोड़ो, दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ शादी तय हो गई, परसों बारात आ रही है, तैयारी करो। इतनी जल्दी? अरे छोड़ो पिताजी, तैयारी करो। अब बेटा के सामने बेचारे क्या बोले, पिताजी से चुप हो गए, शांत हो गए। देखो क्या हुआ, इधर रुक्मणी जी को पता लगा, वो तो मन में सपने सजो रही थी द्वारकाधीश के साथ विवाह के लिए, पर हो गई दूसरी जगह तय। अब बड़ी टेंशन, अपनी भाभी को बात बताई कि हमने जब से द्वारकाधीश के बारे में सुना, ऐसे हैं, वैसे हैं, नटखट हैं, नटवर हैं, नागर हैं, वो नंदनंदन हैं, बड़े प्यारे दिखते हैं, स्वभाव भी बड़ा प्यारा है, तो हम उनसे ही मन ही मन प्रेम करने लगे। अब हमारा मन गोविंद के अलावा कहीं लगता नहीं है। अच्छा हाँ, तो भाभी ने कहा कि एक उपाय है, पत्र लिखो। सात श्लोकों का पत्र लिखा रुक्मणी जी ने भगवान के लिए, और लास्ट में लिखा, महाराज परसों शादी है, इमरजेंसी है, हाँ अति आवश्यकता है, जल्दी आ जाना, और यदि आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, और उपाय भी है हमारे पास। पत्र में लिखा उपाय। उपाय क्या? हमारे गांव में नियम है, जब लड़की की शादी होती तो गांव के बाहर देवी पूजा करने जाती है, हम जब देवी पूजा करने जाएं सोई आप आ जाना, हमें ले जाना, ये उपाय। पत्र एक पंडित जी को दिया, सुनो जल्दी जाना। पंडित जी बेचारे भागे भागे गए भगवान के पास, पत्र रखा, महाराज इमरजेंसी कॉल है। जैसे ही पत्र पढ़ा ठाकुर जी ने, तुरंत सोचने लगे अब देरी ना करें, श्री गणेश हुआ ही नहीं है, कम से कम इसी बहाने शादी का श्री गणेश तो हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान के पास चार घोड़े, द्वारकाधीश के पास सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्पक, बलाहक, चारों घोड़ों के नाम। चारों घोड़ों को रथ में निभाया, रथ में बांधा, और भगवान चले पवन की तरह दौड़ने वाले घोड़े। जब तक भगवान पहुंचे तब तक बारात भी पहुंच गई। अब हो गया लफड़ा, बारात पहुंच गई सो तो ठीक है, दूल्हा दो घंटा बिफोर पहुंच गया। हाँ, जो दूसरा वाला दूल्हा था वो और ज्यादा जल्दी में था, शादी की बिफोर टाइम पहुंच गया। अब खतरा हो गया, इधर भगवान आए उधर बारात आ गई। जैसे ही बारात आई तो रुक्मी, रुक्मणी का भाई अपने पिता से बोला, पिताजी पिताजी बारात आ गई, बारात आ गई, जल्दी से जनवासा जाओ, दूल्हे राजा के हाथ में सगाई का सामान रख आओ, सगाई नहीं हुई विदाई ना होगी, वरना पहले सगाई तो हो जाए फिर भांवर पड़े। ठीक है, बढ़िया। भीष्मक महाराज ने रथ घोड़े हाथी में सामान सोना चांदी रखा, वस्त्र रखे, जवाहरात रखे, मोतियों की माला रखी, ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे तब तक भगवान द्वारकाधीश उसी नगर में पहुंच गए। सो पूरे गांव में हल्ला हो गया, द्वारकाधीश आ गए, द्वारकाधीश आ गए। तो भीष्मक महाराज ने सोचा सगाई को जा रही है, द्वारकाधीश का स्वागत कर ले फिर सगाई कर लेंगे। तो भीष्मक महाराज गए थे स्वागत करने, मंत्रियों ने सोचा यही दूल्हे राजा हैं। सो सगाई का सामान चढ़ना था शिशुपाल को, चढ़ गया नंदलाल को, ठाकुर जी को चढ़ गया। और जहां चढ़ा सामान सोई भीष्मक महाराज नाराज होके बोले, हे ये क्या कर रहे हो? महाराज सगाई का सामान है, अरे ये दूल्हा थोड़ी है, ये तो द्वारकाधीश है, दूल्हे राजा तो जन्माष्टमी में रायता पी रहे हैं, ये नहीं है।
सब मंत्री बोले गलती हो गई गलती हो गई। भगवान मन ही मन बोले ससुर जी बढ़िया हुआ, नियम पूरा हो गया। कल के दिन हमारी शादी होती तो लोग कहते सगाई हुई नहीं, शादी कर ली, नियम पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच ससुर जी, मन ही मन बोले, सामने नहीं बोले, मन ही मन बोले। अब भीष्मक महाराज बोले महाराज आप हमारे नगर में आ गई हो, चरण रखो थोड़ा नगर घूम लो। चलो भीष्मक महाराज के साथ हमारे ठाकुर जी नगर की प्रदक्षिणा करने घूमने निकले तो गांव के लोग देखने निकले। हा हा हा हा भैया कुछ भी कहो दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। तो मंत्री डांटने लगे ये दूल्हे राजा नहीं है, द्वारकाधीश है। दूल्हे राजा तो जनवासी में अभी रसगुल्ला का सीरा छुटा रहे, हाँ ये नहीं है, ये तो दूसरे हैं। तो एक बूढ़ी माता जी खड़ी खड़ी कहने लगी हे भगवान कोई और दूल्हा हो इससे अच्छा है, ये जो सुंदर जा रहा यदि यही दूल्हा हमारी रुक्मणी बिटिया का बन जाए तो जब जब ये लेने आएगा लेने के बहाने के चक्कर में हम लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। बोलो सीताराम। भगवान मन ही मन बोले माता जी चिंता ना करो हम ही आते रहेंगे, हाँ हम ही आएंगे। अंत तो गत्वा आहा, भगवान ने सोचा कहीं हम लेट ना हो जाए, रुक्मणी जी वहां से निकल जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान बीच में ही बोले अच्छा महाराज हमें इमरजेंसी काम है जरूरी, हम जा रहे हैं, आप अपना काम धाम देखो। ठीक है प्रभु जो आज्ञा। प्रणाम किया भीष्मक महाराज ने। अब द्वारकाधीश जी गांव के बाहर देवी के मंदिर के पास पहुंच गए। बोलो सीताराम। तब तक एक लफड़ा हो गया, पूछो क्या, जोर से पूछो, अरे और जोर से पूछो भैया। लफड़ा ये हुआ कि शिशुपाल की बारात में जरासंध आया था और जरासंध भगवान से 17 बार लड़ाई में पिटाई खा चुका और हार चुका। 18वीं बार भगवान स्वयं रणछोड़ बनकर के भाग गए थे। जरासंध को पता लगा कि द्वारकाधीश आए हैं तो उसने शिशुपाल के पास जाके कहा सुनो जो तुम्हारी होने वाली घरवाली है उसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले हमने सुना द्वारकाधीश आया है और ये जहां भी जाता है वहां दाल में काली नहीं होती, पूरी दाल ही काली होती। बोलो सीताराम। दाल में काला नहीं होता, दाल ही काली होती है, इसलिए उपाय करो। शिशुपाल ने पूरी अपनी सेना रुक्मणी जी के साथ लगा दी कि जहां जहां जाए पूजा करने ड्यूटी निभाओ। अब रुक्मणी जी टेंशन में कि हमने तो कहा था कि हम सखियों के साथ अकेले गांव के बाहर आएंगे, यहां तो सुरक्षा लग गई, अब भागेंगे कैसे, और इतनी भीड़ में हमने कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, वो हैं कहां, कैसे दिखते, कभी देखा ही नहीं। अब भगवान ने भी सुरक्षा देखी। इधर रुक्मणी जी पूजन करके बाहर निकली, सोई रथ पर ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठे थे। रुक्मणी जी की आंखें ठाकुर जी से मिली, ठाकुर जी की आंखें रुक्मणी जी से मिली, भगवान ने सारे में ही बोले कहो देवी जी ये सेना क्या है, सुरक्षा। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। रुक्मणी जी आंखों ही आंखों में बोली प्रभु हमें नहीं है पता कैसे आई। भगवान बोले हमें क्या लेना देना, अब तुमने तो कहा था अकेले रहेंगे, हम सेना लेके नहीं आए वरना लड़के ले जाते, अब तुम ही कुछ उपाय करो वरना हम ना ले जाएंगे। रुक्मणी जी ने इशारा किया अभी उपाय कर रहे प्रभु चिंता ना करो। अब रुक्मणी जी ने उपाय क्या किया जरा सुनो। रुक्मणी जी जितने सैनिक सिक्योरिटी में आए थे सबकी तरफ देख कर मुस्कुराने लगी तो सुरक्षा वालों को लगा हम सुंदर लग रहे हैं, तब तो ये होने वाली बहू हमें देखकर हंस रही। तो जो सुरक्षा वाले सिक्योरिटी में खड़े थे वो कोई अपनी काला ठीक करने लगा, कोई जुल्फे ठीक करने लगा और कोई शर्ट को ठीक करने लगा, कोई बगल वाले बगल में खड़े हो और दांत निकाल निकाल हंसने लगा। रुक्मणी जी जिसकी तरफ देखें और हंस दें सिक्योरिटी गार्ड का इतने में ही दिमाग खराब हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा सुरक्षा वालों को लगे कि हम सुंदर लग रहे और माता
रुक्मणी माता जी हंसती जाएं और जाती जाएं रथ की तरफ। अब सुरक्षा वाले बात क्या कर रहे हैं जरा सुनो। एक सुरक्षा वाला बोला, आहा हा बहु रानी की जरा चाल तो देखो, क्या चाल है, हाथी की तरह गज गामनी। तब तक दूसरा बोला, चाल क्या देख रहे, बाल देखो, बाल नागिन की तरह है। तीसरा बोला, बाल क्या देख रहे, गाल देखो। चौथा बोला, आंखें देखो, आंखें एकदम काली। पांचवा बोला, ए चुप रहो, तुम आंखें देख रहे, रथ देखो, रथ कितना सुंदर है। छठवा बोला, रथ क्या देख रहे, जो रथ पे बैठा है उसे देखो, कितना प्यारा लग रहा। तब तक रुक्मणी जी रथ पे पहुंच गई, भगवान ने हाथ बढ़ाया, ऊपर खड़ी हो गई और मुस्कुरा रही सैनिकों की तरफ। सातवां बोला, रथ क्या देख रहा है, जोड़ी देखो, जोड़ी क्या गजब लग रही है, जोड़ी देखो, जोड़ी क्या अद्भुत लग रही है। और भगवान बोले, बेटा हरो फंसे रहो। और रुक्मणी जी से कहा, एक बार और मुस्कुरा दो। सो फिर मुस्कुराई। तब तक आठवां बोला, कुछ भी कहो, जोड़ी तो कमाल की है। और धीरे धीरे भगवान ने रथ दौड़ाना शुरू किया। तब तक जब रथ ओझल हो गया, तब सैनिक एक दूसरे से पूछने लगे, एक बात बताओ, हम लोग आए क्यों थे? तो किसी ने कहा, सुरक्षा के लिए। बोले, किसकी? बोले, होने वाली लड़की, जो बहू होने वाली थी उसकी। बोले, वो कहां गई? बोले, वो तो चली गई। तो तब चिल्ला के पड़े, अरे ले गाओ, ले गाओ, ले गाओ, ले गाओ, ले गाओ। तब तक भगवान सही में ले गए। बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ले गए। बीच में दाऊ भैया मिले, युद्ध हुआ रुक्मी के साथ। रुक्मी लड़ने आया भगवान से, तो भगवान दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने ठाकुर जी को डांटा कि अकेले नहीं आना चाहिए, हमें बताना चाहिए, शादी करनी ही थी, हमें बता देते। उस जमाने में भगवान से ज्यादा किसी को कोई डरता था तो दाऊ भैया को। इनका हल मूसर कब उठ जाए और कितने खत्म हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। बोलो सीताराम। तो जहां ठाकुर जी को रुक्मी ने रोका, तब तक पीछे से आवाज आई, द्वारकाधीश भगवान की। अरे दाऊ भैया आ गए, दाऊ भैया। तो आधे सैनिक तो तुरंत दौड़ करके चले गए। बोलो सीताराम। कौन मरे? आधे बचे। तो युद्ध करने लगे। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा की जय हो। दाऊ दादा बोले, पहले ये बताओ कन्हैया, अकेले अकेले अकेले अकेले क्यों आए, बिना बताए क्यों आए? शादी ही करनी थी, हमें बता देते, हम रोकते क्या? हम भी साथ आ जाते, बढ़िया प्रेम पूर्वक शादी कराते, भाग दौड़ के शादी क्यों करनी, हमें समझाते, हम बढ़िया विस्तार से दोनों परिवार को बैठा करके शादी करवा देते। भगवान इशारों में बोले, दाऊ दादा बहू रानी साथ में है, कम से कम इनके सामने तो मत डांटो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जो दोनों जाओ, हम पीछे से आते हैं निपटा के मामला। और भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका आ गए। और द्वारका में क्या हो रहा है, जरा एक भजन से सुनिए।

जल्दी जल्दी चले चलो ताकि जो सुबह से लाइन में लगे उन्हें मौका मिल जाए। और कथा सुननी हो तो बाहर निकलकर बीच पंडाल में आ जाओ, थोड़ी सी जगह खाली है तो कथा भी सुनने को मिल जाएगी।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है।

0: जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले 4G 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
2: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये 4G 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: 4G 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां 4G 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
3: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है 4G 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, 4G 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: 4G 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने 4G 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
4: 4G 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं 4G 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये 4G 360 जरूर ट्राई करें।
5: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने 4G 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये 4G 360 होना ही चाहिए।
6: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये 4G 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक 4G 360 की।
1: 4G 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही 4G 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। 4G 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: टीवी पे 4G के बारे में देखा तो मैंने फोन करके 4G 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये 4G 360।
8: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये 4G 360 लिया है कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती।

0: हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरे तरीके से राहत है।
1: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते
7: हैं। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: दिल्ली NCR के कई इलाकों में सुबह से हो रही है रिमझिम बरसात, तापमान में आई कमी, उमस भरी गर्मी से भी मिली राहत, दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी, यूपी के भदोही और प्रयागराज में भी 8वीं तक के स्कूल बंद। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदकवीरों का देश भर में हो रहा है सम्मान, अब ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने का सपना संजो रहे हैं खिलाड़ी। शिवमय हुई धर्मनगरी हरिद्वार, चरम पर है कांवड़ियों का उत्साह, अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरकर अपने शिवालयों की ओर किया प्रस्थान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: सावन के महीने में दिल्ली NCR में जारी बरसात, आज रिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की बारिश। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली समेत पूरे NCR के कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, घने बादलों से ढका दिखा आसमान। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, दिनभर दिल्ली NCR में मध्यम से भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट आई, तो वहीं लोगों को राहत मिली, जगह जगह पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हुई। बारिश से दिल्ली की हवा भी हुई साफ, 84 हुआ AQI संतोषजनक श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी, तो वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपील। भदोही जिले में लगातार हो रही है भारी बारिश, प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी के दिए निर्देश। प्रयागराज में लगातार बारिश के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल आज बंद, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। असम में बाढ़ बारिश के बीच मानवीय सेवा की एक शानदार मिसाल, कई चैरिटेबल संस्थाओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर शुरू किया राहत और पुनर्वास अभियान। असम के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे हैं पक्के घर, परिवारों को बांटे जा रहे हैं राशन, खाना पकाने के गैस स्टोव, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत का सामान। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों की छुट्टी की घोषणा। रुद्रप्रयाग में बारिश से लगातार बढ़ रहा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर, निचले इलाकों को किया गया अलर्ट। बगहा में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, पानी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर दिखे बच्चे। हुगली के श्रीरामपुर इलाके में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, यातायात भी प्रभावित हुआ। पुरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में हुआ जलभराव। कांवड़ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, हरिद्वार से अब तक करीब 2 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों के लिए हो चुके हैं रवाना। हर उम्र के कांवड़िए कर रहे हैं यात्रा, बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक कांवड़ यात्रा में शामिल। भारी कांवड़ भी नहीं रोक पा रही है हौसले, भगवान शिव की भक्ति में लगातार बढ़ रहे हैं आगे। मुराद पूरी होने पर परिवार के साथ यात्रा, कई श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। झांकियां कलश और गहरी आस्था का संगम, कभी कांवड़ियों के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रही हैं रोज नए रंग, मुजफ्फरनगर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की भागीदारी बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार से 101 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर रोहतक जा रही है महिला कांवड़, कई वाहनों के काफिले के साथ शिव की भक्ति, नारी की शक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है ये जत्था। शुरुआत में इस यात्रा में करीब 25 महिलाएं सीधे तौर पर हुई थी शामिल, यात्रा के दौरान कई और महिला कांवड़ बनी इस यात्रा की हिस्सेदार। बागपत की सड़कों से गुजर रही आस्था के साथ साथ फिटनेस का संदेश दे दी खास कांवड़ भी देखने को मिली यात्रा के दौरान, बर्पीज लगाते हुए नजर आए कांवड़। हरिद्वार से हरियाणा की नारी तक 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कांवड़ यात्रा पर निकले हैं मंजीत, एक बार में लगाते हैं 300 से ज्यादा बर्पीज। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही एक से एक बढ़कर रंग बिरंगी विशाल कांवड़, भक्ति के अनोखे रंग के हो रहे हैं दर्शन। यात्रा मार्ग से गुजर रही कांवड़ों के जरिए हो रही है भोलेनाथ के अलग अलग रूपों के दर्शन, कांवड़ियों ने अपने अपने तरीके से तैयार की है अपने आराध्य की मूर्तियां। कांवड़ में कहीं दिखी भगवान भोलेनाथ के आदि स्वरूप की झलक, तो कहीं कांवड़ यात्रा में नजर आई है हनुमान जी और राम परिवार की झलक। भोलेनाथ के एक श्रद्धालु ने केदारनाथ की थीम पर बनाई कांवड़, कांवड़ियों ने अपनी अपनी कांवड़ को दिया आकर्षक रूप। कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रही महाकाल के भव्य स्वरूप वाली विशाल कांवड़ भी बनी आकर्षण का केंद्र, अलग अलग कांवड़ों की तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहे हैं लोग। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती, सावन में इस आरती के दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व है। सावन मास में ही भगवान का राजाधिराज स्वरूप में किया जाता है विशेष श्रृंगार। हजारों भक्त इस पावन आरती में होते हैं शामिल।

0: सावन के महीने में सुंदर लाइटों से सजा महाकाल का धाम, सावन में लाखों भक्त पहुंचते हैं उज्जैन। पल पल बदलते मौसम के बीच जारी है अमरनाथ यात्रा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के बीच रामबन जिले के चंद्रकोट से सुरक्षित रूप से गुजरा 28वां जत्था। खराब मौसम के चलते प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा यात्रा मार्ग पर बरती जा रही है विशेष सतर्कता, भक्तों की सुविधा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भारत में पूरे किए 10 साल। इस मौके पर सीईओ टेड सारंडोस ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही सुरक्षा घेरे में राजधानी दिल्ली, करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा में हाई अलर्ट। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हुआ टोल फ्री, बारिश के दौरान मरम्मत कार्य पूरा होने तक टोल वसूली पर लगी रोक। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। झांसी में अनोखा स्वागत, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन से पहनाई गई 2 क्विंटल की माला, क्रेन से हुआ भव्य अभिनंदन। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग, कैप्टन शुभमन गिल समेत 3 भारतीय टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल। टॉप पर काबिज हैं कैप्टन गिल, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर, चौथे पायदान पर रोहित शर्मा। सत्रह अगस्त दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ड्रॉ जारी, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबेल के खिलाफ करेंगी अभियान की शुरुआत। युवा शटलर आयुष को मिली है कड़ी चुनौती, पहले दौर में विश्व चैंपियन शीर्ष वरीयता प्राप्त चाइना के शी क्यूई से होगा उनका मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कैंप में 4 नेट बॉलर्स को किया शामिल, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियान और विपराज निगम प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को करेंगे गेंदबाजी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम खुशियों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
2: सावन का महीना है, शिव जी का महीना है, ऐसे में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है। इन तस्वीरों में भी नहर के किनारे ये तमाम बच्चे मिलकर यहाँ रेत से बने हुए कई शिवलिंग की आराधना में जुटे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मौज मस्ती के साथ बच्चों की पूजा का ये तरीका सोशल मीडिया पर सबको लुभा रहा है। बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के खतरों के बारे में बताता ये वीडियो अब हर कोई देख रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक नाटक के जरिए इन खतरों को बताया जा रहा है। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ा मोबाइल और उस पर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे छोटे बच्चों को मकर जाल में फंसा लेते हैं और बच्चा फिर वास्तविकता से दूर होकर अपना सब कुछ खो देता है। ल लेकिन अगर उसे इन प्लेटफॉर्म से काट दिया जाए तो उसे उसकी वास्तविकता से परिचय कराया जा सकता है। ये वीडियो वायरल है और अब स्कूलों में भी दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे इसके खतरों को समझ सकें। स्टेज पर सामूहिक डांस शो के बीच एक बच्ची स्टेज पर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कोई मूवमेंट नहीं करती। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बाकी बच्चियां तो डांस कर रही हैं, लेकिन ये बच्ची पहले तो खड़ी रहती है, फिर ऐसा इशारा करती है मानो उसे भूख लगी है और वो शायद दर्शकों के बीच बैठे अपने पेरेंट्स से कह रही है कि खाना खिला देते तो डांस ठीक से हो जाता। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्ची के हाव भाव देख कर उससे सहानुभूति रख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे ये अंकल जेंजी के सामने भी जबरदस्त एनर्जेटिक साबित हुए हैं। एक बच्चे ने उनको कुछ करतब दिखाए और फिर उनको आमंत्रित किया। फिर क्या था, अंकल ने साबित कर दिया कि उनकी उम्र बस एक नंबर है। उन्होंने जो एनर्जी दिखाई, तमाम जेंजी बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये वायरल तस्वीरें भावुक कर रही हैं। ये पुलिस वाला पुलिस अफसर बनने के बाद जब घर गया तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है। दोनों की मुलाकात सबके दिल को छू रही है क्योंकि उस दोस्त को न सिर्फ ये अफसर गले लगाता है बल्कि खर्च के लिए पैसे भी देता है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस अफसर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से हो रही है रिमझिम बारिश, तापमान में कमी, उमस भरी गर्मी से भी मिली राहत, दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी, यूपी के भदोही और प्रयागराज में भी 8वीं तक के स्कूल बंद। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। शिवमय हुई धर्मनगरी हरिद्वार, चरम पर है कांवड़ियों का उत्साह, अब तक 2 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरकर अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान किया। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद के खाने।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। भगवान शिव की उपासना का पावन महीना सावन चल रहा है और इसमें भक्ति और आस्था से भरपूर कांवड़ यात्रा भी जारी है। करोड़ों लोग हरिद्वार से तो लाखों लोग बिहार के सुल्तानगंज से अपनी कांवड़ पर गंगा जल लेकर भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं। शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की इस अनूठी वार्षिक यात्रा में भक्ति के अनूठे रंग दिख रहे हैं। कहीं कठिन तपस्या की झलक मिल रही है तो कहीं अटूट आस्था की तस्वीर नजर आ रही है। कहीं कांवड़ यात्रा के जरिए देशभक्ति तो कहीं सेहत, फिटनेस और सामाजिक संदेश भी दिए जा रहे हैं और सबसे बढ़कर सनातन के प्रति सम्मान और विश्वास की झलक तो दिख ही रही है। अपने स्पेशल शो में हम आपको कांवड़ यात्रा के 10 खास रंग विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। लाखों कांवड़िए भक्ति भाव में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर हैं और इनमें ऐसे शिव भक्त भी हैं जिन्होंने मन्नत मांगी है, तो ऐसे भी हैं जिनकी मुराद है कि देश उन्नति करे, देश के लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। इस यात्रा में भक्ति की शक्ति हिलोरे ले रही है और महादेव में आस्था का चरम रूप देखने को मिल रहा है। तो आप भी देखिए हमारे साथ इस बहुरंगी कांवड़ यात्रा के 10 रंग।

0: और आस्था, भक्ति और उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में कांवड़िए लगातार धर्मनगरी हरिद्वार से गंगा जल लेकर भोले बाबा के अभिषेक के लिए अपने अपने इलाकों के शिवालयों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आस्था के इसी विराट उत्सव में कांवड़ यात्रा इस बार भी अपने अनोखे रंग बिखेर रही है। बड़े बुजुर्ग के साथ छोटे छोटे बच्चे भी आस्था के इस सफर में भाग ले रहे हैं। सावन का ये पावन महीना सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि शिव में समर्पण, सेवा और सनातन आस्था का जीवंत उत्सव बनकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहा है। अभी हम आपको अपने इस स्पेशल शो में कांवड़ यात्रा के कुछ रंग दिखाने जा रहे हैं। आपने लोगों को कांवड़ यात्रा में पैदल चलने के अलावा दंड देते जरूर देखा होगा, लेकिन बागपत में मंजीत दहिया अलग ही अंदाज में भक्ति का सफर तय करते दिखे। ये नौजवान रास्ते में रुकता है और फिर शुरू हो जाते हैं उसके सपाटे। हर दिन एक दो नहीं बल्कि पूरे 3,500 सपाटे। मंजीत एक बार में करीब 3,500 सपाटे लगाने के बाद ही अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कांवड़ यात्रा में मंजीत का ये अंदाज लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस तरह कांवड़ यात्रा के जरिए मंजीत आस्था के साथ साथ फिटनेस का संदेश दे रहे हैं।
1: इसके पीछे यही है भाई, मैं तो युवा के लिए संदेश दे रहा हूँ, भाई फिट रहो, अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं। ये बस मेरे को पिछले साल ही होगा था, हम अगली बार लेके आऊंगा ऐसे ही लेके आऊंगा। युवा के लिए बढ़िया सोच, बढ़िया खाओ बढ़िया पियो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे गलत दिशा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं नशे लेके। तो मेरा तो यही मकसद है, और इस दिशा में आओ एक्सरसाइज की, अगर ये नशा करोगे तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
0: ये देखिए सड़क पर विशाल तिरंगे के साथ निकली है शानदार कांवड़ यात्रा। 221 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची तिरंगा कांवड़ बुधवार की रात मुजफ्फरनगर पहुंची तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बागपत के 21 शिव भक्तों की टोली 2 अगस्त को हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर इस तिरंगा कांवड़ के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। रोजाना 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये कांवड़िए देशभक्ति का संदेश भी दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का प्रतीक है, तो सहारनपुर से होकर गुजर रही विशाल कांवड़ यात्रा में इस बार भक्ति की भव्यता और दिव्यता की अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। सड़कों से गुजर रही इन विशाल कांवड़ों में भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूप नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़े और आकर्षक सजावट वाली कांवड़ों के साथ जल रही झांकियों में कहीं भोलेनाथ का आदि योगी स्वरूप देखने को मिल रहा है तो कहीं महाकाल का विराट स्वरूप। केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार की गई कांवड़ की झांकी भी लोगों को खूब लुभा रही है। कांवड़ियों ने अपनी आस्था और मेहनत से इन कांवड़ों को बेहद आकर्षक रूप दे दिया है। सहारनपुर से गुजर रही कांवड़ यात्रा के दौरान एक से बढ़कर एक विशाल और आकर्षक कांवड़ देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में हनुमान जी के बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कांवड़ में बाहुबली हनुमान जी के साथ वानरों की आकृतियां भी बनाई गई है। कांवड़ को बेहद भव्य तरीके से तैयार किया गया है और इसकी ऊंचाई करीब 9 फीट बताई जा रही है।
2: हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं, अम्बाला जाना है। हाँ जी,
3: कितने लोगों की टीम है और कितनी कांवड़ लेके आए?
2: पहली विशाल कांवड़ है, 12 लोग हैं जी।
0: अब आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा की एक और अनूठी तस्वीर। इस खास कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की विशेष भागीदारी देखी जा रही है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से 101 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर निकली ये विशेष कांवड़ 5 दिन की यात्रा के बाद मुजफ्फरनगर पहुंची और यहां से ये जत्था रोहतक की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं की ये अनोखी कावड़ रास्ते भर श्रद्धालुओं और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सैकड़ों महिलाओं का ये जत्था गाड़ियों के काफिले के साथ शिव की भक्ति, नारी शक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है। इस कावड़ यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान का संदेश देना है। खास बात यह है कि इस कावड़ यात्रा की अगुवाई फैशन डिजाइनर ऋतु कर रही है। वो यात्रा के दौरान महिलाओं को कपड़ा नापने के इंची टेप्स भी रास्ते में भेंट करती हुई दिखाई दे रही है, ताकि उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सके।
4: महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कावड़ यात्रा कर रही हूँ, यानी कि महिला उत्थान के लिए, और इस पे लिखा हुआ भी है महिला सशक्तिकरण समर्थ भारत, यानी कि महिला सशक्त होगी तभी तो समर्थ होगा भारत। इसलिए और मैं महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, वो आत्म सम्मान से जी सके, अपने फैसले खुद कर सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, बस यही कामना करते हुए मैंने शिव की कावड़ उठाई है।
0: वहीं बिहार के मुंगेर में पैरों से नहीं बल्कि हाथों के बल चलते हुए कांवड़ियों को देखकर तमाम लोग दंग रह गए। पश्चिम बंगाल के राजकुमार महतो हाथों के बल बाबा धाम बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकले हैं। वो बिच्छू के रूप में दोनों पैरों को ऊपर कर हाथ के बल महादेव का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। राजकुमार की इस कठिन तपस्या को देखकर हर कोई चकित रह गया।
5: पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिच्छुम यात्रा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल एक महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है। थोड़ा इस साल पीछे चल रहे हैं, जो कि पिछले साल हमारे भैया चल रहे थे साथ में, और इस साल हम अकेले चल रहे, जो कि पीछे में साइकिल है तो साइकिल लेकर हमको चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दूरी हो रहा है। और आप बोले जो कैसे मन में आया, ये तो हम जब बागेश्वर धाम गए थे तो पहले हम बागेश्वर धाम गए तो फिर हमें एक अलग शक्ति मिला हमें, तो फिर लगा जो नहीं हम और जा सकते हैं, और दूर जा सकते हैं, और मंदिर दर्शन कर सकते हैं, लोगों के दर्शन करा सकते हैं, तो बस ऐसे करके चलते रहे।
0: मुंगेर के असरगंज कच्ची कांवड़िया पथ पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। यहां से होकर बाबा धाम जा रहे झारखंड के धनबाद जिले के निवासी अजय विश्वकर्मा इस बार अपने अनोखे डमरू रूपी कांवड़ की वजह से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस डमरू का पूरा ढांचा लकड़ी और फाइबर से तैयार किया गया है। अजय कहते हैं कि जब रास्ते में लोग इस कांवड़ को देखकर जयकारा लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है।
6: ये करीब वजन तो वेट नहीं की, लेकिन एक अंदाज बता सकता हूँ, ये 15 केजी से ऊपर है, 18 केजी लमसम है। 2008 से हम चल रहे हैं और लॉकडाउन छोड़ के।
0: वही सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हरिद्वार से चंडीगढ़ जा रहे युवक अपनी बुजुर्ग माता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा करा रहे हैं। करीब 260 किलोमीटर के सफर में कभी बेटा, कभी बहू, तो कभी पोता बारी बारी से कांवड़ उठाकर मां को आगे ले जा रहे हैं। परिवार इस यात्रा को श्रवण कुमार कांवड़ कहता है। कई वर्षों बाद उन्हें कांवड़ लाने का अवसर मिला, इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी माँ को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया।
7: श्रवण कुमार कावड़ बोलते हैं इसको, और माँ बाप से प्यार था, 4-5 साल से आया नहीं था माँ बाप के मम्मी के कारण, एक्चुअली पापा थोड़ा घर पे कोई है नहीं इसलिए पापा रह गए नहीं, तो दोनों को लाने का मन था, तो माँ बाप का प्यार था इसलिए मैं माँ को लेके आ गया। बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, भोले बाबा की कृपा है, चल रहे हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं।
8: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हरिद्वार से चंडीगढ़ लेके जाना है, पूरा इंजॉय करते जा रहे हैं।
0: श्रावण मास की इस कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ प्यार का भी खास रंग देखने को मिला है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे खुर्जा के मयंक और बुलंदशहर की दीपिका राजपूत 111 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। करीब एक साल पहले एक शादी में इनकी मुलाकात हुई थी और बस वहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई थी। परिवार वालों को ब्याह को लेकर राजी करने के मकसद से उन्होंने भगवान भोलेनाथ की कांवड़ उठाई है और उनसे अपने रिश्ते को मंजिल तक पहुंचाने की प्रार्थना करते हुए एक साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं।
9: यही मन्नत है कि हम दोनों की शादी हो जाए।
10: अच्छा, आप कितने घंटे चल रहे रोजाना एक साथ कांवड़ लेके चल रहे हैं, कितने घंटे चलते हैं, कैसे चलते हैं?
9: 10-15 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर चल रही है, 15 किलोमीटर चल रही है, ऐसे चल रहे हैं।
11: हमारी मन्नत यही कि दोनों जने हम कांवड़ घर तक अपने मंदिर पर चढ़ा दें।
0: वहीं प्रयागराज के दिशाशव बेग घाट पर दिखी कांवड़ियों की ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बनारस से आए ये छात्र सातवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज में गंगा जल लेकर अपने शहर लौट रहे हैं। इनके पैरों में घुंघरू इसलिए बंधे हैं ताकि चलते समय लगातार आवाज आती रहे और रास्ते में कोई अनजान उनकी कावड़ से ना टकरा जाए। साथ ही उनके साथी भी एक दूसरे की मौजूदगी आसानी से समझ सके। ये छात्र पिछले चार वर्षों से लगातार कावड़ ला रहे हैं और इस बार पांचवी बार इस यात्रा पर निकले हैं। इनकी कामना है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, पढ़ाई में सफलता मिले और महादेव का आशीर्वाद भी मिलता रहे।
11: मैं कुछ सक्सेस होना चाहता हूँ, परिवार का मैं अकेला हूँ, परिवार के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ।
12: अच्छा, आपके ग्रुप में कुल कितने लोग निकले हैं?
11: 17 लोग हैं।
0: कुल मिलाकर इस बार कांवड़ यात्रा की भव्यता और श्रद्धा का एक अलग ही रंग नजर आ रहा है। सड़कों पर कांवड़ियों की कतारें लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे हर ओर शिव भक्ति का समंदर उमड़ पड़ा है, जिसमें अलग अलग अद्भुत और अनोखी थीम पर तैयार की गई कांवड़ झांकियां और कांवड़ियों का समर्पण सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: सावन में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। मंदिर घाट, सड़क और रेलवे स्टेशन पर हर हर महादेव और बोल बम का जयघोष है। लाखों शिव भक्त अपने संकल्प के साथ बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आस्था, अनुशासन और उत्साह की अलग तस्वीर नजर आ रही है और इस दौरान यूपी के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर केसरिया समंदर लहरा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
14: कंधे पर कांवड़, दिल में देवाधिदेव भोलेनाथ और जुबान पर हर हर महादेव। शिव भक्तों का ऐसा जमघट शायद ही किसी स्टेशन पर दिखे और उसकी वजह भी है। जिन कांवड़ियों को यूपी या देश के दूसरे हिस्सों से बिहार के भागलपुर जाना है, उनकी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से मिलती है। रेलवे के मैप पर डीडीयू यूपी और बिहार के दरमियान है, जहां से पूरे सावन कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। हैरत की बात नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है, जिसको नियंत्रित करने और कांवड़ियों को सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने संभाल रखा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए हजारों की तादाद में शिवभक्त पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं।
15: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के बैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है। ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप?
16: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
15: कहां से आए आप?
16: रायबरेली से।
15: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
16: बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहाँ जल भरे हैं जो है कि यहाँ पर दर्शन किए हैं अपना। अब यहाँ से निकल रहे हैं जो है सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा बैजनाथ धाम।
15: कितनी आस्था है बाबा में?
16: बहुत बड़ी आस्था है जो है। हम लोग सावन आने का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आया, वो शुभ घड़ी आई, वो पर्व आया, आज जो है इतना सारा मेला में सम्मिलित होने का उपलक्ष्य मिला और मौका मिला, ऐसा तो बहुत सारा आया।
15: देखा जा सकता है कितना उत्साह है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
17: भीम शंकर।
15: क्या कहना है आपका?
17: बहुत बढ़िया,
15: अच्छा लगता है बाबा धाम जाना।
17: बहुत, बहुत।
15: आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप?
17: रायबरेली से।
15: अभी रायबरेली से हैं, तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
17: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
15: पहली बार जा रहे हैं?
17: हाँ भैया।
15: कैसा लग रहा है, कितना उत्साह?
17: बहुत अच्छा लग रहा है।
15: आपका क्या नाम है?
18: सुनील कुमार।
15: आप बताइए, आप कब से जा रहे हैं और कितना उत्साह है?
18: पहले

0: रंग में नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की अच्छी खासी तादाद ट्रेनों के जरिए भागलपुर पहुंचती है और वहां से गंगा जल लेकर देवघर जाती है। इसीलिए यूपी से बिहार तक की ज्यादातर ट्रेनों में बोल बम का जय घोष है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो जैसे शिवमय हो चुका है।
1: ये तमाम उत्साह से लबरेज श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए कांवरिए हैं। आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा, ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांवरिए ही कांवरिए दिखाई दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से भगवामय हो गया है और ये कांवरिए यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे, वहां से जल उठाएंगे और जल उठाने के बाद ये तमाम कांवरिए जो है वो बैद्यनाथ धाम देवघर की तरफ पैदल कूच करेंगे और वहां जाने के बाद लोग जलाभिषेक करेंगे। एक और श्रद्धालु हैं, कहां से आए हैं आप?
2: शकरडीहा से।
1: ये बताइए, इधर आ जाइएगा कि क्या कहना है आपका, कब से जा रहे हैं आप?
2: हम तो 20 साल से जा रहे हैं।
1: कैसा लगता है?
2: अच्छा लगता है।
1: अब हमें भक्ति है,
2: पूरी भक्ति है, पूरी मनोकामना पूर्ण होती है,
1: पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, ये कहना है इन श्रद्धालुओं का। श्रद्धा और भक्ति का लगातार जमावड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देखा जा रहा है। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पावन महीने में हर तरफ आस्था उमड़ रही है। कांवड़ियों की भक्ति साधना से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। अब तैयारियां सावन के शिवरात्रि की है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तमाम कांवड़िए इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी यात्रा संपन्न करेंगे।

सावन के पावन माह में हर तरफ भोले की भक्ति के अद्भुत रंग बिखरे हैं। शिव भक्तों की कांवड़ साधना के रंग निरंतर गहराते जा रहे हैं। पवित्र नदियों से कांवड़ लेकर लाखों कांवड़िए शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए निकल पड़े हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और सावन की शिवरात्रि पर तो शिवालयों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। इस बार सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त सुबह 4:53 पर शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि 12 अगस्त की रात 1:51 तक रहेगी। ऐसे में शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ज्यादातर कांवड़िए इस पावन दिन ही पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिवलिंग के अभिषेक से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तो हर तरफ कांवड़ियों के जत्थे ही दिख रहे हैं। यहाँ से कांवड़िए ट्रेन में सवार होकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इनमें से कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो यहाँ से निकलकर सुल्तानगंज पहुंचेंगे। वहां से पवित्र

0: गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ेंगे। कांवड़ियों की भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सावन के पावन महीने का शिव भक्तों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस विशेष माह में पवित्र नदियों से लेकर शिवालयों तक भक्ति की अविरल धारा आस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के जयकारों से आसमान गूंज उठता है और कई दिनों की साधना के बाद कांवड़ यात्रा संपन्न करके शिव भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। चंदौली से उदय गुप्ता और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता। राष्ट्रपति भवन में होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है, लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो गई है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं, इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं। इस निमंत्रण पत्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें देश के कई राज्यों की जीवंत लोक कलाओं को जगह दी गई है।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है, जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई शैली से तैयार रेशम और सूती धागों वाले अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक स्वागत समारोह है जिसका आयोजन हर राष्ट्रपति की मेजबानी में किया जाता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम खुशियों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
4: है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
6: दिल्ली NCR के कई इलाकों में सुबह से हो रही है रिमझिम बरसात, तापमान में आई कमी, उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली, दिल्ली में आज बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई शहरों में आज स्कूल और आंगनबाड़ियों में छुट्टी, यूपी के भदोही और प्रयागराज में भी आज की तक के स्कूल बंद। चमोली में लगातार बारिश का दौर, उफान पर है अलकनंदा नदी, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भगवान बद्री वैशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद के खाने।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
6: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लंच टाइम में, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिंह।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: कांवड़ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, हरिद्वार से अब तक करीब 2 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों के लिए हो चुके हैं रवाना। मुजफ्फरनगर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की भागीदारी बनी आकर्षण का केंद्र, हरिद्वार से 101 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर रोहतक जा रही है महिला कांवड़। बागपत की सड़कों से गुजर रही आस्था के साथ साथ फिटनेस का संदेश देती खास कांवड़ यात्रा के दौरान बर्पीज लगाते हुए गुजर रहा कांवड़। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही है एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी विशाल कांवड़, भक्ति के अनोखे रंग के हो रहे हैं दर्शन। कांवड़ में कहीं दिखी भगवान भोलेनाथ के आदि स्वरूप की झलक, तो कहीं कांवड़ यात्रा में नजर आई हनुमान जी और परिवार की झलक।
1: सावन के महीने में दिल्ली NCR में जारी बरसात, आज रिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की शुरुआत। बारिश से दिल्ली की हवा भी साफ हुई, 84 हुआ AQI संतोषजनक श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। असम में बाढ़ बारिश के बीच मानवीय सेवा की एक शानदार मिसाल, कई चैरिटेबल संस्थाओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर शुरू किया राहत और पुनर्विकास अभियान। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों की छुट्टी की घोषणा। रुद्रप्रयाग में बारिश से लगातार बढ़ रहा है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर, निचले इलाकों को किया गया अलर्ट।
6: ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भारत में पूरे किए 10 साल। इस मौके पर सीईओ टेड सारेंडोस ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा घेरे में राजधानी दिल्ली, करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे हुआ टोल फ्री, बारिश के दौरान मरम्मत कार्य पूरा होने तक टोल वसूली पर रोक। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद के खाने।
1: विशाखापट्टनम के अरिलोवा में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। राज्य के कैबिनेट मंत्री नारा लोकेश ने किया एकेडमी का भूमि पूजन। 17 अगस्त से दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ड्रॉ जारी। दरअसल दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल के खिलाफ करेंगे अभियान की शुरुआत। युवा शटलर आयुष को मिली है कड़ी चुनौती, पहले दौर में विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी यू क्यूई से होगा उनका मुकाबला। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग, कप्तान शुभमन गिल समेत तीन भारतीय टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कैंप में चार नेट बॉलर्स को किया शामिल, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियान और विपराज निगम प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को करेंगे गेंदबाज।
6: सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, 14 अगस्त को फिल्म होगी रिलीज। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 सेंसर बोर्ड से मिला अंडर 816 सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता दिवस पर फिल्म देगी दस्तक। फिल्म डोरोथी का टीजर हुआ रिलीज, फिल्म में कीर्ति सुरेश निभाएंगी मुख्य भूमिका, 25 सितंबर 2026 को होगी रिलीज। नेटफ्लिक्स ने किया ऐलान, मुसाफिर कैफे का एक दूसरा सीजन, विक्रांत मैसी, वेदिका पेंटो, महिमा मकवाना, लवलीन मिश्रा और सादिया सिद्दीकी भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। भारत में फिल्म स्पाइडरमैन का जलवा बरकरार, फिल्म ने 7 दिनों में किए 314 करोड़ की कमाई।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
6: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
1: सिंथेटिक पनीर, चीज और मक्खन पर गुजरात सरकार ने लगाया बैन, प्रोडक्शन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
6: हैदराबाद में बच्चों का अनूठा कैफे, यहां बच्चे पिज्जा खाते नहीं, शेफ की देखरेख में बनाते भी हैं मनपसंद खाना, छोटा भीम है कैफे की थीम।
1: वहीं भगवान भोले के पावन महीने सावन में दिखने को मिल रहा है कावड़ के अनूठे रंग, दरअसल शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है।
6: मानसूनी बरसात में भीगी दिल्ली एनसीआर, मौसम हुआ सुहाना, लोगों ने लिया बारिश का लुत्फ।
1: फिल्म बंटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी ये फिल्म।

0: और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात करेंगे आपकी थालियों में शामिल पनीर की। अगर आप बाजार से पनीर खरीद कर खाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है।
1: दरअसल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात सरकार ने भी एनालॉग पनीर पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। गुजरात में एनालॉग पनीर के साथ चीज और बटर के उत्पादन, भंडारण, वितरण और साथ ही बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में कई जगह अनियमितताएं मिलने के बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया।
0: आपको बता दें, सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी पार्लर और व्यापारियों को सिर्फ मानकों के अनुरूप असली डेयरी उत्पाद बेचने और उनके उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई और साथ ही भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
1: इससे पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार एनालॉग पनीर पर बैन लगा चुकी है और इस तरह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद गुजरात देश का तीसरा राज्य बन गया जिसने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो गुजरात से पहले महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों की सेहत से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया और राज्य में एनालॉग पनीर की निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बाद इस तरह का कड़ा कदम उठाने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया।
0: तो वहीं आपको बता दें, सरकार के इस फैसले का मकसद बाजार में बिक रहे नकली और मिलावटी डेयरी उत्पादों पर रोक लगाना है। गुड न्यूज टुडे की टीम ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद ग्राउंड जीरो पर इसकी पड़ताल की है, तो देखिए क्या पाया।
2: पनीर लेते हैं अपन तो बहुत मिलावट वाला मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है।
3: कई जगह मिला है खराब पनीर, लेकिन वो कई जगह अच्छा भी मिला है, कई जगह खराब भी मिला है।
4: बच्चे और बुजुर्ग और जो भी हैं हमारे महाराष्ट्र के लोग, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो इससे उनका जो निर्णय लिया है ना, वो बहुत अच्छा लिया है।
5: सही फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो एनालॉग पनीर था वो लोगों के शरीर के लिए हानिकारक था।
6: हम अक्सर नकली पनीर के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आजकल एक खास तरह का पनीर चर्चा में है जिसे एनालॉग पनीर कहा जाता है। हैरानी की बात ये है कि इसे बेचने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये देखने में पनीर जैसा ही होता है और बाजार में इसे पनीर के नाम पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ये टेस्ट में भी काफी हद तक असली पनीर जैसा ही होता है, लेकिन इसे वेजिटेबल ऑयल समेत दूसरे फैट्स, सोया वगैरह को मिलाकर एनालॉग पनीर तैयार किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होता है। आजकल ज्यादातर जगहों पर इस सस्ते पनीर को पनीर के डिशेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के होटलों और रेस्टोरों में अब और नकली पनीर लोगों को नहीं परोसा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। हालांकि महाराष्ट्र में भले ही एनालॉग पनीर के इस्तेमाल की अब तक इजाजत रही हो, लेकिन ग्राहकों को बिना जानकारी दिए इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी था। अगर कोई ब्रांड या रेस्टोरेंट इसका इस्तेमाल करते थे तो उन्हें इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी पड़ती थी, लेकिन जांच में सामने आया कि पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन ही नहीं, बल्कि बड़े ब्रांड भी बिना ग्राहकों को जानकारी दिए असली पनीर की जगह सस्ता मिलने वाला एनालॉग पनीर का इस्तेमाल कर रहे थे।
7: महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर पर एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है। एनालॉग पनीर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है। हम इस वक्त मुंबई में हैं, जहां पर देख सकते हैं ये एक डेयरी है और हमारे साथ है अजय सिंह जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। अजय जी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया, एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को?
4: ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल ही पनीर बकवास था। अब जो भी नेचुरल पनीर जो है वो बच्चों के लिए, पेशेंटों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा किया उन्होंने।
7: आप समर्थन करते हैं इस फैसले का? 6 महीने तक की जेल और 6 लाख रुपए तक का?
4: सर बिल्कुल करते, बिल्कुल करते, हम उनकी हर उनसे सहमत हैं, बिल्कुल सहमत।
7: आप कौन सा पनीर बेचते हैं?
4: हम मलाई पनीर बेचते हैं।
6: ऐसे में सवाल है कि असली पनीर और एनालॉग पनीर में क्या फर्क है और इसे कैसे पहचाने? दरअसल असली पनीर प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है और इसे दूध से तैयार किया जाता है, जबकि एनालॉग पनीर एक तरह से तेल का गोला होता है जिसे वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। एनालॉग पनीर बनाने में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता और कई दुकानदार एनालॉग पनीर को भी असली पनीर बताकर बेच देते थे। एनालॉग पनीर पर पाबंदी के बाद अब महाराष्ट्र में कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स या क्लाउड किचन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इस कदम के साथ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।
7: एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है और अब इसे बेचने वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, फाइन इम्पोज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। हम इस वक्त मुंबई के सैंडस रोड पे एक होटल है सदगुरु, उस सदगुरु होटल के किचन में है, जहां पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर काम होता है और किस तरीके से पनीर उपयोग होता था। हालांकि ये जो पनीर है ये एनालॉग पनीर नहीं है, ये शुद्ध पनीर है। हमारे साथ हैं इस सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर सिन्हा जी। सर, एफडीए ने सबसे पहले तो जिस तरीके से बंदी लाई है एनालॉग पनीर पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उस निर्णय का स्वागत करते हैं?
8: यस यस, ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि एनालॉग पनीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और ये पनीर जो है वो प्योर दूध का बनता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है। मगर एनालॉग पनीर जो है उसको टोटली अनसेफ करके नहीं बोला जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट इज यूज्ड ओवर हियर, उसमें क्या वापरा जाता है, मगर जरूर है कि इससे वो सब स्टैंडर्ड है, ये पक्का है।
7: सर, ये पनीर आप कह रहे हैं शुद्ध है, इसे कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है या क्या इसकी ये होती है?
8: इसके बहुत बारीक है जो नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है। इसमें स्मूथनेस ज्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथनेस रहता है, वो गर्म करने के बाद पिघल जाता है थोड़ा बहुत, उसका शेप बदली होता है, इसका शेप बदली नहीं होता है।
6: हाल ही में एक लैब रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी जिसमें राज्य में लिए गए पनीर के 35% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए थे क्योंकि उनमें वेजिटेबल फैट की मिलावट की गई थी। महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने 30 जुलाई 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था और बैन का उल्लंघन करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
7: दामों में कितना अंतर है, शुद्ध पनीर कितने का आता है और एनालॉग पनीर कितने का आता है?
9: वो सर उसका रेट नहीं मालूम।
7: शुद्ध पनीर कितने का आता है?
9: ये 400-450 तक आराम से बिकता है,
7: किलो। अच्छा। और इसे बनाने में कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस है? या
9: इसका दूध गर्म करके फाड़ के जो बनाते हैं ना, तो उसको गर्म करने को ही कम से कम 1-1.5 घंटा जाता है दूध को, और उसके बाद में दूध को फाड़ा भी जाता है। फाड़ने के बाद में फिर उसको कपड़े में बांध के सेट करना पड़ता है, फ्रीजर में डालना पड़ता है, आइस डाल के फ्रीजर में।
7: उसके बाद खुद ही बनाते हैं?
9: नहीं नहीं, ये हम लोग कोल्हापुर से आता है, बाबू पाटिल करके, उनसे पनीर बनवाते हैं, उनका ही दूध है हमारे यहाँ, जो पैकिंग कराते हैं उनसे ही कराते हैं पनीर भी दूध भी उनसे।
7: अब एनालॉग पनीर तो बंद हो गया, तो इससे इससे डेयरी,
9: हमारे
7: जो डेयरी सेक्टर है उस पर कितना असर?
9: हमारा पनीर की सेल बढ़ी है।
7: अच्छा,
9: पहले से ना होटलों में भी हमारे पनीर की सेल बढ़ी है और जो लेने वाले हैं उनकी भी सेल बढ़ी है।
6: हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसे उठाया गया था। उस दौरान विधायकों ने एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की थी। अब सरकार ने उस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर में इस पर रोक लगा दी है। सरकार ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
5: ठीक है, ये तो सही डिसीजन है, अगर कहीं नकली मिलता है, बट हम यहाँ से हम लेते हैं तो ठीक है, ये तो शुद्ध है एकदम। मैं खाता हूँ हर बार, मैं कम से कम यहाँ से 25-30 साल से ले रहा हूँ पनीर, मुझे तो यहाँ का सही लगता है।
7: और आप इस फैसले से खुश है, मतलब 6 महीने की जेल, 6 साल 6 लाख रुपए तक का जुर्माना सरकार द्वारा लगाया गया
5: है। सही है जी जी, सही है, एकदम सही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ नुकसान हो रहा है उनका, लोगों का, तो ये तो सही डिसीजन है।
7: जिस तरीके से देख सकते हैं लोग भी इस डिसीजन से जो है वो सहमत हैं, और जो शुद्ध पनीर बेचते हैं पहले से ही उनमें यहाँ पर खुशी का माहौल एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए जाहिर तौर पर खुशी की मांग है। उनका कहना है कि उनकी सेल जो है, उनके पनीर की मांग जो है वो अब बढ़ गई है, लोग उनका पनीर ले रहे हैं, जो होटल व्यावसायिक हैं वो उनका पनीर ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और वो इस निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं।
6: महाराष्ट्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, महाराष्ट्र में एनालॉग यानी कि सिंथेटिक पनीर बैन किए जाने का फैसला एक बड़ा कदम है, क्योंकि इस फैसले को लेकर हमने मुंबई में लोगों से बात की है, उनकी राय भी जानी है। देखिए,
10: ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारी जो बीमारियां हैं वो फूड एडल्ट्रेशन से बहुत ही ज्यादा है। फूड एडल्ट्रेशन से बीमारियों में क्या होता है कि लिस्टेरिया जैसी बीमारियां है, या एक्टिनोमाइकोसिस की जैसी बीमारियाँ, ट्यूबरक्लोसिस जैसी, जो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस हो रहे हैं, और कॉलरा है, हाइजा है, और कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है वो होते हैं। बहुत सारे हमारे देश में हेलमिंथियासिस और भी होते हैं, और जिस तरह से जो बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज है वहाँ बहुत ही यानी जो अच्छा उधर का माहौल होना चाहिए वैसा नहीं रहता, और उधर सेफ्टी नहीं रहती।
7: यस,
10: बिल्कुल बिल्कुल है, वेलकम करते हैं। इट शुड बी नेचुरल, इट शुडंट बी आर्टिफिशियल, और जिस तरह से वो लोग जो डिटर्जेंट्स और यूज करते हैं वो बहुत ही सबके लिए वो तकलीफ वाली है।
11: हमारे जो भी बच्चे हैं, खास करके यंग पीढ़ी, ये सारी चीजें जो भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो ज्यादातर यही खाते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे और जो फिजिकल हेल्थ है वो पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और ये स्वास्थ्य के लिए जो हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है उस पे बैन लगाया। मैं सरकार के फैसले का सराहना करता हूँ।
12: बिल्कुल वेलकम करते हैं। सर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, जो डेली नीड है ऑल इंडियंस की वो है लगभग 60 लाख मेट्रिक टन की, ये मिल्क प्रोडक्ट्स की, पनीर वगैरह और सभी इंक्लूड, और उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं इंडिया में दूध का। दूध का हार्डली मतलब 25 से 28 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन इतना प्रोडक्शन हो रहा है। आप सोचिए, ये बाहर का जो दूसरा एक्स्ट्रा जो जा रहा है 35 से 40 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन, ये कहां से आएगा? ये सब अडल्ट्रेटेड है, ये बना हुआ मिलावटी है। तो जो अभी तुकाराम मुंडे जी ने पहल की है, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वी आर जनरल प्रैक्टिशनर, हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में यही पेशेंट देखते हैं। हमने ये बोलना बंद कर दिया है पेशेंटों को कि अभी कि तुम दूध पियो, ऐसा हम यही बोलते हैं कि अभी दूध की जरूरत ही नहीं तुमको, अभी दूध दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दूध दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दूध 10 में से लगभग 8 से 9 सैंपल अडल्ट्रेटेड मिल रहे हैं, ये फैक्ट है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो सभी को बोलता हूं कि बिल्कुल रॉ दूध लेना बंद कर दो, जो पैकेज है उसमें भी काफी मतलब सर्टिफिकेशन देके चेक करके आप उस पर बिलीव कर सकते हो, अदरवाइज दिमाग से दूध ये शब्द निकाल दो।
13: तो ये जो पनीर है ना, ये शरीर के लिए भी घातक ही है, ओरिजिनल पनीर तो है नहीं। खुद महीने तक मैं डेली बाहर जाता हूँ, बाकी पनीर खाना मैंने बंद कर दिया। पनीर हजम होने में 12 घंटे लग जाते और ये अच्छा नहीं है, तो सरकार ने जो फैसला लिया सही लिया है।
1: तो असली और नकली पनीर देखने में कैसा होता है, स्वाद सुगंध कैसा होता है, ये सब आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक आम ग्राहक के लिए इन दोनों के बीच फर्क करना बेहद मुश्किल है। तो अगर आप मार्केट से पनीर को खरीद कर घर में लाते हैं, तो घर पर आप असली पनीर और एनालॉग पनीर के बीच कुछ टेस्ट है जो करके पहचान कर सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। पहला टेस्ट है हाथ से मसल कर पता लगाना। असली पनीर का टुकड़ा हाथ से लेकर मसलने पर वो टूट कर बिखर जाएगा। एनालॉग पनीर में स्टार्च होने के कारण वो बिखरने के बजाय आपस में चिपक जाता है। दूसरा है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट मतलब कि पनीर के एक टुकड़े को पानी में उबालें और उस पर आयोडीन लिक्विड की कुछ बूंदें डालें। अगर पनीर का रंग नीला हो जाता है तो समझें कि उसमें स्टार्च है, यानी कि एनालॉग पनीर है। तो वहीं पनीर को चबाकर भी आप असली और नकली का फर्क पता कर सकते हैं। एनालॉग पनीर को चबाने के लिए के बाद रबर जैसा खिंचाव महसूस होता है, जबकि असली पनीर खाते समय मुंह में आसानी से घुल जाता है। एक और टेस्ट है, दरअसल दाल टेस्ट। पनीर को उबालते समय उसमें थोड़ी सी अरहर की दाल डालें। अगर पानी का रंग लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें यूरिया या हानिकारक रसायन मिले हुए हैं। और अगर आयोडीन टेस्ट करने पर पनीर का रंग नीला या गहरा बैंगनी नहीं होता तो उसका रंग हल्का पीला, भूरा या वैसा ही रहेगा जैसा आयोडीन लिक्विड का अपना प्राकृतिक रंग होता है।
0: तो इसका सीधा मतलब यह है कि पनीर पूरी तरह से शुद्ध और असली है।
1: देखिए, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने पूरे मामले पर गुड न्यूज टुडे से खास बातचीत की है। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनालॉग पनीर, चीज और बटर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। उनकी पूरी बातचीत सुनिए।
14: गुजरात सरकार ने आज से एनालॉग पनीर, चीज और बटर पे जो है बैन लगा दिया है। हमारे साथ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। प्रफुल्ल भाई, ये जो फैसला किया गया ये क्यों किया गया? क्योंकि पहले तो जो है आपने ही घोषणा की थी कि एनालॉग जो बेच रहे हैं, पनीर हो या घी हो या बटर हो या चीज हो, तो उसके लिए जो है आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा हर रेस्टोरेंट को, ढाबा संचालक सबको, उसका अमलीकरण अप्रैल महीने से किया जा रहा था, तो अचानक ये बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी?
15: एनालॉग पनीर, चीज और बटर में काफी भेलसेल होती है। एनालॉग बनाने का जो फ्रेमिंग है उसमें भी वो नियम का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए गुजरात सरकार हेल्थ विभाग ने आज से पनीर प्रोडक्शन पर, सेलिंग पर और परिवहन पर एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर हमने पूर्ण बैन लगा दिया है। और आज से कोई बेच भी नहीं सकेगा, प्रोडक्शन भी नहीं कर सकेगा और परिवहन भी नहीं कर सकेगा।
14: हमने देखा है कि जब भी कोई चीज़ पर बैन लगता है तो उसका प्रोडक्शन या फिर उसकी बिक्री, इलीगल बिक्री, अवैध बिक्री जो है वो बढ़ जाती है, वो ना हो उसके लिए जो है आपका विभाग क्या ध्यान रखेगा? FDCA किस तरह से जो है वो काम करेगा और उस पर रोक कैसे लगेगी?
15: हमने करीब 4 महीना से आज तक कई उत्पादकों पर हमने बैन लगवाया है, उसको सील कर दिया है और बेचने की परमिशन भी हमने कैंसिल कर दी है। जो जिसके पास लाइसेंस था वो भी कैंसिल कर दिया। इसलिए आज से हमारी पूरी टीम एक लक्ष्य के साथ चलेगी कि एनालॉग पनीर, चीज और बटर कहीं भी बेच भी नहीं सकते हैं और प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते।
14: बात ये थी गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसरे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार ने बैन लगा दिया है और अब FDCA विभाग जो है पूरी तरह से उसका अमल करवाएगा। और लोगों से भी अपील की है कि आप भी जब रेस्टोरेंट या ढाबे पे खाने जाएं तो वहां पे एनालॉग चीजें ना हो, उसका ध्यान रखें। अगर कुछ होता है तो स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करें। गांधीनगर से कैमरामैन सैयद आलम के साथ ब्रजेश दोषी।
0: सोचिए क्या हो अगर आपका बच्चा सिर्फ पिज्जा खाए नहीं, उसे बनाना भी सीखे। आपको जायके के एक ऐसे अड्डे की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर छोटे शेफ बड़े कमाल दिखा रहे हैं।
1: दरअसल हैदराबाद में छोटा भीम थीम पर अनोखा कैफे खोला गया जहां पर बच्चे शेफ की कैप पहनकर किचन में जाते हैं, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में पिज्जा बनाते हैं, अपनी पसंद का फूड बनाते हैं। इस कैफे का जूनियर शेफ शेफ क्विस्ट बच्चों को खूब भा रहा है।
0: आपको बता दें, टेस्टी फूड के साथ ही यहाँ पर बच्चे शेफगिरी भी सीख रहे हैं और साथ ही यहाँ बच्चों के लिए कलर पेंटिंग्स जैसी दूसरी एक्टिविटीज भी रखी गई हैं। बेशक टेस्टी फूड, मनोरंजन और लर्निंग का अनुभव यहाँ बच्चे और पेरेंट्स को खूब पसंद आ रहा है।
16: पिज्जा, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक, जिन्हें देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, जो उनकी फेवरेट डिशेस में सबसे ऊपर रहती हैं। लेकिन अगर इन्हें खाने के साथ साथ बच्चों को इन्हें खुद अपने हाथों से बनाने का मौका मिल जाए तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। यह अनोखा छोटा भीम कैफे हैदराबाद की जुबली हिल्स में है, जहाँ बच्चे सिर्फ ऑर्डर नहीं देते बल्कि खुद शेफ बनकर अपनी पसंदीदा डिश तैयार करते हैं। इस कैफे का सबसे खास पहलू है जूनियर शेफ क्विस्ट, जहां बच्चे शेफ कैप पहनकर किचन में उतरते हैं, प्रोफेशनल शेफ्स की निगरानी में आसान रेसिपी बनाते हैं और कुकिंग के साथ साथ टीम वर्क, किचन सेफ्टी और आत्मविश्वास भी सीखते हैं।
17: इस रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे हाथों से सिर्फ खा नहीं रहे बल्कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम वर्क की एक कोशिश के साथ किया गया है। जूनियर शेफ ये कॉन्सेप्ट यहाँ के रेस्टोरेंट में शुरू किया गया है जहाँ पर बच्चे अपना पिज्ज़ा खुद बना रहे हैं। एक मास्टर शेफ की गाइडेंस में बच्चे यहाँ पर आते हैं, ना ही सिर्फ खाना खाना बल्कि एक घंटा या दो घंटे तक ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं और साथ ही कई सारे डिशेज ऐसी अनोखी क्रिएटिविटी वाली करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है।
16: कार्टून की दुनिया से निकलकर अब छोटा भीम बच्चों को सिर्फ ताकतवर बनने की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और क्रिएटिव बनने की भी सीख दे रहा है।
18: In this on Instagram and really the kids really like this character and all they watch all the TV shows and all. So it's a very nice concept which they have come up with like for the there's lot of activities.
16: इस कैफे का मकसद बच्चों को सिर्फ खाना खाने की जगह देना नहीं है बल्कि इस कैफे को सीखने, खेलने और मनोरंजन का एक अनोखा केंद्र बनाना है जहां बच्चों को हेल्दी फूड की अहमियत भी मजेदार तरीके से समझाई जाती है ताकि वो बचपन से ही बेहतर खान पान की आदतें अपना सकें।
19: So, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि वो सिर्फ छोटे हाथ से खेल रहे हैं, उनको नर्चर करना है। ठीक है, एक खाना बनाना भी एक उतना ही बेसिक और उतना ही इम्पोर्टेंट टास्क है जितना पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजें भी हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल एसेंशियल काम पे काम आता है, हर दिन के काम में आता है। प्लस बच्चों के लिए जैसे केटर किया है ऑल वेजिटेबल्स जो बच्चे खाते नहीं है उनको हम लोग ब्लेंड करके सॉसेज में कन्वर्ट करते हैं जिससे बच्चों को भी मन लगा रहे, कलर के साथ भी वो खेले, उनको और अपील हो। बच्चों को खाने में पकाने में मजा आना चाहिए जिससे वो आगे जाके भी बेटरमेंट कर सके।
16: बच्चों को भी कुकिंग की ये अनोखी पाठशाला खूब रास आ रही है क्योंकि यहाँ पढ़ाई की तरह कोई किताबें नहीं, ना ही होमवर्क का दबाव, बल्कि हर पल कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है।
17: आपने क्या बनाया है और कैसा आप इसको?
20: I am very happy to prepare this pizza and drinks.
17: तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेफ मौजूद है जो बच्चों को यहाँ पर बताते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से यहाँ का खाना बनना चाहिए।
16: तो बच्चों के लिए ये कुकिंग कैफे सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है बल्कि नए स्किल सीखने का एक शानदार मंच बना हुआ है जहाँ वो खुशी खुशी अपनी फेवरेट डिश बनाना सीख रहे हैं, टीम वर्क, अनुशासन और साफ सफाई की आदतें अपना रहे हैं। यानी यहाँ स्वाद के साथ साथ हुनर भी तैयार हो रहा है और मस्ती के साथ साथ सीखने का सफर भी आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए आकार ले रहे बप्पा।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
22: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम खुशियों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: सेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई शहरों में आज स्कूल और आंगनबाड़ियों में छुट्टी, यूपी के भदोही और प्रयागराज में भी 8वीं तक के स्कूल बंद। चमोली में लगातार बारिश का दौर, उफान पर है अलकनंदा नदी, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद के खाने।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: चलिए बात कर लेते हैं गणेश उत्सव की। महीना महादेव का है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की भक्ति का सावन बरस रहा है। दरअसल 14 सितंबर से गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
1: तो वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बप्पा की मूर्तियां आकार ले रही हैं। श्रद्धा से भरे मूर्तिकार अपने हुनर से तैयार प्रतिमाओं में आस्था के रंग भर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माण तो कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था, अब इनमें रंग भरने और उन्हें सजाने का काम चल रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और दिखाते हैं कि अब की बार बप्पा की कौन सी मूर्तियां सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।

0: देवों में वे प्रथम पूज्य। कहलाते गणराज। चरण पड़े लंबोदर के तभी सफल हूँ काज। कहते हैं संसार में किसी कार्य का शुभारंभ हो नहीं सकता जब तक इनके चरण न पड़े। तो फिर यहाँ तो बात स्वयं मंगल मूर्ति के उत्सव के शुभारंभ की है। गणपति उत्सव दस्तक दे रहा है, सो कारीगरों ने शहर शहर बाप्पा की मूर्तियों को आकार देना शुरू कर दिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। अब की बार ये तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। अनगिनत मूर्तियां बननी हैं, सो हफ्तों पहले से कारीगर मंगल मूर्ति का स्वरूप गढ़ने और सजाने में जुटे हैं। ये तस्वीर है नागपुर की मशहूर चितारोली की। नागपुर के इस कोने में कहीं बाप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है।
1: करीबन पिछले 10-12 सालों से यहीं से मूर्ति लेता हूँ। बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का कि जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आंख बनाते हैं, देखो आंख जो है गणपति की, उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब जो है बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
0: चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं है बल्कि देश के बाकी हिस्सों और विदेशों तक भी है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं।
2: हमारे यहाँ ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
3: अब कब से वो ऑर्डर देते हैं और
2: ये लोग जून महीने में देते ऑर्डर। जून
3: कब बना के देते आप?
2: हम लोग तारीख रहते उनके जब जाने की फ्लाइट के रहते ना, जब तारीख देके जाले चले जाते हम लोगों को, 1-2 दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: बाप्पा की एक से एक प्रतिमाएं यहाँ तैयार हो रही हैं। कहीं गणपति के माथे पर खाटू के श्याम बाबा की छवि उकेरी गई है तो कहीं गजानन के शीश पर उनके पिता महादेव महाकाल स्वरूप में विराजमान दिख रहे हैं तो कहीं वक्र तुंड की सूंड पर प्यारे से बाल गोपाल विराजे हैं। कलाकार बता रहे हैं कि अब की बार इसी तरह की प्रतिमाओं को लेकर खास उत्साह है। यही वजह है कि डिमांड भी ज्यादा है। कुछ श्रद्धालु अपनी कल्पना के आधार पर तो कई दो हाथ आगे बढ़कर AI के जरिए बापा की अलग छवि बनवाना चाहते हैं और मूर्तिकार उसी को आधार बनाकर दिन रात भक्तों की कल्पना वाले बापा को साकार रूप देने में जुटे हैं।
4: अभी इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं, उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साई बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार की डिमांड आ रही है और अभी जैसे यूट्यूब पे ज्यादा चल रही है डिमांड मोबाइल के द्वारे, तो जैसे कुछ AI से बना के ला रहे हैं। जैसे अभी श्री कृष्ण जी तो आपने देखे बड़ी मूर्ति में गणपति बाप्पा के, इसमें सुंड पे छोटे से बाल श्री कृष्ण बैठा ले उसके खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार से डिमांड भी आ रही है, कुछ हमारे मन में जो कल्पना है तो वो भी हम हमारे हिसाब से बना रहे हैं।
0: लेकिन इस बार बाप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच चर्चा महंगाई की भी हो रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी। सो बात सीधी है कि गणेश जी को घर लाना है तो लक्ष्मी जी का मोह कुछ कम करना होगा।
5: देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बाप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है। हालांकि 14 सितंबर को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति बाप्पा सार्वजनिक पंडाल और घरों में विराजमान होंगे, उससे पहले नागपुर में कारागिर गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके हैं।
0: खैर महंगाई बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन बाप्पा के प्रति भक्तों की श्रद्धा भी तो बढ़ गई। हर साल की तरह ही इस बार भी भक्तों की ये आस्था अटूट है। अभी से अपनी पसंद की मूर्तियां बुक कराने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है, ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
6: और मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
0: यानी नागपुर वाले पूरी तरह तैयार हैं बाप्पा के स्वागत के लिए, लेकिन तैयारी अमरावती में भी कम नहीं। अमरावती की इस आर्ट वर्कशॉप में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। मूर्ति स्वयं मंगल मूर्ति की है, विघ्नहर्ता की है, सो विघ्न का सवाल नहीं। मजाल है कि ध्यान भी भटक जाए, सब कुछ भूलकर बस पापा को बनाने और सजाने का काम चल रहा है। हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग, ये काम में जुटे इन कलाकारों का वर्षों का अभ्यास है, हफ्तों की मेहनत है, उम्र भर की साधना है।
7: देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे आर्ट में, जहाँ पर की मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी और देश के बाहर भी इन प्रतिमाओं की बहुत बड़ी और ज्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की प्रतिमाएं जो है वो ऐसा लगता है कि स्वयं गणपति बाप्पा जो है हमारे सामने विराजमान हुए हैं। और इसीलिए ये कार्यशाला जो है वो कई सालों से जो है सुंदर इको फ्रेंडली, सबसे अहम बात है कि इको फ्रेंडली ये प्रतिमाएं हैं।
0: अमरावती के जिराफे आर्ट वर्कशॉप में हर बार की तरह आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। गणपति बाप्पा की आस्था के बीच प्रकृति माँ को भुलाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ खास इको फ्रेंडली मूर्तियाँ तैयार की जा रही है। छोटी और आकर्षक ये प्रतिमाएं खास तौर पर घरों में स्थापना के लिए बनाई जा रही हैं।
8: एक तो अभी मट्टी के गणपति का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग मैक्सिमम मट्टी के गणपति बनाते हैं। पीओपी के हम अभी रखना बंद कर दिए 5 साल से। अपनी यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर प्रतिमा को गढ़ने में धरती की गोद से मिली मिट्टी, कुछ प्राकृतिक रंग, ढेर सारी मेहनत और अनंत भावनाएं, यही है बाप्पा की प्रतिमा को सबसे सुंदर और मनमोहक बनाने का फॉर्मूला, जिसे इन कलाकारों ने पूरी तरह साध लिया है। और जब इनके हाथों से गुजरकर बाप्पा इस स्वरूप में भक्तों के घर विराजेंगे, तो उनके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी हर घर तक पहुंचेगा। प्रकृति के संरक्षण वाले इस मिशन ने गणेश उत्सव को श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव भी बना दिया है। बस अब इंतजार गणेश उत्सव के श्री गणेश का है।
7: हर किसी को अब बाप्पा को, अपने लाडले को, अपने विघ्नहर्ता को, अपने गजानन को अपने घर कब ले जाओगे, इसकी जो है होड़ यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में हम भी कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, हमारे घर में तुम जल्दी आओ, यही अब हर किसी लाडले बाप्पा के भक्त के मन में यहाँ पर हलचल चल रही है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे।
9: ये तो थी बात बप्पा की मूर्तियों की, लेकिन इन प्रतिमाओं के अलावा गणपति को सजाने वाली तमाम चीजें भी अब बाजारों में पहुंचने लगी हैं। इनमें सबसे खास है बप्पा का फेटा। फेटा महाराष्ट्र की खास पगड़ी होती है। आखिर क्यों बप्पा को ये पगड़ी पहनाई जाती है, क्या है फेटा का इतिहास और क्यों आज महाराष्ट्र के सैकड़ों के फेटा मेकर बड़े पैमाने पर उसका निर्माण कर रहे हैं, देखिए।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ టేఢ़ी सूंड विशाल काया और करोड़ों सूर्यों के समान तेज, गजानन की दिव्य काया का बखान कुछ यूं मिलता है हमारे ग्रंथों में। लेकिन ये काया कुछ और सजीली, कुछ और दिव्य, कुछ और भव्य हो जाती है गणेश उत्सव के 10 दिनों में, जब देश भर में मंदिर मंदिर, पंडाल पंडाल और घर घर में गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है। उन्हें बेहद प्रेम, आस्था और मनुहार के साथ तैयार किया जाता है और इसी तैयारी का हिस्सा है गणपति बाप्पा की पगड़ी। बाप्पा के मस्तक की ये पगड़ी कुछ और खिल उठती है महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर, जहां इसे मराठी अंदाज में बाप्पा को पहनाया जाता है। इस मराठी पगड़ी को फेटा कहते हैं। जैसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हुनर रखने वाले कारीगर इस समय बाप्पा की मूर्ति, वस्त्र, गहने और पंडाल का सामान बनाने में व्यस्त हैं, ठीक वैसे ही पुणे के किरण साबले इन दिनों बाप्पा के लिए फेटा यानी मराठी पगड़ी बनाने में जोर शोर से जुटे हैं। पुणे के नारायण गांव में फेटा मेकर किरण साबले अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा के लिए फेटा बना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव से पहले उनके पास बड़ी संख्या में बाप्पा का फेटा बनाने के ऑर्डर आए हैं।
1: प्राइस मैंने खाली 120 रुपए रखे। फेटा बनाने के लिए मेरी पूरी फैमिली इसमें मेरे को मदद करती है और खूब सारे फेटे हम इस साल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कभी साल भर में 1000 फेटे बनाने वाले किरण साबले अब हर साल बाप्पा के लिए 50,000 से ज्यादा फेटे तैयार करवाते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उन्हें देश विदेश से ऑर्डर आते हैं।
1: मैं गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ। मैं 5 साल से गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ और मेरे पहले मैंने जो फेटे बनाए थे तो गणपति बाप्पा के जो मंडल है, मेरे दोस्त लोग है, तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए और मैंने 20 पीस बनाए और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज और ज़्यादा फेटा बनाया।
0: आपको बता दें कि महाराष्ट्र का फेटा केवल सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि ये मराठी

0: भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। यानी महाराष्ट्र में भगवान गणेश को फेटा पहनाना, मराठी संस्कृति में उन्हें अपने राजा, अतिथि और परिवार का मुखिया मानने की गहरी आस्था का प्रतीक है। वैसे तो बापा को अब पोशाक के रंग के हिसाब से अलग अलग रंग का फेटा भी पहनाने का चलन है, लेकिन शुरुआत में बापा को सिर्फ पीला या भगवा रंग का फेटा पहनाया जाता था, जिसका इतिहास महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं से होते हुए छत्रपति शिवाजी के शासन काल तक जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने गणेश जी को अपना कुल देवता माना था। पेशवाओं के दरबार में हर कोई पारंपरिक फेटा या पुणेरी पगड़ी पहनता था। जब वे अपने आराध्य बापा की मूर्ति स्थापित करते थे तो उन्हें भी अपनी तरह ही शाही रेशमी फेटा पहनाते थे। यही ऐतिहासिक परंपरा आज भी सार्वजनिक और घरेलू गणेश उत्सव में जारी है। सदियों पुरानी इस गर्व भरी परंपरा को आज भी जिंदा रखे है किरण साबले जैसे हजारों फेटा मेकर, जो हर साल गणपति बाप्पा के लिए फेटा बनाते हैं। इसे पहनकर गजानन जब घरों में पधारते हैं तो माँ गौरी के लाल पर श्रद्धालु अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: लंच टाइम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम खुशियों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: 15 अगस्त को टीम इंडिया एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। दरअसल इस दिन भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद 600 टेस्ट खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है। आपको बता दें बीसीसीआई ने टीम इंडिया के इस सफर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और जाहिर है कि खिलाड़ियों का जोश हाई है। सफर के दौरान गिल एंड कंपनी मौज मस्ती करती हुई दिखाई दी। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो चुकी है। कल से भारत एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगा। रेड बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लिहाजा श्रीलंका टूर कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के लिए एक बेहद ही अहम माना जा रहा है। पहला टेस्ट गोल 15 अगस्त से और दूसरा कोलंबो में 23 अगस्त से शुरू होगा।

0: 8।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: दिल्ली NCR में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, लोगों से सावधान रहने की अपील। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई शहरों में आज स्कूल और आंगनबाड़ियों में छुट्टी, यूपी के भदोही और प्रयागराज में भी 8वीं तक के स्कूल बंद। चमोली में लगातार बारिश का दौर, उफान पर है अलकनंदा नदी, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। हैदराबाद में में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे। प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद के खाने।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: कांवड़ यात्रा में नजर आ रही हैं अलग अलग रूप और स्वरूप की अनोखी कांवड़। स्पोर्ट्स कार से लेकर मिसाइल की शक्ल की कांवड़ खींच रही है सबका ध्यान। आकर्षण का केंद्र बनी भारत की सैन्य ताकत को दर्शाती अग्नि 5 की थीम वाली कांवड़। इस कांवड़ को देखने के लिए लगी भीड़, भारत माता की जय के लग रहे हैं नारे। करोड़ों रुपए की लग्जरी स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली कांवड़ भी श्रद्धालुओं और राहगीरों के बीच बनी हुई है चर्चा का विषय। भगवान शिव की प्रतिमा से सुसज्जित फाइबर से बनी है ये कांवड़। प्रसिद्ध मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार की तर्ज पर बनाई गई कांवड़ के साथ फोटो खिंचवाते और वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए लोग। दिल्ली के 6 दोस्तों ने मिलकर तैयार की है अनोखी कांवड़। शिव के अलग अलग रूपों में ढली कांवड़ भी खींच रही है सबका ध्यान। भोलेनाथ के विशाल स्वरूप के साथ दूल्हा रूप में सजे भगवान शंकर की कांवड़ भी शामिल। कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रहे हैं रोज नए रंग। मुजफ्फरनगर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की भागीदारी बनी है आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार से 101 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर रोहतक जा रही है महिला कांवड़िया। कई वाहनों के काफिले के साथ शिव की भक्ति नारी की शक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है ये जत्था। शुरुआत में इस यात्रा में करीब 25 महिलाएं सीधे तौर पर हुई थी शामिल। यात्रा के दौरान कई और महिला कांवड़ बनी इस यात्रा की हिस्सेदार। बागपत की सड़कों से गुजर रही आस्था के साथ साथ फिटनेस का संदेश देती खास कांवड़ यात्रा के दौरान बर्पीज लगाते हुए गुजर रहा है ये कांवड़। हरिद्वार से हरियाणा की नाहरी तक 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कांवड़ यात्रा पर निकले हैं मंजीत। एक बार में लगाते हैं 300 से ज्यादा बर्पीज। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शानदार सजावट, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया पूरा यात्रा मार्ग। 10 से 12 हजार रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से सजाए पवित्र मार्ग रात के समय जगमगाते इस सुंदर और भव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा में उतरी पुलिस, पूरे सेवा भाव से कांवड़ियों को बांट रही फल, भोजन, पानी और एनर्जी ड्रिंक। सुरक्षा के साथ साथ उजागर हो रहा है पुलिस का मानवीय चेहरा। रास्ते में घायल हुए श्रद्धालुओं के पैरों पर पट्टी बांधकर दे रही प्राथमिक उपचार। बारिश में भी मुस्तैदी से कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिस। कांवड़ मार्गों पर इंच टेप लेकर डीजे वाहनों की हो रही है जांच। 12 फीट से ऊंचे ओवर हाई डीजे ले जाने की मनाही। बिहार के मुंगेर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिखी 54 किलो चांदी से सजी हुई 54 फीट लंबी अनोखी कांवड़। लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है ये कांवड़। कांवड़ में स्थापित बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग बड़ी दुर्गा माँ और माँ काली की मूर्ति चांदी से बनाई गई है। बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की प्रतिकृति। श्रावणी मेले के मौके पर पटना सिटी से दिव्य कांवड़ लेकर बाबा धाम देवघर की ओर बढ़ रहा 600 कांवड़ियों का जत्था। भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूरी आस्था, भक्ति और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं कांवड़िये। भक्तिमय हुआ कांवड़ यात्रा पथ। इस कांवड़ संघ के मुताबिक साल 2008 से चल रही है ये परंपरा। श्रद्धालुओं का कहना है कि नियमों का पालन करते हुए 54 घंटे में पहुंचते हैं बाबा धाम। कांवड़ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। हरिद्वार से अब तक करीब 2 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों के लिए हो चुके हैं रवाना। संगम नगरी में दिखा शिव भक्तों का अलग रंग। गले में भोलेनाथ की प्रतिमा लटकाए हुए नजर आए कांवड़ियों की टोली। मध्य प्रदेश से आया है कांवड़ियों का यह समूह। कई शिवालय होते हुए बैद्यनाथ धाम और काशी विश्वनाथ जाएंगे ये कांवड़िए। पाली में गणेशोत्सव की तैयारी में जुटे हैं मूर्तिकार। पर्यावरण की रक्षा के लिए गोबर से बना रहे हैं इको फ्रेंडली बप्पा। देश के साथ साथ विदेशों में भी गोबर से बने इको फ्रेंडली गणपति की डिमांड। विसर्जन के समय आसानी से पानी में घुल जाती है ये प्रतिमा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में हो रही विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। सावन में इस आरती के दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व है। सावन मास में भगवान का राजाधिराज स्वरूप में किया जाता है विशेष श्रृंगार। हजारों भक्त इस पावन आरती में होते हैं शामिल।

0: सावन के महीने में सुंदर लाइटों से सजा महाकाल का धाम, सावन में लाखों भक्त पहुंचते हैं उज्जैन। पल पल बदलते मौसम के बीच जारी है अमरनाथ यात्रा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के बीच रामबन जिले के चंद्रकोट से सुरक्षित रूप से गुजरा 28वां जत्था। खराब मौसम के चलते प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा यात्रा मार्ग पर बरती जा रही है विशेष सतर्कता, भक्तों की सुविधा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। चारधाम में बारिश पर भारी पड़ी आस्था, बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। उफनती अलकनंदा के बीच भी लगातार दर्शनों के लिए उमड़ रहा है भक्तों का जत्था, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित। बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट, ठंड की परवाह किए बिना बरसाती और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु। जगह जगह भूस्खलन होने पर युद्ध स्तर पर जारी सड़क मार्ग खोलने का काम, सावन के महीने में लगातार बढ़ रही है भक्तों की संख्या। बारिश के बाद पहाड़ों पर छाई धुंध, बेहद मनोरंजन नजर आ रहा है विष्णु के धाम बद्रीनाथ का ये नजारा। सावन के महीने में दिल्ली एनसीआर में जारी बरसात, आज रिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की शुरुआत। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, घने बादलों से ढका दिखा आसमान। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, दिनभर दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट लाई तो वहीं लोगों को राहत मिली, कई जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। बारिश से दिल्ली की हवा भी साफ हुई, 84 हुआ AQI, संतोषजनक श्रेणी में पहुंचा। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपील। भदोही जिले में लगातार हो रही भारी बारिश, प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूलों में आज छुट्टी के निर्देश दिए। प्रयागराज में लगातार बारिश के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल आज बंद, बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जारी किया आदेश। असम में बाढ़ बारिश के बीच मानवीय सेवा की एक शानदार मिसाल, कई चैरिटेबल संस्थाओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर शुरू किया राहत और पुनर्वास अभियान। असम के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे हैं पक्के घर, परिवारों को बांटे जा रहे हैं राशन, खाने पकाने के गैस स्टोव, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरत का सामान। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून और चमोली में आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों की छुट्टी की घोषणा। रुद्रप्रयाग में बारिश से लगातार बढ़ रहा है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर, निचले इलाकों को जारी किया गया अलर्ट। बगहा में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, पानी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हुए बच्चे। हुगली के सहरामपुर इलाके में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, यातायात भी हुआ प्रभावित। पुरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में हुआ जलभराव। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद के खाने। इस अनोखे कैफे में बच्चों के लिए कई एक्टिविटीज भी की गई हैं शामिल, नन्हे मुन्नों की पहली पसंद बना कैफे। दिल्ली में टेरिटोरियल आर्मी पर रक्षा मामलों की सलाहकार समिति की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता। दिल्ली में युद्ध स्तर पर जारी है भालसवा लैंडफिल की सफाई का काम, 65 मीटर से घटकर 30 मीटर रह गई है उसकी ऊंचाई। यूपी में हो रही बारिश से होने वाली जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि का सीएम ने लिया संज्ञान। नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में आया मौसम खुशियों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
7: सावन का महीना है, शिव जी का महीना है, ऐसे में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है। इन तस्वीरों में भी नहर के किनारे ये तमाम बच्चे मिलकर यहाँ रेत से बने हुए कई शिवलिंग की आराधना में जुटे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मौज मस्ती के साथ बच्चों की पूजा का ये तरीका सोशल मीडिया पर सबको लुभा रहा है। बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के खतरों के बारे में बताता ये वीडियो अब हर कोई देख रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक नाटक के जरिए इन खतरों को बताया जा रहा है। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ा मोबाइल और उस पर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे छोटे बच्चों को मकर जाल में फंसा लेते हैं और बच्चा फिर वास्तविकता से दूर होकर अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर उसे इन प्लेटफॉर्म से काट दिया जाए तो उसे उसकी वास्तविकता से परिचय कराया जा सकता है। ये वीडियो वायरल है और अब स्कूलों में भी दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे इसके खतरों को समझ सकें। स्टेज पर सामूहिक डांस शो के बीच एक बच्ची स्टेज पर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कोई मूवमेंट नहीं करती। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बाकी बच्चियां तो डांस कर रही हैं, लेकिन ये बच्ची पहले तो खड़ी रहती है, फिर ऐसा इशारा करती है मानो उसे भूख लगी है और वो शायद दर्शकों के बीच बैठे अपने पेरेंट्स से कह रही है कि खाना खिला देते तो डांस ठीक से हो जाता। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्ची के हाव भाव देख कर उससे सहानुभूति रख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे ये अंकल जेंजी के सामने भी जबरदस्त एनर्जेटिक साबित हुए हैं। एक बच्चे ने उनको कुछ करतब दिखाए और फिर उनको आमंत्रित किया। फिर क्या था, अंकल ने साबित कर दिया कि उनकी उम्र बस एक नंबर है। उन्होंने जो एनर्जी दिखाई, तमाम जेंजी बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये ये वायरल तस्वीरें भावुक कर रही हैं। ये पुलिस वाला पुलिस अफसर बनने के बाद जब घर गया तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है। दोनों की मुलाकात सबके दिल को छू रही है, क्योंकि उस दोस्त को न सिर्फ ये अफसर गले लगाता है बल्कि खर्च के लिए पैसे भी देता है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस अफसर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: दिल्ली NCR में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, लोगों से सावधान रहने की अपील। चमोली में लगातार बारिश का दौर, उफान पर है अलकनंदा नदी, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। शिव भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह, चंदौली में महिलाएं बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकली, बागपत में पूर्व सैनिक पेंशन के पैसों से चला रहा कांवड़ शिविर। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सिंथेटिक पनीर और मक्खन की प्रोडक्शन और बिक्री पर लगी पाबंदी, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद के खाने।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: कहते हैं कि मुस्कुराहट चेहरे की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है, और उस मुस्कुराहट पर चार चांद लगाती है एक लिपस्टिक। चाहे मैट हो, ग्लॉसी हो, क्रीम हो या फिर टिंट, हर लिपस्टिक का अपना एक अलग अंदाज होता है, लेकिन सही शेड को चुनना, उसे सही तरीके से लगाना और फिर उसकी सही तरीके से देखभाल करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो आज तो लिपस्टिक्स के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें, शेयर करेंगे आपके साथ कुछ आसान ब्यूटी टिप्स, और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट सितारों की हर खबर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
9: सास बहु बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए सीरियल मन अति सुंदर में प्रॉपर्टी पेपर्स को लेकर मचेगी भगदड़। शुरू होगा बंदूक ड्रामा। अरमान और अभीरा के घर में लगेगी नई अदालत। अभीरा बनेगी जज।

0: शुरू होगा शिवाय और जगधात्री का हलवा वाला रोमांस, जानवी लगाएगी ट्विस्ट का तड़का।
1: मेरे साथ में
2: जश्न बाजी की शाम है, जश्न बाजी।
0: रूहानी की बर्थडे पार्टी में टेडी बनकर आएगा गुरु, शुरू होगा रोमांस।

सैराब की टिन्नी यानी कि टीना कश्यप संग करेंगे मस्ती भरा डे आउट, जानेंगे उनके बारे में कई बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

अब प्यार के रंग तो कई होते हैं और बिल्कुल ऐसे ही होते हैं हमारी लिपस्टिक्स के रंग। और जिस तरह इन लिपस्टिक्स में है ना वैरायटी, उसी तरह है यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट की वैरायटी। मैं तो बात कर रही हूँ गुरु और रूहानी की इस कहानी की, जिसमें रेवा लेकर आ रही है एंटरटेनमेंट का तड़का। तो किस तरफ रुक कर रही है आज ये कहानी, लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनूनी के सेट पर।

0: जश्न रूहानी के जन्मदिन का।
1: जान लेवा तेरी अदा, जान लेवा तेरी अदा, दिल वाले पिया का दिल चुराए जालिमा।
0: रूहानी को मिला टेडी का सरप्राइज।

दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज है रूहानी का जन्मदिन। ऐसे में उसके जन्मदिन पर गौतम ने दिया है सरप्राइज, जहां पर रखा है गौतम ने रूहानी के लिए जश्न, और उस जश्न में टेडी का रूप धारण कर पहुंच गए हैं गुरु, और इस बात से गौतम अनजान है। और तो और, आते के साथ ही गुरु ने गौतम को धक्का भी दिया, जिसे गौतम थोड़ा नाराज तो हुआ लेकिन उसे नजरअंदाज कर वहां से चला गया। लेकिन रूहानी वो बखूबी जानती है कि इस टेडी के अंदर उसका गुरु है। इसी बीच गौतम रूहानी को जन्मदिन मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि चली जाती है लाइट।

0: अरे ये लाइट
1: बंटी, जो बिजली का मीटर चेक कर दिया।

0: भाई रूहानी को उसके जन्मदिन पर सबसे पहले विश तो गुरु ने कर ही दिया है, और फिर इस बात से अनजान गौतम रूहानी को बर्थडे विश करने पहुंच गया, और तो और सभी घर वालों ने मिलकर रूहानी के जन्मदिन पर डांस का तड़का भी लगा दिया, जिसमें टेडी बना गुरु भी झूम झूम कर नाचने लगा।
1: रंडे,

भाई यहाँ तो सभी डांस में गुम हो रहे हैं और गुरु मौके का फायदा उठाकर रूहानी को ले गया है रसोई में। और देखिए कैसे अपने गुरु का साथ पाकर रूहानी बहुत खुश है और दोनों के बीच रोमांस भी शुरू हो गया है।

भाई गुरु तो बस अपनी रूहानी के साथ वक्त बिताना चाहता है और आज उसे ये वक्त मिल ही गया है। इतना ही नहीं, वो तो अपनी रूहानी का हाथ थामे उसके साथ रोमांटिक डांस भी कर रहा है और रूहानी वो तो बहुत खुश है क्योंकि गुरु ने अपना वादा जो पूरा किया है।

0: फिलहाल तो गुरु और रूहानी दोनों ही नहीं चाहते कि वो पकड़े जाएं। ऐसे में रूहानी ने वापस से गुरु को टेडी का फेस पहना दिया और उसे उस पार्टी में शामिल होने के लिए कह दिया। अब देखना होगा क्या घर वाले जान पाएंगे कि टेडी के भेस में कोई और नहीं बल्कि उनका गुरु है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अगर हमारी जगदात्री की तरह मजबूत व्यक्तित्व होना तो फिर हर कलर उभर कर नजर आता है। वैसे देखिए कितनी इंस्पायरिंग है हमारी जगदात्री। घर को भी संभालती हैं, बाहर भी जाती हैं, हाई एक्शन स्टंट्स भी करती हैं और करती हैं हर बुराई का सफाया। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको जगदात्री और शिवाय के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट या फिर नया ड्रामा।
2: शिवाय, तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में।
0: शिवाय जगदात्री और हलवा।

0: के बीच आया केस।
1: तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है।
0: जानवी ने चली चाल, टीवी के सीरियल जगधात्री में आज देखिए कैसे जगधात्री अपने हाथों से बना हलवा लेकर आई है खास शिवाय के लिए, क्योंकि शिवाय को मिला है प्रमोशन। और शिवाय हलवा देखकर खुश तो होता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी अब भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जानवी ने शिवाय को टास दिया है जगधात्री के अपोजिट काम करने का। ऐसे में शिवाय खुश तो नहीं है, लेकिन जगधात्री के हाथों से बनाया हुआ ये हलवा वो खूब एंजॉय कर रहा है। और इसी बीच चल रही है दोनों की बातें। कहीं न कहीं जगधात्री को लग तो रहा है कि शिवाय डिस्टर्ब है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है।
2: केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं।
3: हाँ सब ठीक है, वो हलवे को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गया।
2: खैर मनाऊं,
4: अकेले अकेले खा लोगे क्या? उनके साथ ही खाते, उनके साथ सेलिब्रेट ही करें।
3: नहीं, वो मैंने सबको फोन किया था बारी बारी, लेकिन सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। बस मुझे लगता है कि आज मेरा गुड डे कुछ ज्यादा ही गुड डे, मतलब सारा हलवा मैं अकेले खाऊं।
0: दूसरी तरफ जानवी भी शिवाय के लिए हलवा बनाकर लाई है। हालांकि शिवाय को ये वाला हलवा पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वो झूठ कह रहा है। ऐसे में देखिए कैसे जानवी शिवाय से केस के बारे में पूछती है, और शिवाय जगधात्री की तारीफों के पुल बांधने लगता है, जो बात जानवी को पसंद नहीं आ रही।
4: वैसे एक्टिंग अच्छी बनी, बहुत अच्छी।
3: तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं यार, जैसे मैं दो मिनट में वर्ल्ड के बेस्ट नूडल्स बनाता हूँ, वैसे तुम बेस्ट हलवा बनाते हो। जगधात्री के साथ उसकी स्पीड का अंदाज़ है, लेकिन आज जब उसके अगेंस्ट काम कर तो समझ आ रहा है किस स्पीड में सोचती हूँ, और उससे भी तक और उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से काम करते हैं। सस्पेक्ट को पकड़ने एक दिन में तीन, और आई एम श्योर कि बहुत जल्द वो सस्पेक्ट हमारी कंट्रोल को मिलेगा। कहीं ना कहीं वो मुझसे धोखा दम आगे ही चलेंगे।
4: तारीफ सुनने के लिए तुमने ये टास्क नहीं किया। I want the sauce. पास होती है या फिर आगे सोच पे नजर रखो और मुझे रिपोर्ट करो। अगली बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
5: मैं हलवा लेकर आई हूँ। जेडी ने भी शिवाय के लिए हलवा बनाया, क्योंकि प्रमोशन मिली है उसे, जो प्रमोशन मैंने ही दिए, और मैं भी हलवा बना के लेके आई हूँ। शिवाय अभी जगधात्री को जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा है, और जगधात्री भी जल रही है, वो शिवाय को दिख भी रहा है, तो वो और ज़्यादा करके ये सब करने की कोशिश कर रहा है। जानवी भी उसमें, उसको भी थोड़ा पहले उसको लग रहा था कि अरे शिवाय इतना ख्याल रख रहा है उसका, बट देन उसे भी धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये सब भी एक्टिंग ही है। तो जानवी तो फुल ऑन डिवाइड एंड रूल खेल रही है, अभी देखते हैं क्या होता है।
0: बिल्कुल, जानवी डिवाइड एंड रूल ही खेल रही है, तभी तो एक ही केस में उसने टीम बना दी है, टीम शिवाय और टीम जगधात्री। ऐसे में शुरू हो गई है शिवाय और जगधात्री के बीच अनबन।
6: हमारे पास भी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। हाँ तो जानवी आ जाओ।
7: मैम प्लीज आप यहाँ पर आइए, इन्फॉर्मेशन है, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट।
6: एक मिनट, अदिति वो फाइल निकालो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ ये देखो, ये देखो, हाँ ये फाइल।
7: मैम प्लीज आप यहाँ
6: पर,
5: वन वाई
6: का ये तुम्हारी टीम का स्पेस है और ये मेरी टीम का
4: पूरी शिद्दत से काम कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हम उसे
5: रिपोर्ट दिया नहीं बट उसको उसके उस पर नज़र रखने के लिए कहा गया है तो दिस इज़ जानवीज वे ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंस बिटवीन देम. अभी तो बस उसने अपना खेल शुरू किया है, आगे देखते हैं क्या होता है.
0: तो भाई अब देखना होगा कि इस केस के चलते शिवाय और जगधात्री के रिश्ते में कोई ट्विस्ट आएगा या फिर ये दोनों मिलकर जानवी को ही सबक सिखाएंगे. भाई ये तो वक्त ही बताएगा. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
7: कभी कभी एक नया लिपस्टिक शेड भी आत्मविश्वास की एक नई शुरुआत बन जाता है. ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी अपराजिता. लेकिन क्या कुछ हो रहा है आज अपराजिता और रक्षित की इस कहानी में? वेल, इसमें भी हैं आपके लिए इन लिपस्टिक्स की तरह सतरंगी रंग. तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर और देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है आज ये कहानी.
8: वार्निंग देने आया हूं. आपके कांडों को तो अकेले ऑफिस में हैंडल कर रहा हूँ, अब आपके माँ के भी प्रोजेक्ट को लेकर बैठ जाऊँ मैं.
0: शुरू हुई अपराजिता और रक्षित के बीच तू तू मैं मैं.
8: आपको और आपके परिवार को हैंडल करने में लग रही है. प्लीज अपनी माँ से कहिएगा कि वो मेरे घर न जाए.
9: माँ आपके घर गई थी?
8: हाँ, और उन्हें देखते ही मेरी मौसी की तबीयत का ग्राफ सीधे नीचे.
0: माँ को लेकर हुई बहसबाजी.
8: देखिए मैं आपकी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कुछ कहा नहीं मैंने.
9: याद रखिए, मल्हारगंज की लड़की हूँ मैं, धमकी सुनती नहीं धमकी देती हूँ.
0: क्या ये बहस लाएगी दोस्ती में दीवार?
9: और किस तरह बात करूँ, आप भी तो इस तरह बात कर रहे हैं. आप ही शरीफ है दुनिया में, बाकी सब तो गुंडे मवाली हैं.
0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज रक्षित के पापा पहुँच गए हैं अपराजिता से मिलने और ये बोलने कि वो उसके बेटे का साथ कभी ना छोड़े. ऐसे में अपराजिता रक्षित के पापा को दिलासा देती है और वादा करती है. लेकिन तभी उसी मोहल्ले में पहुंच जाता है रक्षित भी. इससे पहले कि रक्षित अपने पापा को देख पाता उसके पापा वहां से चले जाते हैं. ऐसे में अपराजिता रक्षित को देखकर डर जाती है कि कहीं उसने अपने पापा को तो नहीं देख लिया. लेकिन तभी रक्षित अपराजिता के सामने अपनी नाराजगी दिखाने लगता है, वो भी अपराजिता की माँ को लेकर, क्योंकि वो रक्षित की माँ से मिलने जो चली गयी थी.
9: आप यहां कैसे?
8: वार्निंग देने आया हूं. आपके कांडों को तो अकेले ऑफिस में हैंडल कर रहा हूँ, अब आपके माँ के भी प्रोजेक्ट को लेकर बैठ जाऊँ मैं. इतनी मेहनत ऑफिस में नहीं लगती जितनी कि आपको और आपके परिवार को हैंडल करने में लग रही है. प्लीज अपनी माँ से कहिएगा कि वो मेरे घर न जाए.
9: माँ आपके घर गई थी?
8: हाँ, और उन्हें देखते ही मेरी मौसी की तबीयत का ग्राफ सीधे नीचे. देखिए मैं आपकी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कुछ कहा नहीं मैंने. लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है, ज्यादा खींचोगे ना तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो मैं खुद नहीं कहना चाहता.
9: क्या मतलब आप मेरी माँ के साथ बदतमीजी करेंगे?
8: ऐसा नहीं कहा, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बड़ों के साथ बदतमीजी करे.
9: आप वो सब क्या बोल रहे थे? अभी बोला आपने कि मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा तो मत बोलना. मतलब
8: ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ज्यादा उकसाने की कोशिश मत करना मुझे. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरी माँ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और मैं उन्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आपकी माँ मेरी माँ मेरे घर और मुझसे दूर रहेगा.
0: भाई रक्षित की बातें सुनकर तो अपराजिता का गुस्सा भी खोल उठा. उसने तो रक्षित की बातों का करारा जवाब दिया है, लेकिन रक्षित वो यहाँ अल्टीमेटम देने आया था और वो देकर जाने लगा. लेकिन अपराजिता ने उसे रोक लिया क्योंकि वो धमकी बर्दाश्त करने वालों में सुझे नहीं है.
9: धमकी दे रहे आप मुझे? याद रखिए, मल्हारगंज की लड़की हूँ मैं, धमकी सुनती नहीं धमकी देती हूँ.
8: मेरे दादा भी पहाड़गंज के, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती.
9: और किस तरह बात करूँ, आप भी तो इस तरह बात कर रहे हैं. आप ही शरीफ है दुनिया में, बाकी सब तो गुंडे मवाली हैं. आपसे डरती नहीं हूँ मैं, आपके ऑफिस में आपके सर पे बैठ के काम करूंगी, कर लीजिएगा जो करना है. दूर क्या रहे? मैंने थोड़ी आवाज क्या ऊंची कर दी, आपकी तो सीटी बंद हो गई. अरे भाग के कहाँ जा रहे?
0: भाई रक्षित तो अपराजिता का ये रूप देखकर हैरान है क्योंकि आज तक अपराजिता ने बगावत जो नहीं की थी. खैर अब अपराजिता बगावत पर उतर आई है और ऐसे में भले रक्षित उसे हाथ छुड़ाकर जा रहा हो लेकिन अपराजिता ने उसको जाते जाते धमकी भी दे दी है. अब देखना होगा कि क्या अपराजिता रक्षित की गलतफहमियों को दूर कर पाएगी. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
9: गाड़ी भी तेज भगा के ले गई, ये बात ही नहीं सुनते.
7: आज दो लिपस्टिक्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, तो चलिए आपकी जिंदगी में भी हम बिखेर देते हैं एंटरटेनमेंट के अनेक रंग. बताइए कैसे, क्योंकि अब लेकर चल रहे हैं हम आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां हमने की है आपके फेवरेट सितारे से एक प्यारी सी मुलाकात। कौन है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी आपको, लेट्स चेक इट आउट।
10: अगर चिट्ठी पुल करनी है अगेंस्ट ऑड्स तो सिर्फ मैं और रूही क्यों कर रहे हैं? द पॉइंट इज द पर्सन हु क्रिएटेड द एनिमोसिटी इज वॉलंटियरिंग।
0: ये होस्ट रह चुकी है, एक्टिंग का हुनर है इनके पास।
10: They are both struggling and you can see these big guys with muscles. वो चार चार पांच पांच छह छह शब्द भी नहीं बना पा रहे।
0: डायरेक्टर कबीर खान की वाइफ है और अब रियलिटी शोज की क्वीन। हम बात कर रहे हैं मिनी माथुर की। भाई कई रियलिटी शोज में ये होस्ट रह चुकी है, लेकिन अब ये बन गई है रियलिटी शोज की क्वीन, क्योंकि इन्होंने जीत ली है ट्रॉफी अलायंस सीजन 1 की। सबको पीछे छोड़ बन गई है ये विजेता और सास बहू और बेटियां संग मिनी माथुर ने की खास मुलाकात, जहां वो बता रही है अलायंस में अपना एक्सपीरियंस, कैसे इन्होंने ट्रॉफी जीती, क्या थी इनकी स्ट्रेटेजी और साथ ही इन्होंने की बातें अपने को कंटेस्टेंट्स के बारे में भी। तो चलिए करते हैं मिनी माथुर से खास मुलाकात और जानते हैं उनके बारे में कई और बातें, क्योंकि आज ये कर रही हैं दिल से बातें।
11: So, आज हमारे साथ है टीवी की मोस्ट लव्ड होस्ट में से एक, विट ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस की पहचान, लेकिन अलायंस में है इन्होंने सिर्फ अपनी पर्सनालिटी ही नहीं लेकिन गेम स्ट्रेटेजी और गेम सेंस से भी लोगों का दिल जीत लिया। आज मिलते हैं अलायंस की द वन एंड ओनली विनर मिनी माथुर से। सो कैसा लग रहा है आपको जीतकर?
10: अभी तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं 42 डेज के बाद बाहर निकली हूँ एंड यू नो ये ट्रॉफी भी मेरे साथ बाहर आई है। सो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। इफ आई एम ऑनेस्ट, जब ये मेरा पहला रियलिटी शो है, शायद आखिरी, आई डोंट नो, लेकिन ये मैंने एज अ चैलेंज लिया था कि चलो मैं ये जॉनर मैंने होस्ट किया है एज अ कंटेस्टेंट, लेट मी ट्राई, लेट मी मेक माई सेल्फ अनकम्फर्टेबल। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी स्ट्रैटेजी के साथ अंदर घुसी हूँ या मुझे कोई स्ट्रैटेजी ऐसी आती है, ये गेम पहले कभी नहीं खेला गया है तो इसका कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं था। तो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत मुश्किल था। मेरी स्ट्रैटेजी बस ये थी कि मैं दिल से खेलूंगी, एंजॉय करके खेलूंगी और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ बाहर निकलूंगी।
11: पीपल एंड फैंस गिव यू अ टाइटल काम प्लेयर, सो इस पे आपका क्या कहना? इज दिस योर पर्सनालिटी या ये कोई गेम स्ट्रेटजी थी आपके?
10: देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी समबडी यू आर नॉट। जब आपके फेस में 24/7 कैमरास घूमे और आप प्रिटेंड कर ही नहीं सकते 6 हफ्ते तक, तो यू हैव टू बी योरसेल्फ। तो मैंने प्रिटेंड तो नहीं किया और मैं काम, यस आई एम काम इन द वे दैट मुझे लड़ाइयाँ पसंद नहीं है, ज्यादा टॉक्सिसिटी पसंद नहीं है या ओपन अग्रेशन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतनी काम नहीं हूँ लाइफ में। थोड़ा तो मैंने बिहेव किया अपने आप को, कभी कभी एक दो लाउड गालियां भी निकल गई, अब आई एम ओनली ह्यूमन। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे मेरा 30 साल का करियर एज अ होस्ट दाव पे लग जाए। तो एक डेकोरम तो मेंटेन करना ही था।
11: कुशाल टंडन की लोगों ने उन्हें टाइटल दे दिया है बुली, बदतमीज का, आपका क्या कहना है? जैसे फर्स्ट वीक में ही उन्होंने वंशज को बाहर कर दिया, री एंट्री पे उनका झगड़ा हो गया उनके साथ, बट एंड में वो दोनों दोस्त बन गए, व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट?
10: देखिए, कुशाल इज अ वेरी नाइस गाय। उनका तौर तरीका, उनका डिमीनर जिसे कहते हैं, वो अग्रेसिव है, लेकिन वो उनके लिए वर्क करता है और वो सोचते हैं कि वो उनके लिए वर्क करता है। कभी कभी वो ऐसे कमेंट्स करते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते लड़कियों पे, या फिर थोड़ा थोड़ा मिसोजिनी आ जाती है कभी कभी, लेकिन मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि वो दिल के अच्छे हैं, वो एक फैमिली पर्सन हैं और उन्होंने कभी भी मुझे पर्सनली कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी डिसलॉयल्टी से मेरे साथ गेम नहीं खेला। उन्होंने हमेशा से मेंटेन किया यू आर माय नंबर वन और एंड ऑफ द 6th वीक तक उन्होंने, तो मेरा कोई रीजन ही नहीं बनता कि मैं उनके बारे में कुछ ऐसा कहूं जो ठीक नहीं। जो मुझे उनके बारे में ठीक नहीं लगा मैंने उनको अलग जाके जरूर समझाया, और क्या मैं ऐसे बिहेव करूंगी? कभी भी नहीं।
11: गौहर खान ने बाहर एक वीडियो बनाया एंड शी कॉल्ड आउट ऑन यू सेइंग कि आप बायस्ड है टुवर्ड्स कुशाल एंड निखिल, बट उनकी कुशाल की बुली बिहेवियर पे आपने कभी इसको कॉल आउट नहीं किया एंड यू वर नॉट इन फेवर ऑफ जैद. तो आप
10: कुशाल के बारे में तो मैंने आपको जवाब दे दिया, अब मैं जैद के बारे में बताती हूँ. देखिए गौहर इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव वाइफ, शी हैज प्लेड एंड वन रियलिटी शोज तो वो जानती है हाउ दिस वर्क्स. आप 24 घंटे में से 50 मिनट का एडिट देखते हैं, 23 आवर्स यू डोंट सी. जैद वॉज प्रॉबली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीपल इन द हाउस एंड आई वॉज हिज फेवरेट एज वेल. हमने एक दूसरे का बहुत ध्यान रखा, बहुत बातें की एक दूसरे से एंड आई सपोर्टेड हिम टू अ ग्रेट. दो हफ्ते मैंने लगातार उनके साथ फॉर वीक वन वीक टू खेला और वीक थ्री में मैंने उनको वॉरियर्स से निकाल के हंटर्स में शिफ्ट किया. नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट टीम, पर मैं जानती थी जैद हैज मोर पोटेंशियल. वो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है जिनकी आवाजें बाकी बॉयज में ड्राउन हो रही थी. तो मैं चाहती थी कि वो हंटर्स में जाए जहां वो अपनी टीम लीड करें, जो उन्होंने किया. आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे बुला के बोला दिस वॉज द बेस्ट थिंग समबडी एवर डिड टू मी. आई होप गौहर ये सुन रही हैं, देख रही हैं और अब वो एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाएंगी मुझे कॉल आउट करते हुए कि मैंने उनके हस्बैंड के लिए एक अच्छा मूव किया एंड दैट ही इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीपल फ्रॉम द हाउस. जस्ट दैट थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. मैं नहीं सोच पा रही थी अंदर घर के कि बाहर क्या दिखाया जा रहा है, मैं कैसे आ रही हूँ. मैंने सिर्फ एक रियल ऑथेंटिक गेम खेला एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड दैट सो मेनी ऑफ यू आइडेंटिफाइड विद मी. इतनी औरतों को बहुत इंस्पिरेशन मिली कि वो कभी भी उठ के कुछ भी चीज एक नए सिरे से शुरू कर सकती हैं, दे कैन मेक अ गो ऑफ इट. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव आई एम गेटिंग. दिस इज फॉर ऑल यू वुमेन एंड एवरीबॉडी हु सपोर्टेड मी.
0: तो भाई अलायंस की ट्रॉफी जीतकर मिनी तो काफी खुश है. अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मिनी हमें नए किरदार में या फिर कोई नए रियलिटी शो में नजर आए. मुंबई से रोशन अडाजानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
7: कुछ लिपस्टिक शेड्स ना पहली ही नजर में दिल जीत लेती हैं और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पहली नजर में चौंका देती हैं. आप तो समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है. जी हाँ, आप दिखाने वाले हैं हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. जया शंकर ने फैंस के लिए शेयर की ये गुड न्यूज. भाई जया शंकर ने सगाई कर ली है अपने बॉयफ्रेंड करण संग. ऐसे में उन्होंने शेयर की है सगाई की ये रोमांटिक पिक्चर्स जहां उन्हें मिला अपने बॉयफ्रेंड करण से ये ड्रीमी प्रपोजल.

0: आप भी ये तस्वीर जहां पर बिग बॉस 20 के घर में जल्द ही कई सारे कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे।
1: इस बार बिग बॉस में सभी घर वालों को मिलेगा एक वरदान, तथास्तु मेरी जान।
2: मैं ऋतुराज के बारे में बताना चाहूँगा, भारती के, ऋतुराज की अभी अभी शादी हुई है।
0: नजर डाल लीजिए इंडियाज बेस्ट डांसर के इस नए प्रोमो पर, जहाँ पर डांस के साथ साथ लग गया है कॉमेडी का तड़का।
3: कौन बेटर हस्बैंड है?
2: चलो आ जाओ, रेडी।
3: पहला सवाल, आपकी बीवी अगर रूट के मायके चली जाती है तो आप क्या करोगे?
2: मैं तो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बीवी मेरे लिए दुनिया है, तो अगर मेरी दुनिया ही मुझसे रूट कर चली जाएगी तो मुझे इस दुनिया में मजा नहीं आएगा।
3: अच्छा।
2: तो मैं चला जाऊंगा थाईलैंड की दुनिया में। थाईलैंड, पटाया।
3: तू पटाया जाएगा ना बेटा, बच्चे लेके आऊंगी वहीं पे और तुझे पकड़ के मिट्टी ना चटाया ना पटाया में तो पता चलेगा। अच्छा ऋतुराज तुम बताओ।
4: मैं मनाऊंगा उसको, फिर डिनर पे ले जाऊंगा थोड़ा सा।
3: अच्छा, ये होता है पति, ये होता है प्यार कि क्यों जाना है, मैं मनाऊंगा।
2: अरे इसके बाद ये भी थाईलैंड ही आएगा।
3: आप मनाओगे ऋतुराज इसे और जाने नहीं दोगे?
4: नहीं,
2: पर ये बात ही होता है। नहीं नहीं,
4: थाईलैंड जाऊंगा तो उसको लेके जाऊंगा।
2: अरे टिफिन लेके जाते हो रेस्टोरेंट में?

0: जल्द आने वाली है सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म बंटवारा 1947 और शुरू हो चुके हैं इसके प्रमोशन। ऐसे में इसकी कास्ट पहुंच गई है अहमदाबाद, जहां ये टीम लंच करती नजर आई। देख लीजिए ये तस्वीरें।
1: कहीं जाता हूँ ना दिल्ली में, तो आपके कई होल्डिंग लगे रहते हैं।
0: देख लीजिए कौन बनेगा करोड़पति का ये नया प्रोमो, जहाँ कंटेस्टेंट्स खेल तो खेलते ही हैं, साथ ही साथ होता है फन भी।
1: आपका नाम ही रख दिया उन्होंने केवीसी अंकल।
2: सर 55 साल से हम फिल्मों में काम कर रहे हैं, उसको तो रेडर मार दिया ना आपने।
1: वो इतने छोटे, उन्होंने फिल्में आपके
2: देखी अंकल।
1: बिहारी आपको बहुत मानते हैं। हाँ आप भोजपुरी फिल्मों में आइए ना, बिहारी सर आपको इतना मानते हैं।
2: हमारा मेकअप मैन है जो आ रहे थे अभी, छूछा रहे थे हमको इधर, दीपक उनका नाम है।
1: अच्छा अच्छा
2: सर, उनके साथ हम दो तो भोजपुरी पिक्चर किया, आप देखे नहीं अभी तक
1: गंगा। ओटीटी पे भी आई है, लेकिन सर भोजपुरी में आई आप।
2: अच्छा भोजपुरी वाली फिल्म थी।
1: जो आप इतने दबंग से बोलते हो ना, हाँ ये कहानी जो है ये बरसों पुरानी है, तो वो माफ कीजिएगा सर,
2: इतने जोर से बोला गिर गया।
3: अब तो हम सबकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट के रंग बिखेरने आ रही हैं सैराब की उज्जनी, यानी टीना कश्यप। हमारी टीम कर रही है आज इनके साथ एक इंटरेस्टिंग डे आउट। तो कैसी हैं ये ऑफ स्क्रीन, कैसा है इनका घर, हमने तो किया है टीना के साथ घर से सेट तक का सफर। आइए जानते हैं इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल।

शिवाय। नयों ने कहा कि संस्कारी बेटी, ओम नमः शिवाय। टिन्नी की महादेव भक्ति, ओम नमः शिवाय। माँ बेटी की डांस जुगलबंदी, सेट की चुलबुली शहजादी।

0: ये है टीना कश्यप, जिन्हें आप मंगल लक्ष्मी में इशाना और माना कि हम यार नहीं में नैना के किरदार में देख चुके हैं, और अब ये सीरियल सैराब में टिन्नी के किरदार में नजर आ रही हैं। वो सीरियल जिसने आते ही दर्शकों का दिल जीत लिया। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां कर रहा है टीना संग भक्ति भरा डे आउट, जिसकी शुरुआत वो गौ सेवा से करती है।
1: जी अभी बचे हैं 7:36 और मैं घर से निकल चुकी हूँ। घर में कभी बाद में दिखाऊंगी।

क्योंकि अभी थोड़ा सा मैसी है तो मॉर्निंग निकलते ही थोड़ा सा वो हो जाता है कि जल्दी जल्दी निकलना है सेट के लिए, बिकॉज मैं रहती भी हूँ बहुत दूर सेट से. और अभी हम निकलेंगे, निकलने के बाद चलिए दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं. अभी पहले हम करेंगे दर्शन मंदिर में और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके सेट पे चलेंगे. लेट्स गो.

हाय एवरीवन, हम जाते रहते मंदिर, लेकिन रास्ते में मुझे दिख गया गौ माता, जहाँ पर मैं खिलाऊंगी उनको घास। और जैसे कि आप सबको अगर पता होगा कि मैं असम से हूँ, और असम में हम ऐसे सेवा करते हैं, और मेरे घर में भी पर्सनली बहुत सारे एनिमल्स थे, तो मुझे बहुत पसंद है। और जब मुंबई में ऐसा होता नहीं है कि आपको ऐसे सेवा करने का मौका मिले, लेकिन मुझे जब भी दिख जाता है रास्ते में, मैं आ जाती हूँ और इनको सेवा करती हूँ। तो लेट्स डू इट।

0: पता नहीं, एक मन से बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है जब आप कुछ करते हो ऐसा अच्छा सा काम. और अभी गौ माता की सेवा हो गई है, तो चलिए अब हम मंदिर चलते हैं और दर्शन करते हैं.
1: शिव शंभो करोति सब संभव.
2: गौ सेवा तो हो गई, अब बारी है मंदिर में जाने की. भाई सावन का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में टीना पहुंच गई है श्री ओमकारेश्वर शिवालय मंडल, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं, भक्ति के साथ फूल अर्पण कर रही हैं और पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद भी ले रही हैं. क्योंकि दर्शक इनके किरदार को बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसे में ऊपर वाले का धन्यवाद करना तो बनता ही है.

0: मैंने दर्शन कर लिया है ओमकारेश्वर शिव मंदिर में और बहुत ही अच्छा लगा मन को, क्योंकि ऐसा होता है कि शूट कॉल टाइम आ जाता है और समय नहीं मिलता कि आप कहीं दर्शन करो या फिर घर में पूजा करो, तो ऐसा हर वक्त नहीं मिलता है। और आज सास बहू बेटिया की तरफ से आज मुझे मौका मिला कि मैं दर्शन करूं, टाइम मिल गया है तो मैं आ गई शिव मंदिर, अपने घर के पास ही था और यहाँ पे दर्शन, सावन का महीना है और बहुत ही अच्छा लगा कि आज मौका मिल गया कि मैंने शिव मंदिर पे दर्शन किया है। तो साथ में बोलिए ओम नमः शिवाय। तो अभी हम फिल्म सिटी के बाहर है, पहुँचे नहीं है, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा वड़ा मिलता है, मैंने एक बार ट्राई किया था, सो लेट्स डू इट।
1: अब बारी है पेट पूजा की, क्योंकि इन्हें यहाँ से सीधा सेट पर भी जाना है, ऐसे में इनके पास इतना समय नहीं है कि ये कहीं बैठकर इत्मीनान से खा सके, इसीलिए इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फटाफट पार्सल कराया और चल दी अपने सेट की ओर।
0: तो मैंने ले लिया अपना पार्सल और अभी जल्दी जल्दी हमें फिल्म सिटी पहुंचना है और चलते हैं सैराब के सेट में, लेट्स गो। तो अभी चलते चलते मैं अपना खाना भी खा रही हूँ इधर, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और सुबह सुबह आई थी तो कुछ साथ में नहीं लाई, और जैसे कि बड़ा देखा और ले लिया पार्सल। लेट भी नहीं होना है, सेट पे भी पहुंचना है जल्दी, तो इसीलिए हम कार में ही खा रहे हैं। चलिए खाते हैं। सच बताऊं तो आज मैं पहली बार ये टेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, भूख के लिए।

0: खाते पीते ये सीधा पहुंच गई हैं अपने सेट पर और वहां पर हर दिन इनकी होती है मुलाकात अपने को स्टार से। ऐसे में सभी के साथ मिलकर हंसी के ठहाके लगाते हुए टीना सीधा अपने मेकअप रूम में जाती है।
1: तो मैं पहुंच गई फिल्म सिटी के सेट और देखिए मैं किन से मिली। मेरी मेजो माँ और मेरी छोटो माँ। बारिश में लेट्स गो।
2: नहीं मैं कॉफी नहीं भूली।
1: लेकिन मैं कल मग ही भूल गई
3: थी।
1: हाँ चलिए चलते हैं अंदर। ये है मेरा प्यारा सा सेट, उस तरफ देखिए। तो ये रहा हमारे मेकअप रूम्स, आगे सबका मेकअप रूम है। ये जया का, अंगना का, दिबानाथ, इंद्रनील का और बहुत लास्ट में है मेरा रूम, नौनिका का रूम, ईशान का रूम। तो चलते हैं। ये देखिए टिन्नी और मिन्नी का रूम, हम साथ में रहते हैं। तो लेट्स गो। सो दिस इज माई रूम और ये जितना भी कुछ मैंने किया है थोड़ा थोड़ा डेकोरेट। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ दुर्गा माँ का स्टिकर्स लगाया है, फिर मिरर में कुछ ऐसे प्लान और फिर यहाँ पर कुछ कुछ हाँ बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ बासु फैमिली सैराब का। यहाँ पर फुल फैमिली फोटो है, यहाँ टिन्नी और मिन्नी है, यहाँ टिन्नी मिन्नी और रोमियो है। तो ये मेरा रूम है छोटा सा और बहुत कुछ करना बाकी है, डेकोरेट करना बाकी है।
0: मेकअप रूम में पहुंचते ही टीना सबसे पहले अपने आप को चार्ज अप करती हैं और उनका चार्ज उनके डांस से होता है। तभी तो देखिए कैसे उन्होंने सबसे पहले जमकर ठुमके लगाए और ठुमके लगाने के बाद जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गई, ये बैठ गई आईने के सामने अपने हाथों से अपना मेकअप करने के लिए।

बहुत मस्ती कर ली मैंने, डांस किया, खाना खाया, तो अभी टाइम है मेकअप करने का. और मैं सबको धीरे धीरे सबसे मिलवाती हूँ, सबके साथ मेरा कैसा बॉन्ड है आपको दिखाती हूँ, और कितना मस्ती करते हैं हम वो भी दिखाती हूँ. तो अभी मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ, लेट्स डू इट. पहले मैं करती हूँ स्किन केयर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेकअप से पहले.

0: मेरे स्किन को जज मत कीजिएगा, पिंपल्स आ रहे बिकॉज हम डेली शूट करते हैं, सोने का टाइम नहीं मिलता और मैं पानी बहुत कम पीती हूँ गाइस, जो कि बहुत गलत है,
1: लेकिन
0: चलो कोई बात नहीं. और अभी मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज कभी आउटडोर हो जाता है या फिर लाइट की वजह से भी हम सनस्क्रीन लगाते हैं ताकि पिगमेंटेशन आए. अभी करते हैं मेकअप स्टार्ट, पहले अंदर आई करेंगे, ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज मैं, जैसे कि अभी मेरा सीन है कि मैं बेहोश हूँ, पिनी ने स्लीपिंग पिल्स ले ली है तो पता नहीं पिनी को क्या होगा अभी, लेकिन इसलिए मेकअप भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करती हूँ, लाइट करती हूँ. पहले कंसील कर रही हूँ अंडर आई के लिए.

पहले मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था. आई एम वेरी वीक. मतलब एक आर्टिस्ट को तो मेकअप करना आना चाहिए लेकिन मुझे पसंद नहीं है पर्सनली. मैं मेकअप करती नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे सीखना पड़ा क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम लेट होते हैं तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है मेकअप.

मेरा ज्यादातर नो मेकअप लुक रहता है टिन्नी का। हाँ, मैं तो पहले शॉक हो गई थी कि जब मैं ऑडिशन देने गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बुलाया गया टिन्नी टिन्नी करके, बट मैंने जब देखा कैरेक्टर नेम कि उज्जैनी का निकनेम है टिन्नी, तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई और मैंने सोचा कि अगर बाय चांस ये कैरेक्टर मेरे लक में है तो कितना मैच हो जाएगा, और हो गया और मैं बहुत खुश हो गई और ये डेस्टिनी में था, मेरे लक में था, तो नहीं बोल सकती लक में था, मेहनत भी की है इस चीज़ के लिए, तो भगवान ने मेरे लिए बनाया है टिन्नी का कैरेक्टर। नौनी का जो हरकत कर रही है टिन्नी को लगता है वो, उस हिसाब से तो वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज और चिड़चिड़ी बनती जा रही है, लेकिन यार एक रहता है, लेकिन एस टीना ऑल्सो मैं थोड़ी सी ज्यादा चिड़चिड़ी हूँ और शायद ये कैरेक्टर करते करते शायद मेरे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो गया कि मैं भी चिड़चिड़ी बनती जा रही हूँ, लेकिन काफी हद तक सेम है गाइस मेरे टिन्नी और टीना का कैरेक्टर जो है वो काफी हद तक सेम है, मैं रिलेट कर सकती हूँ वो चीज। मैं भी मम्मी के साथ रहती हूँ मुंबई में अकेले और मेरी भी फादर नहीं है, पापा की डेथ हो गई है और अभी हम रहते हैं सिर्फ मम्मी के साथ मुंबई में, तो वो स्ट्रगल जो टिन्नी कर रही है वो टीना भी कहीं ना कहीं कर रही है सफर, तो काफी हद तक सिमिलर है दोनों का। मेरा बेस हो गया है अभी थोड़ा सा।

0: तो ज्यादा कुछ नहीं करना है बिकॉज
1: जहाँ से होना चाहिए वहीं से है,
0: नो डायलॉग्स नथिंग, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी. मुझे थोड़ा सा आई शेडो कर दी ताकि ज्यादा और ना लगे. जो भी हो गाइस, आर्टिस्ट को एक्ट्रेस को अच्छा दिखना चाहिए स्क्रीन पे.
1: मैं वो सारे सच्चा बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी.
0: एकदम लाइट लाइट में अपना आई शेडो कर दूँ.

0: I'm all done. ब्लश वगैरह मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल क्या था तो मुझे सुनने को मिला कि हटा दो, सब कुछ हटा दो, तो मुझे हटाना पड़ा. इसीलिए आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. आज कॉन्टिन्यूटी है फिर भी. मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ आईब्रोज बाकी है जो कि मुझे नहीं आता, तो मैं मेकअप दादा से हेल्प लूँगी.
1: तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आयशा, ऐसी हसीन हो जिसको छू लो उसको हसीन कर.
0: ये रहा मेरा कॉस्ट्यूम जो कि मैं 4 दिन से अभी कंटिन्यू पहन रही हूँ. और ये रहा मेरा ज्वेलरी. मैंने ना एकदम सिंपल सा बेस किया है, नो ब्लश, नो आई शेडो, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा अभी सीन ही वैसा है. तो मैंने फटाफट से कर लिया अपना मेकअप, ज़्यादा टाइम नहीं लगा. और अभी बाकी है चेंज करने का, तो मैं अभी चेंज करती हूँ, फिर मिलते हैं सबसे और गॉसिप करते हैं गाइस, लेट्स गो. तो मैं रेडी हो गई हूँ एज उज्जैनी, और उज्जैनी की कैरेक्टर में मैं प्रकट हो गई हूँ अभी. तो उज्जैनी तो बन गई हो लेकिन बीमार वाली आप देख सकते हो. मेरे हेयर भी बन गए, मैंने ऐसे कॉम कर लिया है.

0: फिलहाल तो टिनी का लुक नो मेकअप लुक है, क्योंकि इन दिनों टिनी बीमार चल रही है। ऐसे में टीना अपना मेकअप फटाफट कर पहुंच गई है अपने कोस्टार्स के मेकअप रूम में, जहां पर वो फ्री टाइम में पाई जाती है, क्योंकि उनसे उनका सहेलियाना बहुत ज्यादा है।
1: तो मेरे रूम के पास ही है श्रेया और रुषा का रूम, जो कि मैं बहुत टाइम, मतलब जब मेरा फ्री टाइम रहता है, मैं इधर ही स्पेंड करती हूँ। और मेरी छोटो माँ मेरी छोटो माँ और मेजो माँ एक साथ ही रहती है, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही स्पेंड करती हूँ। गॉसिप्स करते हैं हम, रील्स बनाते हैं, हमारा रील भी पेंडिंग है कल का।
2: रिहर्सल करके हम बैठे हैं। शी इज एन अमेजिंग डांसर बाय द वे, तो ये हमें सिखा रही थी। हालांकि वो हम देखकर सीख सकते थे, पर हमने तिन्नी को बुलाया क्योंकि हमें पता है कि आ जाओ, हमें पता है ये बहुत अच्छे से सिखाएगी। तो हमने 2-3 बार हमने प्रैक्टिस किया है, हमें मौका नहीं मिला है, आज हम जरूर करेंगे।
3: आज आपको देखने में मिलेगा, हम सब मिलके डांस करने वाले हैं।
1: वो पेंडिंग है तो हम पूरा करेंगे उस रील को, फिर अपलोड।
3: प्रैक्टिस हो चुकी है, आज हम आपको पूरा करके दिखाएंगे।
4: अरे लड़की

0: उषा और श्रेया संग मस्ती तो हो गई, अब टीना निकल पड़ी है बाकी कोस्टार से मिलने के लिए, लेकिन सभी शूटिंग में बिजी हैं। ऐसे में टीना ने सास बहू और बिटिया को अपने सेट की सैर कराई और बताया कि इस सेट में कौन सा कॉर्नर उनका फेवरेट है।
1: तो आज बहुत बड़ा सीन है जो कि अभी बचा है और सब लोग रेडी हो रहे हैं, तो सबको डिस्टर्ब नहीं करते हुए गॉसिप हम बाद में करेंगे, कभी और करेंगे या फिर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेट, ये मेरा प्यारा सा सेट सैर आपका, और अभी हम अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। चलिए ये रहा मेरा सैर आपका सेट, ये हॉल एरिया है, यहाँ पे पूजा हो गई है, हम डेली पूजा करते हैं इधर, और ये हमारे राधा कृष्ण जी का मंदिर है। चलिए अंदर आते हैं। राधे राधे हरे कृष्णा। चलिए अब मैं दिखाती हूँ टिन्नी का रूम। टिन्नी का रूम पास में ही है, लेकिन हम सीन्स पे दिखाते कि हम ऊपर जा रहे होते, लेकिन टिन्नी का रूम इधर है, लेकिन खाली है फिलहाल, अभी सेटअप नहीं हुआ है। तो ये है टिन्नी का रूम। कभी कभी इंद्रनील वासु का हॉस्पिटल भी बन कैबिन भी बन जाता है। तो ये है हमारा रील एरिया जहाँ पर हम बहुत रील्स बनाते हैं, आपने देखा होगा। ये बैकड्रॉप आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा सेटिंग हुआ है इधर, ये देख सकते हैं आप।

0: भाई पूरे सेट में ये कॉर्नर सिर्फ टीना का ही नहीं बल्कि सभी का फेवरेट है। ऐसे में टीना ने ना सिर्फ यहाँ पर अपनी सेल्फीज खींची बल्कि कई सारी रील्स भी बनाई, वो भी नाचते गाते। और इसी बीच उनकी नजर पड़ गई है अपनी ऑन स्क्रीन माँ नोयनिका पर। और देखिए कैसे डांस फिनिश कर वो पहुंच गई है उनसे मुलाकात करने, क्योंकि सीरियल में तो माँ बेटी के रिश्ते में थोड़ी सी खटास है लेकिन ऑफ कैमरा इनका सहेली आना मजबूत है।
1: तो मैंने रील बना लिया है, अभी मैंने देखा कि मेरी मॉम आ गई है सेट पे, तो चलिए हम मिलते हैं मॉम से। मेरी मॉम टिंडी की मॉम रेडी हो गई है और अभी मॉम अपनी सीन की तैयारी कर रही है चाय पीते हुए।
2: ये देखिए माय बेबी,
1: यस हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग। अपना प्यार एकदम बरकरार रखकर अपनी माँ का प्यार देख नहीं पा रही है। टीना तो सच अ लवली गर्ल, इट्स अ ब्लेसिंग्स टू वर्क विद अ गुड पीपल, और मजा आ रहा है साथ में काम करके। और शी इज वेरी बबली, वेरी फन लविंग, और जब भी हम मिलते हैं मैं तो उसको एज अ मदर ही ट्रीट करती हूँ। ओले मेरा बच्चा आ गया। हाँ अरे एक्चुअली कल मुझे थोड़ा ब्रेक मिल गया था क्योंकि जब नोयनिका वापस आती है कोलकाता तो ऑब्वियसली कोई उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, तो उस बीच में जब उधर वाले शॉट्स लगते हैं अपोजिट साइड के तो थोड़ा सा ब्रेक मुझे कल मिल गया 2-3 घंटे का। तो बीच में तिन्नी का तो एक ही शॉट था कि इसने लेट गई, वो तो दिख नहीं रही थी, तो हम दोनों बहुत फ्री थे कल। तो तिन्नी ने, मैंने तिन्नी को बोला, मैंने कहा तू स्टेप सिखा, बिकॉज सी यंग जनरेशन है ना तो इनको पता होता है, तो इसने फटाफट इसने स्टेप सिखाई, फटाफट हमने शूट भी कर लिया।

0: बट टीना तो सेट पर सभी के लिए कोरियोग्राफर है। ऐसे में इन्हें फिर से मौका मिल गया है अपनी मां नोयनका यानी कि मदिराक्षी संग थिरकने का और तो और नए डांस स्टेप्स सिखाने का।
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
2: पैर दिख नहीं रहे बड़ा
1: बट यार मदिराक्षी बहुत अच्छा डांस कर लेती है, रील्स बना लेते
2: हैं। अरे टाइम मिल जाए ना तो मैं रोज बनाऊँ।
0: भाई ऐसे ही नाचते गाते और सभी को डांस सिखाते हुए टीना का दिन गुजर जाता है और आज यह शेड्यूल इन्होंने सास बहू और बेटियों संग शेयर भी कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि टीना का ये चुलबुला अंदाज आप सभी को बहुत पसंद आया होगा।
1: आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और मुझे और मेरे शो को सहराब को प्यार देते रहिए, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए और सारे कैरेक्टर्स को भी प्यार दीजिए। और लास्ट में ये बोलूंगी कीप वॉचिंग सहराब ओनली ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार। थैंक यू गाइस।
0: मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: सुंदरता सिर्फ चेहरे पर ही नहीं मुस्कुराहट में भी होती है और सही लिपस्टिक ना उस मुस्कुराहट पर चार चांद लगा देती है। आजकल लिपस्टिक्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, तो चलिए अब लेकर चलते हैं आप सबको आपकी फेवरेट राध्या के पास। राध्या, क्या आप भी देने वाली हैं हमें कुछ इंटरेस्टिंग टिप? वेल, राध्या तो कह रही हैं कि जब कड़ी सर्दियां आती हैं तो अक्सर होंठ सूख जाते हैं, फट जाते हैं, ऐसे में क्या करती हैं, रात को सोने से पहले अपने होठों पर देसी घी लगाकर सोती हैं, जो होता है एक अमेजिंग मॉइस्चराइजर। वेल राध्या, कई लोग तो सुबह सुबह देसी घी गर्म पानी में मिलाकर भी पी लेते हैं ताकि फुल ऑन बॉडी भी हो जाए मॉइस्चराइज। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको मन अति सुंदर के सेट पर।
1: मित्तल हाउस में शुरू हुई भागम भाग, प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए मची धमाचौकड़ी, क्या हुआ देखा तो कटोरा, पलट गया कलावंती का खेल, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या बेहद परेशान है क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले नहीं हैं और अब घर की नीलामी होने जा रही है। ऐसे में घर में बैंक वाले आए हैं जो हर जगह पर कीमत का टैग लगा रहे हैं। इसी बीच वो शिव की मूर्ति में कीमत का टैग लगाते हैं और वो बात राध्या को पसंद नहीं आती। इतना ही नहीं, राध्या की तो मदद करने वहाँ पर गट्टा भी पहुँच जाता है और राध्या ये देखकर हैरान भी होती है और तो और भगवान के आगे हाथ जोड़ती है ताकि वो उसे रास्ता दिखाए और देखे कैसे उसे मिल गया संकेत। बस फिर क्या, वो वहाँ से निकली तो सही लेकिन फिर वापस हॉल में दौड़ती हुई आई, वो भी कलावंती के पीछे, क्योंकि कलावंती के हाथों लग गए हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स और जरा देखिए कैसे कलावंती सबसे भागने की कोशिश कर रही है। एक कलावंती उन प्रॉपर्टीज के पेपर्स को लेकर सभी घर वालों से बचने की कोशिश में लगी हुई है। इससे पहले कि सभी घर वाले वो पेपर्स छीनते, वहाँ पर आ जाता है हट्टा जो सभी परिवार वालों को वहाँ से दूर कर देता है। इतना ही नहीं, प्रथम उसे रोकने की कोशिश भी करता है और प्रथम का साथ देते हैं बाकी घर वाले भी ताकि हट्टा को अपने कब्जे में लाया जा सके। बस फिर क्या, मौके का फायदा उठाकर कलावंती वहां से फिर से दौड़ लगा देती है और दौड़ लगाकर सीधा पहुंच जाती है मंदिर के पास उन प्रॉपर्टी पेपर्स को जलाने के लिए।
2: राध्या का मेजर योगदान रहा है और अभी जो है वो आपसी मनमुटाव हम लोग भूलकर एज अ फैमिली टुगेदर आए हैं, पूरे सब लोग एक साथ हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो हाँ, राध्या का दिमाग और उर्मी की चालाकी दोनों।
3: इनको बाहर इसलिए निकालना है क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये लोग तो गूंज हैं और ये लोग बहुत पुराने मतलब मंझे हुए खिलाड़ी हैं और काफ़ी केसेस हैं इनके ऊपर। अब इनको हम इसलिए बाहर नहीं कर सकते क्योंकि बाहर कर देंगे तो भाग जाएंगे और हमारी आपस में प्लानिंग भी ये है कि पुलिस बुला ली हुई है हम लोगों ने, उस चक्कर में हम ये खेल खेल रहे हैं। पूरी फैमिली मिलकर एक हो गई है, हम साथ साथ हैं।
1: वह इससे पहले कलावंती उन प्रॉपर्टीज के पेपर्स को जलाती, वहाँ पर पहुँच जाता है गड्ढा और देखिए कैसे वो कलावंती से पेपर्स छीन लेता है और छीन कर चल पड़ता है राध्या की ओर वो पेपर्स उसे देने के लिए। लेकिन तभी मोंटू उसे धड़ दबोचता है और फिर जो ट्विस्ट सामने आता है उससे क्या कलावंती और क्या मोंटू सभी हैरान रह जाते हैं। भाई राध्या ने तो पहले ही हट्टा और कट्टा दोनों की मदद कर दी है अपने सोने के कंगन देकर। ऐसे में मोंटू और कलावंती दोनों ही हैरान रह जाते हैं और बबलू वो तो राध्या पर वार करने की कोशिश करता है लेकिन प्रथम हवा में बंदूक चला देता है। इतना ही नहीं, इसी बीच दौड़ते हुए उर्मी मामी भी आ जाती है क्योंकि उनके हाथ तो लग जाते हैं प्रॉपर्टी के असली पेपर्स।
2: खुशी तो बहुत हुई है, बहुत मेहनत से हमने हमारा घर बनाया था और आज राध्या की वजह से वो हमारा घर हमें वापस मिल गया है तो बहुत खुशी है कि अब हम नॉर्मल हमारे घर में वापस रह सकते हैं।
3: वो तो बकवास है ये, राध्या ने क्या किया है? अरे मेरे पोते की इतनी मेहनत की कमाई के सोने के कंगन उठाकर गुंडों को दे दिए, उसको हक ही क्या बनता है? तो राध्या है क्या? नो, एक्चुअली तो उर्मी है, उसने बेचारी ने जाली कागज वक्त पे लाकर हम सबकी मदद की। उर्मी की वजह से हुआ है, राध्या की वजह से कुछ नहीं हुआ है।
1: भाई आज तो उर्मी मामी ने बहुत ही समझदारी वाला काम किया है। खैर प्रथम के हाथों वो नकली पेपर्स लग गए हैं और ऐसे में प्रथम उन पेपर्स को जलाने लगता है। ये बात कलावंती को रास नहीं आती और वो रोकने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन खुद ही मुंह के बल गिर जाती है। और तभी उन्हें सुनाई देती है पुलिस के सायरन की आवाज जिसके चलते फिर से मच जाती है भागम भाग।
2: वो मोंटू ना सच में लात खाने लायक ही था। ऐसे लड़कियों को जो जाल में फंसाते हैं और उल्लू बनाते हैं, बस उन लोगों के पास राध्या जैसा कोई कैरेक्टर नहीं होता है जो उन्हें बचा ले। तो इसीलिए मैं थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू राध्या।
4: बस इनकी शादी के सपने से हमारा ये सब खेल शुरू हुआ था और आज इन्होंने ही सबसे बड़ी मदद की है हमारी। वो मेन पेपर्स लेकर आ गई हैं जिसकी वजह से पूरी बाजी पलट गई है। फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद हमने बहुत कुछ कर लिया, भूखे रह लिए, आंधी तूफान में घर के बाहर रह लिए, प्रथम ने गोली खा ली, रेलिंग से लटक गया, सब कर लिया हमने। फाइनली ये लोगों को पुलिस पकड़ के लेके चली गई है, हमारा घर बिकने से बच गया है, पूरी फैमिली ठीक हो गई है। पहली बार उर्मी ने मेरी तारीफ की है और एक्सेप्ट किया है कि आई डिड समथिंग राइट। तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है हमारे शो में इस टाइम।
1: खैर कलावंती मोंटू और बबलू पुलिस के हाथों लग गए हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले भी गई है। ऐसे में बचे हट्टा कट्टा वो भी राध्या का धन्यवाद कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब दादी को फिर से मौका मिलेगा राध्या को खरी खोटी कसने का क्योंकि अब वो सोने के कंगन को लेकर मचाएंगी बवाल जो कहानी में लाएगा नया ट्विस्ट। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: रिश्तों में भी हर रंग का अपना ही महत्व होता है और हर रंग की अपनी एक भावना होती है। तो क्या कुछ हो रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस कहानी में क्या यहाँ पर भी है हमारे लिए एंटरटेनमेंट के रंग, क्या बदले बदले से हैं यहाँ पर इनके रिश्ते? चलिए लेते हैं अपने सवालों के जवाब, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
1: अरमान अभीरा की अनोखी अदालत। अभीरा बनेगी जज। मायरा की खुशी।
5: तो है ये आंगन भी गुलिस्तान।
1: लापता होगा अरमान।
5: तेरे हम सभी रहे दिल में।
1: स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान ने अभिरा को दे दिया है सरप्राइज। घर के हॉल में बना दी है अदालत और देखिए कैसे उसकी आंख बंद करके वो ले आया है इस अनोखी अदालत में और अभिरा को बिठा दिया है जज की कुर्सी में। इतना ही नहीं अरमान तो अभिरा से विनती कर रहा है कि अभिरा जज बनने का एग्जाम दे लेकिन अभिरा मना कर रही है। ऐसे में ये तरीका है अभिरा को मनाने का।
6: अभिरा जस्ट इमेजिन तुम जैसी जज होगी तो एक आम आदमी कोर्ट कचहरी से डरना भूल जाएगा, उसका हमारी जुडिशियरी पे यकीन बढ़ेगा। एक क्रिमिनल गरीब को सताने से पहले 100 बार सोचेगा। अभिरा सोचो अदालत का सेम ऐसा सेटअप होगा, एक तरफ एक अमीर पावरफुल गुनहगार होगा और दूसरी तरफ सताया हुआ मासूम गरीब। अभिरा गुनहगार का वकील तुम पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा और तुम टस से मस नहीं होगे। तुम बिना डरे गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा सुनाओ और गरीब को जस्टिस दिलाओ। अभिरा सोचो जब वो गरीब शान से सर उठाकर इस अदालत से बाहर जाएगा तो उसके मन में कितना भरोसा, कितनी हिम्मत, कितनी तसल्ली होगी कि उसकी तरफ से लड़ने के लिए कोई आ चुकी है। अभिरा इस सोसाइटी के लिए, इस कंट्री के लिए, सताए हुए बेगुनाह के लिए, मेरे लिए, अक्षरा मैम के लिए प्लीज मान जाओ। अभिरा तुम जज के लिए एग्जाम नहीं दोगी तो कौन देगा? प्लीज से यस यस यस।
7: ये एक तरीके से
8: क्या नाटक कर रहे हैं,
7: कोशिश कर रहा है अरमान आज को अभिरा को वो वाइब फील कराने की कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठ के आती होगी जज को वो पावर इस कुर्सी में कितनी होती है जो बेगुनाहों को इंसाफ दिला सकती है। ऑल्सो इतने सारे केसेस हमारी अदालतों में पेंडिंग है तो अगर हमारी जुडिशरी जो पूरा सिस्टम है वो अगर पूरा प्रोएक्टिव होकर काम करे तो कितने बेगुनाहों को टाइम से इंसाफ मिल सकता है जो कि कभी कभी लोगों को लाइफ टाइम भी नहीं मिल पाता। तो वो एहसास कराने की कोशिश है, घर में ही उसने ये सेटअप करवाया है।
8: 2-3 सीन इससे पहले जा चुके हैं और अरमान ने एक तो सबसे पहले बिना बताए अभिरा को जुडिशरी सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एग्ज़ाम के लिए नॉमिनेट कर लिया। तो पहले तो वो उसके लिए शौक था, सेकेंड वो चाहती नहीं है ऐसा कुछ करना क्योंकि उसकी लाइफ अभी जैसे चल रही है, बहुत टाइम के बाद फैमिली में कोई कलेश नहीं है, बहुत टाइम के बाद बेटियां दोनों साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरमान अभिरा के बीच में सब कुछ ठीक है। MD बनने के बाद भी जो स्ट्रगल्स थे अब वो भी 2 साल बीत गए हैं तो शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल और बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। लेकिन अब एक और नई चीज़ को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वापस कोई ना कोई एस्पेक्ट सफ़र करेगा। जब आप किसी चीज़ के पीछे जाते हो तो बाकी एस्पेक्ट सफ़र करते हैं, तो उस वजह से उसको लग रहा है कि अभी आधी ज़िंदगी मेरी बच्चों के बिना निकल गई, बहुत बार मैं उसके साथ टाइम नहीं बिता पाई मायरा के साथ, और अब जाके जब सेटल हुई हूँ तब तुम कह रहे हो कि नए सपने के पीछे भागो। बट अब जब अरमान ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया और जज की कुर्सी पर बिठाया, जो बहुत बड़ी बात है, एंड उसने जो भी पॉइंट्स रखे वो बहुत ही करेक्ट थे, जस्ट थे। और अभिरा हमेशा से सच के लिए, इंसाफ के लिए लड़ी है, तो अगर वो जज बनेगी तो आई थिंक वो किसी का भी हक मरने नहीं देगी, वो उसको हक दिलवा के रहेगी। जो गुनहगार होगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी क्योंकि उसे डर भी नहीं लगता किसी से।
1: आखिरकार अरमान की बातें रंग लाई और अभिरा ने इस एग्जाम को देने के लिए हाँ में भी भर दी। ऐसे में अब खुशियाँ आने वाली है, वैसे खुशियाँ तो आ ही गई हैं क्योंकि इन्होंने द मानीस से केस जीत जो लिया है। खैर ये तो अरमान और अभिरा की वर्किंग लाइफ है, लेकिन एज पेरेंट्स इन दिनों अरमान बेहद परेशान है क्योंकि मायरा बहुत खुश हो रही है। असल में वो जा रही है गुजरात कॉलेज फेस्ट के लिए, इसीलिए अपनी पैकिंग में लगी हुई है और देखिए कैसे अरमान भी उसकी पैकिंग में मदद कर रहा है और साथ ही साथ अपनी चिंता भी जता रहा है और ये बात अभिरा को दिखाई भी दे रही है।
9: मामा मुझे तो फीलिंग आ रही है कि ये जयपुर ट्रिप भी बिल्कुल मेरी तरह आ रहा है। फैबुलस। इस बॉक्स में क्या है?
10: आपकी सेफ्टी का सामान। पेपर स्प्रे, एक और पेपर स्प्रे, स्विस नाइफ, एक और।
9: ये सब कुछ एक और क्यों है?
10: अरे एक खो गया तो वेट, चार्जर, एक और चार्जर, पावर बैंक, एक और पावर बैंक, और ये दो लेपटॉप में कैश अकाउंट।
11: पापा मैं किसी की शादी में थोड़ी जा रही हूँ कि लिफाफों में शगुन लेके जाऊँ। मैं ये अनुकूल हरकतें नहीं करने वाली। और वैसे भी आजकल तो सारी पेमेंट्स ऑनलाइन हो गई।
12: अरे फोन बंद हो गया तो?
11: तो आपने ये दो चार्जर और दो पावर बैंक दिए तो?
12: मारू बेस्ट है, थोड़ा कैश रखना चाहिए।
11: कंफ्यूज तो नहीं? अभी अभी मेरा 18th बर्थडे हुआ, 8th नहीं।
12: अभी बताओ मुझे, मम्मा ने आपको लिस्ट दी?
11: हाँ दी। और गेस व्हाट, मेरी हाइट से लंबी लिस्ट है, इससे कहीं एक आधा पेज रह तो नहीं गया ना?
12: हाँ एक्चुअली
13: वो करते हैं जॉय को किल, फन से भरवाते हैं बिल। पापा कान चिल,
14: क्या हुआ? वर्ल्ड में और भी पापाज हैं, ये सॉन्ग तुम्हारे घर में नहीं है?
11: पंकज शैम्पू रख, भूल गई तो तेरी लाइफ में इमरजेंसी हो जाएगी। थैंक्स।
12: बेटा आपने अपना लंच कर लिया?
11: आप भूल गए, मैं जयपुर भी जा रही हूँ।
12: आई नो, पर मैंने सोचा शायद आप अपने ज्यादा बदल देंगे। आप जाओ ना जयपुर घूम कर आओ।
13: दिन रात ये फोन घुमाएंगे, वीडियो कॉल मिलाएंगे, झांसे में ना आना, पापा जासूसी करवाएंगे। ये गाना तुम्हारे बारे
15: में? आई नो, मेरे बारे में नहीं था।
12: मुक्ति आप जाओ ना।
11: आप
12: जयपुर जाओ, आप बैडमिंटन के लिए जाओ। और आप अभी मेरे पास क्यों रुके हो? आप भी कहीं चले जाओ, मैं फालतू की टेंशन लेता रहता हूँ।
16: अब पापा फुल पजेसिव है तो मम्मा थोड़ी कूल मॉम टाइप हैं, वो भी कूल हमें दिखाती हैं, बट उन्हें भी टेंशन तो होती है। बट बैलेंस करने के लिए वो पापा को शांत करवा देती हैं, मम्मा ऐसे वो फुल ऐसे सॉन्ग्स वे में गा के थोड़ा लाइन वाइन मार के पापा को ऐसा शांत करवा रही हैं, और जो सीन का मूड है वो थोड़ा लाइट करवा रही हैं, कूल मॉम की तरह।
1: भाई अभीरा तो कूल है ही, बड़ी ही समझदारी से सामने वाले के मन को हल्का कर देती है। खैर अरमान पापा है, उन्हें चिंता होगी ही, लेकिन अब अभीरा की भी चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि मुक्ति अभीरा से कुछ छिपा रही है। और ये बात अभीरा ने तब भांप ली जब मुक्ति बार बार बैडमिंटन की कोचिंग को लेकर आनाकानी करती है। ऐसे में अभीरा ने मुक्ति को जोर देकर पूछ ही लिया कि आखिर वो बैडमिंटन कोचिंग के लिए क्यों नहीं जाना चाहती।
8: तेरी दोस्त उससे पूछ रही है, दोस्त को तो बता सकती है ना क्या हुआ? बैडमिंटन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है मां, इतने कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए भी टेंशन हो रही होती है। एक भी गलती हो वो पूरी तरीके से चिल्लाते हैं, मुझे कमजोर स्ट्रिक्ट पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं।
17: तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया?
8: बता देती तो पापा उनकी बैंड बजा देते, और फिर आप लोगों को लगता कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं चुप रह गई। पापा ने इतनी रिसर्च वगैरह करके बहुत मुश्किल से ये कोच को मेरे लिए ढूंढा था, मैं उन्हें डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती थी माँ, इसलिए मैं ट्राई करती रही, पर अब मेरा बैडमिंटन क्लास जाने का मन भी नहीं करता है। सॉरी।
14: एक्चुअली मुक्ति थोड़ा सा कुछ बात छुपाती है, वो बोलती है कि मुझे बैडमिंटन के लिए जाना है, बट अभीरा इज़ वेरी शार्प, वो देख लेती है कि उसमें बहुत डस्ट लगी हुई है। तो बाद में उसके पास जाती है और पूछती है कि ये झूठ बोलना था तो सही से बोलना था तुझे, और जो भी है मतलब बता दे एज अ फ्रेंड। तो बोलती है कि उसका जो बैडमिंटन कोच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो स्टूपिड या बेवकूफ़ हो तुम, या ऐसे सब वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो अभीरा बोलती है तो फिर क्या करना है, मतलब क्या करें फिर इसका? वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं किसी और जगह एडमिशन ले लेती हूँ। बट अभीरा को लगता है कि ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब स्पेशली अगर सामने वाला कोई गलत कुछ भी गलत कर रहा हो और हम उससे बैकआउट कर लें तो फिर वो तो वही करता रहेगा जो करता है. तो आई थिंक अभीरा इस वक्त ये सोच रही होगी कि हम उसको सही करेंगे इंस्टेड ऑफ कि मुक्ति निकल जाए वहाँ से, बिकॉज वो सही चीज़ नहीं होगी.
1: फिलहाल तो अभीरा ने मुक्ति को दिलासा दिया है और तो और अभीरा को अब नया केस भी मिल गया है क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ जो लड़ती है. लेकिन इसी बीच कहानी में आने वाला है ट्विस्ट क्योंकि अरमान होने वाला है लापता और यही बात अभीरा को झटका देगी.
15: भावक कपल या फ्रॉड कपल, अभीरा शर्मा और अरमान पोदार की
11: पापा किसी का फोन नहीं उठा रहे और किसी को नहीं पता वो कहाँ है.
14: एक्चुअली एक कुछ आर्टिकल आया है जिसमें फ्रॉड कपल या पावर कपल क्या है, अरमान अभीरा की सच्चाई क्या है. तो अभीरा थोड़ी सी टेंस्ड हो जाती है और वो सोचती है कि अरमान को फ़ोन करके बताए कि ये सारे आर्टिकल्स ये जो भी हैं गलत हैं और इसे अभी रोकना पड़ेगा. तो मुक्ति आती है बताती है पापा फ़ोन नहीं उठा रहे और वो कहीं मिल नहीं रहे. तो अब ये इंट्रीग है, ये बिल्डअप है कि मतलब क्या हुआ अरमान को और कहाँ चला गया या क्या ऐसा हो गया.
1: अब अभीरा अगर ज्यादा दिमाग लगाए तो उसे पता चल ही जाएगा कि अरमान कहीं और नहीं बल्कि अपनी बेटी मायरा के पीछे पीछे गया है, वो भी गुजरात कॉलेज फेस्ट में. अब देखना होगा कि मम्मी पापा की ये चिंता सीरियल में क्या ट्विस्ट लाएगी. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
0: याद रखिए, सबसे खूबसूरत लिपस्टिक वही है जिसे लगाकर आप सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करें, क्योंकि लिपस्टिक इज एक्चुअली अ कॉन्फिडेंस बूस्टर. और इसी के साथ साथ अब लेकर चल रहे हैं हम आपको इस अगली खबर की ओर जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. मैं जानती हूँ आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, सो लेट्स चेक इट आउट.
18: लॉकअप की पार्टी में झूमे सितारे, कॉम्पिटिटर्स बने दोस्त, लगा डांस मस्ती और एंटरटेनमेंट का तड़का

कप का सीजन 2 खत्म हो चुका है और जैसे कि आप सबको पता ही है, श्रेया कालरा बनी है इस सीजन की विजेता। ऐसे में लोकअप का ये सीजन काफी सक्सेसफुल रहा है और इसी खुशी में आज फारा खान ने अपने घर पर रखी है पार्टी, जिसमें शामिल हुए हैं कई सारे सितारे, भाई लॉकअप के कंटेस्टेंट्स और साथ बाकी के सितारे भी। इस पार्टी में तो शामिल है एकता कपूर, इसके अलावा श्रेया कालरा जो अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ संग यहाँ पहुँची है, साथ है धीरज, विनी, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, अर्जुन कपूर, मौनी रॉय और बाकी के सभी सितारे। और देखिए कैसे फ्लोर पर सभी लोग पहुंच गए हैं अपने डांस का टशन दिखाने के लिए। भाई पार्टी है, ऐसे में डांस मस्ती तो बनती है। क्या मौनी रॉय, क्या एकता कपूर और क्या बाकी के लॉकअप के कंटेस्टेंट्स, सभी लोगों पर आज चढ़ गया है डांस का फीवर। आकांक्षा चमोला हो या फिर हो श्रेया या फिर शिवांगी, भाई आज तो शिवांगी और श्रेया सब कुछ भुलाकर एक दूसरे संग डांस भी कर रही हैं और इसी डांस और मस्ती ने लगा दिए हैं इस पार्टी में चार चांद। और खुद होस्ट फारा खान देखिए कैसे डांस कर रही हैं।

सबसे पहले देखते हैं पार्टी के इनसाइड ये नज़ारे, जहां सब पर डांस फीवर चढ़ा हुआ है और सभी पार्टी को दिल खोलकर कर रहे हैं एंजॉय।

एक एक कर देखते हैं कि इस पार्टी में कौन कौन हुआ शामिल। तो भाई फराह खान ने होस्ट की है अपने घर पर ये पार्टी, जिसमें पहुंची आकांक्षा चौधरी, योगेश, श्रेया कालरा, ऋषभ संत, और देखिए कैसे वो ट्रॉफी भी फ्लॉन्ट कर रही है।

तो भाई सभी ने किया पार्टी को एंजॉय और ये सीजन तो रहा काफी सक्सेसफुल। अब देखना होगा कि अगला सीजन कब आता है। फिलहाल तो ये सभी कर रहे हैं काफी एंजॉय। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। It's the new sound. Grab somebody sexy, spin her around. Say you was lost, but baby girl, you're found. Show all the ladies some tender love and care. Just that egg bold lipstick. सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, वैसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखा

0: खबरों की माने तो दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में जल्द ही नजर आएंगे सीनियर एक्टर मोहन कांत, जो कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएंगे। संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं माइथोलॉजिकल जंगल एडवेंचर फिल्म, जिसमें धनुष होंगे। ऐसे में उन्होंने धनुष के अपोजिट अप्रोच किया है करीना कपूर खान को, ऐसी खबरें आ रही हैं।
1: Do you feel celeb trolling has become an international sport? No, not at all. It is an international sport.
0: सही मौका है काजोल के बर्थडे का। ऐसे में अजय देवगन ने अपनी वाइफ काजोल के लिए ये प्यारा सा बर्थडे पोस्ट डाला है।

किसी के साथ देख लीजिए ये वीडियो जहां पर काजोल शेयर करती हैं अपना जन्मदिन वत्सल सेठ के साथ। और ऐसे में काजोल और वत्सल कर रहे हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशन। बीती शाम हुई स्क्रीनिंग फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी की, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे।

0: एक्टर प्रदीप रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऐसे में बीती शाम हुआ इनका फ्यूनरल और इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई सारे सितारे, जैसे कि आमिर खान, आशुतोष गवारिकर, अखिलेंद्र मिश्रा, राज अरुण, अशोक पंडित, दयाशंकर पांडे, करण वी ग्रोवर, यशपाल शर्मा और कई और सितारे जिन्होंने लेट प्रदीप रावत को दी श्रद्धांजलि।
1: आज हमने जाना कि लिपस्टिक सिर्फ मेकअप का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास का भी रंग है। तो बस आपको भी कुछ बातों का रखना है ख्याल कि अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें, हफ्ते में एक दो दिन उन्हें एक्सफोलिएट करें, लिपस्टिक के ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके रखें ताकि लिपस्टिक ड्राई ना हो जाए, वो सुरक्षित रहे, क्योंकि जितने खूबसूरत रहेंगे आपके लिप्स उतनी ही निखर कर आएगी ये लिपस्टिक। बस इसी बात पर अब लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब

0: पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगह जल जमाव, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में चेतावनी के स्तर पर पहुंचा गंगा का जलस्तर, सुरक्षा कारणों से खाली कराए जा रहे हैं तटीय इलाके। चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी, उफान पर है अलकनंदा नदी, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त। शिव भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह, चंदौली में महिलाएं बच्चों के साथ कावड़ लेकर निकली, बागपत में पूर्व सैनिक पेंशन के पैसों से चला रहे हैं कावड़ शिविर। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद का खाना। बारह अगस्त को लगेगा साल 2024 का सबसे दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण, आइसलैंड स्पेन और पुर्तगाल में दिखेगा, भारत में नहीं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: कावड़ यात्रा में नजर आ रही है अलग अलग रूप और स्वरूप की अनोखी कावड़, स्पोर्ट्स कार से लेकर मिसाइल की शक्ल की कावड़ खींच रही है सबका ध्यान अपनी ओर। आकर्षण का केंद्र बनी भारत की सैन्य ताकत के दर्शाती अग्नि 5 की थीम वाली कावड़, इस कावड़ को देखने के लिए लगी भीड़, भारत माता की जय के लगे नारे। करोड़ों रुपए की लग्जरी स्पोर्ट्स कार जैसे दिखने वाली कावड़ भी श्रद्धालु और राहगीरों के बीच बनी हुई है चर्चा का विषय। प्रसिद्ध मैकलॉरेन स्पोर्ट्स कार की तर्ज पर बनाई गई कावड़ के साथ फोटो खिंचवाते और वीडियो बनाते दिखाए दिए लोग, दिल्ली के 6 दोस्तों ने मिलकर तैयार की है अनोखी कावड़। शिव के अलग अलग रूपों में ढली कावड़ भी खींच रही है सबका ध्यान अपनी ओर, भोलेनाथ के विशाल स्वरूप के साथ दूल्हा रूप में सजे भगवान शंकर की कावड़ भी यात्रा में शामिल। कावड़ यात्रा में नजर आई भव्य हाइड्रोलिक कावड़, इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से भगवान शिव शंकर प्रकट होकर देते हैं दर्शन। तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है ये सुंदर कावड़, इस कावड़ के साथ शिव भक्तों की टोली तय कर रही है हरिद्वार से गुरुग्राम तक का अपना 260 किलोमीटर का सफर। चंदौली में कावड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, पवित्र कावड़ यात्रा पर निकली महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी हैं शामिल। देवघर के लिए रवाना हो रही है कावड़ियों की ये टोली, गूंजा ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का उद्घोष। कावड़ियों की सेवा के लिए बागपत के रिटायर फौजी ने लगाया शिविर, पेंशन से चलता है कावड़ियों का शिविर, पत्नी संग खुद खाना बनाते रिटायर फौजी। कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रहे हैं रोज नए रंग। मुजफ्फरनगर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की भागीदारी बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार से 101 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर रोहतक जा रही है ये महिला कांवड़। कई वाहनों के काफिले के साथ शिव की भक्ति नारी की शक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है ये जत्था। शुरुआत से इस यात्रा में करीब 25 महिलाएं सीधे तौर पर हुई थी शामिल। यात्रा के दौरान कई और महिला कांवड़ बनी इस यात्रा की हिस्सेदार। बागपत की सड़कों से गुजर रही आस्था के साथ साथ फिटनेस का संदेश देती है खास कांवड़। यात्रा के दौरान बर्पीस लगाते नजर आई ये कांवड़। हरिद्वार से हरियाणा के नारी तक 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कांवड़ यात्रा पर निकले हैं मंजीत। एक बार में लगाते हैं 300 से ज्यादा बर्फी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शानदार सजावट। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया पूरा यात्रा मार्ग। 10 से 12 हजार रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से सजा है ये पवित्र मार्ग। रात के समय जगमगाते सुंदर और भव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं लोग। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा में उतरी पुलिस। पूरे सेवा भाव से कांवड़ियों को बांट रही है फल भोजन पानी और एनर्जी ड्रिंक्स। सुरक्षा के साथ साथ उजागर हो रहा है पुलिस का मानवीय चेहरा भी। रास्ते में घायल हुए श्रद्धालुओं के पैरों पर पट्टी बांधकर दे रही है प्राथमिक उपचार। बारिश में भी मुस्तैदी से कांवड़ मार्ग पर तैनात है पुलिस। कांवड़ मार्गों पर इंची टेप लेकर डीजे वाहनों की हो रही है जांच। 12 फीट से ऊंचे ओवर हाइटेड डीजे ले जाने की है मनाही। कांवड़ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। हरिद्वार से अब तक करीब 2 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय के लिए हो चुके हैं रवाना। संगम नगरी में देखा शिव भक्तों का अलग रंग। गले में भोलेनाथ की प्रतिमा लटकाए नजर आए कांवड़ियों की टोली। मध्य प्रदेश से आया है कांवड़ियों का ये समूह। कई शिवालय होते हुए बैजनाथ धाम और काशी विश्वनाथ जाएंगे ये कांवड़िए। पाली में गणेशोत्सव की तैयारियों में जुटे मूर्तिकार पर्यावरण की रक्षा के लिए गोबर से बना रहे हैं इको फ्रेंडली बप्पा। देश के साथ साथ विदेशों में भी गोबर से बनाई गई इको फ्रेंडली गणपति की डिमांड। विसर्जन के समय आसानी से पानी में घुल जाती है प्रतिमा। बिहार के मुंगेर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिखी 54 किलो चांदी से सजी 54 फीट लंबी अनोखी कांवड़। लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी ये कांवड़। कांवड़ में स्थापित है बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग बड़ी दुर्गा माँ और माँ काली की मूर्ति। चांदी से बनाई गई है बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की प्रतिकृति। श्रावणी मेले के मौके पर पटना सिटी से ये दिव्य कांवड़ लेकर बाबा धाम देवघर की ओर बढ़ रहा है 600 कांवड़ियों का जत्था। भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूरी आस्था भक्ति और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं कांवड़िए। भक्ति में हुआ कांवड़ यात्रा पथ। इस कांवड़ संघ के मुताबिक साल 2008 से चल रही है ये परंपरा। श्रद्धालुओं का कहना है कि नियमों का पालन करते हुए वो 54 घंटे में पहुंचते हैं बाबा धाम। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। सावन में इस आरती के दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व। सावन मास में भगवान का राजाधिराज स्वरूप में किया जाता है विशेष श्रृंगार। हजारों भक्त इस पावन आरती में होते हैं शामिल। सावन के महीने में सुंदर लाइटों से सजाया गया महाकाल का धाम। सावन में लाखों भक्त पहुंचते हैं उज्जैन। पल बदलते मौसम के बीच जारी है अमरनाथ यात्रा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के बीच रामबन जिले के चंदरकोट से सुरक्षित रूप से गुजरा 28वां जत्था। खराब मौसम के चलते प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा यात्रा मार्ग पर बरती जा रही है विशेष सतर्कता। भक्तों की सुविधा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। चारधाम में बारिश पर भारी आस्था। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। उफनती अलकनंदा के बीच भी लगातार दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। बारिश से तापमान में भी आई भारी गिरावट। ठंड की परवाह किए बिना बरसाती और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु। जगह जगह भूस्खलन होने पर युद्धस्तर पर जारी सड़क मार्ग खोलने का काम। सावन के महीने में लगातार बढ़ रही है भक्तों की संख्या। बारिश के बाद पहाड़ों पर छाई धुंध, बेहद मनोरंजन नजर आ रहा है विष्णु के धाम बद्रीनाथ का नजारा। सावन के महीने में दिल्ली एनसीआर में जारी है बरसात। आज रिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की शुरुआत। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। घने बादलों से ढका हुआ है आसमान। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिनभर दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वहीं राहत भी मिली है। वहीं कई जगह पानी भरने से ट्रैफिक की धीमी भी हुई है रफ्तार। बारिश से दिल्ली की हवा भी हुई साफ। 84 हुआ AQI, संतोषजनक श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपील। भदोही जिले में लगातार हो रही भारी बारिश। प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी के निर्देश दिए। प्रयागराज में लगातार बारिश के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल आज बंद। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। असम में बाढ़ बारिश के बीच मानवीय सेवा की एक शानदार मिसाल। कई चैरिटेबल संस्थानों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर शुरू किया राहत और पुनर्वास अभियान। असम के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे हैं पक्के घर। परिवारों को बांटे जा रहे हैं राशन, खाने पकाने के लिए गैस स्टोव, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत का सामान।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगह जल जमाव, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में चेतावनी के स्तर पर पहुंचा गंगा का जलस्तर, सुरक्षा कारणों से खाली कराए जा रहे हैं तटीय इलाके। चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी, उफान पर है अलकनंदा नदी, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त। शिव भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह, चंदौली में महिलाएं बच्चों के साथ कावड़ लेकर निकली, बागपत में पूर्व सैनिक पेंशन के पैसों से चला रहे हैं कावड़ शिविर। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बनाते हैं बच्चे अपनी पसंद के खाने। 12 अगस्त को लगेगा साल 2026 का सबसे दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण, आइसलैंड स्पेन और पुर्तगाल में दिखेगा, भारत में नहीं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। शिवलिंग को भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है। धर्म ग्रंथ के जानकार तो यहां तक कहते हैं कि शिवलिंग की आराधना से शिव और शक्ति दोनों के पूजन का फल मिलता है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिवलिंग की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, साथ ही शिवलिंग की पूजा में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और तो और घर में आप शिवलिंग का पूजन कैसे कर सकते हैं, ये भी आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शिवमय सफर।

0: शिव हैं आदि, मध्य और अनंत। अद्भुत हैं वो देव, जटाधारी हैं अरिहंत। शिव ही हैं भूत, वर्तमान और कल। भोलेनाथ देते हैं आपके हर इच्छा का फल। असंभव को संभव बनाने वाले त्रिकालदर्शी देव। मृत्यु पर भी विजय दिलाने वाले हैं महादेव। एक शिव ही हैं जिनके पास जाकर हम अपने सुख और दुख बांट सकते हैं। एक शिव ही ऐसे हैं जिनसे हम अपनी परेशानियों का हल मांग सकते हैं। महादेव ही है जो अपने भक्तों की हर समस्या को पल भर में मिटा देते हैं। सावन में भोलेनाथ की भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे सावन में शिवलिंग से जुड़े कामना पूर्ति के कुछ दिव्य प्रयोग।
1: जो श्रावण का महीना है उसमें भगवान शिव की पूजा करने से, क्योंकि शिव का मतलब कल्याण होता है, जो कल्याणकारी है उसी का नाम शिव है, तो जो संसार का मालिक है देवाधिदेव महादेव, उसकी आराधना पूजन करने से जगत कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण भी होता है, और लोक हित की जो कामना से भगवान शिव की स्थापना करते हैं वह अपने पितरों के लिए भी पुण्य का कार्य करते हैं। इसलिए श्रावण में शिवलिंग की स्थापना बहुत ही लाभदायक होती है।
0: भोलेनाथ को भोले यूं ही नहीं कहा जाता, वो अपने भक्तों को उनकी मनोकामना के अनुरूप हर वरदान दे देते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं महादेव ने कभी भी देवों और दानवों में भेद नहीं किया, वो तो भक्त के भाव और कामना पर ही रीझ जाते हैं और उन्हें वरदान रूपी आशीर्वाद देते हैं।

0: आस्था कहती है कि भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं। आज हम आपको शिवलिंग की महिमा के बारे में बताते हैं, साथ ही जानेंगे शिवलिंग की स्थापना के नियम। शिवलिंग को शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित हैं। शिवलिंग उपासना से दोनों की पूजा पूर्ण हो जाती है।
1: शास्त्रों में बहुत महिमा बताई गई है शिवलिंग की। ब्रह्मा विष्णु भी जब इसका पार नहीं पा सके, शिवलिंग के बारे में जब वो पता करने के लिए चले तो इसका आदि अंत नहीं पा सके। यह जगत कल्याण के लिए बहुत लाभदायक है और इनकी स्थापना पूजन करने से मानव जीवन में हमेशा सुख की प्राप्ति होती रहती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि महादेव का पूजन साकार और निराकार दोनों ही स्वरूपों में किया जाता है। साकार स्वरूप में तो महादेव भक्ति और मुक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि निराकार स्वरूप में वो ब्रह्मांड की चेतना और ऊर्जा का बोध करवाते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग को अनंत माना गया है। माना जाता है कि भगवान शंकर को पूजने के लिए वैसे तो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग प्रचलित हैं, लेकिन इनमें भी स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग की प्रतिष्ठा और मान्यता सबसे ज्यादा है।
1: शिवलिंग अगर आपको अपने घर में रखना है तो जो नर्मदेश्वर होते हैं, नर्मदा नदी से जो निकलते हैं, इनको कहा जाता है यह स्वयं में प्रतिष्ठित शिवलिंग है। और प्रयास करें कि अंगुष्ठ के समान तो ऐसा अगर शिवलिंग मिले तो उस शिवलिंग की स्थापना करके, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा कोई आवश्यकता नहीं होती है। नर्मदेश्वर की पूजा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है।
0: भगवान शंकर के सभी ज्योतिर्लिंगों में स्वयंभू शिवलिंग ही विराजमान है, इसीलिए स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है। स्वयंभू शिवलिंग को ही अगर महादेव का असली स्वरूप कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। माना जाता है कि सावन में शिवलिंग की स्थापना करने से आपको ज्ञात अज्ञात पाप से मुक्ति मिल सकती है। शिवलिंग के विषय में हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी कुछ खास बातें, तो गौर से देखिए और नोट भी कर लीजिए। शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिवलिंग पूजा। शिवलिंग घर में अलग और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग अधिक से अधिक 6 इंच का होना चाहिए। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। विशेष मनोकामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर पूजन किया जाता है। शिवलिंग की महिमा क्या है, क्यों उसको साक्षात शिव कहा जाता है और शिवलिंग की स्थापना के नियम क्या है, ये हमने आपको बताया। लेकिन महादेव की कृपा हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। लेकिन शिवलिंग के विधिवत पूजन की सरल विधि क्या है, ये हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: अद्भुत है आदि अनंत शिव की महिमा। देखिए, कहते हैं जिसने शिव को साध लिया उसकी तो हर इच्छा स्वयं महादेव ही पूरी कर देते हैं, और शिवलिंग को तो भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। लेकिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि शीघ्र प्रसन्न हो जाएं भोलेनाथ, और क्या है शिवलिंग की पूजा के नियम, तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में।

भगवान शिव को जिसने प्रसन्न कर लिया उसके लिए फिर संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। माना जाता है कि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है शिवलिंग की उपासना।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब पुरुष रूपी शिव और शक्ति स्वरूपा प्रकृति का मिलन होता है, तब सृष्टि का सृजन होता है। माना जाता है कि शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और निराकार स्वरूप को दर्शाता है। माना जाता है कि सावन में शिवलिंग की स्थापना के जुड़े नियमों को अपनाकर और उनके सामने बैठकर पूजन करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिवलिंग की पूजा उपासना के भी कुछ खास नियम होते हैं जिनको अपनाया जाना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं शिवलिंग की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए।
1: शिवलिंग पर सीधे कोई वस्तु न गिरावे, कोई पुष्प रख करके या बिलोपत्र रख करके तब भगवान शिव के ऊपर कोई वस्तु चढ़ावे और भगवान शिव को हल्दी न चढ़ावे। हल्दी अगर हो तो नीचे अर्घे में जहाँ पार्वती है वहाँ चढ़ावे। केतकी का पुष्प, जो केवड़े का जो फूल होता है, वह भी भगवान महादेव को नहीं, क्योंकि केतकी को भगवान ने श्राप दिया है, यह महादेव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। अगर कहीं देखे भी उसे हटा देना चाहिए।
0: शिवजी की पूजा में जल और बेलपत्र का विशेष महत्व है। इन दोनों वस्तुओं से शिवजी की विधिवत पूजा होती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी अभिषेक किया जाता है। शिवजी को सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित न करें। शिवलिंग की महिमा के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित की जाती हैं। लेकिन इन चीजों को अर्पित करने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। चलिए आपको वो नियम भी समझाते हैं। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ को धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थों को दोनों हाथों से शिवलिंग अर्पित करें। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, लेकिन अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए।
1: शिवलिंग की स्थापना की जानकारी अगर कहा जाए तो भगवान श्री राम ने इसकी शुरुआत की थी। तो उन्होंने वहां सर्वप्रथम लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहन दूजा, शिवलिंग की स्थापना की, जो रामेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। राम को शिव प्रिय हैं और शिव को राम प्रिय हैं। तो शिव की पूजा, शिव की स्थापना करने से और बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके चढ़ाने से बहुत कल्याण होता है।

0: माना जाता है कि इन सभी नियमों को अपनाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर शिवलिंग के विधिवत नियमों को अपनाकर पूजा अर्चना की जाए तो महादेव की कृपा सहजता से प्राप्त हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग का कैसे करें श्रृंगार।
1: सर्वोत्तम है अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, लेकिन कामना परक अगर बहुत सी कामनाएं हैं, ग्रह पीड़ा है तो कुसे के जल से अभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करने से संतान को लाभ होता है, दही से अभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है, घी से अभिषेक करते हैं तो उससे भी जीवन में समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है।
0: शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें। अक्षत टूटे हुए नहीं होना चाहिए। शक्कर मिला दूध भी अर्पित कर सकते हैं। महादेव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। गाय का शुद्ध घी या जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करें। धतूरे का भोग भी लगा सकते हैं। शहद या गन्ने का रस अर्पित करें, इससे जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं। वैवाहिक सुख के लिए केसर, पीला चंदन या इत्र अर्पित करें। साथ में मां मंगला गौरी की उपासना करें। शिवलिंग पर काले तिल या गंगा जल की धारा चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष की माला के साथ करें।
1: मधु से अभिषेक करते हैं सहस से, उससे सारे लोग आपके अंतर्गत आकर के आपके वशीभूत होकर काम करते हैं। और शर्करा से अभिषेक करने से, शर्करा के जल से अभिषेक में थोड़ा उसमें गुलाब जल या गुलाब का इत्र मिला करके अगर अभिषेक करते हैं तो समस्त प्रकार की जो हमारी भौतिक कामनाएं हैं उसको देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं।
0: जानकारों की अगर माने तो शिवलिंग की सच्चे मन से की गई उपासना कभी निष्फल नहीं जाती है। इसलिए सच्चे मन और विधि विधान से भगवान शिव के इस निराकार रूप यानी शिवलिंग की उपासना में लीन हो जाइए। फिर देखिए कैसे आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको बताएंगे महादेव के पूजन में जपे जाने वाले कुछ खास मंत्रों के बारे में। ये वो मंत्र है जिनका जाप आपको महादेव की कृपा दिला सकता है। देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। जानकार बताते हैं कि महादेव का व्यक्तित्व ज्ञान का भंडार है। देवादिदेव महादेव भस्म धारण करते हैं जो संसार की नश्वरता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि शिव जगत को क्षण भंगुर होने का ज्ञान देते हैं। महादेव ही ऐसे देव हैं जो थोड़ा जल और बेलपत्र के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो काफी भोले हैं। मान्यता है कि महादेव के मंत्रों की महिमा अपरंपार है।

0: सावन में भक्त महादेव की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, तभी तो शिवालयों में बम बम भोले का नाद गूंज रहा है। नमः शिवाय के जाप से आस्था महादेव की आराधना कर रही है। जलाभिषेक बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से बाबा का श्रृंगार हो रहा है। माना जाता है कि सृष्टि शिव से ही शुरू होती है और शिव में ही विलीन हो जाती है, इसलिए महादेव को अनादि अनंत कहते हैं।
1: भगवान शिव को हर रूप में माना गया, तो भगवान शिव की जो आराधना इस श्रावण के महीने में होती है और उसमें भगवान शिव की पूजा, शिव की जो स्थापना है, यह मनुष्य के जीवन से जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर है इसको दूर करती है और मानव जीवन निष्काम हो जाता है, शिव कृपा प्राप्त होती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की उपासना सबसे फलकारी मानी गई है, लेकिन शिवलिंग की महिमा और उस पर भगवान शिव के प्रिय वस्तुएं अर्पित करने के नियम के अलावा विशेष मंत्र भी होता है। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते समय इस विशेष मंत्र का जाप करना शुभ फलदायक है। चलिए आपको बताते हैं शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले चमत्कारी मंत्रों के बारे में। शिवलिंग पर कोई भी द्रव्य अर्पित करते समय खास मंत्र कहें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये वो मंत्र है जिससे शिवजी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा भी शिव के पंचाक्षरी मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है।

0: ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने में शिवलिंग का विशेष महत्व है और शिवलिंग की पूजा करने से साक्षात शिव की पूजा करने का फल मिलता है। तो कीजिए शिव का ध्यान, वो करेंगे आपका सदा कल्याण। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा

0: परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब बात हरियाणा के करनाल में पनप रही करनाल की बॉक्सिंग नर्सरी की कर लेते हैं, जहां की बेटियां जी जान से बॉक्सर बनने में जुटी हैं ताकि देश और परिवार का नाम रोशन कर सके। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा से मिले हैं। जी हां, इसलिए करनाल की रिंग में अब भविष्य की चैंपियन बेटियां तैयार हो रही हैं।

0: बॉक्सिंग की नई खेप तैयार हो रही है। इस बार ग्लासगो में हरियाणा की छोरियों ने इस खेल में जो कमाल कर दिखाया है उसने यहाँ की लड़कियों की उम्मीदों को नया आसमान दे दिया है। माता पिता भी उनकी उम्मीदों के साथ हो लिए हैं और जी जान से उनके सपनों को पूरा करने में जुट गए हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है जहाँ सुबह शाम कुछ ऐसा ही मंजर रहता है। इनमें ज्यादातर लड़कियाँ हैं। हरियाणा की छोरियाँ अब सिर्फ कुश्ती में ही नहीं बॉक्सिंग में भी धाक जमाने की तैयारी में जुट गई हैं।
1: छोटी लड़कियाँ भी बहुत ज्यादा आ रही है और करीबन आप मान के चलिए 15 किलोमीटर 20 और 25 किलोमीटर से लड़कियाँ आ रही है और सुबह शाम पेरेंट्स भी इनके साथ ही आ रहे हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के 5 बजे ग्राउंड टाइम है आ रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, लेट तक 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक घर पहुंच रहे हैं और काफी अच्छा रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर करीबन 20 से 25 लड़कियां हैं सर, जिनमें इंटरनेशनल लड़कियां हैं सर, एशियन मेडलिस्ट लड़कियां हैं, मानसी है, तमन्ना है और बहुत सारी लड़कियां नेशनल लेवल की मेडलिस्ट है और आगे भी इनकी संख्या बढ़ रही है।
0: हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। हरियाणा ने कुल 11 मेडल जीते हैं, इनमें 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा मेडल बॉक्सिंग में आए हैं और उसमें भी लड़कियों ने कमाल किया है। ग्लासगो में बॉक्सिंग रिंग में हरियाणा की बेटियों ने जो कमाल कर दिखाया उससे पूरा देश गदगद है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मेडल जीतकर लौटी बेटियों को बॉक्सिंग की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया।
2: विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं, ये बड़े गर्व की बात है।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 मेडल जीते जिसमें 5 गोल्ड हैं और इनमें से बॉक्सिंग में 4 गोल्ड हरियाणा की लड़कियों ने जीते हैं।

0: प्रीति पवार 54 किलोग्राम भार वर्ग, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग, साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम भार वर्ग, प्रिया घंघास 60 किलोग्राम भार वर्ग। जाहिर है इस खेल में भारत की बढ़ती ताकत बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहा रही इन लड़कियों के लिए बड़ी प्रेरणा है।
1: बॉक्सिंग में बस मेन टारगेट तो ओलंपिक है, बस सीनियर्स को देख के यही है कि भाई उनकी तरह मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, फैमिली भी मतलब किसी चीज की कमी नहीं रहने देती और फैमिली के साथ कोचिस का भी पूरा सपोर्ट है।
0: निकिता नेशनल खेल चुकी है, इनकी निगाह ओलंपिक पर है, सो सुबह शाम बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहा रही है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बॉक्सिंग में मिली बड़ी कामयाबी से हौसले बुलंद हैं। कहती हैं कि माता पिता का साथ हो तो लड़कियां आसमान छू सकती हैं।
1: लड़कियों के लिए मुश्किल जब है इफ अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं देन बॉक्सिंग ईजी है। मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बट फिर उसके बाद आपको इजी लगेगी अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। सुविधाएं सारी अच्छी मिलती है, मतलब सरकार काफ़ी सपोर्ट कर रही है और उम्मीद है आगे भी करती रहेगी। अगर बच्चे निकल रहे मेडल आ रहे तो सरकार भी सपोर्ट करेगी। अभी मेरा टारगेट 2030 कॉमनवेल्थ का है और 2032 का ब्रिस्बेन ओलंपिक है उसका।
0: करनाल के कर्ण स्टेडियम के बॉक्सिंग रिंग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ओलंपिक में भी बॉक्सिंग का दबदबा होगा और उसमें हरियाणा की छोरियों की हिस्सेदारी अहम होगी। कमलदीप करनाल, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University Ghaziabad, Shaping Future, Creating Leaders।
5: दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, हवा की गुणवत्ता में भी सुधार, बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में चेतावनी के स्तर पर पहुंचा गंगा का जलस्तर, सुरक्षा कारणों से खाली कराए जा रहे तटीय इलाके। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाय, बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे भक्त। शिव भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकली महिलाएं, बागपत ने पूर्व सैनिक ने पेंशन के पैसों से लगाया कांवड़ शिविर। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे, प्रोफेशनल शेफ की देखरेख में बच्चे बना रहे हैं अपनी पसंद का खाना। अगस्त को लगेगा साल 2026 का सबसे दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल में दिखेगा सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। तो पनीर की धोखेबाजी पर प्रहार, दरअसल इसी मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। नकली पनीर पर तीन राज्यों में अब बैन लग गया है। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ सरकार ने नकली पनीर पर बैन लगाया, तो इस हफ्ते महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या पूरे देश में कसेगी एनालॉग पनीर पर लगाम? कैसे करें असली नकली पनीर की पहचान? इसी पर करेंगे हम बात। हमारे साथ देश के बड़े हेल्थ एक्सपर्ट और कानूनी जानकार भी रहेंगे मौजूद।

0: नकली पनीर पर 3 राज्यों में बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन रहेगा। साथ ही नकली चीज, नकली बटर के उत्पादन, बिक्री, ट्रांसपोर्टेशन पर भी बंदिश लग गई है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसे में अब नियम न मानने वाले पर जेल भी उन्हें जाना पड़ सकता है। एनालॉग पनीर दूध से नहीं आपको नहीं बनता है, आपको ये बता दें, यानी कि ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट है। इस नकली पनीर को सस्ते के चक्कर में परोसा जाता है। आरोप है कि कई जगह एनालॉग पनीर को डेयरी प्रोडक्ट के तौर पर बेचा जा रहा है, लिहाजा गुजरात में अलग अलग जगहों पर सैंपल लिए गए, जांच हुई। इसी सैंपलिंग की जांच में कई जगह अनियमितताएं पाई गई। आरोप है कि ग्राहकों को असली के नाम पर गुमराह किया जा रहा था। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर 1 साल के लिए बैन लगा है। इसको लेकर 30 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत अब 6 महीने की जेल और 1 लाख का जुर्माना संभव है और जुर्म के आधार पर सजा बढ़ भी सकती है। यानी कि अब पनीर के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा। शुद्ध खाना नागरिकों का अधिकार है, ताकि लोगों को मिलावटी खाना ना मिले। इसलिए सरकारों को ये सख्ती करनी पड़ी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पूरे देश में ये फैसला लेने का समय आ गया है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने इस मामले में जीएनटी से खास बातचीत की। प्रफुल्ल पानसेरिया का कहना है कि राज्य सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एनालॉग पनीर, चीज और बटर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
1: गुजरात सरकार ने आज से एनालॉग पनीर, चीज और बटर पे जो है बैन लगा दिया है। हमारे साथ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। प्रफुल्ल भाई, ये जो फैसला किया गया, ये क्यों किया गया? क्योंकि पहले तो जो है आपने ही घोषणा की थी कि एनालॉग जो बेच रहे हैं, पनीर हो या घी हो या बटर हो या चीज हो, तो उसके लिए जो है आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा हर रेस्टोरेंट को, ढाबा संचालक सबको। उसका अमलीकरण अप्रैल महीने से किया जा रहा था, तो अचानक ये बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी?
2: एनालॉग पनीर, चीज और बटर में काफी भेलसेल होती है। एनालॉग बनाने का जो फ्रेमिंग है, उसमें भी वो नियम का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए गुजरात सरकार, हेल्थ विभाग ने आज से पनीर प्रोडक्शन पर, सेलिंग पर और परिवहन पर एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर हमने पूर्ण बैन लगा दिया है। और आज से कोई बेच भी नहीं सकेगा, प्रोडक्शन भी नहीं कर सकेगा और परिवहन भी नहीं कर सकेगा।
1: हमने देखा है कि जब भी कोई चीज़ पर बैन लगता है तो उसका प्रोडक्शन या फिर उसकी बिक्री, इलीगल बिक्री, अवैध बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। वो ना हो, उसके लिए जो है आपका विभाग क्या ध्यान रखेगा? FDCA किस तरह से जो है वो काम करेगा और उस पर रोक कैसे लगेगी?
2: हमने करीब 4 महीना से आज तक कई उत्पादकों पर हमने बैन लगवाया है, उसको सील कर दिया है और बेचने की परमिशन भी हमने कैंसिल कर दी है। जो जिसके पास लाइसेंस था वो भी कैंसिल कर दिया। इसलिए आज से हमारी पूरी टीम एक लक्ष्य के साथ चलेगी कि एनालॉग पनीर, चीज और बटर कहीं भी बेच भी नहीं सकते हैं और प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते।
1: छोटे होटल वाले होते हैं, उनके दाम कम होते हैं, वो हमेशा दाम कम रखते हैं, इसलिए वो यूज करते थे। अब उनको भी आपको समझाना पड़ेगा वो कैसे होगा और पूरा ध्यान कैसे रखा जाएगा कि अब इसकी बिक्री जो है वो लोग ना करें और उसका उपयोग ना करें।
2: मैं आशा रखता हूँ कि गुजरात में सभी परिवारजन शुद्ध और सात्विक फूड खाने का आग्रह रखे और सस्ता में ना पड़े, क्योंकि ये हेल्थ वाला मामला है। और कहीं बार हमने देखा है कि सस्ता खाने के बाद दवा में ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए जो हमारा पूरा 5 साल का पूरा लिस्ट है, कैंसर, पेट का दर्द वगैरह का जो ग्राफ बढ़ा है, तो इसके पीछे ये मिलावटी चीज ही जवाबदार है।
1: गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार ने बैन लगा दिया है और अब FDCA विभाग जो है पूरी तरह से उसका अमल करवाएगा। और लोगों से भी अपील की है कि आप भी जब रेस्टोरेंट या ढाबे पे खाने जाएं तो वहां पे एनालॉग चीजें ना हो, उसका ध्यान रखें। अगर कुछ होता है तो स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करें। जानने के साथ ब्रजेश जोशी।
0: तो देश के कई हिस्सों में अब नकली पनीर को लेकर जागरूकता भी आ रही है। इसी बीच गुजरात के जामनगर, राजकोट और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कई कदम उठाए गए हैं। जामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर के रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, पिज्जा पार्लर और नाश्ते की दुकानों पर एनालॉग पनीर और एनालॉग चीज के उपयोग की जांच की जा रही है। इधर राजकोट में एनालॉग प्रोडक्ट्स का उत्पादन और बिक्री करने वाली एक फैक्ट्री पर राजकोट महानगर निगम ने छापा मारा है। जांच के दौरान फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में एनालॉग पनीर और चीज बरामद किया गया है। फिर एनालॉग पनीर और चीज के पूरे स्टॉक को सील कर दिया गया। उधर भोपाल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यहां भी ये अभियान चलाया जाएगा कि एनालॉग चीज को पनीर के नाम पर ना बेचा जाए। अब ये भी जान लेते हैं कि एनालॉग पनीर पर तीन राज्यों की सरकार ने जो कार्रवाई की है उस पर पब्लिक का क्या कहना है।
3: हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है, उस पर बैन लगाए, मैं सरकार के फैसले का सराहना करता हूँ।
4: सही है जी, जी सही है, एकदम सही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ नुकसान हो रहा है उनका, लोगों का, तो ये तो सही डिसीजन है।
5: बाहर जाता हूँ, बाकी पनीर खाना मैंने बंद कर दिया। पनीर हजम होने में 12 घंटे लग जाते और ये अच्छा नहीं है, तो सरकार ने जो फैसला लिया सही लिया है उनका।
6: डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारी जो बीमारियां हैं वो फूड एडल्ट्रेशन से बहुत ही ज्यादा है। जो बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज है वहाँ बहुत ही यानी जो अच्छा उधर का माहौल होना चाहिए वैसा नहीं रहता, और उधर सेफ्टी नहीं रहती। यस बिल्कुल बिल्कुल है, वेलकम करते हैं। इट शुड बी नेचुरल, इट शुडंट बी आर्टिफिशियल। और जिस तरह से वो लोग जो डिटर्जेंट्स और यूज करते हैं वो बहुत ही सबके लिए वो तकलीफ वाली है।
7: तुकाराम मुंडे जी ने पहल की है, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वी आर जनरल प्रैक्टिशनर, हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में यही पेशेंट देखते हैं। हमने ये बोलना बंद कर दिया है पेशेंटों को कि तुम दूध पियो, ऐसा हम यही बोलते हैं कि अभी दूध की जरूरत ही नहीं तुमको, अभी दूध दिमाग से निकाल दो।
0: तो देखिए मामला दरअसल हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, इसलिए चर्चा में जाने से पहले ये जान लेते हैं कि असली और नकली पनीर की पहचान कैसे करें। असली पनीर में मुख्य सामग्री दूध, नींबू और सिरका का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एनालॉग पनीर वनस्पति तेल यानी कि पाम ऑयल, स्किम मिल्क पाउडर, स्टार्च और केमिकल से बनाया जाता है। असली पनीर मुलायम, चिकना और हल्का दानेदार होता है, जबकि एनालॉग पनीर रबर जैसा खिंचने वाला या फिर अत्यधिक चिपचिपा होता है। असली पनीर दूध जैसी हल्की मिठास और ताजा खुशबू वाला होता है, वहीं एनालॉग पनीर फीका, बेस्वाद या तेल जैसा भारीपन उसमें होता है। तो ये तो बात हुई पहचान की, अब ये भी जान लेते हैं कि नकली यानी कि एनालॉग पनीर पर कार्रवाई पर होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों का क्या कहना है।
8: एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है और अब इसे बेचने वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, फाइन इम्पोज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। हम इस वक्त मुंबई के सैंडस रोड पे एक होटल है सदगुरु, उस सदगुरु होटल के किचन में है, जहां पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर काम होता है और किस तरीके से पनीर उपयोग होता था। हालांकि ये जो पनीर है ये एनालॉग पनीर नहीं है, ये शुद्ध पनीर है। हमारे साथ हैं इस सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर सिनोई जी। सर, एफडीए ने सबसे पहले तो जिस तरीके से बंदी लाई है एनालॉग पनीर पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उस निर्णय का स्वागत करते हैं?
9: यस यस, ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि एनालॉग पनीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और ये पनीर जो है वो प्योर दूध का बनता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है या एडल्ट्रेशन नहीं है। मगर एनालॉग पनीर जो है उसको टोटली अनसेफ करके नहीं बोला जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट इज यूज्ड ओवर हियर, उसमें क्या वापरा जाता है, मगर जरूर है कि इससे वो सब स्टैंडर्ड है, ये पक्का है।
8: सर, ये पनीर आप कह रहे हैं शुद्ध है, इसे कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है या क्या इसकी ये होती है?
9: इसके बहुत बारीक है जो नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है। इसमें स्मूथनेस ज्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथनेस रहता है, वो गर्म करने के बाद पिघल जाता है थोड़ा बहुत, उसका शेप बदली होता है, इसका शेप बदली नहीं होता है, और बाकी बहुत से टेस्ट है जो आज नॉर्मली आप नहीं कर सकते हैं।
8: सर, ये एनालॉग पनीर कितना नुकसानदायक होता है किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई इसे कंज्यूम करता है?
9: सर देखिए, ये तो दूध का बना है तो इसमें प्रोटीन्स है और जो भी आपको शरीर में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सब मिल जाते हैं। मगर जो एनालॉग पनीर है उसमें आप पाम ऑयल डालते हैं या बाकी कुछ डालते हैं जो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसीलिए, और सेकेंडली हमको पता नहीं रहता है कि कौन से जिसने बनाया उसने क्या इंग्रेडिएंट्स वापरे हैं, तो उसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंटली कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो इट इज बेटर टू हैव अ बेटर पनीर रादर देन द एनालॉग पनीर।
8: मतलब ये पनीर जो है वो लोगों के लिए सेहतमंद है, ये अच्छा होगा।
9: यस यस, हम कानूनी तौर से जो देना है वही लेते हैं फर्स्ट।
8: थैंक यू। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने देखा कि होटल व्यवसायिक भी हैं जो इस निर्णय से खुश हैं, इस निर्णय का जो है वो स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अब लोगों को वो भी अच्छी चीजें दे सकेंगे और उनको भी अगर जहां कहीं एनालॉग पनीर बेचा जाता था तो वो कम दाम में बेचते थे क्योंकि वो बहुत सस्ता बनता है और जिससे कि मुनाफे पे असर पड़ता था जो शुद्ध पनीर बेचते हैं उनके मुनाफे पर। अब उनको भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब उनको भी ये पता है कि जहां पर भी पनीर बिकेगा वो शुद्ध होगा और जो लोगों के सेहत के साथ पहले खिलवाड़ होता था वो अब कहीं जाकर बंद होगा। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
0: चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। डॉक्टर मंजरी चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट भी है मैक्स अस्पताल में। बहुत बहुत स्वागत है मंजरी जी आपका। साथ ही डॉक्टर प्रदीप चक्रवर्ती जो कि सीनियर एडवाइजर सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, फॉर्मर डायरेक्टर प्रोडक्ट अप्रूवल FSSAI हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अभिजीत बोस हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि CEO कंज्यूमर वॉइस हैं। अभिजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर समीर भाटी जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस खबर को सुनने के बाद, खास करके जो हेल्थ को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा आज के समय में अब बहुत ही चौकस हो गए हैं और वो हर एक चीज़ कहते हैं ना कि हर एक बाइट बहुत ही सोच समझ कर लेना, और खास करके वो लोग जो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं उनके लिए और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए पनीर एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको देती है। उसमें अगर एनालॉग पनीर जैसी चीज शामिल हो जाए या हमारे खाने में शामिल हो जाए, कितना नुकसान ये पहुंचा सकती है?
10: नहीं श्वेता जी, आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम मूव। पहले तो आई वर्क क्लोजली विथ कैंसर, पिछले 2-3 सालों से सिर्फ कैंसर के साथ ही काम कर रही हूँ। और जो एक बीमारी होती है कैंसर, जब किसी को हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस इंडिया में इतना कैंसर है इज बिकॉज ऑफ आर एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में पोल्यूशन के अलावा फूड एक बहुत बड़ा सोर्स है। और लोग बाहर जब जाते हैं या खाते हैं तो उनको एक भरोसा होता है कि जहां पर वो खा रहे हैं उसने हाइजीन का, क्वालिटी का, फूड का ध्यान रखा होगा। बट क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं है, लोग वो खाने से बीमार हो रहे हैं और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो रही हैं। तो एनालॉग पनीर किसी को भी नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट आप पनीर मत खाओ, आप सब्जी खा लो, फ्रूट खा लो जो आपको रीजनेबल मिल रहा हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। लेकिन अगर पनीर खाना है और उसके फायदे लेने हैं तो वो एक्चुअल पनीर ही होना चाहिए जो कि दूध को फाड़ के बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट ये कि जब हम दूध को फाड़ते हैं तो सारा प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है, फैट और प्रोटीन, और वे उसमें जो पानी उसमें से निकल जाता है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है ये ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है, बायो अवेलेबल भी होता है हमारे शरीर के लिए। वो सोच के लोग पनीर खाते हैं कि चलिए हम तली हुई चीज नहीं खाएंगे, हम पनीर खा लेंगे बाहर जाके। बट और ज्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि वो ऐसा निकल का कॉन्कॉक्शन खा रहे जो उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां दे सकता है। एक लास्ट चीज, पनीर एक्चुअली अगर आप घर में बनाए तो 1 लीटर दूध से बहुत थोड़ा पनीर बनता है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज्यादा है। इसीलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एनालॉग यूज करते थे प्राइस को कम करने के लिए। बट आई थिंक बहुत जरूरी है, जब तक सरकार इसको पूरी तरह बैन नहीं करेगी लोग लिबर्टी लेते रहेंगे। और बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इससे और भी चीजों को लेकर लोगों को कॉन्शियसनेस आएगी, ना सिर्फ पनीर।
0: बिल्कुल, मैम आएंगे आपके पास। डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप, छत्तीसगढ़ सबसे पहले, उसके बाद महाराष्ट्र और अब गुजरात, आपको क्या लगता है कि ये अभी एक पहल है और अब समय आ गया है कि पूरे देश में इस तरह का बैन लगना चाहिए इस तरह के खाद्य पदार्थों को लेकर?
11: देखिए, एफएसएस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो सब में, सब स्टेट में ये होना चाहिए। और पनीर जो है ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसका स्पेसिफिकेशन हमारा जो रेगुलेशन है 2.1.5 इसमें दे चुका है। इसमें एक्चुअली मॉइस्चर नॉट मोर देन 70% होना चाहिए और इसमें मिल्क फैट जो है नॉट मोर देन 15% ऑफ ड्राई मैटर होना चाहिए। और पनीर के सिंथेटिक पनीर जो है पहले तो था ही नहीं, इसका स्टैंडर्ड भी अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो इसको अलाउ किया था FSSAI में, लेकिन ये अलाउ नहीं करना चाहिए और इसको जो इसका अगेंस्ट में जो कार्रवाई हो रहा है ये एकदम सही दिशा में हो रहा है, क्योंकि एनालॉग पनीर का नाम में एडल्ट्रेशन हम लोग इनकरेज नहीं कर सकते हैं। तो चना और पनीर जो है इसको क्या प्योर है क्या ओरिजिनल है वो इमिडिएटली वो आयोडीन डालने से पता चल जाता है, तो इसके और इसको रबरी टेक्सचर नहीं होता, स्मूथ होता है प्योर पनीर, ये सब हम लोग जानते हैं, तो इसलिए ये जो सिंथेटिक पनीर जो और या एनालॉग पनीर जो बोल रहे हैं इसको एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहिए। सही दिशा में FDA महाराष्ट्र भी काम कर रहा है और इसको इसको बाकी स्टेट में भी ये लागू करना चाहिए।
0: बिल्कुल अभिजीत जी, आपको क्या लगता है उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से गुजरात सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
12: देखिए श्वेता जी, कंज्यूमर वॉइस का एक स्पष्ट मत है इसमें कि हम किसी उत्पाद के विरोध में नहीं है, हम कंज्यूमर को या उपभोक्ता को गुमराह करने के विरोध में हैं। मैं कमलाकर शिनॉय जी की बात से बड़ा समर्थन करता हूं उनकी बात का, और कि उन्होंने बोला कि हर एनालॉग उत्पाद असुरक्षित नहीं होता है, दैट इज करेक्ट। बैन लगाना बड़ा आसान है, मुश्किल होता है कि रेगुलर उसको चेक करना, नियमित सैंपलिंग करना, कड़ी सजा देना, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी करना, तो जब तक ये चीजें और पकड़ने की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक उपभोक्ता सुरक्षित कहाँ है। आप बैन करना तो इसका एक ही तरह का जिसको कहते हैं आपने एक विचार कर दिया, बैन कर दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन हम एज अ कंज्यूमर वॉइस हम ये बोलते हैं कि उपभोक्ता को चॉइस मिलनी चाहिए, उसको सच बताइए, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उसकी थाली कोई प्रयोगशाला नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर समीर, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से इसमें एक बहुत बड़ी बात इन्होंने सर ने कही है अभी अभिजीत जी ने कि लेबलिंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जब आप प्रोडक्ट कुछ भी मार्केट में लेकर के आते हैं उसमें आप क्लैरिटी से लिखते तक नहीं है कि एक्चुअली आप क्या बेच रहे हैं, पब्लिक को आप क्या दे रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप ने भी अभी जो कहा कि भाई हमें पता है कि आयोडीन डालकर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम आप जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम आयोडीन अपने साथ नहीं लेकर के जाते हैं, या फिर वहां पे अगर कोई खाना हमें अगर पनीर का कोई आइटम हमने मंगवाया है तो यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं एज अ ग्राहक कि हम वहां पहले उसको चेक करें कि ये सही पनीर मिला है या नहीं मिला है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा संकट है। मुझे लगता है सिर्फ एडल्ट्रेशन एक मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड है जो हमारे सामने है।
13: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे पिछले लगभग 4-5 साल से हम देख रहे हैं पनीर को लेकर काफी ज्यादा इस तरह की हम खबरें सुनते हैं जिसमें एडल्ट्रेशन, मिलावट, फेक पनीर की बात करते हैं। अभी जैसे अभी पिछले कल से और आज से लोग जैसे ज्यादा बात कर रहे हैं कि पनीर बैन हो गया है कुछ राज्यों में, तो एक तो ये समझना जरूरी है कि जो अभी फिलहाल हम बात करें तो हमारा जो एनालॉग पनीर है वो भी एक फूड कैटेगरी में डाला हुआ था FSSAI ने, हाँ, बट उसके कुछ मतलब मापक थे कि वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, बट समहाउ क्योंकि उसके अंदर वो चीजें ट्रेस कर नहीं सकते हम, यहाँ पर दो चीज और समझना जरूरी है। देखिए फेक होना और मतलब पनीर एनालॉग पनीर होना, दोनों में फर्क है। एक हम डेयरी पनीर की बात करते हैं जो रेगुलर आमतौर पर हम जिसकी बात करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हमारा एनालॉग पनीर हो गया जिसके बारे में अभी डिस्कशन किया जा रहा है। बट जो फेक पनीर है वो डेयरी वाले में भी काफी ज्यादा मिलता है, इवन जब हम अडल्ट्रेशन की बात करें, सीजन में बात करें, कभी भी जब फेस्टिव सीजन वगैरह आता है उस टाइम ज्यादा जो खोया या जो पनीर पकड़ा जाता है वो हमारा डेयरी वाला पनीर ही होता है। तो फेक दोनों हो सकते हैं, अडल्ट्रेटेड दोनों हो सकते हैं, अनसेफ दोनों हो सकते हैं। अनसेफ का मतलब हमारे हेल्थ के लिए दोनों ही ऐसा हो सकता है कि वो ठीक नहीं है। रही बात कि आप आयोडीन वगैरह से टेस्ट, रैपिड टेस्ट, देखिए ये सब अगर हम एनालॉग पनीर की भी बात करें या किसी भी तरह की फेक पनीर की भी बात करें तो उसमें भी वही सब चीजें मिलाई जाती है उसके टेक्सचर को उसी तरह से बनाने के लिए कि आप उसको विजुअली नहीं देख सकते, रैपिड टेस्ट से भी आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप आयोडीन उसमें जांच सकते हैं कि उसके अंदर कहीं स्टार्च की मिलावट है कि नहीं है। पर यहाँ पर जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है ट्रांसपेरेंसी का, जैसे हम 100% का जो दावा कर रहे थे या जो हम पनीर का दावा कर रहे हैं कि पनीर आप एनालॉग उस पर लिखा हुआ नहीं है, और उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हो, तो वो चीज ठीक नहीं है कि जो भी चीज आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर वो मेंशन होना चाहिए। लेबल की जिस तरह से आपने बात की, तो 100% लेबल के बिना तो हम ट्रेस उसको कर ही नहीं पाएंगे, ट्रेसेबिलिटी उसकी नहीं होगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है उसकी प्योरिटी को लेकर, उसकी शुद्धता को लेकर, कि कहीं वो अडल्ट्रेटेड है कि नहीं है। पर अडल्ट्रेटेड दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने एनालॉग को बैन किया और डेयरी प्रोडक्ट में तो सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन हम ज्यादातर देखते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर मंजरी, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल यही होता है, हालांकि प्रदीप जी से मैं ये जानना चाह रही थी कि इतने सारे नियम कायदे कानून हमारे यहाँ हैं, उसके बावजूद इस तरह के उत्पाद आ कैसे जाते हैं मार्केट में, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, और सिर्फ ये पनीर तक सीमित नहीं है मामला, ऐसे कई उत्पाद हैं, कई प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जिसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है। एंड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक डॉक्टर होने के नाते, आप भी जब किसी को डाइट सजेस्ट करती हैं, कुछ खाने को सजेस्ट करती हैं कि आपका डाइट किस तरह से होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए, तो हम कैसे अश्योर करें कि मार्केट से हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा, शुद्ध होगा, और हम खाएंगे तो उसका फायदा ही हमें होगा, जब इस तरह की खबरें हमारे सामने हैं।
10: बिल्कुल श्वेता जी, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे लिए। हम पेशेंट्स को जब रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करो, तो कई बार वो हमसे सामने से बोलते हैं कि हम कहाँ से फल खरीदें, कहाँ से सब्जी खरीदें, कैसे इंश्योर करें कि जो हम खाना ले रहे हैं वो खाना अडल्ट्रेटेड नहीं है, पॉइजन नहीं है, उसमें कोई तरह की मिलावट नहीं है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई सीधा आंसर नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, इतने सारे सप्लाई चेन मैकेनिज्म्स हैं, सिस्टम्स हैं, आई डोंट नो कौन इनको पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। क्लियरली एक FSSAI तो नहीं कर सकता। तो कॉन्शियसनेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। जितना डायलॉग होगा, जितना इस बारे में डिस्कशन होगा कि फेक पनीर होता है, एनालॉग पनीर होता है, उससे नुकसान होता है, और इसी तरह और चीज़ें भी, तो एटलीस्ट जो कंज्यूमर है वो बैकफुट पे नहीं होता, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो थोड़ा अपना रिसर्च करके, थोड़ा पता करके देखे कि क्या खा रहा है और कैसे खा रहा है और क्या अपने बच्चों को खिला रहा है वो। और हम एज अ सोसाइटी, चाहे हम मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, चाहे रेगुलेटरी हो, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो हमारा पेशेंट है, हमारा कंज्यूमर है, उसको जितना हो सके हम इन्फॉर्म करें, सही चीज बताएं। और गलत चीज पे बैन करना, ये हो सकता है कि बहुत इजी ना हो इसको इम्प्लीमेंट करना, बट एक शुरुआत तो है, और ये एक मैसेज भी सेंड करता है लोगों को। पहले अब फिर मिलावट करने से पहले आदमी सोचेगा कि शायद मुझ पे बैन लग सकता है, शायद मैं पकड़ा जा सकता हूँ। अगर हम लॉज ही नहीं लाएंगे, अगर हम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ही नहीं लाएंगे, और फिर
0: मंत्री, और ये भी देखना होगा कि न सिर्फ पकड़े जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है, वो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिजीत जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आज भी हमारे देश में, अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता है और उसे शक है कि उसने जो प्रोडक्ट लिया है या उसे जो कुछ दिया गया है वो गलत है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर पाना और उस पर कार्रवाई हो पाना कितना मुश्किल है हमारे देश में आज भी?
12: बहुत अच्छी बात पूछी श्वेता आपने। हम एक्चुअली रिसेंटली एक एडवोकेसी पे काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं क्लास एक्शन। अमेरिका में उपभोक्ता के पास ये कानूनी टूल है कि वो सारे उपभोक्ता मिलके एक केस डाल सकते हैं उसके खिलाफ जिसने उनके साथ चीटिंग करी, जो कि हमारे देश में अभी नहीं है। अगर सिंगल उपभोक्ता, अगर मैं किसी कंपनी के खिलाफ या किसी भी बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैं लड़ाई शुरू भी कर दूं तो मैं उसको खत्म नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। सो कंज्यूमर को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ डॉक्टर भाटी की बात से भी बहुत सहमत हूं कि मिलावट तो देखिए डेयरी प्रोडक्ट में भी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, नियमित सैंपलिंग की बहुत जरूरत है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे प्रतिबंध लगा देना। अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया एनालॉग पनीर पे, यूरोप ने एनालॉग प्रोडक्ट्स पे प्रतिबंध नहीं लगाया, चाइना नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कानून सख्त बनाए। अगर कोई कानून को तोड़ता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसको बहुत कड़ी सजा मिलती है।
0: यानी कि आपकी बातों से ये समझो कि यहाँ पर कोई कानून ऐसा नहीं है जो कड़ी कार्रवाई कर सके।
12: कोई कानून को और सख्त होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून नहीं है, कानून जरूर है, और हमारे को एक ऐसा कल्चर बनाना है जिसमें मोरालिटी भी हमारे कल्चर का हिस्सा हो।
0: डॉक्टर प्रदीप, यहाँ पर आपसे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहूंगी, कहने को FSSAI जो है वो इन तमाम खाने पीने की जितनी भी चीजें होती हैं उस पर कड़ी नजर रखता है, बीच बीच में जांच भी होती रहती है और तभी इस तरह के छापे पड़ते हैं, सील होती है चीजें और अब बैन तक मामला चला गया। लेकिन इतने कड़े कायदे कानून और नियमों के बावजूद मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ कैसे जाते हैं जो कि डायरेक्टली लोगों का नुकसान कर सकते हैं।
11: जो एनफोर्समेंट जो है ये स्टेट और सेंट्रल दोनों अथॉरिटी का ऊपर ही है, तो स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर का भी पास काफी सारी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैंपल बीच बीच में मार्केट से कलेक्ट करना और लेबोरेटरी में भेजना और देखना कि इसमें कोई मिलावट है कि नहीं। सिमिलरली सेंट्रल का भी पास भी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन बीच में एक्चुअली हमारा एनफोर्समेंट थोड़ा ढीला लग गया था और ये एनफोर्समेंट हो रहा था सिर्फ त्योहार का टाइम पे, तो बाकी समय तो उतना नहीं हो रहा था। अभी एक्चुअली ये महाराष्ट्र का FDA कमिश्नर ही हैज टेकन द इनिशिएटिव, तो और ये उसका बाद फिर गुजरात FDCA भी ले रहा है, तो ऐसे जितना भी फूड सेफ्टी कमिश्नर से आकर ये लोग इनिशिएटिव लेगा तो इसको फिर एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट करने से ये सब हट जाएगा।
0: बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में इस तरह की चीजें, ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आने ही बंद हो जाए, वो बने ही ना और ना ही मार्केट तक पहुंचे। कई सवाल हैं जिनके और जवाब हमें लेने हैं, कैसे आप सतर्क रह सकते हैं और अगर आप अगर आप बाहर जा भी रहे हैं खाने पीने को तो किन किन बातों का आप खास ख्याल रख सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: तो पनीर की धोखेबाजी पर प्रहार किस तरह से किया जा रहा है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे चलते हैं डॉक्टर समीर भाटी के पास। डॉक्टर समीर भाटी, आपसे ये समझना चाहेंगे, हमारे देश में ज्यादातर लोग अब खास करके ऐसा कल्चर आ गया है, कैफे कल्चर आ गया है, ज्यादातर लोग जो है प्रेफर करते हैं विदेशों की तरह कि न सिर्फ वीकेंड्स, शाम के समय में भी अगर 10 से 6 की शिफ्ट में है और फ्री हुए हैं तो वो कैफे चले जाते हैं, कुछ वहां पर खा पी लेते हैं, स्नैकिंग होती रहती है, या फिर और कुछ नहीं तो आप अलग अलग ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं सामान, स्विगी से मंगा लेते हैं या फिर जेप्टो से मंगा लेते हैं और फिर आप जहां कहीं भी है वहां आप खा लेते हैं। ऐसे में ये बताइए कि इन लोगों के लिए क्या सावधानियां ये लोग बरतें जो बाहर जाकर खाना ऑर्डर कर रहे हैं और बेझिझक कुछ भी मंगा कर खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखिए खासतौर पे पनीर की जब भी बात करते हैं या इस तरह की कोई भी मिल्क प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कोशिश करें जितना हो सके वो ओपन में ना लें, मतलब जितना पैकेज्ड होगा। और पैकेज्ड में भी जिस तरह से हम रिसेंटली अगर देखें कई चीजें तो ऐसी मिली है कि वो ब्रांडेड पैकेज को भी चेंज कर देते हैं और वो कई बार ऐसे काफी सारे इंसिडेंट रहते हैं, तो वो सही स्टोर से आप लें अगर आप पनीर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, कई बार जब आप स्ट्रीट फूड में से जब भी आप ले रहे हैं तो स्ट्रीट फूड में कई बार ऐसा देख लें, खासतौर पर अगर आप सैंडविच वगैरह ले रहे हैं, पनीर का सैंडविच ले रहे हैं या इसके अलावा ब्रेड पकौड़ा वगैरह ले रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि पनीर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और वो उतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप इतना पनीर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पनीर आपका फेक ना हो। तीसरा, जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर की बात की तो ऑनलाइन ऑर्डर में खासतौर पे दूध या दूध से बनी कोई भी चीजें जिसमें पनीर वगैरह हो गई उसमें कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, खासतौर पे मानसून वगैरह की बात करें तो वो प्रोडक्ट अगर ठीक तरीके से स्टोर्ड नहीं है आपका पनीर की खासतौर पर, अगर उसको स्टोर ठीक से नहीं किया तो वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह कई तरह की फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो उसका कोशिश करें कि आप ऑनलाइन इस तरह के जो मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट हैं वो अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड जब भी आप ले रहे हैं वहां पर इस चीज का आप जरूर देख लें कि इतना सस्ता पनीर आपको मिल नहीं सकता है, तो ये कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना।
0: बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बातें कही। कई बार हम ऐसे स्टॉल्स में जाते हैं, खास करके स्ट्रीट फूड की जो आपने बात की है, वहां पर कई बार लगता है कि अरे ये हमें बहुत कम में मिल जा रहा है, वो भी पनीर के प्रोडक्ट्स जो कि हम जानते हैं कि यूजुअली कॉस्टली होते हैं, तो वहां पर सोच विचार जरूर करना चाहिए कि अगर कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है तो वो क्यों इतनी सस्ती है। डॉक्टर मंजरी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट्स, एनालॉग पनीर की ही खास करके अगर हम बात करें, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, काफी वायरल हुआ था सोया चाप का वीडियो, किस तरह से सोया चाप बनाने की एक फैक्ट्री में एक शख्स वहां पर लेटा हुआ था और वो गंदगी, वो तमाम चीजें बहुत ही वायरल हुई थी। तो खास करके जो वेजिटेरियंस हैं उनके तो मन से अब सोया चाप या फिर पनीर को लेकर के अब विश्वास ही उठ गया कि वो बाहर अब नहीं खाएंगे, ऐसा हो गया है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस तरह की चीजें जो लोग लंबे समय से खा रहे हैं या फिर मार्केट में अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बैन अब लग गया है तो कल से सब कुछ खत्म हो जाएगा, मार्केट में ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो ऐसे में क्या हृदय रोग, मोटापा या फिर इस तरह की कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इस तरह की चीजें ज्यादा हो सकती हैं अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं तो?
2: हाँ जी, देखिए मिलावट की जहां तक बात है, जैसे एनालॉग पनीर की बात हो रही है जो कि डेयरी प्रोडक्ट है ही नहीं, पाम ऑयल से और कुछ केमिकल से बना हुआ है, तो ये तो हर तरह की बीमारी में काज कर सकता है। आप पहले कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ये जो तेल है पाम ऑयल टू स्टार्ट विद हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कार्डियक इवेंट हो, हार्ट फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क तो बढ़ा ही रहा है। दूसरा, क्योंकि ये तेल है और ये गुड फैट नहीं है, ये जिसको हम सीड ऑयल कहते हैं वो है, और क्योंकि इसमें इसका कॉम्पोजिशन इतना खराब होता है तो ये हमारे शरीर में कोई इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बना रहा, बल्कि जमा हो रहा है हमारी आर्टरीज में, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, सबक्यूटेनियस फैट के फॉर्म में, तो मोटापे के लिए भी जिम्मेदार है। और मुझे सबसे ज्यादा डर आज इसलिए लगता है क्योंकि इस समय इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड करार दिया गया, कह रहे हैं हर 10 इंसान में से एक को कैंसर होने की चांसेस हो गई है, और कैंसर डायबिटिस नहीं है कि आप एक दवा लेकर 20 साल तक मैनेज कर सकते हो, कैंसर एक बहुत ही खराब बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट भी उतना ही परेशानी वाला और उतना ही डिफिकल्ट और महंगा होता है,
0: और तो उसमें इस तरह का खान पान बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है, हम ये कहें, क्योंकि कैंसर को लेकर अभी तक कुछ ये नहीं कहा जा सका है कि हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके फूड हैबिट्स बहुत अच्छे रहते हैं, जिन्होंने कभी पूरे जीवन में नशा नहीं किया है, लेकिन उन लोगों को भी कैंसर हो गया है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं।
2: कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से भी हो सकता है। आप स्मोक कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने किसी हैवी मेटल से एक्सपोज्ड हो उस पर, बट डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग से और मिलावट जो खाने में होती है, ये एक नॉन कार्सिनोजेन है, इसको हम क्लास टू कार्सिनोजेन बोलते हैं। मतलब ये डायरेक्टली आपके जेनेटिक चेंजेस और कार्सिनोजेनिक चेंजेस कॉज कर सकता है, और बहुत बचने की जरूरत है लोगों को। और मेरा यही बहुत रिक्वेस्ट होगा कि बिसाइड्स द गवर्नमेंट जो इस पर रेगुलेशन करे और कंट्रोल करे, कंज्यूमर को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जितना आसान लगता है, जैसे डॉक्टर समीर ने भी बोला कि आप जाके ऑर्डर कर दे रहे हो और 50 रुपए की सैंडविच है या जोमैटो पे बहुत सस्ता खाना आ रहा है, तो वो सस्ता इसीलिए क्योंकि इसकी क्वालिटी खराब है।
0: Exactly.
2: और उसको उसको इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं आप, पर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और वो आपके आपके आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को इमीडिएट इफेक्ट करता है। तो एक छोटा सा आप इसमें बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, और डायरेक्ट कोरिलेशन है कंटामिनेटेड फूड का डिजीजेस के साथ, इसमें तो कोई दो राय ही
0: बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। अभिजीत जी, यहाँ पर जैसे विदेशों के भी आप बात कर रहे थे, तो कानून को लेकर तो आपने बता दिया कि विदेशों में क्या है और हमारे यहाँ क्या है, तो आपको नहीं लगता है यहाँ से ये हम भी जानते हैं, मतलब जितने भी मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं सब ये जानते हैं कि भारत से भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेश नहीं जाते हैं, वहां पर स्ट्रिक्टली बैन है, और एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पे चीजें यहां से ली जाती हैं, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स भारत में ही कंज्यूम होते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जब स्ट्रिक्टली हर एक प्रोडक्ट पे लेबलिंग होनी चाहिए भारत में भी, और हर एक चीज लिखी होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें मिली हुई हैं?
3: बहुत जरूरी है। देखिए, भारत से जब प्रोडक्ट बाहर जाता है, वही प्रोडक्ट हमारे भारत में एडल्ट्रेटेड बेचा जाता है उन्हीं कंपनी से। मैं बाहर भी काफी साल रहा हूं, और वही कंपनी के प्रोडक्ट जब बाहर मिलते हैं वो बड़े साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था ऐसी है। सस्ता होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सस्ते उत्पाद को महंगा बोल के या महंगा डेयरी प्रोडक्ट बोल के बेचना एक अपराध है। अगर आपने पनीर टिक्का किसी को दिया है, आप मेन्यू में लिखिए ये कौन से पनीर का है, एनालॉग पनीर का है कि डेयरी पनीर का है, ग्राहक अपने आप डिसाइड करेगा। सो वो डिसाइडिंग पावर ग्राहक के हाथ में भी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो है, सस्ता उत्पाद स्वीकार है, लेकिन छिपाया गया उत्पाद स्वीकार नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, आपको क्या लगता है कि खास करके एनालॉग पनीर जैसी जो चीजें होती हैं, या खास करके सोया चाप में जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कहां पर वो बन रहा है, कैसे हालातों में बन रहा है, बेहद सस्ते दामों पर जो ये रेस्टोरेंट्स है उसमें भी, सिर्फ छोटे नहीं जो क्लाउड किचन चलाते हैं, पता चला कि सिर्फ वहां नहीं, कुछ नामी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहां भी इस तरह से सस्ते प्रोडक्ट उठाए जाते हैं और लोगों को बेचे जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि इस पर और ज्यादा जांच होने की जरूरत है, और वो भी बड़े स्केल पे? अब
4: नहीं, देखिए जब भी कोई चीज सस्ते में मिलता है तो उसमें थोड़ा तो डाउट रेज हो जाता है, और इसको जांच तो होना चाहिए।
0: लेकिन प्रदीप जी, अब सिर्फ सस्ते की बात नहीं रही, अब अभिजीत जी ने भी कहा कि अब तो ये हो गया है कि अब तो महंगा बोल के बेचते हैं और गलत चीजें बेचते हैं। कह रहे हैं आपको शुद्ध पनीर बेच रहे हैं, लेकिन वो एनालॉग पनीर होता है।
4: देखिए, एनफोर्समेंट और सर्वेलेंस जो है, ये दो टूल है जो FSSAI के पास है, और ये थ्रू द सीजन ये होना चाहिए। अगर ये सही ढंग से होगा तो ये सब रोक सकता है, अदरवाइज ये तो कंटिन्यू होता है, और बैन करके तो ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इसको रोक सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इसको दूसरा असर भी पड़ सकता है।
0: डॉक्टर मंजरी, आपको क्या लगता है कि आज के समय में खाने में जिस तरह से एडल्ट्रेशन है, एक समय ऐसा हुआ करता था जब हम कहते थे कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, अगर मिल्क आपने ले लिया तो फिर ठीक है, अगर आपने नहीं भी और कुछ खाया है तो चल जाएगा, लेकिन अब मिल्क में भी इतना एडल्ट्रेशन है, हमने इतनी खबरें दिखाई हैं, सालों से हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बैन नहीं हुआ है, रुका नहीं है, अब हमें दूध पीना ही छोड़ना पड़ रहा है, ये स्थिति है हमारे देश में। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, हमारे प्लेट में साइलेंट एक तरह से साइलेंट किलिंग के लिए मैकेनिज्म जो है वो डेवलप हो गया है जो हमारे घर तक पहुंच रहा है?
2: हाँ, हम खाना क्यों खाते हैं? अपने शरीर को नरिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए. वो उल्टा हो रहा है. हम न्यूट्रिशन तो ना ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हम साथ में ऐसे सब्सटेंसेस और केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, कंटामिनेंट्स हो, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं नरिश करने की जगह. तो डेफिनेटली बैलेंस प्लेट जो हम बोलते हैं, बैलेंस डाइट, बहुत आसान है कहना कि सब्जियां खाओ, डेयरी का एक सोर्स लो और साथ में दालें खाओ, बट वो अवेलेबल कैसे हो कंज्यूमर को? उसी के लिए तो रेगुलेशन जरूरी है. कंज्यूमर अगर डेयरी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम अपने पेशेंट्स को डायरेक्टली मना कर देते हैं कि अगर आपको सीरियस जेनेटिक डिजीज है, डिस्पोजिशन है किसी डिजीज के लिए, तो आप ऐसी चीजें जैसे कि सफेद आटा, सफेद चावल, पनीर, डायरेक्ट डेयरी, सफेद चीनी, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए.
0: हाँ,
2: और ये छोड़ने का मतलब, फिर उनका क्वेश्चन होता है कि सब्जियां और फल कहाँ से लें, वो भी कंटेमिनेटेड है. हम स्नैक्स कहाँ से लें, वो भी कंटेमिनेटेड है. तो जितना हम सोच रहे हैं कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल है आज लिमिटेड इनकम में अच्छा खाना लेना और अपनी फैमिली को खिलाना. और
0: और
2: ये
0: जबकि एज अ
2: कारण है
0: डॉक्टर,
2: मानने
0: एज अ डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आप, मुझे लगता है कि जब भी कोई आपके पास आता होगा और सप्लीमेंट्स की बात करता होगा, तो आप सिर्फ यही कहती होंगे कि सप्लीमेंट्स जो हैं आपको एड ऑन हेल्प करने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए है, बट मेजरली आपको खाना खाना है।
2: बिल्कुल. हमारा शरीर बना ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, टू अब्सॉर्ब, ब्रेक डाउन फूड. और उसके लिए हमें फैट भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए. वो एक सप्लीमेंट से नहीं आता, सप्लीमेंट सपोर्टिव हो सकता है. तो बिल्कुल, आई थिंक ये प्रोग्राम से आप एटलीस्ट ये जरूर कन्वे करें कि जितना हो सके हम अपने खाने को क्लीन करने की कोशिश करें, जितना हो सके हम कम खाएं पर अच्छा खाएं. वो उतना भी
0: ये
2: हम
0: एक बहुत बड़ी
2: करेंगे
0: चुनौती है डॉक्टर मंजरी। वाकई हम ऐसे समय में हैं जहां पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर भी है। मुझे लगता है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंटर लेवल पे हो, सभी को एक साथ आकर के काम करना होगा इस डायरेक्शन में, तभी जाकर इसका कुछ हल, कोई समाधान निकल सकेगा। डॉक्टर समीर, आपको नहीं लगता है कि अब ऐसे समय में हम जी रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम आप भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, कि अब वो समय आ गया है कि मिलावट को हम सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि स्वास्थ्य के खिलाफ एक अपराध के तौर पर देखें और उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे हम देख रहे हैं पिछले 20 सालों के अंदर, और जैसे डॉक्टर मंजरी ने भी बताया कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीज का ग्राफ ही ज्यादा बढ़ा और कम्युनिकेबल डिजीज का ग्राफ कम हुआ। लाइफस्टाइल डिजीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा फूड का, और फूड में भी खासतौर पर कर लें कि अडल्ट्रेशन का। और जितनी अभी देखिए रिसर्च आ रही है भारत को लेकर, उसमें सब यही बार बार बात कर रहे हैं कि भारत में प्रोटीन डेफिशिएंसीज है, मतलब आपका मसल हेल्थ उतनी ज्यादा नहीं है। अब प्रोटीन के नाम में, जैसे अगर वेजिटेरियन लोग हैं तो उनके पास तो बड़े लिमिटेड सोर्स होते हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन में ज्यादातर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और पनीर की सब बात करते हैं, इस चीज को लेकर ही अवेयरनेस है। और पनीर में ही जैसा हम देख रहे हैं, और पनीर में खाली, चलिए ये तो एक हम एनालॉग पनीर की बात करें, एनालॉग पनीर के बारे में लोग वैसे जानते ही नहीं है बहुत ज्यादा, एनालॉग पनीर है क्या, वो मेन एक पनीर के नाम से जानते हैं। तो पनीर में भी अब डेयरी वाला पनीर आपके पास ऑप्शन बचता है, अगर डेयरी पनीर के अंदर भी अडल्ट्रेशन मिलेगी तो एक काफी बड़ी चुनौती रहेगी, खासतौर पे हम जब प्रोटीन डेफिशिएंट, क्योंकि हम ज्यादातर आजकल बात करते हैं कि ठीक है आपको प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट लेनी है, बट प्रोटीन भी अगर अडल्ट्रेटेड है और फाइबर भी आपका, जिसमें वेजिटेबल वगैरह की बात करें, तो एक डेफिनेटली हेल्थ के लिए तो एक काफी बड़ी चुनौती आ जाती है। पर यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे खासतौर पर अगर हम अपनी नियम और कानून की देखिए तो वो बने हुए तो हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन मैं समझता हूँ उसके ऊपर और काफी अधिक करने की जरूरत है, ताकि इसको काफी हद तक हम मिनिमाइज कर पाए, अडल्ट्रेशन को हम रोक पाए। क्योंकि हम फूड बैन करके तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर हम डेयरी को भी बैन करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बचेंगे नहीं। और साथ के साथ इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि भारत बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी बहुत मैटर करती है। कि आपको अफोर्डेबल फूड, मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए और वो अफोर्डेबल भी हो,
0: तो जिस
1: वो भी
0: तरह से
1: उतना
0: हमारी
1: बहुत
0: चर्चा
1: जरूरी
0: चल रही है डॉक्टर समीर, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लंबे समय से, कहने को तो एजेंसियां, तमाम एजेंसियां अपनी काम अपने अपने अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन उसके बावजूद जब हम देख रहे हैं कि मिलावट रुकने का नाम नहीं ले रही है, और धीरे धीरे हर कुछ समय में हम देख रहे हैं कि हर एक खाने पीने की चीजों में आए दिन हमें मिलावट की खबरें देखने सुनने को मिल रही है, तो क्या हमारे पास एकमात्र रास्ता बचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम अपने घर में ही जो चीजें हों बनाएं, उगाएं और खाएं भी?
1: देखिए, बनाने का, जैसे अब कई बार लोग शब्दों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नेचुरल है, क्या सेफ है, क्या फेक है, क्या ऑर्गेनिक है। अब कई बार ऑर्गेनिक समझकर लोग उसको खाते हैं, पर ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल नहीं, नेचुरल अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। ऑर्गेनिक को तो पका उगाया कैसे जाता है, मतलब उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब का इस्तेमाल है कि नहीं, तो ये सब चीजें समझना जरूरी है। पर हाँ, जैसे आपने बताया कि सरकार के स्तर पर काम हो रहा है, जैसा अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि चलिए अब हमारे पास इंसिडेंट काफी सामने तो आ रहे हैं, पहले कई बार हम ऐसे इंसिडेंट इतने ज्यादा देखते नहीं थे कि इतना ज्यादा पकड़ा जा रहा है। तो जब ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं तो लोग भी थोड़ा ज्यादा अवेयर होते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि फसाई के अंदर हमें रैपिड टेस्टिंग को, इन सबको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मोबाइल वैन वगैरह ये सब टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हेल्थ की भी हम बात करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्टिंग, ऐसे ही फूड में भी हमें स्क्रीनिंग टेस्टिंग ये ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि हम अडल्ट्रेशन को कम से कम मिनिमाइज कर सके, और व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा। जैसे स्कूल के स्तर पर अब शुगर बोर्ड वगैरह ये सब चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, इसी तरह से ये सब चीजें भी कि आपके लिए क्या खाना, कैसे पहचान करनी है आपके लिए राइट खाना किस तरह का है, तो ये सब चीजों पे मैं समझता हूँ जिस तरह से अभी कुछ 4-5 सालों में डिस्कशन हो रहा है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, और सरकार और व्यक्तिगत स्तर दोनों स्तर पर इस पर काम होना,
0: दोनों स्तर पर काम होना चाहिए। अभिजीत जी, आपको क्या लगता है कि अब वाकई जो इस तरह की चीजें, क्योंकि बैन के बाद भी कई ऐसी जगह है, ऐसा नहीं है कि आज बैन लग गया है तो फिर अब ये बंद हो जाएगा, उस स्टेट में भी बंद हो जाएगा, लोग छुपे ढके छुपे ये चीजें करते रहते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। अब स्ट्रीट फूड में ही हो सकता है इस्तेमाल हो जाए, मे बी बड़े रेस्टोरेंट में ना जाए, लेकिन हो सकता है स्ट्रीट वेंडर्स जो है वही खरीद लें एनालॉग पनीर और समथिंग इस तरह की चीजें। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो कोई भी अपराधी है और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे गैर जमानती धारा के तहत ऐसा कुछ अपराध तय करना चाहिए कि वो गैर जमानती हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस वो हो जाना चाहिए हमारे देश में?
3: ये नो टॉलरेंस होना चाहिए इस पे। और मैं टेस्टिंग पे, डॉक्टर साहब ने अभी जो बात बोली, मैं उस पे आपके चैनल के माध्यम से कंज्यूमर को एम्पावर करना चाहूंगा। कंज्यूमर वॉइस पिछले 40 साल से इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहा है, 300 से ज्यादा हमने प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया है, हमारे वेबसाइट में कंज्यूमर जा सकता है और उसको प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग सकता है कौन से प्रोडक्ट में क्या डिटेल्स है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत कुछ क्लेम करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल अननोन ब्रांड के जो है वो टॉप करते हैं परफॉर्मेंस में जब हम प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं। सो आप हमारे वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, हमने काफी अच्छी तरह से कंज्यूमर्स को उसमें गाइड किया हुआ है। हर दूसरे महीने में हमारी एक मैगजीन आती है फॉर कंज्यूमर्स, जहां पे हम प्रोडक्ट टेस्टिंग के रिजल्ट देते हैं।
0: आपने टूल की बात कर दी। डॉक्टर मंजरी, एक आखिरी सवाल आपसे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त सुन रहे हैं आपको?
2: मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को तो करना चाहिए, बट कंज्यूमर को भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आपकी हेल्थ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्लान करें, थोड़ा सा ये समझें कि आप ऑफिस जा रहे हैं और आपको लंच की ज़रूरत है, आपको शाम को भूख लगेगी और उस वक़्त बाहर से ऑर्डर करने की जगह अपने घर से कुछ सलाद, कुछ नट्स, सीड्स, कुछ घर का बना हुआ नाश्ता ले जाएंगे तो ऑलवेज बेटर है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्टली हम डिपेंड हो गए हैं बाहर के खाने पे, और इसलिए मिलावट ज़्यादा है। घर पे आप अगर फ्रेश पनीर ला रहे हैं, अपने घर पे बना रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
2: तो एक सिंपल सी बिल्कुल चीज़, आपका खाना और आप
0: बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के आपको सतर्क रहना है, आपको जागरूक रहना है, और तमाम एजेंसियां अपने अपने लेवल पर तो काम कर ही रही है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल भी आप लोगों को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छा

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: सावन के पावन माह में हर तरफ आस्था उमड़ रही है। कांवड़ियों की भक्ति साधना से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। अब तैयारियां सावन के शिवरात्रि की है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तमाम कांवड़िये इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी यात्रा संपन्न करेंगे।

0: सावन के पावन माह में हर तरफ भोले की भक्ति के अद्भुत रंग बिखरे हैं। शिव भक्तों की कांवड़ साधना के रंग निरंतर गहराते जा रहे हैं। पवित्र नदियों से कांवड़ लेकर लाखों कांवड़िए शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए निकल पड़े हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और सावन की शिवरात्रि पर तो शिवालयों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। इस बार सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त सुबह 4:53 पर शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि 12 अगस्त की रात 1:51 तक रहेगी। ऐसे में शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ज्यादातर कांवड़िए इस पावन दिन ही पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिवलिंग के अभिषेक से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तो हर तरफ कांवड़ियों के जत्थे ही दिख रहे हैं। यहाँ से कांवड़िए ट्रेन में सवार होकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इनमें से कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो यहाँ से निकलकर सुल्तानगंज पहुंचेंगे, वहां से पवित्र गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ेंगे। कांवड़ियों की भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सावन के पावन महीने का शिव भक्तों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस विशेष माह में पवित्र नदियों से लेकर शिवालयों तक भक्ति की अविरल धारा आस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के जयकारों से आसमान गूंज उठता है और कई दिनों की साधना के बाद कांवड़ यात्रा संपन्न करके शिव भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। चंदौली से उदय गुप्ता और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: अंदर।
1: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। फाइनली दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, रुक रुक कर सही, लेकिन पूरे दिन पूरी रात बारिश हो रही है। कैसा लग रहा है?
2: सुबह जब आंखें खुली ना तो भाई बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली लेट ही सही बारिश दिखी तो सही।
1: और इतना लोगों को हम जरूर कहेंगे, अब आप सुनते सुनते जो लोग दिल्ली एनसीआर के नहीं है वो जान गए होंगे कि हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ सेक्टर वाइज बारिश होती है, लेकिन ये पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और लगातार थोड़ी ड्रिजलिंग हम कह सकते हैं, थोड़ी देर ड्रिजलिंग हो रही है फिर वो रुक जाती है और फिर होने लगती है।
2: क्योंकि बताया भी था ना कि अलर्ट है, पूरे दिन बारिश होगी और दो तीन दिन तक होगी, तो वीकेंड अच्छा होने वाला है।
1: क्या बात है, हमारा तो बारिश देख के ही मूड अच्छा हो जाता है। और बाकी आपको बता दें, सभी का मूड बहुत ही अच्छा हो गया है। सावन के महीने में ठंडी ठंडी बारिश ने दिल और दिमाग को तरोताजा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से भरे दिन रात फिलहाल खुशनुमा हो गए हैं। तो कैसा है दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश का मिजाज, इसको तफसील से बताएंगे और साथ ही चार धाम और कावड़ यात्रा में भक्ति की अनोखी और प्यारी तस्वीरें आई हैं वो भी दिखाएंगे।
2: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। 24 सितंबर से जापान में हो रहे हैं एशियन गेम्स, ऐसे में T20 के लिए चुने गए 15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब है, इसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में पहली बार भारत को गोल्ड दिलाने वाली अस्मिता डे की जुबानी, उनके संघर्ष की कहानी भी आपको सुनाएंगे। साथ ही और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी के तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण की भी इजाजत। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, हवा की गुणवत्ता में भी सुधार। बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में चेतावनी के स्तर पर पहुंचा गंगा का जलस्तर, सुरक्षा कारणों से खाली कराए जा रहे तटीय इलाके। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आए, बद्री विशाल के दर्शन को मड़ा है भक्त। शिव भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकली महिलाएं, बागपत में पूर्व सैनिक ने पेंशन के पैसों से लगाया कांवड़ शिविर। अगस्त को लगेगा साल 2026 का सबसे दुर्लभपूर्ण सूर्य ग्रहण, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल में दिखेगा सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।
2: देखिए, सावन का महीना है और ऊपर से बारिश की रिमझिम फुहारें, आज सुबह से ही मौसम बेहद ही हसीन हो चुका था और शाम तक भी अभी भी मुझे लग रहा है दोबारा बारिश आ सकती है। क्या लगता है?
1: एकदम काले काले बादल, मैं जब ऑफिस आ रही थी तब भी मुझे एकदम से वैसा दिखा, ड्रिजलिंग वही, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और बादल पूरे काले थे, एकदम मूड बन जाता है, मतलब ऑफिस आने में भी मजा आता है। मैं तो अच्छे अच्छे गाने सुन रही थी और मुझे लग रहा था ऑफिस भी जाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, गरम गरम चाय पियेंगे। अभी तक आपने चाय नहीं डाली?
2: अभी बस मैं डालने वाली हूँ, मैंने सोचा पहले मौसम की बात कर लेते, लेकिन एक और बदलाव मैंने जो महसूस किया, कल जो था बादल तो थे लेकिन उमस बहुत थी, लेकिन आज वो उमस नहीं है, तो
1: एक अच्छी बात है।
2: हाँ, इसीलिए ही आपका मूड अच्छा हुआ था। तो देखिए, खूबसूरत तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मानसूनी बादलों ने देर रात से ही अपना डेरा जमा लिया है और आज सुबह जब लोगों की आंख खुली तो उनका स्वागत ठंडी ठंडी बारिश ने किया। कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए बारिश किसी राहत की सौगात से कम नहीं है।
1: बिल्कुल, आपको देखिए हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली में किस तरह से मौसम झूम कर आया है, मानसून किस तरह से, मानसून की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है और सबसे अच्छी फीलिंग भी है दीपिका, खास करके इस समय जब अगर आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है ट्रैफिक एक अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें उसके दूसरे पहलू को, पॉजिटिव आस्पेक्ट को, तो मौसम खुशनुमा हो जाता है। ये हरियाली आप जो अभी ही देख रही हैं। बाकी और किसी भी महीने में आपको ऐसी ग्रीनरी नहीं देखने को मिलेगी। सड़कों पर भी जो लोग चल भी रहे हैं उनके चेहरे पे एक अलग से मुस्कान दिखेगी। तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें कि हम नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे NCR में इस वक्त लगभग इसी तरह की तस्वीरें आ रही है। कहीं हल्की फुहारें पड़ रही हैं तो कहीं झमाझम बारिश ने मौसम को पूरी तरह से सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि दिन भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आसमान पर घने बादलों का पहरा है और सावन की ये भीगी भीगी फिजा लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है। तो सावन का महीना और दिल्ली पर मेहरबान मानसून, राजधानी में रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से बेहाल लोगों के लिए ये फुहारें किसी राहत के तोहफे से कम नहीं। सुबह से ही बादलों ने आसमान पर डेरा जमाया हुआ है और रह रहकर हो रही बारिश ने दिल्ली को एक अलग ही खूबसूरती में रंग दिया है। कहीं भीगी सड़कें हैं तो कहीं ठंडी हवाओं के बीच लोग इस सुहाने मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं।
2: और देखिए, यकीन मानिए, ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदल रही है बल्कि लोगों का मूड भी बदल रही है। तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है और उमस भी काफी हद तक गायब हो गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में अगले 3 दिनों तक ऐसा ही खुशनुमा और बारिश वाला मौसम बना रह सकता है। यानी फिलहाल दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने वाली है और सावन की रिमझिम फुहारें यूं ही शहरों को तरोताजा करती रहेंगी।
0: मौसम के बदले मिजाज ने पूरे दिल्ली NCR का मिजाज बदल कर रख दिया है। दिल्ली में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, देर रात भी बारिश हुई और अभी तक ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सुबह से बहुत तेज बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार ऐसी रिमझिम बारिश बनी हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ने एक बार फिर से पूरे देश में रफ्तार पकड़ी है, जिसका असर दिल्ली NCR में भी देखा जा रहा है। हालांकि कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि वहां भारी बारिश हो सकती है। कई राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है और दिल्ली NCR के लिए भी कहा गया है कि 8 तारीख तक ऐसे ही लगातार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। जिस तरह की मानसून की बारिश का इंतजार दिल्ली NCR वाले लंबे समय से कर रहे थे, अब वो बारिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। पिछले 3-4 दिन से मौसम तो अच्छा बना हुआ था, लेकिन मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी थी। थोड़ी सी बारिश होती थी, फिर धूप, उसके बाद उमस और फिर से आसमान में काले बादल छा जाते थे। लेकिन अब आज जिस तरह से देर रात से माहौल बदला है, उसके बाद लगातार आप देखिए कि बारिश हो रही है और फिलहाल ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बारिश की वजह से ऑफिस टाइम पर कई जगह भारी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद जो गर्मी थी, उमस थी, उससे अब काफी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कई लोग बिना छाता के भी बाहर निकले हैं, इस हल्की हल्की बारिश का आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये राहत पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी आफत बनकर जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन दिल्ली NCR वालों को फिलहाल 8 अगस्त तक ऐसी ही बारिश के मजे मिलते रहेंगे। और कहा जा रहा है कि 8 अगस्त तक दिल्ली NCR में रुक रुक कर ऐसे ही बारिश लगातार होती रहेगी। कैनवी शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
5: दिल्ली NCR में मॉनसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में ही सुबह से ही अलग अलग इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी गई और सबसे ज्यादा जो बारिश है वो देश की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में हुई, जहां पर 28 mm से ज्यादा की बारिश जो है वो दर्ज की गई। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के लिए अच्छी खासी बारिश, गरज चमक के साथ जो है मध्यम से भारी वर्षा की जो है चेतावनी जारी की है। वहीं अगर हम देश की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त मानसूनी बारिश है वो देखी जा रही है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो इस वक्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में जो है वो देखी जा रही है। उड़ीसा, बिहार में भी जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। और अगर हम दक्षिण इलाके की बात करें तो वहां पर कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरल में भी बारिश की जो है शुरुआत हो चुकी है। तो लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी नहीं रहने वाला है। कुछ दिन तक यूं ही बारिश रहेगी। अगर बात दिल्ली NCR की जाए तो आज और कल के लिए IMD द्वारा जो है ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश जो है वो लगातार इसी तरीके से होती रहेगी। लेकिन देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पे बारिश का सिलसिला बस कुछ दिन तक जारी रहेगा। आने वाले 3 से 4 दिन के बाद वापस से लोगों को उमस से एक बार फिर से परेशानी हो सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, सुहाना हो चुका है और लगातार बारिश की वजह से जो है तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, अगर आप दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत के आसमान की तरफ नजर डालेंगे तो हर तरफ काले घने बादलों का डेरा है। पहाड़ों पर तो मानो बादल खुलकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड की वादियों को ठंडक से भर दिया है। लेकिन इसी मौसम के बीच चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी पूरे शबाब पर है। यानी हर तरफ बारिश का इम्तिहान है तो दूसरी तरफ आस्था का अटूट विश्वास है।
6: बिल्कुल, आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन हुआ है, कुछ रास्ते जरूर प्रभावित हुए हैं लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से उन्हें तेजी से दोबारा खोल दिया गया है। और यही वजह है कि मौसम चाहे जितनी मुश्किलें खड़ी करे, श्रद्धालुओं के कदम रुकते नजर नहीं आ रहे। चारधाम यात्रा मार्ग पर एक बार फिर यही तस्वीर दिखाई दे रही है कि जब आस्था मजबूत हो तो खराब मौसम भी उसके रास्ते की दीवार नहीं बन पाता।
7: उफनती अलकनंदा किनारे मानसूनी बादलों से घिरा बद्रीनाथ का विशाल आंगन, कभी रिमझिम तो कभी झमाझम हो रही बारिश ने भगवान विष्णु के इस पावन धाम का माहौल काफी सर्द कर दिया है। लेकिन भगवान बद्री विशाल के दरबार में श्रद्धालुओं का उत्साह इन तस्वीरों से आप सहज समझ ही सकते हैं। तभी तो भारी बारिश के बीच भी आस्था और श्रद्धा से भरी चारधाम और कांवड़ यात्रा यहाँ लगातार जारी है। पूरे चमोली जिले में इन दिनों बरसाती माहौल, मौसमी अलर्ट और रास्ते की तमाम मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन इन तमाम चुनौतियों पर पार पाते हुए उत्साही आस्थावानों की टोलियां चार धाम दर्शन करने या तो पहुंच रही हैं या दर्शन कर खुशी खुशी वापस जा रही हैं।
8: बद्रीनाथ धाम सहित पूरे जनपद में इस समय बारिश हो रही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम में उफान पर है, लेकिन जो आस्था का जगर देखें तो मौसम अलर्ट के बावजूद श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो इस समय भी लगातार बनी हुई है।
7: भारी बारिश पूरे वेग में बहती उफनती अलकनंदा, बावजूद इसके मौसम की बेरुखी का श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। वो तो बस भोले बाबा और भगवान बद्री विशाल का नाम लेते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं।
9: भोले बाबा का नाम लेके रास्ते में बहुत ज्यादा मतलब बारिश इतनी हो रही है कि आपको हम बता नहीं सकते। पूरा अभी भी देखो बारिश हो ही रही है, ठीक है, बट हाँ भोले बाबा का नाम लेके हम पूरे रास्ते को सफर कर रहे हैं। कल दिल्ली से निकले हुए हैं कल से और आज कंटिन्यू चले जा रहे हैं, बट बारिश भोले बाबा ने चाहा है तो बद्रीनाथ जा रहे भी। बद्रीनाथ अभी जल्दी से जल्दी बद्रीनाथ पहुंचेंगे।
10: ये बोले कि हम दिल्ली से आए हैं और अभी हम दिल्ली से 4 तारीख को निकले थे और अभी हम दिल्ली से कंटिन्यू चले जा रहे हैं। बारिश भी हो रही है लेकिन एंजॉय भी हो रहा है। लैंडस्लाइड भी हुई है लेकिन वहाँ रोक लिया जाता है। यहाँ के प्रशासन भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे कोई दिक्कत होती है पुलिस वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोग अपनी मस्ती चले जा रहे हैं।
11: बोले हम तो यही कहेंगे कि जा रहे हैं बस भोले की माया से, और तो यहाँ पे आने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और यही कहेंगे कि जो भी भोले आ रहे हैं बढ़िया से मतलब आइए अपना दर्शन कीजिए।
7: बारिश से बड़ी ठंड के बीच बरसाती और गर्म कपड़ों की सलाह भी दी जा रही है। ऐसे में श्रद्धालु भी अपनी अपनी सहूलियत को देखते हुए ये उपाय अपना रहे हैं और बद्री विशाल के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद पाकर खुश हो रहे हैं।
8: यात्रा अभी निरंतर जारी है, मार्ग बंद हो रहे हैं लेकिन उन्हें खोला जा रहा है। इस समय भी जो कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़िये जो हैं जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा में इस समय लगातार बाइकों से पहुंचने पे लगे हैं। गुट के गुट आ रहे हैं, लगातार बद्रीनाथ की ओर ये बढ़ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। हर तरफ एक उत्साह दिखाई दे रहा है। वही बद्रीनाथ धाम में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बीच श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को जा रहे हैं।
7: वैसे मानसूनी सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन जो श्रद्धालु इस समय धाम पहुंच रहे हैं उन्हें शांत माहौल के बीच भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। भले ही पूरे चमोली जिले में भारी बारिश का अलर्ट है, यात्रा मार्ग पर कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक और BRO की टीमें रास्ते को दुरुस्त कर दे रही हैं। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की आवाजाही अभी बनी हुई है। फिलहाल तो झमाझम बारिश, कड़ाके की ठंड और मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद चार धाम यात्रा रूट पर श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हैं और खासकर बद्री विशाल धाम में तो खराब मौसम पर आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। चमोली से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वहीं कावड़ यात्रा की रौनक की अगर हम बात करें तो इस बार श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर रहा है और हर दिन कोई ना कोई ऐसी अनोखी कावड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
2: बिल्कुल देखिए, यानी ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, उत्साह और अद्भुत कल्पना शक्ति का चलता फिरता उत्सव बन गई है। जैसे जैसे भोले के भक्तों का कारवां मंजिल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के नए नए रंग भी बिखरते जा रहे हैं। कहीं कला से सजी कावड़ है तो कहीं अनोखी झांकियां हैं तो कहीं भक्ति का ऐसा जुनून जो हर देखने वाले को अपनी ओर खींच रहा है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके

0: भोले के भक्त और भक्त की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कावड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है, तो कोई कावड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कावड़ लोगों को अपनी ओर खींच ले रही है, तो कहीं हाइड्रोलिक कावड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर भी कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार की कावड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना दे रहा है। इस कावड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कावड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कावड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद कर लेना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं कि ये कावड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं तो इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कावड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कावड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कावड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कावड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल ही हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कावड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कावड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कावड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं साउथ सुपरस्टार धनुष के इस अंदाज से जिसने लाखों दिलों को जीत लिया है। स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी धनुष अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। हाल ही में वो चेन्नई के उसी स्कूल पहुंचे हैं जहां उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी और खास बात यह है कि अपने पुराने स्कूल को उन्होंने 3 मंजिला नई इमारत की सौगात दी है और उसके उद्घाटन के लिए वो खुद वहां पर पहुंचे।
2: बिल्कुल, तस्वीरें भी सामने आई है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा किसी इमारत की नहीं बल्कि धनुष के संस्कारों की हो रही है। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया यानी कि पैर छुए और ये नजारा देखकर हर कोई भावुक हो गया।

0: कहते हैं बचपन में मिले संस्कार कभी जाते रहे। सालों बाद साउथ सुपरस्टार धनुष जब अपने पुराने स्कूल पहुंचे तो वहां उनका वही संस्कार नजर आया। धनुष ने अपने गुरुओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। एक सुपरस्टार का अपने गुरुओं के प्रति ये सम्मान हर किसी के लिए नजीर बन गया। चेन्नई के सालीग्रामम में मौजूद ये वही थाई सत्य मैट्रिकुलेशन स्कूल है जहां कभी धनुष ने जिंदगी का ककहरा सीखा था। एलकेजी से लेकर 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी और अब वर्षों बाद जब धनुष अपने स्कूल पहुंचे तो न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा किया बल्कि अपने स्कूल को एक खास तोहफा भी दिया। धनुष ने स्कूल के लिए अपने खर्च से 3 मंजिला कंक्रीट की इमारत बनवाई है। नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर धनुष अपने परिवार, पुराने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौजूद रहे। इसी दौरान धनुष ने अपने टीचर्स के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। गुरुजनों के लिए धनुष के इस सम्मान ने लोगों का दिल जीत लिया। धनुष ने अपने शिक्षकों के साथ तस्वीर खिंचवाई और उनके साथ खाना भी खाया। धनुष ने इस मौके पर कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि फिटनेस और मेडिटेशन के प्रति जागरूकता को स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बनाएं। 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी अमल किया जाए, खास तौर पर फिटनेस के लिए जागरूकता। अगर स्कूल ने इसे पहले से ही अपनाया हुआ है तो बहुत अच्छा है। मेरे कई दोस्त यहाँ मौजूद हैं जो फिटनेस की अहमियत को समझते हैं। स्कूल की इस नई इमारत से धनुष का नाता भी अब हमेशा के लिए जुड़ गया है। नई बिल्डिंग का नाम धनुष ब्लॉक रखा गया है। धनुष ने आगे भी स्कूल की दूसरी इमारतों के नवीनीकरण और नई इमारतें बनाने में मदद करने की बात कही है। अपने बीच स्टार धनुष को पाकर स्कूली बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। धनुष को फूल और बुके देकर उन्होंने प्यार जताया और अपना डांसिंग टैलेंट भी दिखाया। धनुष ने भी बच्चों के साथ डांस कर एहसास दिलाया कि वो भी उन्हीं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं जो पीढ़ियां गुजरने के बाद भी कायम रहते हैं। भारत के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ऐसे ही एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बेहद करीब खड़े हैं। एशियन गेम्स 2026 में अगर उनके बल्ले से शतक निकला तो इतिहास वो बदल सकते हैं।
2: बिल्कुल, इतिहास बदल सकते हैं। वैभव का ये शतक उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र का शतक वीर बना सकता है, यानी करीब 30 साल के कायम शाहिद अफरीदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूट सकता है।

0: जब युवाओं की उम्र सपने देखने की होती है तब कुछ किशोर इतिहास लिखने निकल पड़ते हैं। क्रिकेट की दुनिया एक ऐसे ही उभरते यंग स्टार की दस्तक महसूस कर रही है जिसकी हर पारी अब रिकॉर्ड बुक का नया पन्ना बनती जा रही है। 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा रहे वैभव सूर्यवंशी अब एक और बड़े इतिहास के मुहाने पर खड़े हैं। अब एशियन गेम्स में वैभव के सामने ऐसा गोल्डन चांस है जो क्रिकेट इतिहास की रिकॉर्ड बुक हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर एशियन गेम्स में वैभव के बल्ले से शतक और निकला तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन जाएंगे। 24 सितंबर से जापान में एशियन गेम्स के तहत T20 मुकाबले होंगे और भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी का चयन हो चुका है, यानी अब उनके पास सिर्फ भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का ही नहीं बल्कि अपने बल्ले से क्रिकेट इतिहास का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय शतकवीर बनने का सुनहरा मौका भी होगा। फिलहाल पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है। अफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ महज 16 वर्ष 217 दिन की उम्र में वनडे शतक जड़ा था। करीब 3 दशक बीत गए लेकिन कोई भी पुरुष बल्लेबाज इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब वैभव सूर्यवंशी की पहुंच में है। फिलहाल तो ये रिकॉर्ड रवांडा की फेनी के नाम है। उन्होंने मार्च 2026 में महज 15 वर्ष 223 दिन की उम्र में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शतक जड़ा था। यानी अब वैभव सूर्यवंशी के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है क्योंकि 24 सितंबर को वैभव की उम्र 15 वर्ष 181 दिन होगी। ऐसे में वो फेनी के 15 वर्ष 223 दिन वाले विश्व रिकॉर्ड से 42 दिन छोटे होंगे। यही वजह है कि एशियन गेम्स वैभव के लिए सिर्फ एक मल्टी गेम इवेंट नहीं बल्कि इतिहास की दहलीज साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो एक और खुशखबरी भारतीय जूडो खेल से भी इन दिनों खूब चर्चा में है और ये गुड न्यूज दी है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो खेल इवेंट में पहली बार गोल्ड मेडल लाई अस्मिता डे ने।
2: बिल्कुल, आपको बता दें कि 23 साल की अस्मिता वो उभरती खिलाड़ी हैं जिनमें हौसला भरपूर है, लेकिन कॉमनवेल्थ से पहले अपने पिता के निधन और उनके संघर्षों को अस्मिता ने कैसे याद किया और कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो गेम में भारत को उन्होंने पहला गोल्ड जिताया, उन्होंने खुद इसकी कहानी हमारी सहयोगी पूजा शाली से की, सुनिए।
3: इतिहास में नाम दर्ज करना हो तो अस्मिता दे की तरह मेहनत और फिर उसके बाद हिस्ट्री क्रिएट करना, द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन जूडो, दिस इज आवर हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड बाय इंडिया इन जूडो इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अस्मिता, टेक्निक सबकी सेम होती है, तो ऐसा क्या हुआ कि एक 23 साल की इंडिया की लड़की ने जीत हासिल करी? क्या वो मेंटल कॉन्फिडेंस था या कोई ट्रिक थी जिसमें आप सक्सेसफुल?
4: जी मैम, वो मेंटल का वो था और माइंडसेट था मेरा कि मुझे मारना ही है तो शायद उसी वजह से मैं जीती हूँ, मतलब जीतना ही है, हराना ही है करके।
3: कब आपको लगा कि ये जीत तो मुझे मिलने वाली है क्योंकि बीच में जो कनाडा के ओपोनेंट थे थोड़ा सा मुश्किल हो?
4: जी मैम, वो उसने पहले मुझे स्कोर मार दी तो मेरे पास बस 2 मिनट बची थी, तो मुझे तब लगा 2 सेकंड के लिए ये लगा था शायद मैं हार जाऊंगी, बट फिर मेरे जो कोच है यशपाल सोलंकी सर, उन्होंने बोला ये गोल्ड हमारा है, तू मारेगी तू ले जाएगी, तो तब मेरे को फिर और मैं थोड़ा मोटिवेट हो गई थी कि हाँ मैं मार सकती हूँ। उसके 40 सेकंड बाद, मतलब उसने स्कोर मारने के 40 सेकंड बाद मैंने फिर मार दी, फिर बराबर हो गए। हमारे जूडो में ऐसे होता है 4 मिनट तक अगर दोनों बराबर चलते तो फिर उसके बाद गोल्डन स्कोर हो जाते, गोल्डन स्कोर के बाद जो पहला स्कोर मारते वो विनर होते, तो मैंने फिर उसके बाद पहला स्कोर मारी और मैं विनर बनी।
3: क्या अपने आप को आपने बोला कि ये अपॉर्चुनिटी मैं जाने नहीं दे सकती?
4: जी मैम, क्योंकि ये हमारे देश के लिए और भारत के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे फैमिली के लिए, सबके लिए, मुझे मैंने सोचा कि नहीं ये गोल्ड मेडल मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे यूपी पुलिस के लिए, मतलब मुझे लेना ही लेना है, चाहे छीन के लेना है चाहे, यही चाहता था मैं।
3: आपके लिए टाइम आसान भी नहीं था, आपके फादर की डेथ हो गई थी और सडनली हुआ, और वो उन मुझे बताइए व्यूअर्स भी कि कितना सपोर्ट आपके पिताजी की तरफ से था, क्या उन्होंने कभी कहा कि तू लड़की है तू नहीं कर पाएगी, तू छोड़ तू घर का काम कर, तो ऐसा हुआ था या वो सपोर्टर
4: थे? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे पिताजी जो थे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते थे मुझे। मैं कई बार बहुत हार जाती थी इंडिया में और मेरे पिताजी फिर भी बोलते थे तुम एक दिन चैंपियन बनोगे, चिंता मत करो, तुम बस लगे रहो। और मैं वही करती थी, हमेशा लगे रहती थी।
3: तो वही आपके मेन सपोर्टर?
4: जी, मेन सपोर्टर मेरे कोच भी है, जो जिन्होंने मुझे हमेशा मतलब सपोर्ट करके रखा था। हारने के बाद भी सर मेरे, कभी ऐसे होता है ना कि मैं हार जा रही हूँ, साथ छोड़ देते कई बार, मेरे कोच मुझे कभी साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने मुझे उतना ही प्यार और उतना ही मोटिवेट करके रखा जैसे मैं चैंपियन हूँ उनके लिए।
3: पिताजी कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे थे?
4: जी मैम, बहुत ज्यादा थे कि, और मैं अगर पिताजी को बोलती थी ना ये चाहिए मुझे मतलब प्रोटीन के लिए थोड़ा पैसे, मैं कम ही बोलती थी क्योंकि मुझे पता है, तो मेरे पिताजी फिर उसी टाइम बोलते थे कि तू चिंता मत कर, हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं से करके मुझे कर ही देते थे।
3: कैसे करते थे वो पता नहीं,
4: वो मुझे नहीं बताते थे, शायद जानबूझ के बोलते थे तुझे चाहिए तो तू ले, मुझे ये सब मतलब मैं बताते नहीं थे पिताजी। तो
3: क्या काम करते
4: मैम? बस वही साइकिल मैकेनिक थे, ज्यादा पैसे नहीं मिलता था। लॉकडाउन में तो इतना हालत खराब था कि मतलब बस दाल चावल खाती थी, और मेरा वेट भी उस टाइम बहुत कम हो गया था, और मतलब खाने का कुछ होता नहीं था, और बस 100 रुपए मिलता था कभी कभी, तो उसी से थोड़ा बहुत घर चलता था। नहीं,
3: आपको पूरा सपोर्ट किया
4: फिर भी मैं मतलब मेरे पिताजी फिर भी मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए।
3: आज अगर अस्मिता, मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, क्योंकि जब आप जीते तो उनको दिखाने के लिए नहीं था, यही तो मेडल उन्होंने इतना वेट किया।
4: जी बिल्कुल।
3: अगर आज होते पिताजी तो आप क्या कहते उनको मेडल दिखा?
4: वो शायद आज बहुत ज्यादा खुश हो जाते, मतलब मुझे लगता है कि मुझे पता है पिताजी कितना खुश होते, क्योंकि जब मैं सीनियर नेशनल में भी गोल्ड लिया था तो वो बहुत खुश थे।
3: इमोशनल है, मुझे पता है, ये ऐसा टाइम होता है कि गॉड ब्लेस यू, और वो जहाँ भी होंगे वो कह रहे होंगे कि देखो मेरी बेटी ने
4: कर दिखाया।
3: तो क्या मैसेज आप अपनी फैमिली के लिए देना चाहते था?
4: बस इतना ही कहूंगी कि वो लोग बस मेरे पे होप रखे, मैं और भी आगे जाऊंगी और मेडल जीत के आऊंगी, ये मेरा अभी पहला स्टेप है, और मुझे आगे और भी मेडल जीतना अपने देश और फैमिली के लिए।
3: तो लगता है कि यूथ अगर मेहनत करे तो इंडिया का नाम आगे जाएगा बहुत?
4: जी, अगर वो लोग सही से काम करेंगे तो जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो सरकार है वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल है। अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि खेल के गेम के लिए तो बहुत ज्यादा किया है इन्होंने। और
3: कैसा माहौल रहता है, फाइनल सवाल, वहां पे जब आप होते हो? एक तो जूडो बहुत बहुत मशहूर नहीं है स्पोर्ट, आपने जूडो लिया, कैसे लिया, त्रिपुरा में थे आप, कैसे आपको लगा कि मुझे जूडो करना चाहिए? और जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स की स्टेज पे जाते हो जहाँ इतने सारे टैलेंटेड देश के होते हैं, तो क्या कभी लगा कि यहाँ मैं कैसे जीतूंगी?
4: हाँ मैम, मैं बहुत ही प्रेशर में थी, मुझे लगा था मुझे, मैं जो मेरी पहली सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल फाइट थे ये सब में मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेली थी, मुझे ऐसा लगा मैं अपनी जो मेरे जो रियल गेम है वो मैं खेल ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में थी। और फिर उसके बाद फाइनल में तो थोड़ा फ्री होकर खेल पाई थी, बट उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, क्योंकि मेरे को प्रेशर ये था कि मुझे गोल्ड लेना है, जीतना है, एक एक फाइट निकालना है करके। इसलिए
3: यूपी पुलिस वाला रोल पसंद है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन गोल्ड मेडलिस्ट रोल, जूडो का रोल पसंद है?
4: मैम मुझे दोनों ही पसंद है, पर जूडो ज्यादा पसंद है मुझे।
3: एक बार मेडल हमारा जरा व्यूअर को दिखाइए और देखिए, शी इज एन इंस्पिरेशन, इफ यू आर वॉचिंग इट, इफ यू आर जेन जी मिलेनियल एनीवन, इनकी तरह मेहनत देखिए, क्योंकि हम लोग मेडल देखते हैं पर पीछे जो मेहनत है, संघर्ष है, हार्ट ब्रेक है, उसको समझना और उसको काउंटर करके ये मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा अस्मिता आपसे मिलकर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।
2: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आपको हम सूरज की वो सूरत दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को मिली हरी झंडी। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई। बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे भक्त। शिव भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। बागपत में पूर्व सैनिक ने पेंशन के पैसों से लगाया कांवड़ शिविर।
2: चलिए अब रुक कर लेते हैं अंतरिक्ष का। हम नहीं जा रहे हैं, वहां की खबर आपको बता रहे हैं, जहां चांद को लेकर एक बार फिर से दुनिया की दिलचस्पी बढ़ गई है। भारत चंद्रयान 4 की तैयारी में जुटा है। अमेरिका और चीन भी अपने अपने मून मिशन को रफ्तार दे रहे हैं। ऐसे में चांद से जुड़ी एक नई खबर ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया है।
1: दरअसल स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चांद की सतह से टकरा गया है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या इस टक्कर से कोई नई जानकारी सामने आ सकती है और क्या चांद के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठ सकता है।
3: चांद की सतह से रॉकेट की टक्कर का सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो खुद स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने शेयर किया है। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि ये वीडियो AI जनरेटेड है, लेकिन इसकी अहमियत अंतरिक्ष में हुई उस अनोखी घटना से जुड़ी है जो चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने में मददगार हो सकती है, क्योंकि अब ये पुख्ता हो चुका है कि एलन मस्क की इस कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चंद्रमा की सतह से टकरा गया। ये टक्कर भारतीय समय के अनुसार 5 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 12:05 पर हुई। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को जनवरी 2025 में फ्लोरिडा से अमेरिका और जापान के 2 लूनर लैंडर को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का यह हिस्सा अंतरिक्ष में ही रह गया। आखिरकार भटकते हुए वो अब चंद्रमा की सतह से जा टकराया है। चांद की सतह से रॉकेट के उस हिस्से की टक्कर की असली तस्वीरें तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ बेहद खास और दिलचस्प जानकारियां सामने आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि रॉकेट का जो हिस्सा चंद्रमा से टकराया उसका आकार स्कूल बस के बराबर था। ये भी बताया गया है कि उसका वजन 4000 किलोग्राम था। करीब 8,690 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमते हुए वो चांद से जाकर टकरा गया। ये टक्कर चांद के आइंस्टीन क्रेटर के पास हुई। आइंस्टीन क्रेटर चांद के उस हिस्से में है जहां दिन का उजाला रहता है और जो पृथ्वी से दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस टक्कर को आम टेलीस्कोप से देख पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बेहद कम रोशनी थी। बहरहाल जिस स्पीड से ये टक्कर हुई उसको देखते हुए ये चिंता पैदा हो गई कि चांद या अंतरिक्ष के बाकी हिस्से पर उसका कुछ असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसी आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है।
4: This poses absolutely no danger to anyone on Earth or any hardware on the moon. And in fact, scientists are eager to study this impact event as it can help us constrain how to track things like this in the future.
3: वैज्ञानिकों की माने तो करीब 1.5 साल से अंतरिक्ष में भटक रहे रॉकेट के इस हिस्से की राह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे बदल गई। लिहाजा वैज्ञानिक ये अनुमान भी लगा रहे थे कि रॉकेट चांद की ओर जा रहा है और उससे टकरा सकता है।
4: NASA did not purposely plan to have this upper stage impact the moon. However, this is not something we're really concerned about. This is actually a technically accepted and safe method of disposing of hardware in low lunar orbit. And in some cases, mission operators actually choose to end their mission by impacting their hardware on the lunar surface because it's a predictable and trackable strategy for end-of-life hardware disposal.
3: बहरहाल रॉकेट के वजन, उसकी स्पीड और आकार के बारे में पहले से जानकारी मौजूद है, तो ये जानने में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी जरूर बढ़ गई है कि आखिर इस टक्कर का नतीजा क्या हुआ। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद चांद पर बड़ा गड्ढा बन गया है। नासा का ल्यूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर और दक्षिण कोरिया का दानुरी अंतरिक्षयान आने वाले कुछ दिनों में इस नए गड्ढे की तस्वीरें लेंगे। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि तेज रफ्तार की टक्करों से चांद की सतह पर किस तरह के बदलाव होते हैं और उसकी ऊपरी परत के नीचे क्या छिपा है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि टक्कर के कारण चांद की सतह पर उसकी धूल का बड़ा गुबार उठा होगा जो 100 किलोमीटर तक ऊपर गया होगा। चांद पर धूल के गुबार के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी 2009 और 2022 में चीन और अमेरिका के रॉकेट के हिस्सों की टक्कर चांद से हुई थी। वहीं 2019 में चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंडिंग के समय अचानक चांद की सतह से टकरा गया था। वहीं अब फाल्कन 9 के हिस्से की जो टक्कर हुई है उसके नतीजों पर वैज्ञानिकों की नजरें बनी हुई हैं। इस टक्कर से बने नए गड्ढे और उड़ी हुई धूल की परत का अध्ययन करके वैज्ञानिक चांद के कुछ और रहस्यों को बेनकाब कर सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि चांद और सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए सूरज जिसे हम हर रोज देखते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। कल्पना कीजिए कि आग के इस विशाल गोले की सतह पर भंवर उठ रहे हैं, आग के बवंडर घूम रहे हैं और इन्हें पहली बार इतनी बारीकी से कैमरे में कैद किया गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर सोलर टेलीस्कोप ने सूरज की सतह की अब तक की सबसे हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं, जिनमें प्लाज्मा के छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली भंवर साफ दिखाई दे रहे हैं।
5: वैज्ञानिकों का मानना है कि यही रहस्यमय भंवर सूरज में ऊर्जा जमा होने की प्रक्रिया को समझने की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं और यही ऊर्जा आगे चलकर भीषण सोलर फ्लेयर्स और सौर विस्फोटों को जन्म देती है। फिलहाल सूरज पर आग के बवंडर की ये तस्वीर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
2: दिल्ली अब सिर्फ देश की राजधानी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी नई राजधानी बनती जा रही है। नई ईवी पॉलिसी और सब्सिडी का असर अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर तेजी से बढ़ा है और इसी का नतीजा है कि जुलाई में दिल्ली ने ईवी बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है।
1: बिल्कुल, जुलाई 2026 में दिल्ली में 10,307 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
6: इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में दिल्ली ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले महीने जुलाई में दिल्ली में 10,307 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी। ये पहली बार है जब दिल्ली में एक ही महीने में 10,307 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक गई हों। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर नई पॉलिसी निकाली, जिसके बाद जो सब्सिडी है वो और ज़्यादा मिलने लगी और उसी के रुझान अब देखने को मिल रहे हैं। बात सिर्फ जुलाई की नहीं, मई जून जुलाई अगर हम पिछले तीन महीनों की बात करें तो दिल्ली में 30,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक चुकी हैं। टू व्हीलर की संख्या यानी बाइक और स्कूटी की संख्या इनमें सबसे ज़्यादा है। बड़ी बात यह भी कि अब आने वाले वक्त में जिस तरह से त्योहारी सीज़न आएगा यानी दिवाली दशहरा इसके आसपास, अब कंपनीज ये बड़ी उम्मीद लाकर बैठी हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री उन त्योहारी सीज़न में और ज़्यादा बड़ा होगा ये नंबर और ज़्यादा इनकी बिक्री होने वाली है। और अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की संख्या त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ती जाएगी तो आप ये मानिए कि इसका पोल्यूशन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एनवायरनमेंट के लिहाज से भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बहुत ज़रूरी है और ऐसा लगता है कि दिल्ली वाले इस बात को समझ गए हैं, तभी दिल्ली में धड़ाधड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू हो चुकी है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
1: इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हैदराबाद में बच्चों की शेफ गिरी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं, तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देखिए बच्चों को पिज्जा खाना बर्गर खाना तो बहुत पसंद आता
2: बड़ों
1: है,
2: बड़ों को भी पसंद है।
1: ये बात तो सच है, लेकिन सोचिए अगर बच्चे आपको बनाकर खिलाए तो, आपके घर में बच्चे अगर वो ऐसा कुकिंग करके आपको खिलाए तो कैसा लगेगा?
2: सबसे ज्यादा तो एक्साइटेड वो खुद हो जाते हैं कि मैंने ये बनाया,
1: बिल्कुल,
2: और उनके चेहरे पे मुस्कान देके ऑब्वियसली फिर हम भी खुश होते हैं।
1: और घर में बनता है तो थोड़ा ये भी लगता है कि चलो हेल्दी बनाया कुछ।
2: एग्जैक्टली,
1: तो बिल्कुल ऐसी खबर सामने आई है जहां पर बच्चे पिज्जा तैयार कर रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं, तो मजा उसका दोगुना हो जाता है। चलिए आपको हैदराबाद के एक ऐसे अनोखे कैफे में लेकर चलते हैं जहां बच्चे छोटे छोटे शेफ बनकर बड़े कमाल दिखा रहे हैं।
2: बिल्कुल, आपको बता दें छोटा भीम ये थीम है इस कैफे का, जहां पर बच्चे शेफ की कैप पहनकर प्रोफेशनल शेफ की तरह पिज्जा बनाते हैं और अपनी पसंद के दूसरे डिशेस भी बनाना सीख रहे हैं। जूनियर शेफ क्वेस्ट के साथ पेंटिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज भी हो रही है, यानी कि यहाँ पर स्वाद, सीख और मस्ती तीनों का तड़का है। देखिए
3: पिज्जा, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक, जिन्हें देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, जो उनकी फेवरेट डिशेस में सबसे ऊपर रहती हैं। लेकिन अगर इन्हें खाने के साथ साथ बच्चों को इन्हें खुद अपने हाथों से बनाने का मौका मिल जाए तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। ये अनोखा छोटा भीम कैफे हैदराबाद की जुबली हिल्स में है, जहाँ बच्चे सिर्फ ऑर्डर नहीं देते बल्कि खुद शेफ बनकर अपनी पसंदीदा डिश तैयार करते हैं। इस कैफे का सबसे खास पहलू है जूनियर शेफ क्विस्ट, जहां बच्चे शेफ कैप पहनकर किचन में उतरते हैं, प्रोफेशनल शेफ्स की निगरानी में आसान रेसिपी बनाते हैं और कुकिंग के साथ साथ टीम वर्क, किचन सेफ्टी और आत्मविश्वास भी सीखते हैं।
4: इस रेस्टोरेंट में मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे हाथों से सिर्फ खा नहीं रहे बल्कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम वर्क की एक कोशिश के साथ किया गया है। जूनियर शेफ ये कॉन्सेप्ट यहाँ के रेस्टोरेंट में शुरू किया गया है, जहाँ पर बच्चे अपना पिज्जा खुद बना रहे हैं। एक मास्टर शेफ की गाइडेंस में बच्चे यहाँ पर आते हैं, ना ही सिर्फ खाना खाना बल्कि एक घंटा या दो घंटे तक ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं और साथ ही कई सारे डिशेज ऐसी अनोखी क्रिएटिविटी वाली करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है।
3: कार्टून की दुनिया से निकलकर अब छोटा भीम बच्चों को सिर्फ ताकतवर बनने की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और क्रिएटिव बनने की भी सीख दे रहा है।
5: In this on Instagram and really the kids really like this character and all they watch all the TV shows and all. So it's a very nice concept which they have come up with like for the like there's lot of activities.
3: इस कैफे का मकसद बच्चों को सिर्फ खाना खाने की जगह देना नहीं है बल्कि इस कैफे को सीखने, खेलने और मनोरंजन का एक अनोखा केंद्र बनाना है, जहां बच्चों को हेल्दी फूड की अहमियत भी मजेदार तरीके से समझाई जाती है ताकि वो बचपन से ही बेहतर खान पान की आदतें अपना सकें।
6: So, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि वो सिर्फ छोटे हाथ से खेल रहे हैं, उनको नर्चर करना है। ठीक है, एक खाना बनाना भी एक उतना ही बेसिक और उतना ही इम्पोर्टेंट टास्क है जितना पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजें भी हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल एसेंशियल काम पे काम आता है, हर दिन के काम में आता है। प्लस बच्चों के लिए जैसे केटर किया है ऑल वेजिटेबल्स जो बच्चे खाते नहीं है उनको हम लोग ब्लेंड करके सॉसेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे बच्चों को भी मन लगा रहे, कलर के साथ भी वो खेले, उनको और अपील हो। बच्चों को खाने में, पकाने में मजा आना चाहिए जिससे वो आगे जाके भी बेटरमेंट कर सके।
3: बच्चों को भी कुकिंग की ये अनोखी पाठशाला खूब रास आ रही है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की तरह कोई किताबें नहीं, ना ही होमवर्क का दबाव, बल्कि हर पल कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है।
4: आपने क्या बनाया है और कैसा आप इसको?
7: I am very happy to prepare this pizza and drinks.
4: तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेफ मौजूद है जो बच्चों को यहाँ पर बताते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से यहाँ का खाना बनना चाहिए।
3: तो बच्चों के लिए ये कुकिंग कैफे सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है बल्कि नए स्किल सीखने का एक शानदार मंच बना हुआ है, जहाँ वो खुशी खुशी अपनी फेवरेट डिश बनाना सीख रहे हैं, टीम वर्क, अनुशासन और साफ सफाई की आदतें अपना रहे हैं, यानी यहाँ स्वाद के साथ साथ हुनर भी तैयार हो रहा है। और मस्ती के साथ साथ सीखने का सफर भी आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर दुनिया दंग है। कुदरत की खूबसूरती, संगीत की मधुर धुने और संस्कृति का अद्भुत संगम, ये नजारा है चीन के गुइजोऊ प्रांत का, जहां सीढ़ीनुमा फूलों के खेतों को एक भव्य ओपन एयर म्यूजिक कॉन्सर्ट के में बदल दिया गया है। हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के बीच सजा ये प्राकृतिक मंच इतना मनमोहक था कि सोशल मीडिया पर लोग इसे लैंड आर्ट की शानदार मिसाल बता रहे हैं।
4: और दक्षिण पश्चिम चीन के गुइजोऊ प्रांत में अनोखे अंदाज में पारंपरिक चीनी संगीत का आयोजन किया गया। यहाँ सीढ़ीनुमा फूलों के खेतों को प्राकृतिक मंच का रूप भी दिया गया। करीब 1,20,000 वर्ग मीटर में फैली इस अर्बन टेरेस को इस तरह विकसित किया गया है कि शहर के बीच भी ग्रामीण प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास बना रहे।
3: तो चाय पर चर्चा में आज फिलहाल इतना ही, कल शाम फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आपके घर की सीढ़ियों

0: घर बना सकते हैं, और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-lane एक्सप्रेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण की इजाजत। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आए, बद्री विशाल के दर्शन को लेकर उमड़ रहे हैं श्रद्धालु।

शिव भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। बागपत में पूर्व सैनिक ने पेंशन के पैसों से लगाया कांवड़ शिविर।

12 अगस्त को लगेगा साल 2026 का सबसे दुर्लभपूर्ण सूर्य ग्रहण। आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल में दिखेगा सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण।

दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हवा की गुणवत्ता में सुधार। बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटीए स्पेशल। सावन का महीना चल रहा है, आसमान से आस्था के बादल बरस रहे हैं और धरती पर शिव भक्ति की लहरें हिलोरें भर रही हैं। इस माहौल में आज गुड न्यूज टुडे स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश भर में मौजूद महादेव के उन अद्भुत और अनोखे मंदिरों में जहां महादेव निराले रूपों में विराजमान है। ऐसे अनोखे शिवधाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना और निर्माण जामवंत ने खुद अपने हाथों से करी थी। इस धाम में इतिहास महादेव के साथ साथ श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रायसेन में मौजूद यही वो स्थान है जहां पर शिव भक्त जामवंत की बेटी जामवंती से श्री कृष्ण ने विवाह किया था।

0: शिव मंदिर जहां मौजूद है तीन युगों का संगम।
1: भगवान जामवंत जी ने इस मंदिर का निर्माण किया।
0: वो धाम जहां आज भी है युगों पुरानी शिव गुफा।
2: वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है।
0: जहां स्वयं सूर्य देव करते हैं महादेव का अभिषेक।
3: भगवान सूर्य अपने आदिदेव भगवान शिव का पहली किरण के साथ श्रृंगार करते हैं और अभिषेक करते हैं।
0: जहां आज भी मौजूद हैं जामवंत के पैरों के निशान।
4: यहां से जामवंत जी ने निकले थे और आगे तक पैरों के निशान देखे जा रहे हैं।
0: जहां द्वापर युग में हुआ था जामवंत और श्री कृष्ण का महायुद्ध।
3: जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है।
0: वो नगर जो आज भी श्री कृष्ण को मानता है दामाद।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते।
0: मध्य प्रदेश का रायसेन जहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों के मस्तक पर स्थापित है महादेव का युगों पुराना धाम। महादेव का ये धाम शिव गुफा मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में जामवंत ने की थी, उन्हीं के नाम पर इस इलाके को जामगढ़ कहा जाता है।
1: प्रत्यक्ष रूप से भगवान जामवंत की गुफा जामगढ़ में मौजूद है। भगवान जामवंत द्वारा भोलेनाथ की स्थापना यहाँ की गई और यहाँ दिव्य रूप में अभी संत लोग निवास कर रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जामगढ़ पधारे, विद्यासागर जी संत जामगढ़ पधारे जी, हीरापुर वाले गुरु जी जामगढ़ पधारे। उनने अनुभव किया कि भैया इन गुफाओं में अभी संत दिव्य रूप में रहकर वायुपान कर गए और यहाँ तपस्यारत हैं। ये प्रमाण उन तीनों संतों ने इस जगह का दिया। ये किंवदंती नहीं, संतों का वचन।
0: ये गुफा विंध्याचल पर्वत माला पर लगभग 200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास एक कुंड है जिसमें साल भर जल रहता है। इस कुंड से टपकता जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करता है।
2: यहाँ पर एक स्थान और है जिसे हम ये शिव मंदिर जो है ये गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये जल है, ये 500 मीटर फिट के ऊंचाई के बावजूद वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे इसके अंदर जाएंगे और जाने के बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां इसके अंदर है। आज भी जो संत योगी महात्मा है इसके अंदर निवास करते, ऐसे लोगों की मानता है, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों ने यहाँ ऐसे चमत्कार देखे हैं कि प्रातः काल यहाँ आरती होती है, ढोलक झनकारे और ज्वाला को भी देखा। दूसरा यह एक स्थान है जहाँ एक एक बूंद करके पानी टपकता है और ये जो पानी टपकता है इसकी एक विशेषता है कि इस जल को जो भी व्यक्ति धारण करता है या पी लेता है उसे किसी भी प्रकार की असाध्य जो बीमारी होती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। ये 12 महीने ये जल यहाँ से टपकता रहता है।
0: इस इलाके में मान्यता है कि इस गुफा के अंदर आज भी कई साधु संत जब तप में लीन है। स्थानीय लोग कई बार गुफा से भजन कीर्तन की आवाजें आने का दावा भी करते हैं।
3: भगवान शिव का जो प्राचीन शिव गुफा के नाम से विख्यात है वो भगवान आदि काल से यहाँ है, ऐसी किंवदंती है कि जामवंत जी ने भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। तो यो युगों प्राचीन शिव गुफा है और इस स्थान की एक विशेषता है कि जो विंध्याचल पर्वत हैं वो स्वयं यहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं और बुजुर्गों ने ऐसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में गांव से यहाँ से जामगढ़ लगा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की जो पूजा है वो सिद्ध महापुरुषों द्वारा सिद्धों द्वारा की जाती रही है।
0: खास बात यह है कि महादेव की आस्था से सींची गई ये पावन भूमि श्री कृष्ण की ससुराल भी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी जगह श्री कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवंती से विवाह किया था।
3: जामगढ़ अपने आप में प्रमाण है, कभी इसका नाम जाम्बगढ़ रहा है, इस गांव का नाम। अपभ्रंश होते होते जामगढ़ हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के रूप में भी यह जामवंत जी की गुफा है पास में ही, तो ये विख्यात है। तो अपने आप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इस समय जो कलयुग चल रहा है, तो तीन युगों का यह स्थान है। और जामवंत जी चिरजीवी रहे हैं, आज भी जामवंत जी माना जाता है कि हैं, वो अमृत तो उन्हें प्राप्त रहा है।
0: जामवंती और श्री कृष्ण से जुड़े इसी संदर्भ के चलते जामगढ़ के लोग श्री कृष्ण को अपना दामाद मानते हैं।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते, कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई जीजा कहता है, तो वो जामाता है जामगढ़ के भगवान श्री कृष्ण। तो कितना भव्य और अद्भुत रिश्ता है जामगढ़ का और भगवान श्री कृष्ण का।
0: बताया जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने जामवंत को ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय घटनाओं का चक्र उन्हें इस स्थान पर लेकर आएगा, तब कृष्ण रूप में वे जामवंत से युद्ध कर उन्हें परास्त करेंगे।
3: श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह उल्लेख मिलता है कि स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जामवंत पधारे विंध्याचल पर्वत पर, और जामवंत जी से उनका 27-28 दिनों तक महायुद्ध हुआ। उस युद्ध में जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए, तो उन्हें भान हुआ कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि प्रभु आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया, मेरी इच्छा है कि मैं कभी परास्त हूँ। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा तो तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। तो एक तरह से अपने भगवान द्वारा भक्त को जो वरदान दिया था, उसकी पूर्ति का भी यह स्थान है।
0: जामगढ़ के पास भगदेई गांव में जामवंत ने द्वापर युग में एक और शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि भक्त जामवंत ने एक रात में महादेव के इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर जिस पहाड़ी पर मौजूद है, वहाँ आज भी पुरानी चट्टानों पर पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। दावा किया जाता है कि ये जामवंत जी के पैरों के निशान हैं।
2: रायसेन जिले के विंध्याचल की पर्वत की एक तलहटी है, जहाँ पे बसा हुआ है रायसेन जिले के बरेली तहसील का जामगढ़ गांव। जामगढ़ भगदे, ये दोनों गांव विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में। वो अभी हमने आपको बताया था कि द्वापर युग के समय जामवंत जी ने जो मंदिर का निर्माण कराया था, वो निर्माण के बाद जो किंवदंती आई थी, वो किंवदंती के बाद ये स्थिति थी कि जामवंत जी जिस जगह कूदे थे, वहां पर पैरों के निशान है। तो आप देख सकते हैं ये पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर एक बीजक भी लिखा हुआ है, दाया पैर का निशान है, बाएं पैर का निशान है, फिर दाएं पैर का निशान है, फिर बाएं पैर का निशान। ये निशान हमें कहाँ तक मिलेंगे? लगभग 1 किलोमीटर तक मिलेंगे, जहाँ गुफा है जामवंत जी की, वहां तक मिलेंगे।
0: भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की विवाह गांठ से लेकर भक्त जामवंत की अगाध आस्था तक महादेव का ये धाम युगों युगों से सनातन धर्म की कई कहानियों को खुद में समेटे आज भी शान से खड़ा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब मध्य प्रदेश से सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आपको दर्शन करवाते हैं उस पावन शिवधाम के, जहां पर पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। महादेव का वो धाम जिसकी स्थापना की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है, और उन्हीं के नाम पर भोलेनाथ यहाँ परशुरामेश्वर कहलाते हैं।
0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है, तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है। लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही। कांवड़ यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी और कांवड़ यात्रा की इस कहानी की डोर जुड़ी है बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तब पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। फिर हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। परशुराम के नाम पर कभी परशुरामेश्वर धाम कहलाने वाला ये मंदिर कालांतर में पूरा महादेव धाम कहलाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। बता दें कि पूरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डगा सका। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
6: ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित, ये भगवान परशुराम जी द्वारा, जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है। औरंगजेब ने भी प्रयास किया, उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया चरणों से बंधवा के, पर लेकिन आज भी आप देखोगे बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने उस पर स्पॉट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पॉट है।
7: एक और कहा जा रहा है कि मंदिर शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है।
6: हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा।
0: मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। हर साल सावन में पूरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। भविष्य में मंदिर प्रांगण को काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की भी योजना है। यानी भविष्य में पूरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: जितने अद्भुत हैं महादेव उतने ही अनोखे हैं उनके ये धाम। ऐसा ही एक धाम मौजूद है बुंदेलखंड में, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजार रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात कही जाती है, बताया जाता है कि ये वही मंदिर है जहां पर किसी दौर में झांसी की महारानी यानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने के लिए जाती थीं।

0: महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिव धाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारिया महादेव। महादेव का वो अनुपम धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण इसे हजारी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग के नजदीक जाने पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते हैं। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है।
1: ये 1108 छोटे छोटे शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम हजारिया महादेव है। छोटे छोटे पूरे राउंड है उनके, वो 1108 शिवलिंग है छोटे छोटे।
2: 1000 शिवलिंग का मतलब यह है कि 1101 अगर इधर दर्शन करते हैं तो एक बार में पूर्ण होते हैं भोलेनाथ के दर्शन साक्षात एक ही शिवलिंग में।
0: बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं।
3: यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती वो पूरी होती है और उसके सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है उसके उस उपलक्ष में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं।
0: हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गोसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि कभी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई यहां रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है।
2: जे माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती थी पानी भरी धर्मशाला पे। और जे गोसाइयों के समय का मंदिर है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाए एक बार में पूर्ण होती है।
4: ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी।
5: ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं।
0: इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।
4: बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, यहाँ पे बावड़ी है, कुआ है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर वोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भरा था, तब जाके ये पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा दो बार हो चुका है, जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब इसी प्रकार का इनको वो करते हैं।
0: एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हजार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने आते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: बात करेंगे उस शिव धाम की जहां पर महादेव एक पवित्र गुफा में बिराजते नहीं, ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिला देगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटे अमरनाथ भी कहते हैं।

0: आस्था की एक वो यात्रा और आस्था की एक यात्रा ये भी कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम। पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नलदेश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नलदेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं।
1: लगभग 360 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिव जी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
0: बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो वहीं पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्व पत्र चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है।

0: महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिल गई हरी झंडी। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी उफान में, खबर खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश है, बद्री विशाल के दर्शन को मर रहे हैं भक्त। शिव भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकली महिलाएं, बागपत में पूर्व सैनिक ने पेंशन के पैसों से लगाया कांवड़ शिविर। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही है बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, हवा की गुणवत्ता में भी सुधार, बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अपना रहे हैं गजब अजब तरीके, क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। 12 अगस्त को लगेगा साल 2026 का सबसे दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण, आइसलैंड स्पेन और पुर्तगाल में दिखेगा सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: सहारनपुर के सुरना गांव का कांवड़ मेला बना श्रद्धालुओं की पहली पसंद, उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हरिद्वार से लौटते कांवड़ियों का मेले में पड़ाव, सुबह रात तक जुटती है भारी भीड़, चारों तरफ अद्भुत नजारा। झूलों खिलौनों खाने पीने की चीजों ने बढ़ाई रौनक, रंग बिरंगी रोशनी से सजा सुरना कांवड़ मेला। इस साल पुराना सुरना कांवड़ मेला बना शहर की पहचान, आस्था और परंपरा का संगम कांवड़ियों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। कांवड़ियों के विश्राम और अन्य सुविधाओं का भी इंतजाम, अखंडा भंडारी की परंपरा से जुड़ी है मान्यता, दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए रोजाना भारी संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सावन में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए देश भर से उमड़ रहे हैं शिव भक्त, मंदिर में लगातार लगी हुई है कतारें, लाखों भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। बोलबम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल, मान्यता है कि सावन में गंगा जल अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं बाबा बैद्यनाथ। शिव भक्तों की आस्था चरम पर, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आस्था भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम। कांवड़ यात्रा में नजर आ रही अलग अलग रूप और स्वरूप की अनोखी, कांवड़ स्पोर्ट्स कार से लेकर मिसाइल के रूप में कांवड़ खींच रही है सबका ध्यान। आकर्षण का केंद्र बनी भारत की सैन्य ताकत को दर्शाती अग्नि 5 की थीम वाली कांवड़। करोड़ों रुपए की लग्जरी स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली कांवड़ भी श्रद्धालुओं और राहगीरों की पहली पसंद। प्रसिद्ध मैक्लॉरेन स्पोर्ट्स कार की तर्ज पर बनाई गई है कांवड़ के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए तमाम श्रद्धालु। शिव के अलग अलग रूपों में ढली कांवड़ भी खींच रही है सबका ध्यान। भोलेनाथ के विशाल स्वरूप के साथ दूल्हा रूप में भी नजर आए बाबा। कांवड़ यात्रा में नजर आई भव्य हाइड्रोलिक कांवड़, इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से भगवान शिव शंकर प्रकट होकर देते हैं दर्शन। तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई यह सुंदर कांवड़। इस कांवड़ के साथ शिव भक्तों की टोली तय कर रही है हरिद्वार से गुरुग्राम तक का 260 किलोमीटर का सफर। चंदौली में कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, पवित्र कांवड़ यात्रा में निकले महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे। देवघर के लिए रवाना हो रही है कांवड़ियों की ये टोली, गूंजा ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का घोष। कांवड़ियों की सेवा के लिए बागपत के रिटायर फौजी ने लगाए शिविर, पेंशन से चलते हैं कांवड़ियों का शिविर। कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रहे हैं रूस नए रंग, मुजफ्फरनगर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की भागीदारी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। हरिद्वार से 101 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर रोहतक जा रही है महिला कांवड़, कई वाहन के काफिले के साथ शिव की भक्ति, नारी की शक्ति का संदेश। शुरुआत में इस यात्रा में करीब 25 महिलाएं सीधे तौर पर शामिल हुई थी। यात्रा के दौरान कई और महिला कांवड़ बनी इस यात्रा का हिस्से। बागपत की सड़कों से गुजर रही आस्था के साथ साथ फिटनेस का संदेश देती है खास कांवड़ यात्रा के दौरान बप्रेस करते हुए नजर आए कांवड़। हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कांवड़ यात्रा पर निकले हैं मनजीत। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शानदार सजावट, रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर। 10 से 12 हजार रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से सजा पवित्र मार्ग रात के समय जगमगाते इस सुंदर और भव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा करने उतरी पुलिस पूरे सेवा भाव के साथ कांवड़ियों को बांट रही है फल भोजन पानी। सुरक्षा के साथ साथ उजागर हो रहा है पुलिस का मानवीय चेहरा, रास्ते में घायल हुए श्रद्धालुओं के पैरों पर पट्टी बांध कर प्राथमिक उपचार। बारिश में भी मुस्तैदी से कांवड़ मार्ग पर तैनात है पुलिस। कांवड़ मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हरिद्वार से अब तक करीब 2 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों के लिए हो चुके हैं रवाना। संगम नगरी में देखा शिव भक्तों का अलग अलग रंग, गली में भोलेनाथ की प्रतिमा लटकाए नजर आई कांवड़ी। मध्य प्रदेश से आया है कांवड़ियों का यह समूह, कई शिवालय होते हुए बैजनाथ धाम और काशी विश्वनाथ जाएंगे कांवड़िए। पाली में गणेश उत्सव की तैयारियों में जुटे हुए मूर्तिकार पर्यावरण की रक्षा करने के लिए गोबर से बना रहे इको फ्रेंडली बप्पा। देश के साथ साथ विदेशों में भी गोबर से बने इको फ्रेंडली गणपति की भारी डिमांड, विसर्जन के समय आसानी से पानी में घुल जाता है ये प्रतिमा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। सावन मास में भगवान का राजाधिराज स्वरूप में किया जाता है विशेष श्रृंगार। सावन महीने में सुंदर लाइटों से सजा महाकाल का धाम, सावन में लाखों भक्त पहुंचते हैं। पल पल बदलते मौसम के बीच जारी है अमरनाथ यात्रा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यातायात प्रबंधन के बीच रामबन जिले के चंदरकूट से सुरक्षित रूप से गुजरा 28वां जत्था। खराब मौसम के चलते प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा यात्रा मार्ग पर बरती जा रही है विशेष सतर्कता। चारधाम में बारिश पर भारी नजर आई आस्था। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। पंती अलकनंदा के बीच लगातार दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं भक्तों की भारी भीड़। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित। बारिश के तापमान में भी भारी गिरावट। ठंड की परवाह किए बगैर बरसाती और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु। जगह जगह भूस्खलन होने के पर युद्ध स्तर पर जारी है सड़क मार्ग खोलने का काम। बारिश के बाद पहाड़ों पर छाई धुंध, बहुत मनोरम नजर आया दृश्य। शिरडी में दुबई के साईं भक्त ने चढ़ाया 76 ग्राम सोने का बना राम अक्षर का आदान, कीमत करीब 10 लाख रुपए। मुराद पूरी होने के मौके पर भक्त ने बाबा को अर्पित किया सोने का राम अक्षर। दुबई वाले भक्त ने पहले भी चढ़ाया था 24 लाख का सोने का ओम साई राम। फरीदकोट में 18 वर्षीय प्रचोद का कमाल, AI प्रोग्रामिंग और डिजिटल स्किल्स के युवाओं को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। प्रभजोत ने महज 13 साल की उम्र में शुरू कर दिया था मिशन। डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर फ्री में युवाओं को मिल रहा है ट्रेनिंग। सीमा पर भारतीय सेना की ताकत और होगी मजबूत। LAC LOC पर सप्लाई के लिए सेना खरीदेगी 2715 लॉजिस्टिक्स ड्रोन। सेना के ड्रोन के बेड़े में इजाफा। दुर्गम बॉर्डर पोस्ट तक राशन, गोला बारूद और मेडिकल सप्लाई पहुंचाएंगे ड्रोन। 20,000 फीट तक ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन करने के लिए तैयार होंगे लॉजिस्टिक्स ड्रोन। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार और एंथ्रोपिक के बीच AI पार्टनरशिप पर चर्चा हुई। गवर्नेंस और स्किलिंग पर फोकस। संबल में विलुप्त महिष्मती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कवायद शुरू। 7 किलोमीटर लंबी प्राचीन महिष्मती नदी को मिलेगा नया जीवन। हैदराबाद में खुला छोटा भीम थीम पर आधारित बच्चों का अनूठा कैफे। इस अनोखे कैफे में बच्चों के लिए कई एक्टिविटीज भी शामिल है। नन्हे मुन्नों की पहली पसंद बना कैफे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद की रक्षा मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में टेरिटोरियल आर्मी की भूमिका, उपलब्धियों पर चर्चा हुई। दिल्ली में युद्ध स्तर पर लगातार जारी है हालसवा लैंडफिल की सफाई का काम। 65 मीटर से घटकर 30 मीटर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश से होने वाली जनहित, पशुहानि और आर्थिक हानि का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश के कारण जलजमाव, कई सड़कें पानी में डूबी। भारी बारिश से गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड पर वाटर लॉगिंग। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण पटेल नगर इलाके में जलजमाव, ट्रैफिक की वजह से वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश बनी आफत, सिविल लाइंस जॉर्ज टाउन समेत कई इलाके जलमग्न। मूसलाधार बारिश से फिरोजाबाद में वाटर लॉगिंग, शिकोहाबाद थाना परिसर में भर गया पानी। जलजमाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। टेहरी में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, JCB से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। जलस्तर बढ़ने से नदी नाले उफान पर। टेहरी के पुंडोली गांव में तेज बारिश के कारण बहा लकड़ी का पुल, आवाजाही ठप। शोपियां के तुली हलन में बादल फटा, रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी। शोपियां के दूध पथरी में। बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, घरों होटल्स और दुकानों में घुस गया पानी। उस ज्यादा बारिश से हरिद्वार की सड़कें सैलाब, रानीपुर मोड़ पर भगत सिंह चौक पर घुटनों तक पहुंचे। अमित राय की ओ माय गॉड कल सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का जीरो भी कल होने जा रही है रिलीज। हिमांश कोहली नजर आएंगे। आर माधवन की फिल्म GDN कल होगी रिलीज। GD नायडू की भूमिका में नजर आएंगे माधवन। पंजाबी फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी कल थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में शिल्पा शेट्टी नजर आएंगे। तमिल रोमांटिक एक्शन फिल्म DC भी कल रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में लोकेश नजर आएंगे। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है मैं वापस आऊंगा। जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी कल होने जा रही है रिलीज। अखिल अक्की नैनी की फिल्म लेनिन अब OTT पर आने के लिए तैयार। लोकप्रिय टीन ड्रामा माय लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज का तीसरा सीजन आज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है। टेलीविजन सेलेब जिया शंकर ने बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल करण से सगाई रचाई। ICC ने जारी कर दी ताजा वनडे रैंकिंग। कप्तान शुभमन गिल समेत 3 भारतीय टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल। टॉप पर काबिज है कप्तान गिल, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर। 17 अगस्त से दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ड्रॉ जारी होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु आयरलैंड की सोफिया के खिलाफ करेंगी अभियान की शुरुआत। युवा शटलर आयुष को मिली है कड़ी चुनौती। पहले दौर में विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी होंगे उनके मुकाबले। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज से पहले BCCI ने टीम इंडिया के कैंप में 4 नेट बॉलर्स का किया शामिल। अटलांटा में रोबोट्स ले रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की जगह, कई अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स में रात की शिफ्ट लगाते हैं। इंसानी ऑपरेटर दूर से कंट्रोल करते हैं रोबोट्स, ये रोबो डॉक्स लाइव कैमरा फीड पर नजर डालते हैं। पूर्वी चीन के जिनजियांग प्रांत में क्यांतांग नदी के ऊपर से आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ ड्रोन। जमीनी ट्रैफिक की रुकावटों से बचते हुए ड्रोन करता है तेज डिलीवरी। ये सर्विस अभी रोजाना औसतन लगभग 4.4 अमेरिकी डॉलर की लागत पर 150 से $200 पूरी करती है। अब अंतरिक्ष में भी होगा AI का कमाल। 2032 तक 1000 तक AI से लेस जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सैटेलाइट तैनात करना है चीन का मकसद। दुनिया भर में स्पेस कंप्यूटरिंग में AI तकनीक लाने की होड़। हाल ही में दक्षिण पश्चिम चीन के प्राचीन शहर शेक्सियांग में देखा शानदार नजारा। प्राकृतिक और शानदार मंच में बदल गए प्राचीन शहर से सीढ़ीदार खेत। प्राचीन शहर शेक्सियांग के बीचों बीच 1,20,000 वर्ग मीटर में फैला है अर्बन टेरेस। शंघाई वाइल्ड एनिमल पार्क में मादा जायंट पांडा जियाजिया का 14वां जन्मदिन मनाया गया। इस खास दिन पर जियाजिया को एक बर्थडे केक भी दिया गया। जियाजिया ने हाल ही में जुड़वा पांडा कियान रान और कियान ही को जन्म दिया। बेजिंग के डोंगचेंग जिले में कैंगनन फुटों की रिहायशी इमारतों के बीच बना है। खास बात यह कि कुछ साल पहले तक सिर्फ कचरे का ढेर हुआ करता था, अब यह हरा भरा खूबसूरत नजारा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: आइए बात करते हैं जैसलमेर के सुमेर सिंह भाटी की, जिन्होंने प्रकृति की रक्षा की ऐसी मुहिम छेड़ी जिनकी पहचान अब दुनिया तक पहुंच चुकी है। पेड़, घास के मैदान, ओरण और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा।
8: रेत के अथाह समुद्र के बीच पानी और हरियाली की कीमत क्या हो सकती है, इसे महसूस तो कई लोग कर लेते होंगे, लेकिन इसे सही मायने में न सिर्फ समझा बल्कि अमल में लाया है जैसलमेर के सुमेर सिंह भाटी ने। सुमेर सिंह भाटी ने घास के मैदानों को बचाने की ऐसी मुहिम छेड़ी जिसने हजारों लोगों और बेजुबानों की उम्मीद को एक नई जिंदगी दे दी। सुमेर सिंह भाटी वैसे तो ऊंट पालक है, लेकिन अब थार की पारंपरिक विरासत ओरण और गोचर भूमि के सबसे मजबूत प्रहरी बन चुके हैं। सुमेर सिंह की अथक कोशिशों का ही नतीजा है कि देगराय माता ओरण के 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र आज संरक्षित किए गए हैं, जिससे न सिर्फ पारंपरिक जल स्रोत को नया जीवन मिला है बल्कि हजारों बेजुबानों को खाने पीने के लिए हरा भरा चारागाह भी मिल सका।
9: जैसे मेरे के विश्व विख्यात ओरण देगराय ओरण के अंदर सचमुच अद्भुत, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरा भरा नजारा, पशु से बाहुल्य क्षेत्र ये है, पीछे इतनी बड़ी मात्रा में जो है ऊंटनियां ऊंट जो है मौजूद है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक पशुपालक, एक जो है ओरण के लिए पूरी अपनी जिंदगी जो है वो हर तरह से नचावर वर्चस्व जो है जमीन को बचाए रखने के लिए, ओरण की जमीन को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा नाम है सुमेर सिंह भाटी, जिनको अभी हाल ही में रेजरेंट रेस्टोरेशन 2026 के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वाकई डिजर्व करते हैं, सचमुच इन्होंने ओरण लैंड बचाने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। करीब 3 से 4 महीने तक इन्होंने जैसलमेर से जयपुर की यात्रा करी थी, 800 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी ताकि ओरण की जमीन बचे। करीब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जो है इन्होंने ओरण में दर्ज करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और ये करके बताया।
8: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए सुमेर सिंह भाटी के इस शानदार काम की गूंज अब मंगोलिया की धरती पर भी सुनाई देगी। चंद दिनों बाद 18 अगस्त को मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCCD के COP17 सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा।
10: मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड मेरा अकेले का नहीं है, संपूर्ण जैसलमेर का है, संपूर्ण आम जन का है, संपूर्ण पशुपालक का है और इन वन्य जीव का है, इन जीव जंतुओं और पशुओं का है और पूरे भारत का है।
8: सुमेर सिंह भाटी का संघर्ष सिर्फ ओरण तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके गोडावन पक्षी को बचाने के लिए भी एक मुहिम छेड़ दी है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया।
10: अगर इन पशुओं को बचाना है, इन जीव जंतुओं को बचाना है, इस ऊंट को, रेगिस्तान के जहाज को बचाना है तो परिश्रम करना बहुत जरूरी है और इनको बचाने के लिए जो कार्य है, योजनाएं हैं, उनको पशुपालक को लाभ दिलाना ये सब कार्य अगर सरकार करेगी तो ये पशु बच पाएंगे, ये जीव जंतु बच पाएंगे, इसके चारा का बच पाएंगे, ये ग्रासलैंड जो जैसलमेर के वो बच पाएंगे।
8: थार की रेत से उठी ये कहानी बता रही है कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक ऊंट पालक भी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का नया रास्ता दिखा सकता है। और शायद यही वजह है कि आज सुमेर सिंह भाटी का संघर्ष पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई, बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे भक्त। शिव भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों के साथ कावड़ लेकर निकली महिलाएं, बागपत में पूर्व सैनिक ने पेंशन के पैसों से लगाया कावड़ शिविर।

0: दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हवा की गुणवत्ता में भी सुधार। बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठाते दिखे लोग। बारह अगस्त को लगेगा साल 2026 का सबसे दुर्लभपूर्ण सूर्य ग्रहण। आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल में दिखेगा सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के साथ बज चुके हैं और सात गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की सात गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। सावन का पवित्र महीना अपने साथ आस्था की फुहार लेकर आया है। देश भर में चारों ओर बोलबम का जय घोष गूंज रहा है। हर साल की तरह इस साल भी करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकले हैं और इसी से जुड़ी है हमारी आज की पहली गुड न्यूज। कांवड़ यात्रा में नारी शक्ति की शिव भक्ति। जी हाँ, कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था और श्रद्धा तक सीमित नहीं। इस यात्रा में भक्ति के साथ साथ आधुनिक सोच, रचनात्मकता और अनोखे डिजाइन्स का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मेरठ से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक से बढ़कर एक आकर्षक कांवड़ श्रद्धालुओं और राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं।

0: शिवभक्ति में डूबे लाखों कांवड़िए, शहर शहर बिखरा आस्था के साथ अनोखी कांवड़ के रंग। कहीं अग्नि मिसाइल वाली कांवड़ तो कहीं विंटेज कार, और कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसे दिखने वाली भव्य कांवड़। मेरठ से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा के अनोखे और भव्य रंग शहर शहर देखने को मिल रहे हैं। महादेव की भव्य दिव्य कांवड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। प्रयागराज में कांवड़िया का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात है कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में यात्रा के लिए निकली हैं।
1: कान पकड़ा।
0: समूह में सभी महिलाओं ने हरी साड़ी पहनी है, जिसे सावन के महीने में बेहद शुभ माना जाता है, और ये महिलाएं कांवड़ उठा रही हैं, तो इनमें उत्साह भी भरपूर है।
2: मेरे पीछे देखेंगे सब महिलाएं हैं और सबने ग्रीन साड़ी यानी हरी साड़ी पहनी है। हरी साड़ी यानी सावन का प्रतीक कहा जाता है, हरा रंग। लेकिन ये महिलाओं का संकल्प बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी महिला सशक्तिकरण को लेकर है
3: जी। आगे हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए निकले हैं। हाँ, कि आज हम लोग का 15-25 है, आगे हो के और मतलब 25 से 50, 100, 200 जितना हो सके उतना बढ़े।
2: यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आप लोग निकली हैं?
3: जी, महिला सशक्तिकरण। हम लोग घर से महिलाएं भी बाहर निकले, हर एक चीज में महिला आगे रहती हैं, तो अब कावर के लिए भी महिला बढ़ के आगे ले भाग ले आगे आगे के लिए। इसलिए हम लोग पिछली बार 4-5 की संख्या में थे, इस बार हम लोगों की संख्या देखिए बहुत बढ़ के हो गई है। अगले साल और भगवान चाहेंगे तो और बढ़ेगा।
0: प्रयागराज में महिलाओं के साथ साथ बच्चे और युवा भी कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों का ये ग्रुप मध्य प्रदेश से प्रयागराज आया है, जिन्होंने भगवान शिव की मूर्ति अपने गले में लटका रखी है, जो इस ग्रुप को बिल्कुल अलग कर रहा है। आस्था और विश्वास की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिल रही है, जहां गुजर रही कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की भागीदारी भी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रोहतक जा रही महिलाओं की एक अनोखी कांवड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब सैकड़ों महिलाओं का यह जत्था कई वाहनों के काफिले के साथ शिव की भक्ति, नारी की शक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान का संदेश देना है।
4: ये महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कांवड़ यात्रा कर रही हूँ, यानी कि महिला उत्थान के लिए, और इस पे लिखा हुआ भी है महिला सशक्तिकरण समर्थ भारत, यानी कि महिला सशक्त होगी तभी तो समर्थ होगा भारत। इसलिए और मैं महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, वो आत्म सम्मान से जी सके, अपने फैसले खुद कर सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, बस यही कामना करते हुए मैंने शिव की कांवड़ उठाई है।
0: सावन में लाखों शिवभक्त गंगा जल लेकर महादेव का जलाभिषेक करने निकले। कोई नंगे पांव चलता है, कोई दंडवत यात्रा करता है, तो कोई अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लेता है। बागपत की सड़कों पर एक कांवड़ फिटनेस मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक 200 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा कर रहे भोले के भक्त मंजीत।
5: मेरा सफर है 200 किलोमीटर हरिद्वार से, मेरा गांव है 200 किलोमीटर, और 5 कदम भी 6 भी ऐसे चल के मैं एक अपना सपाटा लगाता हूँ।
6: कितने सपाटे आप लगाते हैं, पहले बता रहे थे?
5: पर डे के हो जाते हैं, 3,000 क्रॉस हो जाते हैं पर डे के।
6: क्या है इसके पीछे?
5: इसके पीछे यही है भाई, मैं तो युवा के लिए संदेश दे रहा हूँ, भाई फिट रहो, अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं है।
0: हरण महादेव के जय घोष के साथ मंजीत युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि आस्था और फिटनेस एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि मजबूत इरादों के साथ मजबूत शरीर भी जरूरी है। यात्रा मार्ग पर हाइड्रोलिक कांवड़ भी चर्चा में है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी खासियत है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। सावन में महादेव की भक्ति की ये तस्वीरें बताती हैं कि आस्था और विश्वास है तो मंजिल में आने वाली हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से राहुल कुमार और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कांवड़ यात्रा आसान नहीं होती। सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर, कहीं बारिश की फुहारें, कहीं घंटों तक कंधों पर कांवड़ का भार। इस बीच कई कांवड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं तो किसी के कंधे दर्द हो जाते हैं, लेकिन इन तकलीफों का असर उनके हौसले पर जरा भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में कांवड़ियों की सेवा पुलिस वाले भी कर रहे हैं। हमारी आज की अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है कांवड़ शिविरों में पुलिस वालों की भक्ति। आपको बता दें कि लगातार सहारनपुर में तो कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस का मानवीय और सेवा भाव की भव्य तस्वीरें देखने के लिए तस्वीरें सामने आई, जहां एक ओर पुलिसकर्मी कांवड़ियों को फल, भोजन, पानी और एनर्जी ड्रिंक बांटते दिखे तो वहीं दूसरी ओर रास्ते में घायल हुए श्रद्धालुओं के पैरों पर पट्टी बांधकर प्राथमिक उपचार करते दिखे। जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह तैनात पुलिसकर्मी स्वयं कांवड़ियों से उनकी जरूरत पूछकर खाने पीने और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक रिटायर्ड अर्धसैनिक बल का जवान जिसने पूरे भक्ति भाव के साथ कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया है। दरअसल मुजफ्फरनगर बड़ौत मार्ग पर दाहा गांव में गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए पूर्व CISF जवान राजकुमार राणा ने अपने घर के बाहर कांवड़ शिविर लगा रखा है। यह शिविर किसी समिति या फिर संगठन के सहयोग से नहीं बल्कि राजकुमार राणा की पेंशन और परिवार की मेहनत से चलता है। इस शिविर की सबसे खास बात यह है कि ये सादगी से परिपूर्ण है। यहां भोजन तैयार करने के लिए कोई हलवाई नहीं रखा गया है। फौजी की पत्नी खुद सब्जियां तैयार करती हैं, रोटियां बेलती हैं और राजकुमार राणा खुद तंदूर लगाकर रोटियों की सिकाई करते हैं। परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाता है। भंडारे में इस्तेमाल होने वाला दूध और कई सब्जियां भी उनके अपने घर की है। यानी खेती से रसोई तक और रसोई से कांवड़ियों की थाली तक सेवा का पूरा जिम्मा परिवार खुद उठाता है।
7: मैं पहले देश की सेवा करी, अभी मैं भोलों की सेवा करना चाहूँ और अपने पैसे से करता हूँ। ना किसी से कोई दान दक्षिणा किसी से लेता ना मांगता और घर का ही यूज करता हूँ। आटा बेसन खुद का घर का बनाया हुआ करता हूँ। ना मुझे किसी से लोभ लालच है। मेरे दिल में आई भोलों की सेवा करनी कि सबसे बड़ा जो दान है भूखे को खाना खिलाना है। जो बेचारे इतनी दूर से कावड़ ले आते हैं के लिए मैं इनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। देना नहीं, मैं तो खाली अपनी पेंशन से करता हूँ। जो मेरी पेंशन है ना उसी से करता हूँ। मुझे किसी से कोई दान दक्षिणा की जरूरत नहीं, ना कोई भंडारे की जरूरत है। कौन भंडारा चला रहा है नहीं चला रहा,
8: ये सुनने में आपके घर के ही लोग खाना बना,
7: घर के ही घरवाली और मेरी लड़की है दो, एक लड़की मैंने गोद ले रखी है, एक लड़की और है, यही खाना बनाते हैं। मैं भी खुद मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक लगाया जाता है। जब तक कोई भोला आएगा भूखा नहीं जान लो अपने द्वार।
1: सावन के बाद गणेशोत्सव मनाया जाएगा जिसको लेकर बाजारों में अभी से रौनक है। इस साल बाजारों में भगवान गणेश की कुछ खास तरह की प्रतिमाओं का निर्माण चल रहा है। इस साल भक्ति के साथ पर्यावरण सुरक्षा के साथ इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। तैयार हो रहे गोबर की इको फ्रेंडली गणपति। जी हाँ, राजस्थान के पाली में एक दंपति ने बप्पा की पूजा को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया है। पिछले 7 महीनों से ये परिवार गोबर से इको फ्रेंडली गणपति बना रहा है जिन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भेजा जा रहा है।

0: ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं। यहाँ एक दंपत्ति पिछले 7 महीनों से गोबर से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनका उद्देश्य सिर्फ गणेश प्रतिमा बनाना नहीं है, बल्कि गणेश उत्सव को प्रकृति के और करीब लाना है। बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए ये दोनों गौशाला से लाया गया गोबर इस्तेमाल करते हैं, जिसे पहले सुखाया जाता है और फिर उसे बारीक पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इसके बाद पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार होता है, जिसे सांची में भरकर गणपति की प्रतिमा का आकार दिया जाता है। मूर्तियों को धूप में सूखने के बाद अगर कहीं दरार आ जाए तो उसे बड़ी सावधानी से ठीक किया जाता है। बप्पा के आकार से लेकर श्रृंगार तक का काम इको फ्रेंडली रंगों से होता है। मुकुट, सिंहासन, आंखें, दांत, जनेऊ और आभूषणों के रह जाते हैं। कुछ विशेष प्रतिमाओं को मोती और सजावटी सामग्री से भी संवारा जाता है।
1: इस मूर्ति में पर्यावरण में जीव जंतु को किसी को कोई नुकसान नहीं है, और एक आप मूर्ति लेके जाओ, घर पे बिठाओ, 9 दिन इनकी पूजा करो और उसके बाद में आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। घर में ही आप विसर्जन करो, फैमिली मेंबर जितने भी हैं आप मिलके, और उसके बाद में 2 घंटे में ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद में उसको आप हाथ से मेल्ट कर दो थोड़ा सा, और उसको आप अपने गमलों में पौधों में डाल दो, तो वो फर्टिलाइजर का भी काम करेगी और खाद का भी काम करेगी।
0: जब प्रतिमा बन रही होती है तब कार्यशाला में लगातार गणेश भजन बजते रहते हैं, और खास बात है कि इन इको फ्रेंडली गणपति की मांग अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रह गई है। देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि पूजा के बाद ये प्रतिमाएं पानी में आसानी से घुल जाती है।
2: मूर्ति को जब बनाने बैठती हूँ तो जैसे मैंने उनका मुकुट बनाती हूँ, और जब उनका मतलब धोती बनाती हूँ, आंखें बनाती हूँ, और जब उनको करती हूँ तब मेरे सामने और मेरी भावना के अंदर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, और वही भावना मैं उन्हें उनके अंदर डालने की कोशिश करती हूँ, और वो साक्षात उनके दिखता भी है मेरे को। ये इतना महत्वपूर्ण है अपना गाय का गोबर, क्योंकि पाली के अंदर इतना अपना जो प्रदूषण फैला हुआ है, और पीओपी की मूर्ति जो अपन लोग बिठाते हैं, या जो मैं भी पहले ऐसे बिठाती थी, लेकिन जब से मेरे को गाय से प्रेम हुआ और गोबर से ऐसा मेरे को लगा, तो मैंने इको फ्रेंडली गणपति जी बनाए। तो ये गणपति जी अपने प्रदूषण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे हैं।
0: और नदियों, तालाबों या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ज्यादातर गणेश प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं, जो देखने में आकर्षक जरूर होती हैं, लेकिन विसर्जन के बाद पर्यावरण पर भारी पड़ती हैं। ऐसे में राजस्थान के पाली के परिवार की पहल भक्ति के साथ साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश दे रही है, यानी भक्ति के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का वचन। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
3: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है। सरकारें भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावे के लिए नई पॉलिसी ला रही है। ऐसे में दिल्ली में जुलाई 2026 में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जो इस साल में अब तक के किसी भी महीने में किया गया सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। ऐसे में हमारी आज की जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है, और वो है दिल्ली में ईवी की बिक्री का रिकॉर्ड। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी की मांग में भारी उछाल देखने को मिला है। जुलाई 2026 में दिल्ली में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किए गए, जो इस साल का अब तक का किसी भी महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये बढ़ोतरी उसी महीने में हुई है जब दिल्ली सरकार ने अपनी नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को नोटिफाई किया। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर टैक्स छूट, खरीदारों को वित्तीय सहायता और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। केवल पिछले 3 महीनों यानी कि मई, जून और जुलाई में करीब 30,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। यह लगातार तीसरा महीना है जब इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की मांग लगातार बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते फ्यूल प्राइस, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और सरकारी सब्सिडी के कारण लोग बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीद रहे हैं। इसके अलावा एक ईवी के तौर पर टू व्हीलर सबसे बेहतर और किफायती विकल्प भी माने जाते हैं।
4: इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में दिल्ली ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले महीने जुलाई में दिल्ली में 10,307 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी। ये पहली बार है जब दिल्ली में एक ही महीने में 10,307 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक गई हों। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर नई पॉलिसी निकाली, जिसके बाद जो सब्सिडी है वो और ज़्यादा मिलने लगी और उसी के रुझान अब देखने को मिल रहे हैं। बात सिर्फ जुलाई की नहीं, मई जून जुलाई अगर हम पिछले तीन महीनों की बात करें तो दिल्ली में 30,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिक चुकी हैं। टू व्हीलर की संख्या यानी बाइक और स्कूटी की संख्या इनमें सबसे ज़्यादा है।
3: अलमारी में रखे आपके पुराने कपड़े अब सिर्फ जगह नहीं घेरेंगे बल्कि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकते हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है अर्पण, जहां आप अपने पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। हमारी आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है मेट्रो स्टेशन पर अब वस्त्र दान। जी हाँ, यहाँ आपके दान किए हुए कपड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेंगे, वहीं उनकी छटाई और तैयारी के जरिए महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अलमारी में रखे आपके पुराने कपड़े अब सिर्फ जगह नहीं घेरेंगे बल्कि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकते हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है अर्पण, जहां आप अपने पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। हमारी आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है मेट्रो स्टेशन पर अब वस्त्र दान। जी हाँ, यहाँ आपके दान किए हुए कपड़े जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेंगे, वहीं उनकी छटाई और तैयारी के जरिए महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

0: कपड़ों के बने इन आकर्षक सामानों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये किसी के दान किए हुए पुराने कपड़ों से बने हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते लेकिन अभी भी अच्छी हाल रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC और दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर की है। मेट्रो स्टेशन पर खास कलेक्शन कियोस्क लगाए गए हैं। आप अपने साफ और इस्तेमाल लायक कपड़े वहां आसानी से जमा कर सकते हैं। दान की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल भी है। QR कोड स्कैन करके कपड़े दान किए जा सकते हैं और आपको तुरंत एक डिजिटल रसीद भी मिल जाती है। इन कपड़ों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह इकट्ठा करेंगे, फिर उनकी छटाई होगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा और कुछ कपड़ों को नए सामान में भी बदला जाएगा। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कपड़ों का बेहतर इस्तेमाल भी होगा।
1: ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, वो यही काम करती हैं सिलाई का। तो कुछ कपड़े 20% उनको जाएंगे, वो उनको धो के साफ करके प्रेस करके उन कपड़ों को काट कूट के फिर बैग्स बनाएंगी, चटाई बनाएंगी और ये नैपकिन पाउच वगैरह बनाएंगी। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उनसे ये है कि उन महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल जाएगा।
0: एक छोटा सा कदम कई बड़ी खुशियां ला सकता है। आपकी अलमारी में पुराने कपड़े किसी की नई उम्मीद बन सकते हैं। अर्पण केंद्र सिर्फ कपड़े दान करने की जगह नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी, पर्यावरण की सुरक्षा और समाज की मदद का एक नया रास्ता है।
2: जिन कपड़ों को आप लैंडफिल साइट तक भेजते थे, कूड़े के डिब्बे में डालते थे, आप भी अपनी धरती को गंदा करने से बचाएंगे और साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उनके भी हिस्से कुछ ना कुछ खुशियाँ आपके खराब कपड़ों के जरिए आ जाएगी। तो फिर देरी किस बात की, आइए इस अर्पण कियोस्क पे। और दिल्ली के कई अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर यह बनाया जा रहा है, अभी ये 10 की संख्या में है, लेकिन अगर आपका, दिल्ली वालों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इसके नंबर और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे और दूसरे राज्यों को भी अब दिल्ली से कम इस मामले में सीखने का मौका ज़रूर लेना चाहिए। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे।
3: महाराष्ट्र के बाद गुजरात ने भी एनालॉग यानी कि कृत्रिम पनीर पर रोक लगा दी है। यहां पनीर रखने, बनाने या फिर बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद एक्शन शुरू भी हो गया है। आज राजकोट में एनालॉग पनीर की फैक्ट्री में छापा मारा गया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है पनीर की धोखेबाजी पर बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी एनालॉग पनीर को लेकर धरपकड़।

0: महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात सरकार ने भी एनालॉग पनीर यानी कृत्रिम पनीर पर रोक लगा दी है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनालॉग पनीर, चीज और बटर के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद पूरे राज्य में एनालॉग पनीर को लेकर छापेमारी शुरू हो गई है। गुजरात के राजकोट में चलने वाली एक फैक्ट्री में राजकोट नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। फॉर्च्यून नाम की इस कंपनी में एनालॉग पनीर तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में एनालॉग पनीर और चीज बरामद की गई है।
1: राजकोट में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर ये एनालॉग पनीर, चीज और बटर बनाकर बेचा जाता था। वहां पर ही फूड विभाग ने आज रेड की है और बड़ी मात्रा में एनालॉग पनीर है उसका जत्था भी पकड़ा गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर एनालॉग पनीर बनाने का काम भी है वो चल रहा था और यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल भी है वो मिला था जिसमें फॉरेन फेड यानी कि पाम ऑयल का उपयोग है वो किया जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए और खास करके हार्ट के लिए काफी हानिकारक होता है उसका उपयोग है यहाँ पर किया जा रहा था।
0: स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रतिबंध के लागू होने के बाद भी फैक्ट्री में कृत्रिम पनीर तैयार किया जा रहा था। फैक्ट्री संचालक छापे से पहले इन प्रोडक्ट्स को ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कारखाने पर रेड डालकर एनालॉग पनीर और चीज के पूरे स्टॉक को सील कर दिया।
2: आज हम लोग लाती प्लॉट में ये फॉर्च्यून पनीर करके जो फार्म है उस पर वहाँ पे हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे पाया कि यहाँ पे एनालॉग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे एनालॉग बिक भी रहा है। सुबह सुबह ये लोग अभी खोल नहीं रहे थे, आधा घंटा मशक्कत करने के बाद ये अभी फार्म उसने खोली है, तो यहाँ फ्रीज में पाया गया कि ऑन एन एवरेज 20-25 ऑन एन एवरेज 25-30 किलो यहाँ पे एनालॉग पनीर पाया गया है।
0: इस केंद्र से हर रोज करीब 25 से 30 किलो एनालॉग पनीर की बिक्री की जाती थी। ये पनीर हर रोज जूनागढ़ से लाया जाता था और यहाँ पैकिंग करने के बाद अलग अलग रेस्टोरेंट में सप्लाई भी किया जाता था। राज्य सरकार के इन प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर रहा है।
3: आज से हमारी पूरी टीम एक लक्ष्य के साथ चलेगी कि एनालॉग पनीर, चीज और बटर कहीं भी बेच भी नहीं सकते हैं और प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते।
0: नकली पनीर के बाद तेलंगाना में नकली मसाले जब्त किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस की एच फास्ट यानी हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम और GHMC फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की संयुक्त कार्रवाई में 13 मसाला निर्माण और प्रोसेसिंग इकाइयों पर छापेमारी कर 25 टन से ज्यादा मिलावटी मसाले जब्त किए गए हैं। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है।
4: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जो जहाँ पे रेड हुआ है वो लोग B2B2 पे सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सप्लाई करते हैं, वहाँ से फिर और कहीं कहीं छोटे बिजनेसमैन पे, वे रिटेल्स पे, फिर मार्ट पे।
0: सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है। एचफास्ट ने महज 140 दिनों में 659 छापेमारी की, 202 FIR दर्ज करते हुए 247 टन से अधिक मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों को जब्त किया है।
4: लास्ट 5-6 महीने से 600 से ज्यादा रेड्स हुए हैं, 300 से ज्यादा FIR हुए हैं और इस मसले पे जो आज आपके सामने रखा गया है इसमें जो है पॉइजनस चीजों का इस्तेमाल किया गया है।
0: स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मिलावटी खाद्य पदार्थों के लगातार सेवन से पेट की गंभीर बीमारियां और लीवर और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों से खाद्य पदार्थ खरीदने में सावधानी बरतने की अपील की गई है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ, हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और राजस्थान के थार में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, वहीं एक शख्स ने प्रकृति की रक्षा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। जैसलमेर के ऊंटपालक सुमेर सिंह भाटी ने सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि घास के मैदानों और वन्य जीवों को बचाने की ऐसी मुहिम छेड़ी कि अब उनकी पहचान दुनिया तक पहुंच गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है घास के मैदानों के लिए 850 किलोमीटर की पद यात्रा। जी हाँ, सुमेर सिंह ने घास के मैदानों के संरक्षण के लिए जैसलमेर से जयपुर तक की 850 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। प्रकृति के प्रति इसी समर्पण के लिए सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा।
6: रेत के अथाह समुद्र के बीच पानी और हरियाली की कीमत क्या हो सकती है, इसे महसूस तो कई लोग कर लेते होंगे, लेकिन इसे सही मायने में न सिर्फ समझा बल्कि अमल में लाया है जैसलमेर के सुमेर सिंह भाटी ने। सुमेर सिंह भाटी ने घास के मैदानों को बचाने की ऐसी मुहिम छेड़ी जिसने हजारों लोगों और बेजुबानों की उम्मीद को एक नई जिंदगी दे दी। सुमेर सिंह भाटी वैसे तो ऊंट पालक है, लेकिन अब थार की पारंपरिक विरासत ओरंट और गोचर भूमि के सबसे मजबूत प्रहरी बन चुके हैं। सुमेर सिंह की अथक कोशिशों का ही नतीजा है कि देगराय माता ओरण के 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र आज संरक्षित किए गए हैं, जिससे न सिर्फ पारंपरिक जल स्रोत को नया जीवन मिला है बल्कि हजारों बेजुबानों को खाने पीने के लिए हरा भरा चारागाह भी मिल सका।
7: जैसे मेरे के विश्व विख्यात ओरण देगराय ओरण के अंदर सचमुच अद्भुत आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरा भरा नजारा, पशु से बाहुल्य क्षेत्र यह है, पीछे इतनी बड़ी मात्रा में जो है ऊंटनियां ऊंट जो है मौजूद है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक पशुपालक, एक जो है ओरण के लिए पूरी अपनी जिंदगी जो है वो हर तरह से नचा वर्चस्व जो है जमीन को बचाए रखने के लिए, ओरण की जमीन को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा नाम है।
6: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए सुमेर सिंह भाटी के इस शानदार काम की गूंज अब मंगोलिया की धरती पर भी सुनाई देगी। चंद दिनों बाद 18 अगस्त को मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCCD के COP17 सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा।
8: मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड मेरा अकेले का नहीं है, संपूर्ण जैसलमेर का है, संपूर्ण आम जन का है, संपूर्ण पशुपालक का है।
6: सुमेर सिंह भाटी का संघर्ष सिर्फ ओरण तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके गोड़ावन पक्षी को बचाने के लिए भी एक मुहिम छेड़ दी है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। थार की रेत से उठी ये कहानी बता रही है कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक ऊंट पालक भी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का नया रास्ता दिखा सकता है, और शायद यही वजह है कि आज सुमेर सिंह भाटी का संघर्ष पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: दिल्ली से हरिद्वार और प्रयागराज से देवघर तक दिख रहा है कांवड़ यात्रियों का भक्ति का रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाय, बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। शिव भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकली महिलाएं, बागपत में पूर्व सैनिक ने पेंशन के पैसों से लगाया कांवड़ शिविर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदलती जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग के रंग में पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से जिनका लेना देना नहीं होता। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम बेनकाब करते हैं। तो देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ लोगों ने बिहार में तेंदुए के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि एक्टर ऋतिक रोशन ने अखिलेश यादव के शासनकाल की जमकर तारीफ की है। क्या है वायरल वीडियो के दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: बिहार में तेंदुए के साथ प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है हाल फिलहाल का है, नीट पेपर लीक के खिलाफ लोगों ने तेंदुए के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: पच्चीस जुलाई को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और वामपंथी छात्र संगठनों ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद किया था। इस दौरान राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। अब इसी विरोध प्रदर्शन से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों को भीड़ के बीच एक तेंदुए को ले जाते हुए देखा जा रहा है। एक एक्स्यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार प्रोटेस्ट में वाइल्ड कार्ड एंट्री। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार में लोग जो हैं तेंदुए के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की और देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने इंटरनेट और बिहार के तमाम मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर नीट पेपर लीक में विरोध में तेंदुए के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया होता तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर उपलब्ध जरूर होती। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान गया वीडियो में आ रही आवाजों पर। देखिए, जब हमने इसे गौर से सुना, ये इशारा मिला कि इस तरह के जो शब्द हैं बिहार के लोग अपने भाषा के दौरान यूज करते हैं। इसके अलावा वीडियो में ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि शख्स जो है तेंदुए को अपने कंधे पर रखा हुआ है। कुछ लोग तेंदुए के पूंछ को पकड़े हुए हैं, लेकिन इस दौरान तेंदुए के शरीर में कोई हरकत नहीं देखने को मिल रही है। हमें थोड़ा अटपटा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे तेंदुआ जिंदा नहीं है। आसपास खड़े लोग हंस रहे हैं, अपने मोबाइल के कैमरों में वीडियो बनाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी पुलिस के जवान भी नहीं नजर आए, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन वीडियो होता तो वहां पर पुलिस के जवान भी जरूर तैनात होते, नारे जरूर सुनने को मिलते, लेकिन कहीं भी कुछ हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो बिहार के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम बिहार के एक न्यूज पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर पहुंचे। न्यूज आउटलेट ने यह वीडियो 30 मई को शेयर किया था, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन इससे यह पक्का हो गया कि वीडियो पुराना है। लेकिन सर्च के दौरान हमें मई में यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें कहा गया था कि तेंदुए को बिहार के पूर्णिया में पकड़ा गया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान 27 मई को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया के टिक्का पट्टी पुलिस स्टेशन इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुए को मार डाला। यह जंगली जानवर 3 दिनों से गांव में घूम रहा था, खेतों को बर्बाद कर रहा था और मवेशियों पर हमला कर रहा था। इसने ग्रामीणों पर भी हमला किया जिससे 3 लोग घायल हो गए। 28 मई को छपी एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक तेंदुए ने 2 बछड़ों और 1 बकरी को मार डाला और 3 ग्रामीणों को घायल भी कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और काफी मशक्कत के बाद उसे मार डाला। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने तेंदुए का शव बरामद किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो मई का है, जब बिहार के पूर्णिया में ग्रामीणों ने पीट पीट कर एक तेंदुए की जान ले ली थी। इसका छात्रों के विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: क्या जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का समर्थन करने के बाद अब एक्टर ऋतिक रोशन ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की है। वायरल हो रहे दावे में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावे की कितनी सच्चाई है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांगे मान लेने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियोस और दावे सोशल मीडिया पर अब भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक दावा इन दिनों सोशल मीडिया के बाजार की सुर्खियों में है। इस दावे को लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और डांसर ऋतिक रोशन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फोटो में ऋतिक रोशन की तस्वीर के साथ एक बयान छपा है। इस बयान में लिखा है, छात्रों को लैपटॉप दिए, यूपी को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव के दौर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेता और समर्थक इस वायरल दावे को बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं। वायरल दावे को अखिलेश यादव के पुराने विकास कार्यों और लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस दावे का हवाला देकर एक्टर ऋतिक रोशन को निशाने पर ले रहे हैं। लोग इस बयान पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं और ऋतिक रोशन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक यूजर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और सैफई महोत्सव फिर से शुरू होगा तो गरीब की रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई न्यूज पोर्टल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस तरह की खबर शेयर की जा रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स भी इस दावे को बिना किसी पड़ताल के शेयर कर रहे हैं।
1: देखिए, जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उनकी तमाम मांगों को मानते हुए केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया है। उनकी जगह प्रहलाद जोशी की ताजपोशी भी हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया में सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े वीडियोस और दावों की बाढ़ सी आई हुई है। उन्हीं में से एक ये दावा भी किया जा रहा है। देखिए, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर कर रहे थे, उस दौरान एक्टर ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए इनका समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था कि फिल्म सुपर 30 की शूटिंग के दौरान उन्होंने छात्रों के दर्द को महसूस किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक शिक्षक का किरदार निभाया था। ऐसे में पहली ही नजर में यह मामला जो है सही नजर आता है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और सीजेपी का छात्र आंदोलन भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में माहौल में अगर ऋतिक रोशन जैसे बड़े एक्टर ने सचमुच अखिलेश यादव के बारे में ऐसा कोई बयान दिया होता तो उसके बारे में सभी जगह ये खबरें जरूर छपी होती, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने तहकीकात शुरू की, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि देखिए, अगर दावा सच है तो मुख्यधारा की मीडिया एजेंसियों या चैनल्स पर यह जानकारी हमें उपलब्ध क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं ऋतिक रोशन के नाम से गलत बेबुनियाद जानकारी शेयर तो नहीं की जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट ने।
0: अपने सवालों के आधार पर हमने वायरल हो रहे दावे की पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले वायरल हो रहे दावे को अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तलाश किया, लेकिन हमें इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमारी टीम ने ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया, लेकिन वहां भी हमें इस तरह का कोई बयान या जानकारी नहीं मिली। हालांकि हमें इस दौरान साल 2015 का एक वीडियो जरूर मिला जब ऋतिक रोशन ने सैफई महोत्सव में शिरकत की थी। वो इस वीडियो में स्टेज पर डांस करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस समारोह में यूपी के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। इसके अलावा 12 नवंबर 2016 को पब्लिश हुई एक न्यूज रिपोर्ट भी हमें मिली जिसमें ऋतिक ने अखिलेश की तारीफ की थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में ऋतिक के शिरकत करने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव उनके अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी चाहेंगे ऋतिक वहां जरूर जाएंगे। अब ये साफ हो चुका था कि ऋतिक रोशन के नाम से किया जा रहा वायरल दावा पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। ऋतिक ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लिहाजा फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में यह दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, यानी अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
7: बाहर का खाना खाने की जिद करने वाली बच्ची को समझाने के लिए माँ ने ऐसा अनोखा प्रैंक किया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लोग इसे जमकर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटी सी बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। उसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जिस पर पेट के अंदर की तस्वीर दिखाई देती है। स्क्रीन पर एक डरावना सा कन खजूरा जैसा कीड़ा नजर आता है, और ये देखकर ऐसा महसूस होता है मानो सच में बच्ची के पेट में कोई कीड़ा हो और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हों। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा राज खुल जाता है। असल में ये कोई मेडिकल जांच नहीं बल्कि माँ का एक मजेदार प्रैंक होता है। बच्ची को बाहर का खाना ज्यादा पसंद है, और शायद इसी आदत को छुड़ाने के लिए उसकी माँ ने ये अनोखा आइडिया अपनाया। उसने लैपटॉप पर पहले से एक फेक अल्ट्रासाउंड वीडियो चला रखा था, वहीं स्कैनिंग मशीन की जगह कंप्यूटर के माउस का इस्तेमाल किया गया। माँ माउस को बच्ची के पेट पर ऐसे घुमा रही थी जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते समय मशीन चलाते हैं। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान तो बच्ची के चेहरे पर जाता है, वो पूरे समय बेहद गंभीर नजर आती है और स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को बड़े ध्यान से देखती रहती है। ऐसा लगता है कि उसे सचमुच यकीन हो गया है कि बाहर का खाना खाने की वजह से उसके पेट में कोई कीड़ा पहुंच गया है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन इसे देखकर कई लोगों ने कहा कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए कभी कभार ऐसे मजेदार तरीके भी काम आ सकते हैं।
8: अगर मम्मी कभी कहीं चली गई और वापस कभी आएगी नहीं तो आप क्या करोगे?
9: मैं
8: चॉकलेट्स खाऊंगी।
7: ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। देखने में ये एक साधारण माँ बेटे की बातचीत लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में ये बातचीत इतनी भावुक हो जाती है कि इंटरनेट पर इसके बारे में खूब चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो की शुरुआत एक बेहद सामान्य सवाल से होती है। माँ अपने छोटे से बेटे से पूछती है, अगर मैं कहीं चली जाऊँ और फिर कभी वापस ना आऊँ तो तुम क्या करोगे? बच्चा बिना ज्यादा सोचे मासूमियत से जवाब देता है कि वो अपनी मम्मी की तस्वीर को प्यार करेगा। उसकी ये बात सुनकर पहले तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जवाब बेहद भोला और प्यारा लगता है।
8: तो फिर क्या करेगा?
9: मैं
8: कभी नहीं आऊंगी।
9: मैं आपको फोटो से प्यार करूंगी।
8: तो तू रो क्यों रहा है?
7: लेकिन अगले ही पल बच्चे के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे जैसे उसे माँ के सवाल का मतलब समझ आने लगता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो इमोशनल होकर रोने लगता है। उसकी मासूमियत और माँ को खो देने का डर वीडियो देखने वालों का भी दिल छू लेता है। जब माँ उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है, तब बच्चा कांपती हुई आवाज में सवाल करता है, क्या आप मर जाओगे? ये सुनकर साफ महसूस होता है कि बच्चे ने माँ के सवाल को हमेशा के लिए बिछड़ जाने से जोड़ लिया है। उसकी आंखों में चिंता और आवाज में घबराहट साफ झलकती है। वो आगे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी मम्मी जल्द वापस आ जाएं। बच्चे की ये बात उसकी माँ के प्रति गहरे लगाव और प्यार को दर्शाती है।
9: मुझे
7: माँ को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसका पूछा गया सवाल बच्चे के मन पर असर डाल चुका है। वो तुरंत उसे प्यार से गले लगाती है और समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
8: आप गंदी गंदी बातें करोगे, आप किसी को मारोगे, आप बैड बॉय बनोगे, आप क्या करोगे? तो फिर क्या करेगा? कभी नहीं आओगे?
9: आपको फोटो से प्यार करूँगी।
8: तो तू रो क्यों रहा है?
9: आप पिक्चर से मर जाओगे।
7: माँ का ये अंदाज जिसमें थोड़ी सख्ती और बहुत सारा प्यार था सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस मजेदार बातचीत पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं।
10: पेन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है?
7: लोग इस पल को हर भारतीय घर की कहानी बता रहे हैं।
10: पेन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है?
7: दरअसल परीक्षा देने जा रही बेटी को माँ की दी गई ये प्यारी सी नसीहत लोगों को खूब पसंद आ रही है। माँ की कही एक लाइन ने तो परीक्षा के समय की भावनाओं को बखूबी बयां भी कर दिया है।
10: पेन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है? चलो।
7: असम में इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ऐसे मुश्किल मौसम में जहां ज्यादातर लोग घरों में रहने की कोशिश करते हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी घंटों सड़क पर खड़े होकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसी बीच गुवाहाटी में एक शख्स ने ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। गुवाहाटी के रहने वाले लक्ष्मण गोस्वामी ने बारिश में ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मदद करने का फैसला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बीच एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों के बीचों बीच खड़े होकर वाहनों को नियंत्रित कर रहा था। लगातार हो रही बारिश के बावजूद वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी लक्ष्मण गोस्वामी वहां पहुंचे, उनके हाथ में एक रेनकोट और वाटरप्रूफ पैंट थी जिसे उन्होंने खास तौर पर उस पुलिसकर्मी के लिए खरीदा था। रेनकोट देने से पहले लक्ष्मण ने पुलिसकर्मी से कहा कि इस पर पुलिस लिखा हुआ है ताकि ड्यूटी के दौरान कोई भी व्यक्ति उन्हें आम नागरिक न समझे। ये छोटी सी बात इस बात को भी दिखाती है कि उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि पुलिसकर्मी की पहचान और जिम्मेदारी का भी पूरा ख्याल रखा। पुलिसकर्मी ने मुस्कुराते हुए ये उपहार स्वीकार किया, उनके चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत वही रेनकोट और वाटरप्रूफ पैंट पहनी जिसके बाद बिना समय गवाए वो फिर से अपनी जगह पर लौटे और पहले की तरह ट्रैफिक संभालने लगे। यूजर्स इस वीडियो पर अपना प्यार खूब लुटा रहे हैं। जिंदगी से उबने से तो बेहतर है कि बादलों के बीच कुछ रोमांचक किया जाए, ये कहना है 97 साल की एक ऐसी जाबाज दादी का जिन्होंने अपनी उम्र और सेहत की हर रुकावट को हवा में ही उड़ा दिया। ब्रिटेन की रहने वाली बेटी ब्रोमेज ने स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी को मात देने के ठीक एक साल बाद उड़ते हुए प्लेन के पंख पर खड़े होकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चेल्टनहैम की रहने वाली 97 साल की बेटी ब्रोमेज ने साइरेंस्टर के RFC रेंटकॉम एयरफील्ड में ये साहसिक कारनामा पूरा किया। जब उन्होंने ये उड़ान भरी तब उनकी सटीक आयु
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चल।
11: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य

0: पड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, और इस वक्त महाकाल कॉरिडोर से आपको दिखा रहे ये भव्य खूबसूरत तस्वीरें। क्षिप्रा नदी के किनारे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। अच्छी और सच्ची खबरों का पूरा सिलसिला हम यहीं से शुरू करेंगे, और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि दिन भर, क्योंकि देखिये सावन का महीना चल रहा है और महाकाल से बेहतर और कोई जगह हो नहीं सकती, तो कल दिन भर आप गुड न्यूज टुडे पर धर्म संसद भी देख सकते हैं हमारे साथ। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज की अच्छी और सच्ची खबरों में तीन बड़ी और अहम खबरें जो आपको दिखाने वाले, उसमें सबसे पहले बात होगी उन गोल्डन गर्ल्स की जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, लिए चलेंगे आपको उस गुरुकुल में। इसके अलावा सावन की भी बात होगी, सावन का महीना है, किस तरीके से सावन की रौनक बिखरी हुई, खासतौर पर यहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन से हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ देश भर के शिवालयों में किस तरीके से रौनक है वो आपको दिखाएंगे। और एक और अहम खबर, एक विशेष दान जो दिल्ली में आप कर सकते हैं, और क्या है उसकी पूरी प्रक्रिया, आगे जानी है शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: दिल्ली से हरिद्वार और प्रयागराज से देवघर तक दिख रहा है कांवड़, यात्रियों की भक्ति के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक। शिव भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों के साथ कांवड़ लेकर निकली महिलाएं, बागपत में पूर्व सैनिक ने पेंशन के पैसों से लगाया कांवड़ शिविर। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश है, बद्री विशाल के दर्शन को बढ़ रहे हैं भक्त।
8: तो
7: देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने

0: के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच फोर लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिल गई हरी झंडी। अगस्त को लगेगा साल 2026 का सबसे दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण। आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल में दिखेगा सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग।
1: अच्छी खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले उस बेटी की जिसने भारत का नाम रोशन किया है, जिसने भारत को गोल्ड दिलवाया है जूडो में। हम बात कर रहे हैं अस्मिता दे की, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हाल ही में भारत को जूडो में गोल्ड दिलवाया है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि हम आज आपको उनके उसी गुरुकुल लिए चलेंगे जहां से उन्होंने जूडो की ABCD सीखी है। तो बिना वक्त गवाए चलिए आपको लिए चलते हैं अस्मिता के उसी एकेडमी में।

0: जूडो की ये वो नर्सरी है जहां ये बच्चे इस खेल के दांव पेच और बारीकियां सीखकर देश के लिए मेडल जीतने का सपना देख रहे हैं। इन बच्चों में 23 साल की अस्मिता डे भी शामिल है, जिन्होंने हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का पहला गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ देश का मान बढ़ाया बल्कि कोच और माता पिता का नाम भी रोशन किया। मेडल जीतने के बाद अस्मिता जब अपनी एकेडमी पहुंची तो वहां देश का मान बढ़ाने वाली इस बेटी का जोरदार स्वागत हुआ।
1: इतिहास में नाम दर्ज करना हो तो अस्मिता दे की तरह मेहनत और फिर उसके बाद हिस्ट्री क्रिएट करना, द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन जूडो, दिस इज आवर हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड बाय इंडिया इन जूडो इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अस्मिता, टेक्निक सबकी सेम होती है
2: जी।
1: तो ऐसा क्या हुआ कि एक 23 साल की इंडिया की लड़की ने जीत हासिल करी? क्या वो मेंटल कॉन्फिडेंस था या कोई ट्रिक थी जिसमें आप सक्सेसफुल हुए?
2: जी मैम, वो मेंटल का वो था और माइंडसेट था मेरा कि मुझे मारना ही है, तो शायद उसी वजह से मैं जीती हूँ।
0: महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में अस्मिता ने कनाडा की हेडी क्वाच को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ अस्मिता कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं। ये उपलब्धि अस्मिता ने कैसे हासिल की, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए।
1: कब आपको लगा कि ये जीत तो मुझे मिलने वाली, क्योंकि बीच में जो कनाडा के ओपोनेंट थे थोड़ा सा मुश्किल हो गया था।
2: जी मैम, वो उसने पहले मुझे स्कोर मार दी थी तो मेरे पास बस 2 मिनट बची थी, तो मुझे तब लगा 2 सेकंड के लिए ये लगा था शायद मैं हार जाऊंगी, बट फिर मेरे जो कोच है यशपाल सोलंकी सर, उन्होंने बोला ये गोल्ड हमारा है, तू मारेगी तू ले जाएगी, तो तब मेरे को फिर और मैं थोड़ा मोटिवेट हो गई थी कि हाँ मैं मार सकती हूँ। उसके 40 सेकंड बाद, मतलब उसने स्कोर मारने के 40 सेकंड बाद मैंने फिर मार दी, फिर बराबर हो गए। हमारे जूडो में ऐसे होता है 4 मिनट तक अगर दोनों बराबर चलते तो फिर उसके बाद गोल्डन स्कोर हो जाते, गोल्डन स्कोर के बाद जो पहला स्कोर मारते वो विनर होते, तो मैंने फिर उसके बाद पहला स्कोर मारे और मैं विनर बनी।
1: क्या अपने आप को आपने बोला कि ये अपॉर्चुनिटी मैं जाने नहीं दे सकती?
2: जी मैम, क्योंकि ये हमारे देश के लिए और भारत के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे फैमिली के लिए, सबके लिए, मुझे मैंने सोचा कि नहीं, ये गोल्ड मेडल मेरे लिए बहुत जरूरी है।
0: त्रिपुरा की रहने वाली अस्मिता डे पहले 800 मीटर दौड़ की एथलीट थी। जिला स्तरीय ट्रायल के दौरान उनकी रुचि जूडो में बढ़ी, जिसके बाद उन्होंने एथलेटिक्स छोड़कर जूडो को अपना खेल बना लिया और अस्मिता ने कोच यशपाल सोलंकी की देखरेख में कड़ी ट्रेनिंग ली, जिसका नतीजा उनके गले में चमक रहा ये गोल्ड मेडल है। अस्मिता बताती हैं कि उनके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अस्मिता के पिता कुछ महीने पहले ही ब्रेन स्ट्रोक के कारण चल बसे थे। यही वजह है कि मेडल जीतने के बाद अस्मिता पिता को याद कर भावुक हो गई थी।
2: जो मेरे पापा थे वो 2025 में चले गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पर दिसंबर में पापा जाने के बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, पर उसके 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के ट्रायल था, जिसमें मेरा नेशनल में मैं फर्स्ट आई थी और मैं अभी दोनों में सिलेक्टेड हूँ।
1: पिताजी कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे थे?
2: जी मैम, बहुत ज्यादा थे कि, और मैं अगर पिताजी को बोलती थी ना ये चाहिए मुझे, मतलब प्रोटीन के लिए थोड़ा पैसे, मैं कम ही बोलती थी क्योंकि मुझे पता है, तो मेरे पिताजी फिर उसी टाइम बोलते थे कि तू चिंता मत कर हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं से करके मुझे कर ही देते थे।
1: कैसे करते थे वो पता नहीं,
2: वो मुझे नहीं बताते थे, शायद जानबूझ के बोलते थे तुझे चाहिए तो तू ले, मुझे ये सब मतलब बताते नहीं थे पिताजी। तो
1: क्या काम करते
2: मैम? बस वही साइकिल मैकेनिक थे, ज्यादा पैसे नहीं मिलता था, लॉकडाउन में तो इतना हालत खराब था कि मतलब बस दाल चावल खाती थी और मेरे वेट भी उस टाइम बहुत कम हो गया था, और मतलब खाने का कुछ होता नहीं था, और बस 100 रुपए मिलता था कभी कभी, तो उसी से थोड़ा बहुत घर चलता था।
0: कोच यशपाल सोलंकी बताते हैं कि अस्मिता ने कभी भी चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और तैयारी पर फोकस बनाए रखा, जिसकी वजह से आज हर कोई अस्मिता पर गर्व कर रहा है।
3: जो मैं इसके लिए कर सकता हूँ या विजय के लिए कर सकता हूँ, मैंने वही सोच के किया। जब इनके फादर की डेथ हुई तो मैंने इसको बोला था, अच्छा ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, और कमाल की बात यह है, सिर्फ 1.5 साल पहले हम डिस्कस कर रहे थे, किसी और बच्चे के फादर की डेथ हुई थी, तो हमने पूरा गीता डिस्कस किया था, ये गीता पढ़ती मैं भी पढ़ता हूँ, हमने डिस्कस किया कि बेटा जो पैदा भी नहीं है उसको भी जाना है, अब आपके फादर जा चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट, आपके फादर का सपना तो जिंदा है, ही इज़ वॉचिंग यू। तो जिस दिन उनकी 13वीं हुई थी, सेम डे ये वापस आई थी, और जो फर्स्ट फ्लाइट टिकट मिली हमें क्योंकि मुझे पता था इंडिया में दोस्तों से मिलेगी, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी। इमीडिएटली इसको यूरोप भेज दिया था और इसने बहुत हिम्मत दिखाई मैम। शी वॉज द लाइटेस्ट एंड सबसे यंग लड़की थी मेरी अकेडमी में जब मैं 2018 में साई ज्वाइन किया था। इसके अंदर वो मैडम विल पावर थी और वो विल पावर हमेशा से मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी, ये लड़की पीछे नहीं हटती है।
0: पदकवीर अस्मिता आज इस अकेडमी के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। जूडो के दावपेच सीख रहे बच्चे भी अस्मिता जैसा ही देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इन बच्चों के सपने साकार हो सके इसके लिए अस्मिता उन्हें ट्रेनिंग भी देती हैं।
1: आप लोग ने भी देखा अस्मिता दीदी को जीतते हुए, कैसा लगा? गोल्ड मेडल जीत के आई है वो,
4: बहुत अच्छा लगा। हाँ। जब वो जीती तो लगा था भारत को रिप्रेजेंट कर रहे, तो भारत पहली बार जूडो में जीता, बहुत अच्छा लगा।
0: अस्मिता डे की इस गोल्डन सफलता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडो के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की है।
1: इस गोल्ड मेडल से एक बात जरूर हुई, यहाँ पर कितने और यंग बच्चे बच्चियां हैं जो आए हैं यहाँ पर जूडो सीखने के लिए, सिर्फ हॉबी नहीं लेकिन कल को वो भी भारत का तिरंगा पोडियम पर लेकर खड़े हों। यही होता है जब एक मेडल विनर अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी प्रॉब्लम साइड रखकर वो मेडल और पोडियम पे पहुंचते हैं। और भारत के लिए असली जेंजी से प्रेरणा लेना यही तो है। सत्या रोत्रे के साथ पूजा शाली।
5: तो चलिए अच्छी और सच्ची खबरों में, महाकाल की नगरी उज्जैन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये महाकाल कॉरिडोर की तस्वीर और रौनक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, देखिए कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यकीन मानिए लगातार, क्योंकि हम कहते हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और गुड न्यूज टुडे पर आप तमाम उत्सव देखते भी हैं। और हरिद्वार की चाहे कांवड़ यात्रा हो या फिर देवघर की कांवड़ यात्रा हो, या फिर हम यहाँ उज्जैन की ही बात कर ले जहाँ से नर्मदा नदी से जल भर कर लोग यहाँ पर आकर जलाभिषेक करते हैं, तो वो तस्वीरें भी आज पूरे रास्ते हमने वो तस्वीरें भी देखी है कांवड़ यात्रा की। तो देश के अलग अलग शिवालयों में हर सोमवार भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। तो किस तरीके का जोश और उत्साह, एक तस्वीर यहां से आपको नजर आ रही है और दूसरी तस्वीर के लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
0: का महीना और सड़कों पर कावड़ियों का रेला उमड़ आया है। जहाँ देखो जिधर देखो इस वक्त रंग बिरंगी और अनोखी कावड़ ही नजर आ रही हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में तो इन दिनों कावड़ यात्रा को लेकर अलग ही आस्था और भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी गवाही मेरठ से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें अलग अलग आकार और थीम पर आधारित कावड़ लेकर ये शिव भक्त निकले हुए हैं। लग्जरी कार की रेप्लिका पर कावड़ सजा कर निकला है, कोई सैन्य शक्ति को समर्पित कावड़ लेकर निकला है और कोई शिव के औघड़ दानी स्वरूप की कावड़ लेकर निकला हुआ है। यानी जिसको शिव के जिस स्वरूप में आस्था नजर आई वो उसे कावड़ में ढालकर निकल पड़ा आस्था के पथ परीक्षा देने के लिए।
6: बजरंगबली जी को हमने ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, गणपति बापा को साइड पे बैठाया हुआ है, और भी हमने महाकाल की नंबर प्लेट लगवाई हुई है नीचे, और भी जब रात को चलते तो भोले बाबा की चढ़ाओ में से 20-25 फुट ऊपर गंगा जी विराजमान होती है।
7: अच्छा
6: जी,
7: तो कितने दिन में तैयार हुई बनकर?
6: हमारी 2-3 महीने के अंदर तैयार हुई।
7: तो खुद ही करिए या किसे करवाई?
6: खुद ही करवाई
7: अपने हाथों से।
8: बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, जहाँ पे भी हम रुक रहे हैं भीड़ वहाँ से टूट नहीं रही है, उस देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
0: देवाधिदेव महादेव के कुछ ऐसे ही अनोखे और अलबेले भक्त सहारनपुर के कावड़ रूट पर भी देखने को मिले। यहाँ एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई ऐसी कावड़ दिखी जिन्हें आर्टिफिशियल फूलों और लाइट से सजाया गया है। अलग अलग रंगों, लाइटिंग और धार्मिक स्वरूपों से सजी ये कावड़ सहारनपुर की सड़कों पर गुजरते हुए अलग ही नजारा पेश कर रही है। लोग अपने मोबाइल से इन खूबसूरत कांवड़ की वीडियो और फोटोज खींच रहे हैं। अनोखी कांवड़ की तरह ही कुछ ऐसे अनोखे कांवड़ यात्री भी हैं, जो अपनी कठिन कांवड़ यात्रा के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इन्हीं में से एक है मंजीत दहिया, जो हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक करीब 200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रोजाना करीब 3500 सपाटे मारकर यात्रा कर रहे हैं। मंजीत बताते हैं कि वो ये कावड़ यात्रा किसी खास मनोकामना के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वो युवाओं को फिटनेस का संदेश देने के लिए कावड़ यात्रा पर निकले हैं।
9: 5 कदम भी 6 भी ऐसे चल के मैं एक अपना सपाटा लगाता हूँ।
10: कितने सपाटे आप लगाते हैं? वैसे बता रहे थे
9: पर डे के हो जाते हैं 3000 करोड़ हो जाते हैं पर डे के।
10: क्या है इसके पीछे?
9: इसके पीछे यही है भाई, मैं तो युवा के लिए संदेश दे रहा हूँ, भाई फिट रहो, अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं है।
10: कहाँ से आप अब तक कितने दूर तक का सफर तय कर चुके हैं?
9: हरिद्वार से यहाँ तक देख लो अब कितना होगा, हुआ ये करीबन ये मान के चलो 65-70 के बीच में अभी मेरा गाँव रह रहा है।
10: ये सपाटे वाला आइडिया कैसे आया?
9: ये बस मेरे को पिछले साल ही होगा था, मैं अगली बार लेके आऊंगा ऐसे ही लेके आऊंगा, युवा के लिए बढ़िया सोच।
0: शहर शहर निकाली जा रही कावड़ यात्रा का एक रंग ये भी है कि कई लोग इन कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं। कोई खाने पीने का लंगर लगाकर सेवा कर रहा है, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए सेवा में जुटा है। सेवा के इस काम में कोई भी पीछे नहीं है, क्या आम और क्या खास, हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही कावड़ियों की सेवा में जुटा हुआ है। बागपत के दाहा गांव में एक ऐसा कावड़ शिविर भी है जहां न चंदा लिया जाता है, न किसी से मदद मांगी जाती है और न ही सेवा के नाम पर कोई दिखावा होता है। यहां अगर कुछ है तो बस श्रद्धा, सेवा और परिवार का समर्पण। 31 साल तक वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले एक पूर्व फौजी राजकुमार राणा अब अपनी पेंशन से भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं।
11: पहले देश की सेवा करी, अभी मैं भोलों की सेवा करना चाहूँ और अपने पैसे से करता हूँ, ना किसी से कोई दान दक्षिणा किसी से लेता ना मांगता, और घर का ही यूज करता हूँ, आटा बेसन खुद का घर का बनाया करता हूँ, ना मुझे किसी से लोभ लालच है। मेरे दिल में आई भोलों की सेवा करनी, कि सबसे बड़ा जो दान है भूखे को खाना खिलाना है, जो बेचारे इतनी दूर से कावड़ लेकर आते हैं, इन्हीं के लिए मैं इनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँगा।
12: तंदूरी रोटी बनाते हैं, दो सब्जी बनाते हैं, कभी मटर पनीर आज ही खुद ही बनाते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं है।
10: क्यों आया ये मन में?
12: हाँ, ये मन में आज ही उनकी सेवा करें, पेंशन से ही खुली है, बोले एक साल की पेंशन से मैं दान करूँ।
0: सावन के इस महीने की एक अलग ही छटा इन दिनों बिखरी हुई है। शिवालयों से लेकर इन कांवड़ यात्राओं तक शिव भक्ति के कई रंग नजर आ रहे हैं, जो शिव के प्रति इनके अटूट समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, सहारनपुर से राहुल कुमार, बागपत से मनुदेव उपाध्याय और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: महाकाल की नगरी उज्जैन में और इस वक्त महाकाल कॉरिडोर का 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखा देते हैं। एक तरफ है क्षिप्रा और एक तरफ हम कॉरिडोर के पास खड़े और ठीक मेरे सामने है मंदिर, जहां से आप आवाज भी सुन रहे होंगे, भजन कीर्तन की आवाज लगातार यहां पर सुनाई दे रही है और भव्य खूबसूरत नजारा जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन का, जहां पर कल खासतौर पर आप धर्म संसद में भी शामिल होंगे, जो कि गुड न्यूज टुडे लगातार आपको दिखाएगा। कुछ ही समय बाद उज्जैन में भी कुंभ लगने वाला, उसकी तैयारियां कैसी हैं, सरकार ने कितनी तैयारियां की, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में रौनक कितनी है इस वक्त महाकाल में, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए एक और खबर अच्छी और सच्ची खबरों में आपको बताते हैं, वो है अर्पण केंद्र योजना। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना की शुरुआत की गई है जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। बेकार कपड़े जो हम फेंक देते हैं वही आप एक जगह दान कर पाएंगे। ऐसे 10 मेट्रो स्टेशन को चिन्हित किया गया है जहां पर जाकर आप अपने कपड़े दे सकेंगे ताकि आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें।
13: आमतौर पर इस्तेमाल के बाद इस तरह के पुराने या फेंके गए कपड़े कचरा गाड़ियों से होते हुए दिल्ली के कई लैंडफिल साइट्स तक पहुंच जाते हैं और गाजीपुर, भलसवा या ओखला जैसे लैंडफिल साइट्स का ढेर कभी खत्म नहीं होता। हालांकि दशकों से दिल्ली में फटे पुराने कपड़ों के साथ होने वाले इस अंजाम को अब बदलने की तैयारी है। दिल्ली में आपके पुराने कपड़े अलमारी का बोझ या लैंडफिल साइट्स का हिस्सा न बने, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अर्पण केंद्र नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर पुराने कपड़े दान करने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इनमें से एक मयूर विहार फेज वन मेट्रो स्टेशन भी है। अर्पण वस्त्र दान केंद्र योजना का एकमात्र मकसद दिल्ली में रहने वाले लोगों को उनके पुराने इस्तेमाल करने लायक कपड़े दान करने के लिए प्रेरित करना है।
14: आपके कपड़े अगर पुराने हो जाते हैं तो आप उनका क्या करते हैं? या तो आप उसे अपनी मेड को या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान कर देते हैं, लेकिन जो कपड़े आपके फट जाते हैं इस्तेमाल होते होते या खराब हो जाते हैं, उनका रंग उड़ जाता है, तो उनका आप क्या करते हैं? आप शायद उन कपड़ों को फिर कूड़े में डाल देते हैं और आपके डस्टबिन से होते हुए वही कपड़े फिर दिल्ली के लैंडफिल साइट तक पहुंचते हैं और कूड़े का एक नया पहाड़ तैयार हो जाता है, जिसमें आपका योगदान जाने अनजाने बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार एक ऐसी ही समस्या का हल लेकर आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार फेज़ वन मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से नए नए कियोस्क शुरू किए गए हैं। इनका नाम है अर्पण। अब अर्पण में आप लोग आकर अगर आपके कपड़े पुराने हो गए हैं, उनका रंग उड़ गया है, फट गए हैं वो, तो यहाँ आकर आप उन कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं।
13: 10 मेट्रो स्टेशन में शामिल मयूर विहार फेज वन मेट्रो स्टेशन में भी अर्पण वस्त्र दान केंद्र नाम का एक कियोस्क यानी छोटा सा बूथ बनाया गया है, जहां इस्तेमाल नहीं आने वाले कपड़ों को दान करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। यहां डाक विभाग के एक पोस्ट बॉक्स की तरह एक निश्चित और सुरक्षित जगह बनाई गई है, जिससे कियोस्क के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने पुराने कपड़े डाल सकता है।
14: देखिए, बहुत आसान सा काम है। आप अपने कपड़े लेकर यहां पर आइए। दिल्ली के ऐसे 10 मेट्रो स्टेशन पर यह व्यवस्था शुरू की जा रही है, और यहाँ पर आप देखिए कि एक स्कैनर लगा हुआ है। इस स्कैनर को आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना है, एक फॉर्म खुल के आएगा, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, नाम डालना होगा, और कितने किलो कपड़े आपने डोनेट किए वो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन भरनी होगी। कपड़े जो आप लेकर आएंगे उनका वेट आप यहाँ पर जो कियोस्क है वहीं पर वेट मशीन रखी हुई है, और उसी के जरिए आप उसका वजन कर सकते हैं, और वजन करने के बाद आप इन कपड़ों को यहीं पर दान कर सकते हैं।
13: खराब, बेरंग, फटे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करने की भी पूरी तैयारी है। उनसे बहुत सारी उपयोगी और सुंदर चीजें बनाई जा रही हैं। उनसे मैट यानी पायदान, टेबल रनर, रसोई के लिए पोछे, बच्चों के खिलौने में भरने की कर्तन, शॉपिंग बैग या पुराने कपड़ों की कर्तन भरकर बैठने के लिए फ्लोर गद्दे भी तैयार किए जा सकते हैं। बेकार कपड़ों को दोबारा शानदार बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना भी है।
14: दिल्ली सरकार क्या करेगी कि उसने ऐसे एनजीओ से, ऐसे एजेंसी से टाइप कर रखा है जो लोग वेस्ट कपड़ों से नए प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यानी कि या तो कपड़ों को रिसाइकल करते हैं या अपसाइकल करते हैं। अपसाइकल करने के बाद इस तरह के तमाम सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो आप देख रहे हैं, यानी अगर आप कोई ख़राब जीन्स देते हैं, कोई ख़राब आप अपना सूट देते हैं, तो उससे तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे, चाहे वो हैंड बैग हो, फिर चाहे वो बहुत सारे दूसरे कैरी बैग हो, या फिर छोटे छोटे पाउचेस हों। इन कपड़ों से इन चीज़ों को नए तरीके से बनाया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर आपके खराब कपड़ों को लैंडफिल साइट तक पहुंचने से रोका जाएगा।
13: इन केंद्रों पर लोग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपने साफ और इस्तेमाल योग्य पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। महज 2 दिन में सिर्फ मयूर विहार फेज वन मेट्रो स्टेशन पर बने अर्पण वस्त्र दान केंद्र में 100 किलो से ज्यादा कपड़े दान में मिल चुके हैं।
15: बहुत ही सुंदर ऐसे डिस्प्ले काउंटर आपने बनाए, जहाँ पे इस कपड़ों से रिसाइकिल होकर के और जो अपसाइकिल होकर के सामान बना है उसको भी आपने विंडो डिस्प्ले किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वहां खड़ी है, देने वाला व्यक्ति तोल के भाव से कपड़े देके जाएगा, एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा डोनेशन का, उसके पास रहेगा कि आपने इतने कपड़े डोनेट किए।
13: एक छोटा सा दान किसी के तन पर कपड़े नहीं होने की समस्या को दूर कर सकता है। इसके अलावा ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी पैदा करेगी।
16: लोग आते हैं यहाँ पे कपड़े डोनेट करने के लिए, तो सबसे पहले हम उनके कपड़ों को तोलते हैं, और जितना भी कपड़ा होता है उनका एक स्कैनर लगा हुआ है यहाँ पे, उसको वो QR लगा हुआ है उसको स्कैन करते हैं। जैसे वो स्कैन करते हैं, एक फॉर्म होता है, उनके फॉर्म में जो आता है उसमें उनको कोई अपना नाम डालना होता है, प्लस फोन नंबर और जितने भी कपड़े डोनेट किए हैं वो कपड़ों की क्वांटिटी डालनी होती है। तो उसके बाद में जैसे ओके करेंगे वो डोनेशन पे, तो हमारे पास एक लिंक है उसमें सारा डेटा आ जाता है उनका, और वहाँ से हम ओके कर देंगे। उसके बाद में उनको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो अर्पण वस्त्र केंद्र के नाम से होगा, और वो इन फ्यूचर उनको, अभी तो नहीं, इन फ्यूचर उनको उसमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट पोर्टल पे अगर वो कहीं कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ डिस्काउंट मिल सकता है। ये सोच लो कल तक 72.5 केजी थे,
14: 72 किलो आ चुके हैं,
16: 72 किलो आ चुके हैं कल तक, फिर कल और आए थे 25 किलो, फिर अभी 25 किलो और आ चुके हैं।
14: एक टन से ऊपर हो चुका कलेक्शन आपके पास?
16: इतना हो गया है सर।
13: तो नेक काम में देरी क्यों? ऐसे में अगर आपकी अलमारी में भी ऐसे कपड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करती, तो आप उन्हें फेंकने की बजाय अर्पण केंद्र तक पहुंचाइए, ताकि कपड़ों के इस्तेमाल में होने वाले कृत्रिम रेशे और रंग को, मिट्टी और भूजल को दूषित करने से रोका जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सावन मतलब की उत्सव और उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और जिसकी सबसे दिव्य भव्य तस्वीरें आप कहीं और नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर देखते, और पूरा सावन हम आपको देश भर की ये तमाम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल उज्जैन महाकाल से मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों,
18: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है, सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं, और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर,
2: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
20: गुड न्यूज टुडे।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों का आपके भाग्य से क्या संबंध है, घर की सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए और सीढ़ियों को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नजरिए से सीढ़ियों के बारे में। वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये सीढ़ियां आपके घर में कहीं भी हों, ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे देखिए, सीढ़ियों का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर में सीढ़ियां बनाई हैं तो अचानक आपके जीवन में समस्या आ सकती है। इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, बेवजह के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए, सीढ़ियां आपको घर के ऊपर भी ले जाती हैं और सीढ़ियां आपको घर के नीचे भी ले आती हैं। उतार चढ़ाव से संबंध होने की वजह से सीढ़ियों का संबंध आपके जीवन में राहु और केतु के साथ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर के कोने में या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी सीधी हों, जितनी सरल हों, उतना अच्छा होगा। सीढ़ियां कम घुमावदार होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहां पर बाथरूम, स्टोर या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है भूल कर भी वहां पर मंदिर मत बनाइएगा। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का होना और सीढ़ियों के नीचे मंदिर का होना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है,
धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो और आपने अपने घर में गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली हों। अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बन गई हों तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जिस स्टेप पर सीढ़ियां शुरू हो रही हैं और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं वहां पर एक हरे रंग का डोर मैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे टेबल लगा करके पढ़ने लिखने की वस्तुएं रख सकते हैं, पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं या किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे पानी रखना या सीढ़ियों के नीचे पानी रखने की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें,
वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सीढ़ियों के वास्तु और ज्योतिष के साथ कनेक्शन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे पुरुषों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए और

काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए सावन का महीना है और सावन के महीने की अगर असली रौनक आपको देखनी है कहीं तो आइए यहाँ पर महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहाँ पर खूबसूरत मौसम के साथ साथ भक्ति का एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिल रहा है महाकाल कॉरिडोर से। जैसा हम आपको बता ही रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें और साथ ही साथ अच्छी और सच्ची खबरें भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। चलिए अब दिल्ली सरकार की उस पॉलिसी की बात करते हैं जिसकी वो शुरू दिल्ली सरकार ने किया, लेकिन अब उसका एक तस्वीर हम कह सकते हैं कि नजर आने लगी और ये है सरकार की ईवी पॉलिसी। लोगों को भरोसा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब तेजी से लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। नतीजा यह है कि ईवी की बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2026 में दिल्ली में 10,307 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो कि अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है और सबसे ज्यादा रफ्तार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की दिखाई दे रही है, जबकि कमर्शियल ईवी की मांग की लगातार बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक गुड्स थ्री व्हीलर और इलेक्ट्रिक मोटर कैब दोनों की बिक्री में लगातार इजाफा हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो ईवी पॉलिसी लाई थी उसका असर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लोगों में भी अब ईवी व्हीकल को लेकर दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है।

0: भारत ने मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए परीक्षण में सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा कांवड़ यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आए। बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे भक्त। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठाते दिखे लोग। शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा उत्तर प्रदेश के बदायूं के लोधी छात्रावास की भी है जहाँ शिक्षा सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि पूरी तरह निःशुल्क।
1: राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये इशारों में इनकलाब की तस्वीरें हैं जहां इन दिव्यांग बच्चों की बेआवाज शिकायतों ने प्रशासन को बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। कहानी जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की है जहां के छात्र छात्राएं स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर सड़क पर उतर आए। इनके पास आवाज नहीं थी लेकिन कहना आता था सो इशारों में बता रहे हैं कि स्कूल की बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। शौचालयों की हालत खराब है, पेयजल की व्यवस्था बदहाल है और स्कूल भवन जगह जगह से जर्जर हो चुका है। इसे दिव्यांग अल्फा का प्रदर्शन कहा जा रहा है जिसके खामोश इशारों ने सरकार और विपक्ष दोनों को सुनने पर मजबूर कर दिया और इसका असर ये हुआ कि मामला सरकार तक शिक्षा विभाग तक पहुंचा, स्कूल का निरीक्षण हुआ और स्कूल की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए विशेष कमेटी का गठन भी हो गया है ताकि इन बच्चों को बेहतर माहौल में बेहतर शिक्षा मिल सके। पटना ने देश को सस्ती शिक्षा का मॉडल दिया था, अब यूपी का बदायूं से एक कदम आगे निकलने की कोशिश में है। यहाँ शिक्षा सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि पूरी तरह निःशुल्क है क्योंकि यहाँ छात्रों से न पढ़ाई की फीस ली जाती है न रहने का किराया। किताबें, लाइब्रेरी, मार्गदर्शन सब मुफ्त में उपलब्ध है और इस जगह का नाम है लोधी छात्रावास। लाइब्रेरी, कोचिंग और करियर काउंसलिंग सेंटर। बदायूं के इस छात्रावास में आसपास के करीब 15 जिलों के बच्चे यहां पहुंच रहे हैं। किसी के पिता किसान हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर का बेटा है, कोई अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था लेकिन अब सबके सामने एक ही लक्ष्य है अपनी किस्मत बदलना। और छात्रावास का मकसद है किसी भी बच्चे का सपना आर्थिक अभाव की वजह से अधूरा न रह जाए। पंजाब के फरीदकोट में एक नौजवान के हौसले की चर्चा है। ये नौजवान है यहाँ कोटकपुरा शहर के रहने वाले 18 साल के प्रभजोत सिंह जो आज ब्रिलियंट पी नामक निःशुल्क शिक्षा पहल के संस्थापक हैं। ये मंच देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और दूसरे डिजिटल स्किल्स मुफ्त में सिखा रहा है। खास बात यह है कि प्रभजोत ने ये पहल करीब 5 साल पहले शुरू की थी जब वो महज 13 साल के थे। कोरोना काल में इन्होंने भी आपदा को अवसर की तरह इस्तेमाल किया और आज अपनी एक खुद की पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माता पिता नहीं थे, मौसी के घर में रह रहे थे, अपना लैपटॉप और मोबाइल भी नहीं था लेकिन सीखने का जुनून था सो रास्ते खुलते गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जो ज्ञान उन्हें मिला है उसे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों तक निःशुल्क पहुंचाएंगे। एक छोटे शहर के किशोर द्वारा शुरू किया गया ये मिशन आज हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुका है।

0: शिरडी साईं बाबा मंदिर को एक और बड़ा दान मिला है। दुबई के एक भक्त ने अपनी मुराद पूरी होने पर साईं बाबा को 10 लाख रुपए मूल्य के सोने का राम अक्षर अर्पण किया है, जिसका वजन 76 ग्राम है। कुछ महीने पहले इसी भक्त ने 24 लाख रुपए मूल्य के सोने का ओम साईं अक्षर साईं बाबा मंदिर को अर्पण किए थे। अब द्वारका माई मंदिर में सोने के ओम साईं के साथ राम अक्षर स्थापित किए गए हैं। श्रद्धालु का कहना है कि वो साईं बाबा को साक्षात श्री राम के स्वरूप में देखते हैं। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के लिए रास्तों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रशासन और स्थानीय निकायों ने विशेष रूप से गागलहेड़ी और सरसावा क्षेत्र में हजारों रंग बिरंगे लाइटों और लड़ियों से पूरे कांवड़ मार्ग को जगमग कर दिया है। इससे शिवभक्तों को रात में भी सफर करने में न सिर्फ आराम मिलता है बल्कि नई ऊर्जा भी मिलती है। मार्ग पर 10 से 12 हजार से भी ज्यादा रंग बिरंगी लाइटों और लड़ियों की सजावट की गई है।
1: और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश की। राजधानी में बारिश की फुहारों ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से बेहाल लोगों के लिए ये बारिश की वरदान से कम नहीं है। सुबह से ही बारिश ने राजधानी को भिगोकर रख दिया है और लोग मौसम का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। वहीं मौसम विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि इस बार हर जगह एक जैसी बारिश नहीं हुई। मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, जबकि सबसे ज्यादा कमी पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में दर्ज की गई।

0: समाचार में आज सुबह की शुरुआत सावन की बौछार से हुई और कई इलाकों में बारिश की झड़ी लगी रही। आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली NCR में हुई इस बारिश से पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रही उमस से भी राहत मिली और मौसम में ठंडक की वजह से तापमान में गिरावट भी आई। सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। रफी मार्ग, रायसीना रोड, फिरोज शाह रोड, कौटिल्य मार्ग और आरकेपुरम में अच्छी बारिश देखी गई। बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहे और काम पर जाने वाले लोगों के कारण कुछ रास्तों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही।
1: मौसम के बदले मिजाज ने पूरे दिल्ली NCR का मिजाज बदल कर रख दिया है। दिल्ली में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, देर रात भी बारिश हुई और अभी तक ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सुबह से बहुत तेज बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार ऐसी रिमझिम बारिश बनी हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ने एक बार फिर से पूरे देश में रफ्तार पकड़ी है, जिसका असर दिल्ली NCR में भी देखा जा रहा है। हालांकि कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि वहां भारी बारिश हो सकती है। कई राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है और दिल्ली NCR के लिए भी कहा गया है कि 8 तारीख तक ऐसे ही लगातार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मानसून का जिस तरह की मानसून की बारिश का इंतज़ार दिल्ली NCR वाले लंबे समय से कर रहे थे, अब वो बारिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। पिछले 3-4 दिन से मौसम तो अच्छा बना हुआ था, लेकिन मौसम की आँख मिचौली लगातार जारी थी। थोड़ी सी बारिश होती थी, फिर धूप, उसके बाद उमस और फिर से आसमान में काले बादल छा जाते थे। लेकिन अब आज जिस तरह से देर रात से माहौल बदला है, उसके बाद लगातार आप देखिए कि बारिश हो रही है।
0: लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। दिल्ली के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जलभराव के बीच लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि उत्तर भारत में मॉनसून सक्रिय है और अनुकूल स्थितियों के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होते रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 5 से 8 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर फुहारें पड़ती रहेंगी।
2: दिल्ली NCR में मॉनसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में ही सुबह से ही अलग अलग इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी गई और सबसे ज्यादा जो बारिश है वो देश की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में हुई, जहां पर 28 mm से ज्यादा की बारिश जो है वो दर्ज की गई। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के लिए अच्छी खासी बारिश, गरज चमक के साथ जो है मध्यम से भारी वर्षा की जो है चेतावनी जारी की है। वहीं अगर हम देश की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त मानसूनी बारिश है वो देखी जा रही है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो इस वक्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में जो है वो देखी जा रही है। उड़ीसा, बिहार में भी जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। और अगर हम दक्षिण इलाके की बात करें तो वहां पर कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरल में भी बारिश की जो है शुरुआत हो चुकी है। तो लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी नहीं रहने वाला है। कुछ दिन तक यूं ही बारिश रहेगी। अगर बात दिल्ली NCR की जाए तो आज और कल के लिए IMD द्वारा जो है ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश जो है वो लगातार इसी तरीके से होती रहेगी। लेकिन देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पे बारिश का सिलसिला बस कुछ दिन तक जारी रहेगा। आने वाले 3 से 4 दिन के बाद वापस से लोगों को उमस से एक बार फिर से परेशानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, सुहाना हो चुका है और लगातार बारिश की वजह से जो है तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है।
0: दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर में भी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। शहर में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने से मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली।
3: अलवर सहित पूरे राजस्थान में बीते रात से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। अरावली की वादियां इस समय हिल स्टेशन बनी हुई है। मैं इस समय अलवर के बाला किला क्षेत्र स्थित किशन कुंड पर मौजूद हूँ और यहाँ का नजारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनमें बारिश के बाद खासा जोश देखने को मिल रहा है और बारिश का झरने का आनंद लेते हुए युवा नजर आ रहे हैं। दरअसल बारिश के दौरान अलवर के पहाड़ों से पानी बरसने लगता है, अलवर की अरावली की वादियां झरना बनने लगती हैं, यहां से सैकड़ों झरने गुजरने लगते हैं।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि ज्यादातर हिस्सों में हल्की और कहीं कहीं मध्यम बारिश हो सकती है, लिहाजा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कल यानी शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन मानसून की दोहरी चाल से कहीं झमाझम बारिश तो कहीं सूखे का संकट बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब अपनी धुन पर चल रहा है। देश के अंदर ही मौसम से जुड़े सिस्टम बन रहे हैं। 4 अगस्त यानी मंगलवार की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि पूर्वी और उत्तरी भारत में दूर दूर तक बादल छाए हुए हैं। ये सब मानसून ट्रफ के पश्चिम बंगाल से पंजाब तक और गहरा होने से हुआ है। इसका मतलब है कि मौसम का मिजाज अब स्थानीय वजहों से तय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली दबाव का अब उतना असर नहीं है, लिहाजा देश में पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज ने लोगों को उलझन में डाल दिया है। कुछ समय पहले तक कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही थी और लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। मानसून पूरे देश में पहुंचने के बावजूद कई इलाकों में बारिश लगभग थम गई है। बादल दिखाई दे रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 9 से 15 जुलाई के बीच देश में सामान्य से 51% कम बारिश हुई। इस अवधि में जहां सामान्य रूप से 63.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां केवल 31.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी ये सामान्य मात्रा का लगभग आधा है। बारिश के सबसे ज्यादा कमी दक्षिण भारत और मध्य भारत में दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 77% कम और मध्य भारत में 76% कम बारिश हुई है। और अगर पूरे मानसून सीजन यानी 1 जून से अब तक की बात करें तो देश में कुल मिलाकर सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में ये कमी 36% तक पहुँच चुकी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मानसून देश में नहीं पहुंचा। मानसून 9 जुलाई को राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में पहुंचकर पूरे भारत को कवर कर चुका है। हालांकि सामान्य तौर पर मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है, जबकि इस बार केवल 1 दिन की देरी हुई है। इसलिए समस्या मानसून के पहुँचने में नहीं बल्कि उसके कमजोर पड़ने में है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की कमजोरी के पीछे अलनीनो एक बड़ी वजह हो सकता है। भारत में अक्सर अलनीनो की स्थिति कमजोर मानसून और कम बारिश से जुड़ी होती है। अब आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर 2 बातों पर रहेगी। पहली, अलनीनो कितना मजबूत होता है, क्योंकि इसी से तय होगा कि अगस्त और सितंबर में मानसून कितना सक्रिय रहेगा। दूसरी, क्या अब तक हुई 23% बारिश की कमी की भरपाई हो पाएगी या नहीं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी अहम होंगे। अगर आगे अच्छी बारिश होती है तो खेती, जलाशयों में पानी और पीने के पानी की स्थिति बेहतर हो सकती है। वहीं जिन इलाकों में अब भी बारिश कम हुई है वहां आगे के मौसम पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया और मनीष अलड्डा के साथ अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: बिहार में स्मार्ट हेल्थ सिस्टम विकसित करने के लिए होगा एआई का उपयोग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने देश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए आज 2 अहम फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल ने भारत में बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए वाली गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस को भारत के भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र का एक मजबूत हिस्सा बनाना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने असम में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा देते हुए 8,970.20 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी तेजपुर NH-15 कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दे दी है। ये 4 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जिसे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर टोल मोड पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच आवागमन बेहद आसान और तेज हो जाएगा। बिहार में स्मार्ट हेल्थ सिस्टम बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए अब एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिससे किसी भी अस्पताल में ICU, वार्ड और सामान्य बेड की उपलब्धता की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। यही नहीं, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल में मरीज रेफर करने से पहले डॉक्टरों को पता चल जाएगा कि बेड कहाँ है और कहाँ नहीं। साथ ही एआई के जरिए अस्पतालों में बेड, डॉक्टरों की उपलब्धता और सुविधाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। स्वतंत्रता दिवस पर हैदराबाद की महिलाओं का 14 किलोमीटर लंबे तिरंगे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर देश भर की 300 से ज्यादा महिलाओं ने यहां एकजुट होकर 18 महीनों में क्रोशिया से अपने हाथों से बुने हुए 46,000 से ज्यादा झंडे तैयार किए हैं। महिला मनोविकास फाउंडेशन ने झंडे बनाने की इस अनोखी देशभक्तिपूर्ण पहल को लीड किया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 11.7 किलोमीटर के मौजूदा गिनीज रिकॉर्ड को तोड़ना है। क्रोशिया ग्रुप इस बार अपने चौथे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं के हाथ से बने ये झंडे स्कूलों और सशस्त्र बलों को दान किए जाएंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में थोटा गरीबू अरिलोवा क्षेत्र में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पीवी सिंधु सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। इस मल्टी स्पोर्ट्स एकेडमी का भूमि पूजन आंध्र प्रदेश के आईटी और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश की उपस्थिति में हुआ। यह परिसर लगभग 2,00,000 वर्ग फीट में फैला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जमीन राज्य सरकार ने आवंटित की है। ये एकेडमी बैडमिंटन समेत 7 खेलों में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद आंध्र प्रदेश से भविष्य के चैंपियन तैयार करना है। 2028 तक इस एकेडमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समुद्री खतरों के बढ़ते साए के बीच भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में अपनी तैनाती को फिर से मजबूत किया है। समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने, नाविकों की सुरक्षा करने और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए INS इम्फाल, INS त्रिशूल और INS आदित्य जैसे युद्धपोत मिशन पर तैनात हैं। ये तैनाती ऑपरेशन संकल्प का हिस्सा है।
4: परबा सावन में कांवड़ यात्रा के रंग की। सावन के पावन महीने में चारों ओर बोल बम का जयघोष गूंज रहा है। करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकले। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा मार्ग में कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के नए नए रंग बिखरते जा रहे हैं।

0: कंधों पर कांवड़, भगवा रंग में रंगे शिव भक्त और बोल बम का जय घोष। हरियाणा से लेकर दिल्ली, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक जल भर कर ले जा रहे कांवड़ियों के चेहरे पर थकान का कोई भाव नहीं। सावन में लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर महादेव का जलाभिषेक करने निकले हैं। कोई नंगे पांव चल रहा है, कोई दंडवत यात्रा कर रहा है, तो कोई अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां हर तरफ कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं। हर की पैड़ी से गंगा जल भरने वाले कांवड़ियों का तांता लगा है। यहां से जल लेकर जाने वाले कांवड़ियों में बड़ों से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। कोई भारी कांवड़, कोई हल्की कांवड़, तो कोई ट्रॉली में भगवान शिव को विराजमान कर, तो कोई कंधे पर लेकर भक्तिभाव के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी ने मनोकामना पूरी होने पर कांवड़ उठाया है, तो कोई भोलेनाथ से अपनी इच्छा बता रहा है।
1: बच्चे भी उससे आए हैं जी, भोलेनाथ का बच्चा मांगा था, ले लिया। लड़का मांगा था, दो लड़की है, एक लड़का है, तीसरे नंबर का, भोलेनाथ ने ले लिया। उसी में जल लेकर जा रहे हैं
2: भोले, ये तो श्रद्धा है अपने अपने कौन कितना जल ले रहा है। भोले तो बाप के भूखे होते हैं, तो जल कितना भी हो अपना, ये लोगों की वो है श्रद्धा, कोई कितना किलो ले रहा, कोई 300 किलो भी लेके जा रहा है, हमारा एक एक लीटर का है।
0: बाबा बैद्यनाथ के धाम देवघर जाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बोल बम के साथ महिलाओं और बच्चों का ग्रुप पहुंचा हुआ है। ये शिव भक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर सुल्तानगंज रवाना होने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यहीं से ये कांवड़िए ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंचेंगे और वहां से गंगा का पवित्र जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकलेंगे, जहां ये अपने आराध्य देव का जलाभिषेक करेंगे।
3: सावन के पवित्र महीने में हर तरफ आस्था और भक्ति का रंग दिखाई दे रहा है। कांवड़िए बोल बम का नारा लगाते हुए देवघर की तरफ कूच कर रहे हैं। महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरें देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तस्वीरें हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि दूधमुहे बच्चे को लेकर भी महिलाएं जो है वो बोल बम की तरफ जा रही हैं, देवघर की तरफ जा रही हैं। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। ये आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखिए। मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ये तमाम लोग कूच कर रहे हैं, बोल बम का नारा है। ये बताइए, आप लोग पहली बार जा रहे हैं, जा चुके हैं?
4: पहली बार जा रहे हैं।
3: छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप लोग जा रहे हैं, पहुंच पाएंगे? आस्था है, इतने विश्वास है?
4: हाँ हाँ, विश्वास है, बाबा ने बुलाया तो विश्वास है, विश्वास के ही सहारे हम लोग भी जा रहे हैं।
0: देश की आन बान और शान के नाम एक 221 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची तिरंगा कांवड़ यात्रा जब मुजफ्फरनगर पहुंची, तो कांवड़ मार्ग पर लोगों का जमावड़ा लग गया। दरअसल देश के नाम इस कांवड़ को बागपत के 21 शिव भक्तों की टीम हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ निकली हुई है। देशभक्ति का जज्बा लिए ये शिव भक्तों की टोली रोजाना 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। बताया जा रहा है कि ये कांवड़िए 221 फीट लंबी इस तिरंगा कांवड़ यात्रा के साथ 190 किलोमीटर का अपना सफर कर रहे हैं। ये शिव भक्त बताते हैं कि उनकी कांवड़ देश के शहीदों को समर्पित है। भक्ति और आस्था की ऐसी ही एक और खूबसूरत तस्वीर मुजफ्फरनगर में नजर आई। यहाँ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रोहतक जा रही महिलाओं की एक अनोखी कांवड़ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। सैकड़ों महिलाओं का ये जत्था कई वाहनों के काफिले के साथ शिव भक्ति नारी शक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान का संदेश देना है।
5: आइए, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कांवड़ यात्रा कर रही हूँ, यानी कि महिला उत्थान के लिए, और इस पे लिखा हुआ भी है महिला सशक्तिकरण समर्थ भारत, यानी कि महिला सशक्त होगी तभी तो समर्थ होगा भारत, इसलिए। और मैं महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, वो आत्म सम्मान से जी सकें, अपने फैसले खुद कर सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बस यही कामना करते हुए मैंने शिव की कांवड़ उठाई है।
0: यात्रा मार्ग पर हाइड्रोलिक कावड़ भी चर्चा में है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से भगवान शिव का चलता फिरता दरबार तैयार किया गया है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। इस कावड़ को 30 शिव भक्तों की टोली हरिद्वार से गंगा जल भरकर गुरुग्राम तक का सफर तय कर रही है। उधर बागपत की सड़कों पर एक कावड़ फिटनेस मंत्र के साथ भी आगे बढ़ रही है। हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक 200 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा कर रहे भोले के भक्त मंजीत रास्ते में रुक रुक कर एक दो नहीं बल्कि पूरे 3,500 सपाटे लगाते हैं। मंजीत की रफ्तार, संतुलन और जोश देखकर हर कोई दंग रह जाता है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ मंजीत युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि आस्था और फिटनेस एक दूसरे के पूरक हैं।
6: मेरा सफर है 200 किलोमीटर हरिद्वार से, मेरा गांव है 200 किलोमीटर और 5 कदम भी 6 भी ऐसे चल के मैं एक अपना सपाटा लगाता हूँ।
7: कितने सपाटे आप लगाते हैं तो बता रहे थे।
6: पर डे के हो जाते हैं 3,000 करोड़ हो जाते हैं पर डे के।
7: क्या है इसके पीछे
6: की? इसके पीछे यही है भाई, मैं तो युवा के लिए संदेश दे रहा हूँ, भाई फिट रहो, अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं।
0: इस कावड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा कि मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही इसके करीब आते हैं तो एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कावड़ के बीचों बीच भगवान शिव विराजे हैं। जहाँ जहाँ ये कावड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं। हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर खिंचवाना जरूर चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। आस्था का ये रंग इस बार कावड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना दे रहा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से राहुल कुमार, मेरठ से उस्मान चौधरी, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
9: शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। गुरुवार को सेंसेक्स 374 अंक ऊपर 78,955 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी मामूली बढ़त रही, ये 11 अंक ऊपर 24,636 पर पहुंच गया। गुरुवार को सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी आई। सोना 3,800 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,53,800 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 2100 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,34,800 रुपए हो गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 16 पैसे की गिरावट आई। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.24 रुपए हो गई।
8: 19 साल बाद इमरान हाशमी शिवम पंडित के रूप में एक्शन अवतार में आवारापन 2 के जरिए वापसी कर रहे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
9: फिल्म आवारापन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। डार्क, जबरदस्त और बेहतरीन सिनेमैटिक अंदाज वाला ये ट्रेलर सीधे शिवम की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां बदला, प्रायश्चित और ऐसे अंजाम हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। इसमें जबरदस्त एक्शन और गहरे इमोशंस हैं और म्यूजिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा आवारापन यूनिवर्स के लिए जरूरी है। इमरान हाशमी शिवम पंडित के रोल में लौट रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस याद दिलाती है कि ये किरदार 2 दशकों से क्यों बना हुआ है। दिशा पटानी जारा के रोल में एक नया इमोशनल पहलू दिखाती हैं, वहीं नफीसा के रोल में शबाना आजमी हर उस फ्रेम में अपनी छाप छोड़ती हैं जिसमें वो नजर आती हैं। मुकेश भट्ट और विशेष फिल्म के बैनर तले आ रही ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
10: आपको तो कुत्ते को बांध के रखना चाहिए था ना।
9: OMG2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओह माई डॉग कल रिलीज हो रही है और इसके पेड प्रीव्यू शो आज किए जाएंगे। देश भर के 15 शहरों में स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए मिले जबरदस्त प्यार और तारीफ के बाद ओ माय डॉग आज रात स्पेशल पेड प्रीव्यू शो के लिए तैयार है, जिसके टिकट की कीमत सिर्फ 149 रुपए है। इस पहल से दर्शकों को फिल्म की ऑफिशियल रिलीज से पहले इसे किफायती दाम पर देखने का मौका मिलेगा और साथ ही फिल्म की बढ़ती चर्चा को और बढ़ावा मिलेगा। ओ माय डॉग में पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, विजय मिश्रा, सुलक्षणा बरुआ और डॉग स्टार ब्रूनो और ऑस्कर के साथ साथ 250 से ज्यादा कुत्ते भी नजर आएंगे।
11: कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।
10: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए।
9: सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास कर दिया है। सनी देओल, करण देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी की फिल्म बंटवारा 1947 में देश के बंटवारे के वक्त की कहानी है और ये फिल्म असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जन्माहिनी से प्रेरित है। जाहिर है बंटवारे की कहानी है तो खून खराबा भी फिल्म है, लेकिन ट्रेलर देखकर ये साफ हो गया है कि इंसानियत की कहानी है और इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि इस फिल्म को या तो यू या फिर यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा। इस पर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है। निर्देशक राजकुमार संतोषी ने बताया कि यूए सर्टिफिकेट के लिए कई कट लगाने पड़ते, इसलिए मेकर्स ने बिना बदलाव के ए सर्टिफिकेट देकर पास करना ठीक समझा। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म खोसला का घोसला 2 को लेकर फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में फिल्म के सेट से वायरल हुई बिहाइंड द सीन्स रील के बाद अब एक्टर अनुपम खेर ने फिल्म से जुड़ा एक और खास अपडेट शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके को स्टार बोमन ईरानी ने इस सीक्वल की शूटिंग पूरी कर ली है। रैप अप सेलिब्रेशन का वीडियो मोन्टाज शेयर करते हुए अनुपम ने बोमन ईरानी के लिए भावुक नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने उनके साथ अपनी सालों पुरानी दोस्ती और शानदार सफर को याद किया। केर ने बोमन के लिए कहा कि कैसे आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है जिसके पास सब कुछ हो, टैलेंट, विनम्रता, दरियादिली, समझदारी और एक ऐसा दिल जो हमेशा जिंदगी से बड़ा हो।
12: इनको आदत है कि इनके बहुत सारे होते हैं, हमारे बारे में कट रहा है अभी। नहीं नहीं, काट मत, अभी और बोलना चाहता हूँ मैं, और बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे बोमन। अरे नहीं नहीं, जा मत, जा मत। तुम आपने नहीं थैंक यू बोला ना?
13: थैंक यू।
9: कार्तिक सुबराज की अगले फिल्म डोरोथी का टीजर आ गया है। ज्योति देशपांडे, गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर TIFF में होगा और इसके बाद 25 सितंबर 2026 को ये फिल्म पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सनंत, ऋषिकांत और कीर्ति सुरेश अभिनीत इस फिल्म में मशहूर संगीतकार इलैया राजा का ओरिजिनल म्यूजिक है।
8: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए परीक्षण में सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा कांवर, यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई, बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ रहे भक्त। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे अजब गजब तरीके, क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठाते दिखे लोग। चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
9: अभी तो देखते जाइए आप, बड़ा प्यार नजर आ रहा है ना दोनों के बीच। दीदी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और छोटे भाई ने हाथ ऐसे थाम रखा है मानो भरोसा दिला रहा हो मैं हूँ ना। पर इनका होना कितने काम का है वो तो देख ही रहे हैं आप। दीदी जब भी लड़खड़ा रही हैं संभाल नहीं पा रहे जनाब, बस हौसला अफजाई किए जा रहे हैं। कोई नहीं, अगली बार संभाल लूंगा, पर आखिर कब तक? अब बहुत हो गया, रहने दो, हमें नहीं सीखना तुमसे। एक दूसरे पर खुद से ज्यादा भरोसा, प्यार, नोक झोंक, पल में रूठना, पल में मान जाना, यही तो है जो भाई बहन के रिश्ते को खास बनाता है। वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी, क्या जुगाड़ भिड़ाया है लड़के ने, एक पहिए से दो पहिए वाहन वाली रफ्तार पकड़ी है। देखिए कैसे फर्राटा भरे जा रहा है। रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो या समतल, कोई फर्क नहीं पड़ता, रफ्तार तो तभी थमेगी जब ये चाहेंगे। एक बार को तो समझना मुश्किल हो गया कि ये पहिए के सहारे भला कैसे इतनी तेजी से भाग रहा है और ब्रेक कैसे लगेगा भला। लेकिन फिर पता चला कि इसने तो कमाल का जुगाड़ भिड़ाया है, एक पहिए में दो डंडा सेट करके एक पहिए वाली बाइक बना ली है इन्होंने तो। थमना हो तो बस पीछे की तरफ झुकना है, डंडा जमीन से लग कर रफ्तार थाम लेता है ना कमाल। पर इन्हें सीट का कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे भला कहां तक सफर कर पाएंगे, है कि नहीं। जो भी हो, बच्चे का ये जुगाड़ देखकर हर कोई हैरान है। माँ जैसा कोई नहीं, उसके प्यार में तो मानो जादू होता है। तस्वीर देखिए जरा, नन्हा बच्चा सड़क किनारे जमीन पर लेटा है, माँ की गोद में सर है और उससे बातें करते हुए देखिए कैसे खिलखिला रहे हैं जनाब, मानो जन्नत की सैर पर हूँ। सचमुच माँ के चेहरे में भगवान की सूरत और उसकी हर अदा में मानो चमत्कार, जो अभाव में भी भरे पूरे होने का एहसास करा जाती है। माँ बेटे की ये प्यारी तस्वीर लोगों का दिल छू रही है। ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। कहीं सुनसान जगह पर ट्रेन रुकी हुई है, सामने रेलवे ट्रैक पर एक कछुआ उल्टा लेटा हुआ है, मदद के लिए छटपटा रहा है। तभी ट्रेन में बैठे किसी शख्स की नजर उस पर पड़ती है, वो ट्रेन से उतरता है और दौड़कर कछुए की मदद करता है, उसे वापस सीधा कर जंगल की तरफ छोड़ देता है ताकि वो चलकर अपनी राह ढूंढ सके। उस शख्स ने जिस तरह से कछुए की मदद की वो देखकर लोग उसकी दयालुता की तारीफ कर रहे हैं। कोई इधर उधर ना हो जाए इसलिए ये इंतजाम है, बच्चे तो बच्चे हैं, जिधर मन करे चल देंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें यूं बांधकर उनके होठों की मुस्कान ही छीन ले। कुछ लोग इनकी टीचर की इस तरकीब को पसंद नहीं कर रहे तो कोई इसे सेफ्टी के लिहाज से सही भी ठहरा रहा है, पर बच्चों का मासूम चेहरा जिस तरह से उतरा हुआ है वो देखकर तो इसे सही नहीं ठहराया जा सकता।
8: न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर सामने आई नई रिपोर्ट की। रियल स्टेट कंसल्टिंग फर्म एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप हाउसिंग मार्केट में पिछले 7 वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतों के साथ किराए भी बहुत बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 2026 जून तक के पिछले 7 वर्षों में सिर्फ 2 शहरों नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ी है। प्रॉपर्टी की कीमतों के मामले में नोएडा ने मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों को भी पीछे छोड़ दिया है। महज 7 साल में नोएडा में कीमतें 125% तक बढ़ गई। नोएडा में साल 2019 में प्रॉपर्टी की कीमत 4,795 रुपए प्रति वर्ग फीट हुआ करती थी, जबकि जून 2026 में 10,780 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई। नोएडा के बाद दूसरे नंबर पर एनसीआर का एक और शहर गुरुग्राम है, जहां पिछले 7 वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 117% की बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम में 2019 में प्रॉपर्टी की कीमतें 6,150 प्रति वर्ग फुट हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 13,350 रुपए हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में नोएडा 8वें स्थान पर था, जो जून 2026 के आखिर तक 6ठे स्थान पर आ गया है। नोएडा में प्रॉपर्टी की प्रति वर्ग फीट कीमतें अब बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई से ज्यादा हो गई। 2019 से 2026 के बीच देश के दूसरे बड़े शहरों में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतें बेंगलुरु में 90%, हैदराबाद में 93% और मुंबई में 64% बढ़ी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 7 वर्षों में कीमतें 18,200 प्रति वर्ग फीट से बढ़कर 26,700 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है, जो कि 47% की बढ़ोतरी है। इसी दौरान पुणे में प्रॉपर्टी की वैल्यू में 51% और कोलकाता में प्रॉपर्टी की वैल्यू में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट से साफ है कि मेट्रो और एनसीआर के ज्यादातर शहरों में प्रॉपर्टी अब पहले से काफी महंगी हो चुकी है। दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब मिडिल क्लास के लिए भी इन शहरों में घर खरीदना मुश्किल हो गया है। इस रिपोर्ट को लेकर हमने नोएडा में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
13: मिडिल क्लास के लिए तो आसान नहीं है इस समय कि करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का एक छोटा फ्लैट मिल रहा है, तो वो मिडिल क्लास के लिए अब बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि गाड़ी की किस्त भी होती है, घर का और खर्चे भी हो गए, एक्स्ट्रा खर्चे भी हो गए आपके, अगर महीने का राशन भी देख लो तो वो भी आज की डेट में इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है कि उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ एक MI बनाना वो करना वो पॉसिबल नहीं होता एक मिडिल क्लास के लिए।
15: तो क्या पहले इतना फ्लैट महंगा नहीं था नोएडा दिल्ली NCR में जितने अब हो गए?
13: नहीं, आज से 8 साल 9 साल पहले 7 साल पहले अगर देखा जाए तो इतना कोई महंगा नहीं था, 50 लाख 60 लाख में एक 2 BHK आराम से मिल जाता था, और अब वो 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख ऐसे 1.5 करोड़ और उससे अच्छी सोसाइटी देख रहे हो 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसे मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल आसान नहीं है।
16: अभी तो बहुत ज्यादा रेट बढ़े हुए हैं, मैं खुद प्लान कर रहा हूँ बट मुझे लगता नहीं है कि इतना इजीली अभी मैं बाय कर पाऊंगा, बट लेट सी, धीरे धीरे अभी उम्मीद है बट क्या हो पाएगा देखते हैं।
15: आप जॉब करते हैं?
16: हाँ, मैं जॉब करता हूँ।
15: क्या मिडिल क्लास के लिए फ्लैट मिलना आसान है क्या?
16: नहीं, मिडिल क्लास के लिए तो बहुत टफ है, मिडिल क्लास के लिए इजी नहीं है, काफी स्ट्रक्चर वाइज आपको चलना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करके चलना पड़ेगा कितना बचाना है कितना खर्च करना है, तब जाके आप एक लॉन्ग टर्म में तो जाकर सोच सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स इजी टू बाय अ फ्लैट इजीली लाइक फॉर मिडिल क्लास, नो इट्स नॉट पॉसिबल।
13: के समय में तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो जैसे अभी महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी इनकम भी बढ़े तो ये थोड़ा इजी हो सके, पर जैसे इनकम अभी रुकी हुई है सभी की, सेम इनकम पे वो अभी सरवाइव कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा।
15: तो क्या अगर आप फ्लैट लेते हैं कितना बजट होना चाहिए कि इस तरीके से?
13: नॉर्मली अगर आज के समय में लोग देखते हैं तो 1.5 करोड़ का बजट देखते हैं, पर उस हिसाब से लोगों के खर्चे जो होते हैं कि वो इसको खरीद नहीं सकते।
17: जी, ये बिल्कुल सही बात है, जैसे कि पुराने टाइम पे आपने सुना होगा कि मुंबई सपनों का शहर है, वैसे ही इस टाइम पे नोएडा और गुड़गांव आम लोगों के लिए सपनों का शहर बन चुका है, जहाँ पे किराए पे रहना मुश्किल हो रहा है और अपना मकान तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप 50 लाख रुपए में मकान लेने जाते हो तो शायद ही आपको किसी अच्छे और ऐसी जगह पे मिले जहां आप चाहते हैं कि हाँ यहां पर मैं मिल लेके और अपने बच्चों को अच्छी मतलब सुविधा दे सकूं, तो ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में आप जैसे हमारे नोएडा में छोटे सेक्टर्स हैं जैसे 20 है 12 है 22 है, इन जगहों पर भी अगर आप मकान लेने जाते हो तो 1 करोड़ रुपए रख के चलो तो शायद आपको अच्छा मकान मिल जाए, खाली प्लॉट भी आपको 50 लाख में मिलना मुश्किल है।
18: गुड़गांव और नोएडा जैसे शहर में तो आम आदमी का बस की मकान लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ जमीन के इतने हाई रेट हैं कि आदमी हाथ नहीं रख सकता, लेना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो किराया 10-15-20 हजार रुपए से कम नहीं है।
19: अच्छा, जो अच्छी सोसाइटी है अच्छे सेक्टर है वहाँ तो करोड़ों में कोई फ्लैट?
18: हाँ, तो भैया अगर किसी के पास 10-15 करोड़ है वो ही ले सकता है, और गरीब आदमी 10-15 करोड़ का कहाँ से इंतजाम करेगा, वो तो कमाता कमाता ऐसे ही बेचारा स्वर लोक हो जाएगा।
8: और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बाद हैदराबाद के एक ऐसे अनोखे कैफे की, जहां बच्चे छोटे छोटे शेफ बनकर बड़े कमाल दिखा रहे हैं। छोटा भीम थीम वाले इस कैफे में बच्चे शेफ की कैप पहनकर प्रोफेशनल शेफ के साथ पिज्जा और अपनी पसंद की दूसरी डिश बनाना सीख रहे हैं। जूनियर शेफ क्वेस्ट के साथ पेंटिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज भी यहां पर है, यानी कि यहां स्वाद सीख और मस्ती तीनों का शानदार तड़का बच्चों और उनके माता पिता को खूब पसंद आ रहा है।
0: पिज्जा, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक, जिन्हें देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, जो उनकी फेवरेट डिशेज में सबसे ऊपर रहती हैं। लेकिन अगर इन्हें खाने के साथ साथ बच्चों को इन्हें खुद अपने हाथों से बनाने का मौका मिल जाए तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। यह अनोखा छोटा भीम कैफे हैदराबाद की जुबली हिल्स में है, जहां बच्चे सिर्फ ऑर्डर नहीं देते बल्कि खुद शेफ बनकर अपनी पसंदीदा डिश तैयार करते हैं। इस कैफे का सबसे खास पहलू है जूनियर शेफ क्विस्ट, जहां बच्चे शेफ कैप पहनकर किचन में उतरते हैं, प्रोफेशनल शेफ्स की निगरानी में आसान रेसिपी बनाते हैं और कुकिंग के साथ साथ टीम वर्क, किचन सेफ्टी और आत्मविश्वास भी सीखते हैं।
20: इस रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे हाथों से सिर्फ खा नहीं रहे बल्कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम वर्क की एक कोशिश के साथ किया गया है। जूनियर शेफ ये कॉन्सेप्ट यहाँ के रेस्टोरेंट में शुरू किया गया है, जहाँ पर बच्चे अपना पिज्ज़ा खुद बना रहे हैं। एक मास्टर शेफ की गाइडेंस में बच्चे यहाँ पर आते हैं, ना ही सिर्फ खाना खाना बल्कि एक घंटा या दो घंटे तक ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं और साथ ही कई सारे डिशेज ऐसी अनोखी क्रिएटिविटी वाली करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है।
0: कार्टून की दुनिया से निकलकर अब छोटा भीम बच्चों को सिर्फ ताकतवर बनने की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और क्रिएटिव बनने की भी सीख दे रहा है।
21: In this on Instagram and really the kids really like this character and all they watch all the TV shows and all. So it's a very nice concept which they have come up with like for the like there's lot of activities.
0: इस कैफे का मकसद बच्चों को सिर्फ खाना खाने की जगह देना नहीं है बल्कि इस कैफे को सीखने, खेलने और मनोरंजन का एक अनोखा केंद्र बनाना है, जहां बच्चों को हेल्दी फूड की अहमियत भी मजेदार तरीके से समझाई जाती है ताकि वो बचपन से ही बेहतर खान पान की आदतें अपना सकें।
22: So, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि वो सिर्फ छोटे हाथ से खेल रहे हैं, उनको नर्चर करना है। ठीक है, एक खाना बनाना भी एक उतना ही बेसिक और उतना ही इम्पोर्टेंट टास्क है जितना पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल एसेंशियल काम पे काम आता है, हर दिन के काम में आता है। प्लस बच्चों के लिए जैसे केटर किया है, ऑल वेजिटेबल्स जो बच्चे खाते नहीं है उनको हम लोग ब्लेंड करके सॉसेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे बच्चों को भी मन लगा रहे, कलर के साथ भी वो खेले, उनको और अपील हो। बच्चों को खाने में, पकाने में मजा आना चाहिए जिससे वो आगे जाके भी बेटरमेंट कर सके।
0: बच्चों को भी कुकिंग की ये अनोखी पाठशाला खूब रास आ रही है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की तरह कोई किताबें नहीं, ना ही होमवर्क का दबाव, बल्कि हर पल कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है।
20: आपने क्या बनाया है और कैसा आप इसको?
23: I am very happy to prepare this pizza and drinks.
20: आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेफ मौजूद है जो बच्चों को यहाँ पर बताते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से यहाँ का खाना बनना चाहिए।
0: तो बच्चों के लिए ये कुकिंग कैफे सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है बल्कि नए स्किल सीखने का एक शानदार मंच बना हुआ है, जहाँ वो खुशी खुशी अपनी फेवरेट डिश बनाना सीख रहे हैं, टीम वर्क, अनुशासन और साफ सफाई की आदतें अपना रहे हैं। यानी यहाँ स्वाद के साथ साथ हुनर भी तैयार हो रहा है और मस्ती के साथ साथ सीखने का सफर भी आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: तक चीन का स्पेस में 1000 एआई सैटेलाइट्स तैनात करने का लक्ष्य। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: अटलांटा में रोबोट से सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहां कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रात के शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड की जगह रोबोटिक कुत्ते निगरानी और सुरक्षा का काम कर रहे हैं। इंसानी ऑपरेटर इन सिक्योरिटी गार्ड्स रोबोट्स को दूर से कंट्रोल करते हैं। ये रोबो डॉग्स लाइव कैमरा फीड पर नजर रखते हैं और रोबोट में लगे स्पीकर के जरिए सीधे अपार्टमेंट में रहने वाले निवासियों से बात करते हैं। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में कियानतांग नदी के ऊपर से आधिकारिक तौर पर ड्रोन डिलीवरी रूट शुरू हो गया है। इस रूट से नदी के दोनों किनारों के बीच डिलीवरी का समय सिर्फ 13 मिनट हो गया है। जमीनी ट्रैफिक की रुकावटों से बचते हुए ये ड्रोन तेज डिलीवर करते हैं। बिजनेस से जुड़े दस्तावेजों, ताजी उपज और मेडिकल सप्लाई की जरूरी डिलीवरी के लिए ये सर्विस एक नया समाधान बनकर उभरा है। अब इस सर्विस के जरिए रोजाना औसतन लगभग 4.4 अमेरिकी डॉलर की लागत पर 150 से 200 ऑर्डर पूरे होते हैं। साल के अंत तक इसे बढ़ाकर रोजाना 500 ऑर्डर तक ले जाने की योजना बनाई जा रही है। अब अंतरिक्ष में भी एआई का कमाल देखने को मिलेगा। दरअसल 2032 तक चीन ने अपना लक्ष्य तय किया है। इस साल तक चीन को करीब 1000 तक एआई से लैस जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सैटेलाइट तैनात करने हैं। दुनिया भर में स्पेस कंप्यूटिंग में एआई तकनीक लाने की होड़ चल रही है। ऐसे में चीन के ये एआई से लैस जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सैटेलाइट स्पेस साइंस के बुनियादी ढांचा मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। हाल ही में दक्षिण पश्चिम चीन के प्राचीन शहर शेक्सियांग में शानदार नजारा देखने को मिला। यहां के सीढ़ीदार फूलों के खेतों में एक शानदार आउटडोर चीनी संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्राचीन शहरों के इन सीढ़ीदार खेतों को प्राकृतिक और शानदार मंच में बदल दिया गया। इंटरनेट यूजर्स ने इस नजारे को लैंड आर्ट नाम दिया। प्राचीन शहर शेक्सियांग के बीचों बीच 1,20,000 वर्ग मीटर में फैला है अर्बन टेरेस, जो कि शहरी सीढ़ीदार इलाका है।
8: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच की।
1: टीम इंडिया का फिटनेस लेवल सुधारने के लिए बीसीसीआई ने की पहल, बदले फिटनेस टेस्ट पास करने के रूल्स। जी हां, खेल जगत से जुड़ी कुछ और ऐसी खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम कल से कोलंबो में 3 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी। मुकाबला नॉन डेस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब मैदान पर श्रीलंका 11 के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच 15 अगस्त से गोल में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियों का अहम हिस्सा होगा। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों का सबसे बड़ा फोकस स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी तकनीक को और मजबूत करना होगा। पहले टेस्ट से पहले ये अभ्यास मैच भारतीय बल्लेबाजों के लिए खुद को परखने और कमजोरियों पर काम करने का अच्छा मौका होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने फिटनेस पैरामीटर्स को ज्यादा चैलेंजिंग बनाने का फैसला किया है। भारतीय खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए 2 तरह के टेस्ट से गुजरना होता है, इनमें एक ब्रोंको टेस्ट और दूसरा 2 किलोमीटर की दौड़ है। बीसीसीआई ने ब्रोंको टेस्ट का बेस टाइम घटाकर 5:20 कर दिया है। इसके ठीक बाद 2 किलोमीटर की दौड़ 9 से 10 मिनट में पूरी करनी होगी। बीसीसीआई ने फिटनेस लेवल सुधारने के लिए ये पहल की है। भारतीय विमेंस टीम के साउथ अफ्रीकी दौरे का शेड्यूल चेंज हो गया है। अब इस दौरे पर 1 टेस्ट और 3 वनडे के साथ 3 T20 मैच भी खेले जाएंगे। टीम इंडिया 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अफ्रीका में रहेगी। सबसे खास बात ये कि T20 सीरीज का पहला T20 मैच 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मैच होगा। इसके बाद बाकी 2 T20 मैच 29 और 30 दिसंबर को पोर्ट चेफस्ट्रूम के NWC ओवल में खेले जाएंगे। टेस्ट मैच के बाद दोनों टीमें 3 मैचों की ICC महिला चैंपियनशिप वनडे सीरीज खेलेंगी। भारत की 17 साल की बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा का शानदार फॉर्म जारी है। पिछले हफ्ते ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली तन्वी ने अब कोरिया मास्टर्स 2026 के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आसान में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हमवतन श्रेयांसी वाली शेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में तन्वी का सामना भारत की रक्षिता श्रीरामराज और जापान की मनामी सुइजू के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। अमेरिका के यूजीन में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के पहले दिन भारत के 3 खिलाड़ियों ने अपने अपने इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के जेवलिन थ्रो में आशीष यादव और टी धरणीधरन ने क्वालिफाई किया, जबकि महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। जेवलिन थ्रो का फाइनल शुक्रवार यानी 7 अगस्त को होगा।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी।

0: पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए परीक्षण में सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को मिली हरी झंडी।

दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़। यात्रियों की आस्था के रंग देवघर में श्रावणी मेले के पहले दिन 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं।

चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आए, बद्री विशाल के दर्शन को मड़ रहे हैं श्रद्धालु। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटरा में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पनीर की, लेकिन उस पनीर की नहीं जो स्वाद का राजा और प्रोटीन का जरिया है। आज हम बात करेंगे एनालॉग पनीर की, जो दिखता तो पनीर की तरह है लेकिन इसे दूध से नहीं बल्कि वनस्पति तेल और स्टार्च की मशीनों से बनाया जाता है। सस्ता होने की वजह से बाजार में अब इसकी भरमार देखने को मिल रही है, लेकिन सेहत पर इसके खराब असर देखते हुए सरकारें अब सावधान हो गई हैं। इसलिए पहले महाराष्ट्र और अब गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। यहां तक कि बनाने और बेचने पर जुर्माने और जेल तक का प्रावधान है। आज आपको बताएंगे कि एनालॉग पनीर क्या होता है और इसे बनाते कैसे हैं। साथ ही साथ सेहत पर पड़ने वाले इसके खतरनाक असर को भी हम समझाएंगे। इस सफेद धोखे से बचने के उपाय पर भी बात होगी और साथ ही साथ असली पनीर की पहचान का आसान तरीका भी आज हम आपको समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोटीन के नाम पर परोसे जा रहे सफेद झूठ से। दिखने में बिल्कुल असली लेकिन असल में दूध से नहीं बल्कि वनस्पति तेल और स्टार्च से मशीनों में ये बनाया जाता है एनालॉग पनीर। इसमें पनीर वाली कोई बात नहीं होती, पर ग्राहकों को असली बताकर ही इसको बेचा जाता है। सच्चाई ये है कि इस एनालॉग पनीर में ना तो स्वाद है और ना ये सेहत के लिए ठीक है। इसलिए सरकारों ने इसके लिए सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। पहले महाराष्ट्र और अब गुजरात में इस पर बैन लगा दिया गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि एनालॉग पनीर होता क्या है और इसके खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

0: आँखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है। गीत पुराना है पर ये फरेब नया नया है, एकदम ताजा और इस हद तक सफेद कि आँखें धोखा खा जाएं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो दूध से बना हुआ दिखे वो असली पनीर हो। यही तो खेल है कि पनीर जो बर्गर पिज्जा के इस दौर में हेल्दी खाने की मिसाल है, उस पनीर को भी बाजार ने प्योर न रहने दिया बल्कि एनालॉग बना दिया। जो दिखता तो डेयरी प्रोडक्ट है लेकिन इसमें पॉम ऑयल और केमिकल है। पनीर दूध को फाड़ कर बनाया जाता है लेकिन एनालॉग पनीर पॉम ऑयल यानी वनस्पति तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टार्च, इमल्सिफायर और कृत्रिम फ्लेवर को आपस में मिलाकर एक मशीनी प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। पर खूबी ये कि इस केमिकल वाले पनीर को देखकर इसके नकली होने का खेल समझ नहीं आता। सस्ता होता है इसलिए बड़े पैमाने पर होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है और डेयरी की दुकान पर बेचा जाता है। लेकिन देर से ही सही पर अब इस सफेद धोखे पर लगाम लगाया जा रहा है। यूं कहें कि नकली पनीर पर प्रहार की तैयारी है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने पहले की और अब गुजरात सरकार ने भी एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया है। पनीर के अलावा एनालॉग चीज और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है और सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी पार्लर और व्यापारियों को सिर्फ मानकों के अनुरूप असली डेयरी उत्पाद बेचने के निर्देश दिए हैं।
1: गुजरात सरकार ने आज से एनालॉग पनीर, चीज और बटर पे जो है बैन लगा दिया है। हमारे साथ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं।
2: एनालॉग पनीर, चीज और बटर में काफी भेलसेल होती है। एनालॉग बनाने का जो फ्रेमिंग है उसमें भी वो नियम का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए गुजरात सरकार हेल्थ विभाग ने आज से पनीर प्रोडक्शन पर, सेलिंग पर और परिवहन पर एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर हमने पूर्ण बैन लगा दिया है और आज से कोई बेच भी नहीं सकेगा, प्रोडक्शन भी नहीं कर सकेगा और परिवहन भी नहीं कर सकेगा।
1: हमने देखा है कि जब भी कोई चीज़ पर बैन लगता है तो उसका प्रोडक्शन या फिर उसकी बिक्री, इलीगल बिक्री, अवैध बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। वो ना हो उसके लिए जो है आपका विभाग क्या ध्यान रखेगा, FDCA किस तरह से जो है वो काम करेगा और उस पर रोक कैसे लगेगी?
2: हमने करीब 4 महीना से आज तक कई उत्पादकों पर हमने बैन लगवाया है, उसको सील कर दिया है और बेचने की परमिशन भी हमने कैंसिल कर दी है। जो जिसके पास लाइसेंस था वो भी कैंसिल कर दिया। इसलिए आज से हमारी पूरी टीम एक लक्ष्य के साथ चलेगी कि एनालॉग पनीर, चीज और बटर कहीं भी बेच भी नहीं सकते हैं और प्रोडक्शन भी नहीं।
0: शाकाहारी लोगों के लिए पनीर प्रोटीन का एक बड़ा जरिया है और जायके के हिसाब से भी मुंह लगा है, इसलिए कुछ और हो या ना हो पनीर तो प्योर होना ही चाहिए। इसलिए जब सरकार को केमिकल वाले पनीर की शिकायतें मिली तो एक्शन तुरंत शुरू हो गया। ये तस्वीरें जामनगर की हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और कई जगहों पर एनालॉग पनीर और चीज मिले, भरपूर मिले। इस एक्शन के बाद कारोबारियों को मैसेज मिल गया। इसी तरह राजकोट में भी एक फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारा और बड़ी संख्या में एनालॉग पनीर और चीज बरामद की गई और आइंदा ऐसा पनीर बेचने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन के बाद प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि केमिकल वाला पनीर ना तो बनाया जाए और ना ही बेचा जाए। अंदाजा लगाइए कि इस अकेले फैक्ट्री से रोज 30 किलो एनालॉग पनीर अलग अलग रेस्टोरेंट में सप्लाई की जाती थी।
3: जैसे सरकार ने अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि एनालॉग पर प्रतिबंध है, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सेल एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन करना वो बंद हो गया है, यानी कि नोटिफिकेशन में ये सब अभी ये डेयरी कॉन्टेक्स्ट एनालॉग है वो प्रतिबंधित है। तो आज हम लोग लाठी प्लॉट में ये फॉर्च्यून पनीर करके जो फार्म है उस पर वहाँ पे हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे पाया कि यहाँ पे एनालॉग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे एनालॉग बिक भी रहा है। सुबह सुबह ये लोग अभी खोल नहीं रहे थे, आधा घंटा मशक्कत करने के बाद ये अभी फार्म उसने खोली है। तो यहाँ फ्रीज में पाया गया कि ऑन एन एवरेज 20-25 ऑन एन एवरेज 25-30 किलो यहाँ पे एनालॉग पनीर पाया गया है।
4: क्या पूरा मामला है, आप यहाँ पे आए हैं?
5: ये जो फैक्ट्री है वो पहले से ही लाइसेंस उसके पास है और वो मैन्युफैक्चर फर्म है और डेयरी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर फर्म है। तो वहाँ पे वो अपनी ब्रांड में प्यूरिका करके ब्रांड के पनीर बना रहे थे। लास्ट मंथ हमने जो उस पर यहाँ पे रेड किया था तब हमने पेटी को सील मार दिया था और वहाँ से सैंपलिंग भी पनीर का हुआ है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि इस नकली पनीर का नेटवर्क काफी बड़ा है जिस पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि केमिकल वाला ये नकली पनीर सेहत के लिए गंभीर खतरा है। लोग तो इसे प्रोटीन समझकर खाते हैं लेकिन इसका असर जहर से कम नहीं। यही वजह है कि सबसे पहले महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर बनाने, बेचने या स्टॉक करने पर बैन लगा दिया गया।
6: एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है और अब इसे बेचने वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, फाइन इम्पोज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। हम इस वक्त मुंबई के सैंडस्ट रोड पे एक होटल है सदगुरु, उस सदगुरु होटल के किचन में है जहां पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर काम होता है और किस तरीके से पनीर उपयोग होता था। हालांकि ये जो पनीर है ये एनालॉग पनीर नहीं है, ये शुद्ध पनीर है। हमारे साथ हैं इस सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर सिनोई जी। सर, FDA ने सबसे पहले तो जिस तरीके से बंदी लाई है एनालॉग पनीर पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उस निर्णय का स्वागत करते हैं?
7: यस यस, ये बिल्कुल सही निर्णय है क्योंकि एनालॉग पनीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ये पनीर जो है वो प्योर दूध का बनता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है या एडल्ट्रेशन नहीं है। मगर एनालॉग पनीर जो है उसको टोटली अनसेफ करके नहीं बोला जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट इज यूज्ड ओवर हियर, उसमें क्या वापरा जाता है, मगर जरूर है कि इससे वो सब स्टैंडर्ड है, ये पक्का है।
0: महाराष्ट्र में FDA यानी खाद्य और औषधि प्रशासन का साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या कारोबारी एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है तो इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करना और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत अनुचित व्यापारिक गतिविधि माना जाएगा। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर एनालॉग पनीर के सेवन से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जब फूड सेफ्टी विभाग ने पनीर के सैंपल की जांच की तो 35% से ज्यादा सैंपल कई तरह के टेस्ट में फेल पाए गए। इसके बाद सख्त कदम उठाना ही था। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है जहाँ सस्ता एनालॉग पनीर बाजार में अपनी जगह बना चुका है। भोपाल के कई इलाकों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। हालांकि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन नहीं है लेकिन इसे असली पनीर बताकर बेचना गलत है या कहें कि ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन है।
8: तो शीघ्र ही हम इसमें प्रभावी एक्शन पूरी स्टेट लेवल पर करने वाले हैं।
9: सर, क्या क्या नुकसानदायक है?
8: नुकसानदायक तो कोई भी नहीं है। एनालॉग चीज जो है वो वेजिटेबल फैट और अन्य फैटों से मिलकर बना होता है, उसमें दूध की कुछ मात्रा रहती है और जो पनीर होती है वो टोटल जो दूध का सॉलिड होता है और मिल्क फैट उससे बनता है। लेकिन दोनों की जानकारी आम जनता तक होना आवश्यक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अलग अलग भाव है, उसी के आधार पर बाजार में बिकना चाहिए लेवलिंग के साथ।
0: नाश्ते में पनीर पराठे से लेकर लंच और डिनर में शाही पनीर या मटर पनीर तक भारत में इस डेयरी प्रोडक्ट के चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं। शादी विवाह और पार्टियों में भी इसकी जबरदस्त खपत है। अंदाजा है कि भारत में रोजाना लगभग 5 से 6 लाख किलोग्राम यानी 500 से 600 टन पनीर की खपत होती है। डिमांड ज्यादा है इसलिए इस केमिकल वाले पनीर को खपाने की आशंका है।
10: तो बहुत तो अपन हर एक आए दूध गर्म करो, गर्म करने के बाद में उबालने के बाद में उसको फाड़ देते हैं।
11: क्या रेट बिक रहा है
10: वो अभी? बिक रहा है 320 रुपए के जी।
12: पहचान वाली दुकान से पनीर लेता हूँ और बाकी अन्य जगह से अगर पनीर लेते हैं अपन तो बहुत मिलावट वाला मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ज्यादा से ज्यादा तो डुप्लीकेट चीजें मिल रही है, कई नामी ग्रामी दुकान है उनपे जो थोड़ा ढंग का माल मिलता है, बाकी अपने वो नाम चला रहा है इसलिए, ये तो बाकी तो क्वालिटी बिल्कुल रद्दी मिल रही है। सारी डेयरी देख लो जो नई नई डेयरी खुली है उन डेयरियों पे बिल्कुल रद्दी माल मिलेगा। और जैसे ये 320 रुपए किलो बेच रहा है वो माल थोड़ा अच्छा है, बाकी क्या है कि 200 में दे देते हैं, 250 में दे देते हैं, वो पनीर अपने को शादी ब्याह में इनमें उनमें ले जाते, बच्चे उनको सबको अपने को नुकसान होता है उससे।
0: मसला सिर्फ स्वाद भर का नहीं है, असली पनीर की जगह एनालॉग पनीर सेहत के लिए ठीक नहीं और इसलिए धोखे से इसे बेचना भी ठीक नहीं। सरकारों ने अब इसके खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। जरूरत है कि हम और आप यानी उपभोक्ता भी एनालॉग पनीर को लेकर जागरूक रहें। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी, मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और भोपाल से धर्मेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: देखिए, देश में पनीर की डिमांड ज्यादा है और कीमत भी, ऐसे में वनस्पति तेल और स्टार्च से तैयार होने वाला एनालॉग पनीर एक सस्ता विकल्प बन जाता है जिसका बड़ी तादाद में होटल और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये सस्ता पनीर ग्राहकों की सेहत के लिए महंगा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स की राय यह है कि इससे न सिर्फ दिल की समस्या हो सकती है बल्कि ऐसे मिलावटी पनीर से कैंसर की भी आशंका बढ़ जाती है और ऐसा पनीर खाने से कोई फायदा नहीं जिसमें प्रोटीन नदारद है। चलिए आपको बताते हैं कि एनालॉग पनीर का सेहत पर क्या असर हो सकता है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप असली और एनालॉग पनीर का फर्क पहचान सके ताकि धोखा ना खाए। रिपोर्ट देखिए।
14: थाली में परोसा गया यह सफेद टुकड़ा पनीर हो यह जरूरी नहीं। बाजार में एक ऐसा उत्पाद भी मौजूद है जो दिखने में लगभग असली जैसा लगता है लेकिन इसे बनाने का तरीका पूरी तरह से अलग है। कहने को ये भी पनीर है पर इसे एनालॉग पनीर कहा जाता है। बात सिर्फ ये नहीं कि एनालॉग पनीर में प्रोटीन नहीं, चिंता इस बात को लेकर है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि असली पनीर में कैल्शियम, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन एनालॉग पनीर में दूध वाले पोषक तत्व अव्वल नहीं होते या बेहद कम होते हैं। कुछ एनालॉग पनीर में वनस्पति तेल या दूसरे फैट का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कैलोरी बढ़ सकती है और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर इसमें खराब क्वालिटी के तेल या अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल किया गया हो तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल हार्ट यानी दिल के लिए चिंता का सबब बन सकता है। सबसे अहम बात यह है कि अगर एनालॉग पनीर सही मानकों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है तो इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।
15: ये तो हर तरह की बीमारी में काज कर सकता है। आप पहले कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ये जो तेल है पाम ऑयल टू स्टार्ट विद हाईली इंफ्लेमेटरी होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कार्डियक इवेंट हो, हार्ट फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क तो बढ़ा ही रहा है। दूसरा, क्योंकि ये तेल है और ये गुड फैट नहीं है, ये जिसको हम सीड ऑयल कहते हैं वो है, और क्योंकि इसमें इसका कॉम्पोजिशन इतना खराब होता है तो ये हमारे शरीर में कोई इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बना रहा बल्कि जमा हो रहा है हमारी आर्टरीज में, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, सबक्यूटेनियस फैट के फॉर्म में, तो मोटापे के लिए भी जिम्मेदार है।
14: इसमें कोई दो राय नहीं कि घर हो या रेस्टोरेंट, पनीर की डिमांड बेहिसाब है और इसी वजह से एनालॉग पनीर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। दूसरी बात यह कि सस्ता है इसलिए मुनाफे के लिए मुफीद है, इसलिए घर से बाहर जब भी पनीर का व्यंजन खाएं तो सावधान रहें। लेकिन जहां तक घर के इस्तेमाल के लिए खरीदने की बात है तो असली पनीर की पहचान कीजिए। इसकी बड़ी पहचान ये है कि असली है तो हाथ से मसलने पर नरम और दानेदार होगा, मसलने पर यह आसानी से बिखर जाता है लेकिन रबड़ जैसा खिंचता नहीं। शुद्ध पनीर में दूध जैसी सौंधी और ताजी खुशबू आती है। उबालने पर पानी में नहीं घुले और आयोडीन डालने पर नीला नहीं पड़ेगा।
16: ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसका स्पेसिफिकेशन हमारा जो रेगुलेशन है 2.1.5 इसमें दे चुका है। इसमें एक्चुअली मॉइस्चर नॉट मोर देन 70% होना चाहिए और इसमें मिल्क फैट जो है नॉट मोर देन 15% ऑफ ड्राई मैटर होना चाहिए। और पनीर के सिंथेटिक पनीर जो है पहले तो था ही नहीं, इसका स्टैंडर्ड भी अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो इसको अलाउ किया था एफएसएसएआई में, लेकिन ये अलाउ नहीं करना चाहिए और इसको जो इसका अगेंस्ट में जो कार्रवाई हो रहा है ये एकदम सही दिशा में हो रहा है, क्योंकि एनालॉग पनीर का नाम में एडल्ट्रेशन हम लोग इनकरेज नहीं कर सकते हैं। तो चना और पनीर जो है इसको क्या प्योर है क्या ओरिजिनल है वो इमिडिएटली वो आयोडीन डालने से पता चल जाता है, तो इसे और इसको रबरी टेक्सचर नहीं होता, स्मूथ होता है प्योर पनीर, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये जो सिंथेटिक पनीर जो और या एनालॉग पनीर जो बोल रहे हैं इसको एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहिए। सही दिशा में एफडीए महाराष्ट्र भी काम कर रहा है और इसको इसको बाकी स्टेट में भी ये लागू करना चाहिए।
14: डॉक्टर्स के अनुसार पनीर पोषण का अच्छा स्रोत माना जाता है, जबकि एनालॉग उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले वनस्पति फैट स्टार्च और दूसरे एडिटिव्स की वजह से पोषण कम हो सकता है अगर इसमें खराब गुणवत्ता वाला तेल या अधिक संतृप्त वसा इस्तेमाल हुई हो। इसकी वजह से कुछ लोगों को पाचन संबंधी परेशानी जैसे गैस, अपच या एलर्जी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।
15: हम खाना क्यों खाते हैं? अपने शरीर को नरिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, उस वो उल्टा हो रहा है। हम न्यूट्रिशन तो ना ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हम साथ में ऐसे सब्सटेंसेस और केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, कंटामिनेंट्स हो, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं नरिश करने की जगह। तो डेफिनेटली बैलेंस प्लेट जो हम बोलते हैं, बैलेंस डाइट, बहुत आसान है कहना कि सब्जियां खाओ, डेयरी का एक सोर्स लो और साथ में दालें खाओ, बट वो अवेलेबल कैसे हो कंज्यूमर को? उसी के लिए तो रेगुलेशन जरूरी है। कंज्यूमर अगर डेयरी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम अपने पेशेंट्स को डायरेक्टली मना कर देते हैं कि अगर आपको सीरियस जेनेटिक डिजीज है, डिस्पोजिशन है किसी डिजीज के लिए, तो आप ऐसी चीजें जैसे कि सफेद आटा, सफेद चावल, पनीर, डायरेक्ट डेयरी, सफेद चीनी, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए।
14: सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि इसे बिना जानकारी दिए असली पनीर बताकर परोस दिया जाता है, जबकि इस केमिकल वाले पनीर से ना सिर्फ दिल की परेशानी हो सकती है बल्कि जानकार मान रहे हैं कि इससे कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा है।
15: जो एक बीमारी होती है कैंसर, जब किसी को हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस इंडिया में इतना कैंसर है इज बिकॉज ऑफ आर एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन के अलावा फूड एक बहुत बड़ा सोर्स है। और लोग बाहर जब जाते हैं खाते हैं तो उनको एक भरोसा होता है कि जहां पर वो खा रहे हैं उसने हाइजीन का, क्वालिटी का, फूड का ध्यान रखा होगा, बट क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं है, लोग वो खाने से बीमार हो रहे हैं और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो रही हैं।
14: तीन राज्यों में एनालॉग पनीर पर प्रहार किया गया है, उसे बैन कर दिया गया, लेकिन जहां बैन नहीं है वहां भी होटल कारोबारी इस बात से सहमत हैं कि ग्राहक को सही जानकारी मिलनी चाहिए, इससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार फैसला ले सकेगा और बाजार में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। दूध से बना पनीर और फैक्ट्री में तैयार एनालॉग चीज दोनों अलग अलग उत्पाद है। समस्या तब पैदा होती है जब पहचान छिपाकर एक को दूसरे के नाम पर बेचा जाता है, इसलिए आमतौर पर लोग इस केमिकल वाले पनीर के खिलाफ है।
17: ये भी बड़ी मशहूर पनीर की एक शॉप है भोपाल में और यहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन सबके मन में अब यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये एनालॉग पनीर और जो पनीर अब तक ये लोग खाते आए हैं जिसे बताया जाता है कि असली पनीर है, शुद्ध पनीर है, ये अंतर ये लोग कैसे पहचानेंगे? तमाम वो लोग हैं जो अक्सर आमतौर पर पनीर का सेवन करते रहते हैं।
18: आप जो पनीर खाते हैं आपको कुछ अंतर समझ में आता है?
17: नहीं
18: आपको लगता है कि जो पनीर आप खा रहे हो आपको पता होता है कि वो क्या है?
19: नहीं पता चलता कि वो पाम का है या शुद्ध पनीर है। और उसमें सरकार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पता चल सके कि वो सही पनीर है या पाम का पनीर है।
17: सरकार तो बोल रही है कि आपको जो है डेयरी वाले हों या रेस्टोरेंट वाले हों वो बताएं आप लोगों को।
20: ये फूड एंड ड्रग्स से संबंधित मामला है तो गवर्नमेंट को इस पर और स्ट्रिक्टली कोई नियम बनाना चाहिए ताकि उससे पता लग सके कि ओरिजिनल है कि नकली।
17: अच्छा, आप लोग जाते होंगे रेस्टोरेंट वगैरह, कभी आपने पूछा खाने से पहले कि आप जो पनीर की सब्जी आप मंगा रहे हैं या फिर डेयरी में भी अगर पनीर आप लेने, कभी आपने सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है एनालॉग पनीर?
21: 99% लोग शायद इस भोपाल जैसे बड़े शहर में भी ये जानते ही नहीं होंगे कि पनीर की दो वैरायटी आती है। सरकार को इस पर गहन मंथन करना चाहिए और इसके लिए बिल्कुल एक ऐसा जिससे कि लोगों को पता चल सके कि डेयरी पर, रेस्टोरेंटों में, ये बात आपके माध्यम से आज जो आपने एक अच्छी पहल की उसके माध्यम से लोगों तक पहुंच सके ये तो मेरे हिसाब से किसी को पता ही नहीं है कि पनीर की दो वैरायटी और इसके शरीर के लिए क्या लाभ नुकसान हो सकते हैं, ये भी शायद किसी को नहीं।
17: क्या करे सरकार या फूड डिपार्टमेंट, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे आम इंसान जब डेयरी पे जाए या रेस्टोरेंट में जाए तो उसे पता तो रहे कि कौन सा पनीर वो कंज्यूम कर रहा है?
21: सरकार ने जब इसके लिए परमिशन दी है तो सरकार को इसकी परमिशन के साथ सख्ती के साथ इस बात को बताना चाहिए कि डेयरी वालों के लिए या रेस्टोरेंट वालों के लिए, क्योंकि पनीर की बहुत ज्यादा यूजर है हमारे देश में, तो कम से कम लोगों को ये पता रहे जिस रेस्टोरेंट में वो भोजन करे तो उनको पता रहे कि पनीर की कौन सी वैरायटी को वो ले रहे हैं, वो लेना चाहते हैं तो ले, या उनके पास ऑप्शन रहे वो चाहे तो इसका उपयोग नहीं करें।
14: शरीर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है और पनीर प्रोटीन के लिए आसानी से मिलने वाला सोर्स है, लेकिन ऐसे दिखावटी पनीर का क्या फायदा जो बीमारियों की वजह बन जाए, इसलिए एनालॉग पनीर से सावधान रहें। भोपाल से धर्मेंद्र साहू, मुंबई से दीपेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है, क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है, क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को स्वभाव को कमजोर करता है, राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
9: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए परीक्षण में सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़, यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: दिल्ली में दिव्यांग नितिन ने पूरी की कांवड़ यात्रा, पिता साथ कांवड़ लेकर पहुंचे नितिन। 7 साल के नितिन का दूसरा कांवड़ सफर, पैरों में परेशानी के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भक्ति और हिम्मत की मिसाल बनी कांवड़ यात्रा। कांवड़ियों की सेवा में जुटे लोग, बांटे गए पाइप पाइन एप्पल जूस और चाय आलू चाट। 70 साल की आशा देवी की अनोखी आस्था, 30 साल से अकेले ला रही हैं हरिद्वार से गंगा जल। सावन में शिवभक्ति का अद्भुत रंग, हर उम्र के कांवड़िए पहुंच रहे हैं महादेव के दरबार में, कांवड़ियों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। मुंगेर में कच्ची कांवड़ियों पर आस्था का अनोखा नजारा, 80 किलो की मां तारा प्रतिमा लेकर निकले शिवभक्त। कोलकाता के 15 शिव भक्तों का जत्था बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, प्रतिमा को कांवड़ में सजा कर जा रहे हैं बाबा के धाम। आंखों पर पट्टी बांधकर डाक बम की यात्रा, शिव भक्त रमेश ने मन्नत पूरे होने पर जारी रखने का संकल्प लिया। भगवान शिव के रूप में सत्यपाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, शांति और पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश।
10: जा रहे हो
9: हर कदम पर दिख रही आस्था की अनोखी तस्वीर। बोल बम के जयकारों से गुंजायमान हुआ मार्ग का अनोखे अंदाज में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं भक्त। सहारनपुर के सोरेन गांव का कांवड़ मेला बना श्रद्धालुओं की पहली पसंद। उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हरिद्वार से लौटते कांवड़ियों का मेले में पड़ाव। सुबह से रात तक जुटती है भारी भीड़। झूले खिलौने खाने पीने की चीजें ने बढ़ाई और रौनक। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो रहा है मेला। 20 साल पुराना सोरना कांवड़ मेला बना शहर की पहचान। आस्था और परंपरा का संगम। कांवड़ियों के विश्राम और अन्य सुविधाओं का भी इंतजाम। अखंड भंडारे की परंपरा से जुड़ी हुई मान्यता। दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देवगढ़ स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रावणी मेले में 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने जलार्पण किया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे। सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बाबा बैद्यनाथ मंदिर को चढ़ावे से 86,85,000 की आय हुई। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए देशभर से पहुंच रहे हैं शिवभक्त। बोलबम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। मान्यता है कि सावन में गंगा जल अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं बाबा बैद्यनाथ। शिव भक्तों की आस्था चरम पर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आस्था भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम। कांवड़ यात्रा में नजर आ रही है अलग अलग रूप और स्वरूप की अनोखी कांवड़। स्पोर्ट्स कार से लेकर मिसाइल के रूप में भी नजर आई कांवड़। आकर्षण का केंद्र बनी है भारत की सैन्य ताकत को दर्शाती अग्नि 5 की थीम वाली कांवड़। करोड़ों रुपए की लग्जरी स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली कांवड़ भी श्रद्धालुओं और राहगीरों के बीच बनी हुई है पहली पसंद। प्रसिद्ध मैकलॉरन स्पोर्ट्स कार की तर्ज पर बनाई गई है कांवड़ के साथ। फोटो खिंचवाते हुए नजर आए और वीडियो बनाते हुए नजर आए श्रद्धालु। शिव के अलग अलग रूपों में ढली कांवड़ भी खींच रही है सभी का ध्यान। कांवड़ यात्रा में नजर आई भव्य हाइड्रोलिक कांवड़। इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से भगवान शिव शंकर प्रकट होते हैं। तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है सुंदर कांवड़। इस कांवड़ के साथ शिव भक्तों की टोली तय कर रही है हरिद्वार से गुरुग्राम तक अपना 260 किलोमीटर का सफर। चंदौली में कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। पवित्र कांवड़ यात्रा पर निकले महिलाओं के साथ छोटे बच्चे। देवघर के लिए रवाना हो रही है कांवड़ियों की ये टोली। गूंजा ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का उद्घोष। कांवड़ियों की सेवा करने के लिए बागपत के रिटायर फौजी ने लगाया शिविर। पेंशन से चलाते हैं ये शिविर। चारधाम में बारिश पर भारी नजर आई आस्था। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर। फंते अलकनंदा के बीच भी लगातार दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। मौसम विभाग ने अलर्ट के बावजूद इत्यादि स्कूलों में अवकाश घोषित किया। बारिश के तापमान में भी भारी गिरावट। ठंड की परवाह किए बगैर बरसाती और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु। जगह जगह भूस्खलन होने पर युद्ध स्तर पर लगातार जारी है सड़क मार्ग खोलने का काम। बारिश के बाद पहाड़ों पर छाई धुंध बहुत मनोरम दिख रहा है दृश्य। दिल्ली के भारत मंडपम में गार्टेक्स टैक्स प्रोसेस इंडिया का शुभारंभ हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भविष्य की दिख रही है झलक। एक्सपो में 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से ज्यादा ब्रांड्स शामिल। डेनिम शो में जेन जी और जेन अल्फा के फैशन ट्रेंड्स का भी दिखा जलवा। केआई वस्त्रा ने दिखाई फैशन की नई तस्वीर, फोटो से सेकंड्स में वर्चुअल ड्रेस ट्रायल। टेक्सटाइल सेक्टर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर जोर, एआई, डिजिटल प्रिंटिंग और आधुनिक मशीनों के साथ बदल रही है टेक्सटाइल उद्योग की तस्वीर। शिरडी में दुबई के साईं बाबा भक्त ने चढ़ाया 76 ग्राम सोने से बना राम अक्षर। रात पूरी होने के मौके पर राम भक्त ने बाबा को अर्पित किया सोने का राम अक्षर, साईं बाबा के प्रति अटूट आस्था। दुबई भक्त ने पहले भी चढ़ाया था 24 लाख का सोना, ओम साई राम द्वारका माई मंदिर में किया गया था स्थापित। फरीदकोट में 18 वर्षीय प्रभुजोत का कमाल, एआई प्रोग्रामिंग और डिजिटल स्किल्स से युवाओं को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। प्रभुजोत ने महज 13 साल की उम्र में शुरू कर दिया था मिशन, डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर फ्री में युवाओं को सिखा रहे हैं। सीमा पर भारतीय सेना की ताकत और होगी मजबूत, एलएसी एलओसी पर सप्लाई के लिए सेना खरीदेगी 2715 लॉजिस्टिक्स ड्रोन। सेना के ड्रोन बेड़े में बड़ा इजाफा, दुर्ग बॉर्डर पोस्ट तक राशन गोला बारूद भी पहुंचाएगा। बीस हजार फीट तक ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार होंगे लॉजिस्टिक्स ड्रोन, एलएसी एलओसी पर सैनिकों तक सामान पहुंचाना हो जाएगा और आसान। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार और एंट्रोपिक के बीच एआई पार्टनरशिप पर हुई चर्चा। संभल में विलुप्त महिष्मती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कवायद शुरू, 7 किलोमीटर लंबी प्राचीन महिष्मती नदी को मिलेगा नया जीवन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेंजी और जैन अल्फा स्टूडेंट्स से किया संवाद, बोले भागवत जेंजी और जैन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार। मोहन भागवत का बड़ा बयान, जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, आंदोलन भी संवाद का एक तरीका है। मोहन भागवत ने 15 से 19 साल तक के छात्रों से बातचीत की, भागवत ने कहा शिक्षा जीवन के लिए बहुत जरूरी, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार होगी युवा नीति। मेटा प्रतिनिधियों ने सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, सरकार ने मेटा को साफ साफ बता दिया हर हाल में करना पड़ेगा कानून का पालन। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश के कारण जलजमाव, कई सड़कें पानी में लबालब। भारी बारिश से गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड पर वाटर लॉगिंग, सड़कों पर भर गया पानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण पटेल नगर इलाके में जलजमाव, ट्रैफिक की वजह से वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश बनी आफत, सिविल लाइंस जॉर्ज टाउन समेत कई इलाके जलमग्न। मूसलाधार बारिश से फिरोजाबाद में वाटर लॉगिंग, शिकोहाबाद थाना परिसर में भर गया पानी। टिहरी में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी, जलस्तर बढ़ने से नदी नाले उफान पर। टिहरी के पुंडोली गांव में तेज बारिश के कारण बहा लकड़ी का पुल, आवाजाही ठप, एसडीआरएफ ने रस्सी के जरिए महिला का रेस्क्यू किया। शुपिया के तुलील हलन में बादल फटा, रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी। शुपिया के दूध पथरी में बादल फटने से अचानक कई बार घरों, होटल्स और दुकानों में घुस गया पानी। मूसलाधार बारिश से हरिद्वार की सड़कें बन गई सैलाब, रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर घुटनों तक पानी जमा हुआ। अमित राव की ओ माय डॉग कल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का भी कल होने जा रही है रिलीज, इसमें हिमांश कोहली नजर आएंगे।
5: कल का कुछ सोचा है?
9: आर माधवन की फिल्म डीजीएन कल होगी रिलीज, डीजी नायडू की भूमिका में नजर आएंगे माधवन। पंजाबी फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी कल थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है, फिल्म में शिल्पा शेट्टी नजर आएंगी। तमिल रोमांटिक एक्शन फिल्म डीसी भी कल रिलीज होने को तैयार, इसमें लोकेश नजर आएंगे। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज होने को तैयार है मैं वापस आऊंगा। जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी हुई वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी कल होगी रिलीज। अखिल अक्की नैनी की फिल्म नैनन अब ओटीटी पर आने को तैयार। लोकप्रिय टीन ड्रामा माय लाइफ विद द वॉल्टर बॉयस का तीसरा सीजन आज से नेटफ्लिक्स पर होगा स्ट्रीम। टेलीविजन सेलेब जिया शंकर ने बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल करण से सगाई रचाई। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग, कप्तान शुभमन गिल समेत तीन भारतीय टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल। टॉपर खबेज हैं कप्तान गिल, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर और चौथे पायदान पर रोहित। 17 अगस्त से दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ड्रॉ जारी। युवा शटलर आयुष को मिली है कड़ी चुनौती, पहले दौर में विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी होंग से होगा उनका मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज से बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कैंप में 4 नेट बॉलर्स को किया शामिल। दक्षिण कोरिया में किसानों को हीटवेव से बचाने के लिए आसमान से उतारे गए ड्रोन, एंडोंग में ड्रोन लाउडस्पीकर से किसानों को दे रहे हैं ठंडा रहने की सलाह। एंडोंग में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच खेतों में ड्रोन से निगरानी। बुजुर्ग किसानों की सुरक्षा करने के लिए एआई ड्रोन की तैनाती, किसानों से पानी और आराम करने और धूप से बचने की सलाह। 5 किलोमीटर दूर तक का हीट वेव को लेकर चेतावनी पहुंचा रहे हैं ड्रोन्स। दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी में किसानों का नया साथी बने ड्रोन, बढ़ते तापमान के बीच टेक्नोलॉजी बनी सहारा। अटलांटा में रोबोट्स ले रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की जगह, कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रात की शिफ्ट लगाते हैं। इंसानी ऑपरेटर दूर से कंट्रोल करते हैं ये रोबोट्स, ये रोबो डॉक्स लाइव कैमरा फीड भी देते हैं। पूर्वी चीन के जेंजियांग प्रांत में कियांतांग नदी के ऊपर से आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ ड्रोन डिलीवरी रोड। जमीनी ट्रैफिक की रुकावट से बचते हुए ड्रोन करते हैं तेज डिलीवरी। यह सर्विस अभी रोजाना औसतन लगभग 4.4 अमेरिकी डॉलर की लागत पर 150 से 200 ऑर्डर्स पूरे करती है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही
6: है। राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है, क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है, क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को स्वभाव को कमजोर करता है, राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
9: अब आपको हैदराबाद के एक ऐसे अनोखे कैफे में लिए चलते हैं जहां पर बच्चे छोटे छोटे शेफ बनकर बड़े कमाल दिखा रहे हैं। छोटा भीम थीम वाले इस कैफे में बच्चे शेफ की कैप पहनकर प्रोफेशनल शेफ के साथ पिज्जा और अपनी पसंद की दूसरी डिश बनाना सीखते हैं। जूनियर शेफ क्वेस्ट के साथ पेंटिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज भी हैं, यानी यहाँ स्वाद, सीख और मस्ती तीनों का शानदार तड़का बच्चों और उनके माता पिता को खूब पसंद आ रहा है।
12: पिज्जा, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक जिन्हें देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, जो उनकी फेवरेट डिशेस में सबसे ऊपर रहती हैं। लेकिन अगर इन्हें खाने के साथ साथ बच्चों को इन्हें खुद अपने हाथों से बनाने का मौका मिल जाए तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। ये अनोखा छोटा भीम कैफे हैदराबाद की जुबली हिल्स में है, जहाँ बच्चे सिर्फ ऑर्डर नहीं देते बल्कि खुद शेफ बनकर अपनी पसंदीदा डिश तैयार करते हैं। इस कैफे का सबसे खास पहलू है जूनियर शेफ क्विस्ट, जहां बच्चे शेफ कैप पहनकर किचन में उतरते हैं, प्रोफेशनल शेफ्स की निगरानी में आसान रेसिपी बनाते हैं और कुकिंग के साथ साथ टीम वर्क, किचन सेफ्टी और आत्मविश्वास भी सीखते हैं।
13: इस रेस्टोरेंट में मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे हाथों से सिर्फ खा नहीं रहे बल्कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम वर्क की एक कोशिश के साथ किया गया है। जूनियर शेफ ये कॉन्सेप्ट यहाँ के रेस्टोरेंट में शुरू किया गया है, जहाँ पर बच्चे अपना पिज्जा खुद बना रहे हैं। एक मास्टर शेफ की गाइडेंस में बच्चे यहाँ पर आते हैं, ना ही सिर्फ खाना बल्कि एक घंटा या दो घंटे तक ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं और साथ ही कई सारे डिशेज ऐसी अनोखी क्रिएटिविटी वाली करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है।
12: कार्टून की दुनिया से निकलकर अब छोटा भीम बच्चों को सिर्फ ताकतवर बनने की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और क्रिएटिव बनने की भी सीख दे रहा है।
14: In this on Instagram and really the kids really like this character and all they watch all the TV shows and all. So it's a very nice concept which they have come up with like for the like there's lot of activities.
12: इस कैफे का मकसद बच्चों को सिर्फ खाना खाने की जगह देना नहीं है बल्कि इस कैफे को सीखने, खेलने और मनोरंजन का एक अनोखा केंद्र बनाना है, जहां बच्चों को हेल्दी फूड की अहमियत भी मजेदार तरीके से समझाई जाती है ताकि वो बचपन से ही बेहतर खान पान की आदतें अपना सकें।
15: So, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि वो सिर्फ छोटे हाथ से खेल रहे हैं, उनको नर्चर करना है। ठीक है, एक खाना बनाना भी एक उतना ही बेसिक और उतना ही इम्पोर्टेंट टास्क है जितना पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजें भी हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल एसेंशियल काम पे काम आता है, हर दिन के काम में आता है। प्लस बच्चों के लिए जैसे केटर किया है ऑल वेजिटेबल्स जो बच्चे खाते नहीं है उनको हम लोग ब्लेंड करके सॉसेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे बच्चों को भी मन लगा रहे, कलर के साथ भी वो खेले, उनको और अपील हो। बच्चों को खाने में, पकाने में मजा आना चाहिए जिससे वो आगे जाके भी बेटरमेंट कर सके।
12: बच्चों को भी कुकिंग की ये अनोखी पाठशाला खूब रास आ रही है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की तरह कोई किताबें नहीं, ना ही होमवर्क का दबाव, बल्कि हर पल कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है।
13: आपने क्या बनाया है और कैसा आप इसको?
16: I am very happy to prepare this pizza and drinks.
13: तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेफ मौजूद है जो बच्चों को यहाँ पर बताते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से यहाँ का खाना बनना चाहिए।
12: तो बच्चों के लिए ये कुकिंग कैफे सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि नए स्किल सीखने का एक शानदार मंच बना हुआ है, जहां वो खुशी खुशी अपनी फेवरेट डिश बनाना सीख रहे हैं, टीम वर्क, अनुशासन और साफ सफाई की आदतें अपना रहे हैं। यानी यहाँ स्वाद के साथ साथ हुनर भी तैयार हो रहा है और मस्ती के साथ साथ सीखने का सफर भी आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़, यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को

0: होता है तो इसका आपके जीवन पर किस तरीके से असर पड़ता है, इसे डीकोड करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र आखिर क्या है।
1: अगर कुंडली में राहु की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से अपयश मिल सकता है या मिल रहा है, तो नियमित रूप से अपने गले में तुलसी की माला धारण करिएगा। तुलसी का सेवन करने से, तुलसी के संपर्क में रहने से राहु की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि राहु का बाकी ग्रहों के साथ किस तरीके से संबंध होता है। और इसी कड़ी में सबसे पहले पंडित जी बात कर लेते हैं राहु और सूर्य के कंजंक्शन के बारे में। अगर सूर्य और राहु एक साथ किसी घर में जाकर बैठ जाते हैं तो जीवन पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि राहु जब अलग अलग ग्रहों से संबंध बनाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती, तो राहु और केतु दृष्टि से संबंध नहीं बनाते। राहु के संबंध का मतलब है कंजंक्शन, यानी राहु और वो ग्रह एक साथ बैठे हुए हों। अगर कुंडली में राहु और सूर्य का संबंध है तो क्या होता है। देखिए, राहु और सूर्य के संबंध को ज्योतिष में ग्रहण योग कहा जाता है। अगर ये कुंडली में है तो इससे स्वास्थ्य, खास तौर से आंखें कमजोर हो जाती हैं। और राहु सूर्य का संबंध हो तो जीवन में अपयश की संभावना बनती है, व्यक्ति को अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली में राहु सूर्य का संबंध है तो इस संबंध के होने पर रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से राहु सूर्य के संबंध का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
0: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशि फल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक

0: समस्याएं आ सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं राहु और चंद्रमा का संबंध कैसा माना जाता है। अगर ये दोनों एक ही घर में जाकर बैठ जाएं तो इनका कंजक्शन आपकी जिंदगी में किस तरीके से असर डालता है, आइए जानते हैं।
0: अब जानते हैं कि अगर राहु और चंद्र का संबंध हो, राहु और चंद्र अगर एक साथ बैठे हों तो क्या प्रभाव है। देखिए, राहु और चंद्र के संबंध को भी ग्रहण योग माना जाता है। राहु चंद्र का संबंध कुंडली में कहीं भी बने, ये मानसिक रूप से कमजोरी और मानसिक बीमारियां पैदा करता है। मन की स्थितियों में बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है, मानसिक स्थितियां बार बार बिगड़ती हैं, व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है या साइकोलॉजिकल समस्या आ सकती है। अगर कुंडली में राहु चंद्र का संबंध है आपके, तो भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। शिव जी की जितनी पूजा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब बात कर लेते हैं राहु और मंगल के संबंध की, इन दोनों का कंजंक्शन कितना अच्छा कितना बुरा, आइए पंडित जी से जानते हैं इसका किस तरीके से आपके जीवन पर असर पड़ सकता है।
0: अब जानते हैं कि अगर कुंडली में राहु और मंगल का संबंध बने, राहु मंगल का कंजंक्शन हो, तो इसका क्या प्रभाव है। देखिए, राहु और मंगल के संबंध को, कंजंक्शन को अंगारक योग कहा जाता है। और अगर ये कुंडली में है तो जीवन में विस्फोट हो, जीवन में दुर्घटना हो, सर्जरी की ऑपरेशन की नौबत आए, ऐसा जरूर हो सकता है। राहु मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति उग्र हो सकता है, बहुत क्रोधी हो सकता है, ये व्यक्ति का स्वभाव भी खराब कर देता है। इस संबंध के होने पर अगर कुंडली में आपके राहु और मंगल का संबंध है तो हनुमान जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह शाम एक एक बार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो उससे भी आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, बेवजह के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है। फल का दान अगर कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न सयाली घोष ने हमें लिखा है और सयाली हमें मेल लिखती हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 2001, जन्म का समय शाम के 4:55, जन्म स्थान है कोलकाता। सयाली कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाएं, बैंकिंग में जाएं, फाइनेंस में जाएं, तो इन क्षेत्रों में आपका करियर काफी अच्छा हो सकता है और आपकी उम्र लगभग 25 साल होने जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल 2027 में आपको सफलता मिल जाएगी। एक माणिक्य बनवा के पहने, रूबी, लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो पंडित जी, इससे पहले आप हमारे दर्शकों का सवाल लें, उससे पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम को रोज देखते हैं, हमारा ये कार्यक्रम काफी पसंद करते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न ब्रिजमोहन जी ने हमें लिखा है और ब्रिजमोहन जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1961, जन्म का समय सुबह के 7:00, जन्म स्थान है मथुरा। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि संतान को लेकर समस्याएं बहुत हैं, संतान का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, बेवजह का तनाव बना रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे संतान की तरफ से कष्ट थोड़ा कम हो जाए? ब्रिजमोहन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से संतान को लेकर तनाव मत पालिए क्योंकि उसमें सुधार होने की संभावना नहीं है और जिस चीज में सुधरने की संभावना ही नहीं है उसमें क्यों अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। नॉर्मली भजन कीर्तन करिए, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, धार्मिक आदमी हैं आप, उसी रास्ते पे चलिए। मेरे हिसाब से थोड़ी चिंताएं और तनाव आपका कम हो इसके लिए रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा रोज सुबह, और एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं राहु और बुध का संबंध कैसा होता है, इसका कंजंक्शन कितना अच्छा कितना बुरा होता है, आपके जीवन पर किस तरीके से असर ये डाल सकता है, कैसा इसका प्रभाव होता है, आइए जानते हैं।
0: अब जानते हैं कि राहु और बुध का अगर संबंध हो, कंजंक्शन हो, तो ये कैसा होता है। देखिए, राहु और बुध का संबंध वाणी और बुद्धि की समस्या पैदा कर देता है। आदमी ज्यादातर कंफ्यूज होता है, सही निर्णय नहीं ले पाता, इधर उधर भटकता रहता है, और इस कंजंक्शन की वजह से, इस संबंध की वजह से कभी कभी त्वचा की समस्या भी हो जाती है। राहु बुध के संबंध का एक फायदा यह है कि ये लोग कभी कभी जबरदस्त इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, स्पेस के इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि भी बन जाते हैं। अगर कुंडली में राहु बुध का संबंध है और इसका बुरा प्रभाव आ रहा है तो तुलसी का प्रयोग करिए, तुलसी की माला पहनिए या तुलसी के पत्तों का सेवन करिए, और सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राहु और बृहस्पति के संबंध के बारे में। राहु और बृहस्पति का संबंध कितना खतरनाक होता है कुंडली में और इसका प्रभाव किस तरीके से आपके जीवन पर पड़ सकता है, इसके बारे में जानते हैं।
0: अब जानते हैं राहु और बृहस्पति के संबंध के बारे में। देखिए, राहु और बृहस्पति के संबंध को, इनके कंजंक्शन को गुरु चांडाल योग कहा जाता है, जो ज्योतिष के सबसे नकारात्मक योगों में से एक है। अगर राहु गुरु का चांडाल योग है कुंडली में तो इसकी वजह से जीवन में नकारात्मकता छा जाती है, जीवन में निगेटिविटी आ जाती है, और राहु गुरु के संबंध की वजह से वैवाहिक जीवन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अगर ये संबंध कुंडली में है और इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो इस संबंध के होने पर सन्मार्ग पर चलिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, और नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा ही सही भगवत गीता का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृषभ का धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, नौकरी में समस्या दूर होगी, खान पान का ध्यान बनाए रखें, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं राहु और शुक्र यानी राहु और वीनस का संबंध कैसा माना जाता है, इनका कंजंक्शन आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है।
0: अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में राहु और शुक्र का संबंध हो, राहु और शुक्र का कंजंक्शन हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, राहु और शुक्र का संबंध ग्लैमर तो देता है, लेकिन ये योग, ये संबंध चरित्र दोष भी पैदा करता है। इसको चरित्र के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते, और कभी कभी राहु शुक्र का संबंध कम उम्र में भटकाव देता है, कम उम्र में आदमी को भटका सकता है। राहु शुक्र की वजह से चरित्र को लेकर, आचरण को लेकर कभी कभी जीवन पर लांछन भी लग जाता है, जीवन में अपयश भी आ जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु का संबंध है तो भगवान शिव की आपको नियमित उपासना करनी चाहिए, ताकि इसके दुष्परिणाम से, इसके नकारात्मक प्रभाव से आप बच सके।
1: राहु और शनि का संबंध कैसा माना जाता है, आइए पंडित जी से जानते हैं इसका आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है।
0: अब राहु और शनि का संबंध कैसा माना जाता है, इसका प्रभाव क्या है। देखिए, राहु और शनि के संबंध को, कंजंक्शन को नंदी योग कहा जाता है। यानी राहु और शनि के संबंध को कहीं कहीं पर शाप और पिशाच दोष भी लोग कहते हैं। इसको बहुत नकारात्मक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु शनि का कंजंक्शन है, राहु शनि अगर एक साथ बैठे हैं, तो ये जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। इसकी वजह से जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, और अक्सर ये करियर में काफी समस्याएं दे देता है। काफी लंबी उम्र बीत जाने के बाद भी आदमी स्टेबल नहीं होता, आदमी के जीवन में, करियर और जीवन में स्थिरता नहीं आती। शनि राहु का संबंध मन में डर, भय, तनाव और चिंता भी पैदा करता है। इस योग के होने पर नियमित रूप से शनि देव की पूजा करिए, शनि मंत्र का रोज शाम को जप करिए और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन जरूर धारण करिए।
1: तो बातचीत का सिलसिला पंडित जी के साथ यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज का तीसरा सवाल लेने का। तो पंडित जी, बिना देर किए हमारे दर्शकों का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न सुनीता जी ने हमें लिखा है और सुनीता जी हमें मेल लिखती हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1980, जन्म का समय शाम के 7:30, जन्म का स्थान है देवास मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि पिछले 3-4 सालों से मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ लगी रहती है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं कब तक स्वस्थ होंगी और मुझे क्या उपाय करना चाहिए? सुनीता जी, मुख्यतः आपको अपनी हड्डियों की और नसों की समस्या का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हड्डियों की और नसों की समस्या आपको परेशान कर रही है। इसके अलावा मानसिक स्तर में भी तनाव और चिंता की स्थिति बन रही है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है। आप दो उपाय करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, चांदी की अंगूठी में बनवाकर बुधवार की शाम को धारण करिएगा। रोज सुबह सूर्याष्टक का पाठ करिए। अगर ये दो उपाय करें तो जल्दी सुधार होगा। वैसे ऐसा लग रहा है कि नवंबर 2026 के बाद आपके जीवन में और आपके स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल यानी कि आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: अंतिम प्रश्न अतुल जी ने हमें लिखा है और अतुल जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 मार्च 1965। जन्म का समय रात में 11:30। जन्म स्थान है चंद्रपुर महाराष्ट्र। मेल लिखते हैं मुंबई से। अतुल जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं और मेरे व्यापार में मेरा पैसा बहुत सारी जगह पे ब्लॉक हो गया है जिसकी वजह से आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे व्यापार की और मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। अतुल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी लगभग जून 2027 के बाद। और आपके फंसे हुए पैसे अगर आप इस समय प्रयत्न करें तो धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन है, आप सभी को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी के लिए आने वाला वर्ष, आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। करियर में धीरे धीरे स्थिरता आती जाएगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सवाल यानी कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु की कृपा से जीवन को पूरी तरह बदला जा सकता है। देखिए, अगर वास्तविक गुरु आपको मिले, ईश्वर की कृपा से अगर सद्गुरु आपको मिल जाएं, वास्तविक संत समान गुरु मिले और आप अपने गुरु के दिशा निर्देशों का पालन करें तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं और अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के कष्टों को काट सकते हैं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर यानी कि अच्छा पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर कपूर या दीपक जला करके आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज की भाग्यशाली राशि यानी आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनकी शिक्षा में सामान्यतः नॉर्मली थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। अक्सर इनकी पढ़ाई बीच में रुकती है और फिर दोबारा चालू हो पाती है। सूर्य देव को अगर नियमित रूप से जल अर्पित करें तो आपके लिए शिक्षा में सरलता भी होगी और सफलता भी मिलेगी।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।

0: के गड़बड़ राहु को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? अगर आप अपनी कुंडली के राहु को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा और साथ ही साथ सात्विक रहने का प्रयास करिएगा। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: और अब बात करते हैं उस बेटी की जिसने हाल ही में खत्म हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का पहला गोल्ड जीतकर देश का मान बढ़ाया। हम बात कर रहे हैं अस्मिता डे की। महज 23 साल की उम्र में देश की इस बेटी ने तमाम चुनौतियों से लड़कर विश्व पटल पर इतिहास रच दिया। अस्मिता ने एक छोटे से गांव से कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजन तक सफर कैसे तय किया, रिपोर्ट देखिए।

0: जूडो की ये वो नर्सरी है जहां ये बच्चे इस खेल के दांव पेच और बारीकियां सीखकर देश के लिए मेडल जीतने का सपना देख रहे हैं। इन बच्चों में 23 साल की अस्मिता डे भी शामिल है, जिन्होंने हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का पहला गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ देश का मान बढ़ाया बल्कि कोच और माता पिता का नाम भी रोशन किया। मेडल जीतने के बाद अस्मिता जब अपनी एकेडमी पहुंची तो वहां देश का मान बढ़ाने वाली इस बेटी का जोरदार स्वागत हुआ।
1: इतिहास में नाम दर्ज करना हो तो अस्मिता दे की तरह मेहनत और फिर उसके बाद हिस्ट्री क्रिएट करना, द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन जूडो, दिस इज आवर हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड बाय इंडिया इन जूडो इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अस्मिता, टेक्निक सबकी सेम होती है
2: जी।
1: तो ऐसा क्या हुआ कि एक 23 साल की इंडिया की लड़की ने जीत हासिल करी? क्या वो मेंटल कॉन्फिडेंस था या कोई ट्रिक थी जिसमें आप सक्सेसफुल हुए?
2: जी मैम, वो मेंटल का वो था और माइंडसेट था मेरा कि मुझे मारना ही है, तो शायद उसी वजह से मैं जीती हूँ।
0: महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में अस्मिता ने कनाडा की हेडी क्वाच को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ अस्मिता कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं। ये उपलब्धि अस्मिता ने कैसे हासिल की, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए।
1: कब आपको लगा कि ये जीत तो मुझे मिलने वाली है, क्योंकि बीच में जो कनाडा के ओपोनेंट थे थोड़ा सा मुश्किल हो गया था।
2: जी मैम, वो उसने पहले मुझे स्कोर मार दी थी तो मेरे पास बस 2 मिनट बची थी, तो मुझे तब लगा 2 सेकंड के लिए ये लगा था शायद मैं हार जाऊंगी, बट फिर मेरे जो कोच है यशपाल सोलंकी सर, उन्होंने बोला ये गोल्ड हमारा है, तू मारेगी तू ले जाएगी, तो तब मेरे को फिर और मैं थोड़ा मोटिवेट हो गई थी कि हाँ मैं मार सकती हूँ। उसके 40 सेकंड बाद, मतलब उसने स्कोर मारने के 40 सेकंड बाद मैंने फिर मार दी, फिर बराबर हो गए। हमारे जूडो में ऐसे होता है 4 मिनट तक अगर दोनों बराबर चलते तो फिर उसके बाद गोल्डन स्कोर हो जाते, गोल्डन स्कोर के बाद जो पहला स्कोर मारते वो विनर होते, तो मैंने फिर उसके बाद पहला स्कोर मारे और मैं विनर बनी।
1: क्या अपने आप को आपने बोला कि ये अपॉर्चुनिटी मैं जाने नहीं दे सकती?
2: जी मैम, क्योंकि ये हमारे देश के लिए और भारत के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे फैमिली के लिए, सबके लिए, मुझे, मैंने सोचा कि नहीं, ये गोल्ड मेडल मेरे लिए बहुत जरूरी है।
0: त्रिपुरा की रहने वाली अस्मिता डे पहले 800 मीटर दौड़ की एथलीट थी। जिला स्तरीय ट्रायल के दौरान उनकी रुचि जूडो में बढ़ी, जिसके बाद उन्होंने एथलेटिक्स छोड़कर जूडो को अपना खेल बना लिया और अस्मिता ने कोच यशपाल सोलंकी की देखरेख में कड़ी ट्रेनिंग ली, जिसका नतीजा उनके गले में चमक रहा ये गोल्ड मेडल है। अस्मिता बताती हैं कि उनके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अस्मिता के पिता कुछ महीने पहले ही ब्रेन स्ट्रोक के कारण चल बसे थे। यही वजह है कि मेडल जीतने के बाद अस्मिता पिता को याद कर भावुक हो गई थी।
2: जो मेरे पापा थे वो 2025 में चले गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पर दिसंबर में पापा जाने के बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, पर उसके 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के ट्रायल था, जिसमें मेरा नेशनल में मैं फर्स्ट आई थी और मैं अभी दोनों में सिलेक्टेड हूँ।
1: पिताजी कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे थे?
2: जी मैम, बहुत ज्यादा थे कि, और मैं अगर पिताजी को बोलती थी ना ये चाहिए मुझे, मतलब प्रोटीन के लिए थोड़ा पैसे, मैं कम ही बोलती थी क्योंकि मुझे पता है, तो मेरे पिताजी फिर उसी टाइम बोलते थे कि तू चिंता मत कर हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं से करके मुझे कर ही देते थे।
1: कैसे करते थे वो पता नहीं,
2: वो मुझे नहीं बताते थे, शायद जानबूझ के बोलते थे तुझे चाहिए तो तू ले, मुझे ये सब मतलब बताते नहीं थे पिताजी। तो
1: क्या काम करते
2: मैम? बस वही साइकिल मैकेनिक थे, ज्यादा पैसे नहीं मिलता था, लॉकडाउन में तो इतना हालत खराब था कि मतलब बस दाल चावल खाती थी और मेरे वेट भी उस टाइम बहुत कम हो गया था, और मतलब खाने का कुछ होता नहीं था, और बस 100 रुपए मिलता था कभी कभी, तो उसी से थोड़ा बहुत घर चलता था।
0: कोच यशपाल सोलंकी बताते हैं कि अस्मिता ने कभी भी चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और तैयारी पर फोकस बनाए रखा, जिसकी वजह से आज हर कोई अस्मिता पर गर्व कर रहा है।
3: जो मैं इसके लिए कर सकता हूँ या विजय के लिए कर सकता हूँ, मैंने वही सोच के किया। जब इनके फादर की डेथ हुई तो मैंने इसको बोला था, अच्छा ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, और कमाल की बात यह है, सिर्फ 1.5 साल पहले हम डिस्कस कर रहे थे, किसी और बच्चे के फादर की डेथ हुई थी, तो हमने पूरा गीता डिस्कस किया था, ये गीता पढ़ती है, मैं भी पढ़ता हूँ, हमने डिस्कस किया कि बेटा जो पैदा भी नहीं है उसको भी जाना है, अब आपके फादर जा चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट, आपके फादर का सपना तो जिंदा है, ही इज़ वॉचिंग यू। तो जिस दिन उनकी 13वीं हुई थी, सेम डे ये वापस आई थी, और जो फर्स्ट फ्लाइट टिकट मिली हमें क्योंकि मुझे पता था इंडिया में दोस्तों से मिलेगी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी, इमीडिएटली इसको यूरोप भेज दिया था और इसने बहुत हिम्मत दिखाई मैम। शी वॉज द लाइटेस्ट एंड सबसे यंग लड़की थी मेरी अकेडमी में जब मैं 2018 में साई ज्वाइन किया था। इसके अंदर वो मैडम विल पावर थी और वो विल पावर हमेशा से मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी कि ये लड़की पीछे नहीं हटती है।
0: पदकवीर अस्मिता आज इस अकेडमी के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। जूडो के दावपेच सीख रहे बच्चे भी अस्मिता जैसा ही देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इन बच्चों के सपने साकार हो सके इसके लिए अस्मिता उन्हें ट्रेनिंग भी देती हैं।
1: आप लोग ने भी देखा अस्मिता दीदी को जीतते हुए, कैसा लगा? गोल्ड मेडल जीत के आई है वो,
4: बहुत अच्छा लगा। हाँ। जब वो जीती तो लगा था भारत को रिप्रेजेंट कर रहे, तो भारत पहली बार जूडो में जीता, बहुत अच्छा लगा।
0: अस्मिता डे की इस गोल्डन सफलता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडो के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की है।
1: इस गोल्ड मेडल से एक बात जरूर हुई, यहाँ पर कितने और यंग बच्चे बच्चियां हैं जो आए हैं यहाँ पर जूडो सीखने के लिए, सिर्फ हॉबी नहीं लेकिन कल को वो भी भारत का तिरंगा पोडियम पर लेकर खड़े हों। यही होता है जब एक मेडल विनर अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी प्रॉब्लम साइड रखकर वो मेडल और पोडियम पे पहुंचते हैं। और भारत के लिए असली जेंजी से प्रेरणा लेना यही तो है। सत्या रोत्रे के साथ पूजा शाली।
5: बात करेंगे श्रावण मास के इस पवित्र महीने में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर शिवालयों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें कई शिवभक्त कांवड़िये अपनी अनोखी कांवड़ के लिए चर्चा में लगातार बने हुए। हरिद्वार से लेकर मेरठ और सहारनपुर तक, बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर तक एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रहे हैं।

0: सावन का महीना और सड़कों पर कावड़ियों का रेला उमड़ आया है। जहां देखो जिधर देखो इस वक्त रंग बिरंगी और अनोखी कावड़ ही नजर आ रही हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में तो इन दिनों कावड़ यात्रा को लेकर अलग ही आस्था और भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी गवाही मेरठ से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें अलग अलग आकार और थीम पर आधारित कावड़ लेकर ये शिव भक्त निकले हुए हैं। लग्जरी कार की रेप्लिका पर कावड़ सजा कर निकला है, कोई सैन्य शक्ति को समर्पित कावड़ लेकर निकला है और कोई शिव के औघड़ दानी स्वरूप की कावड़ लेकर निकला हुआ है। यानी जिसको शिव के जिस स्वरूप में आस्था नजर आई वो उसे कावड़ में ढालकर निकल पड़ा आस्था के पथ परीक्षा देने के लिए।
1: बजरंगबली जी को हमने ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, गणपति बापा को साइड पे बैठाया हुआ है, और भी हमने महाकाल की नंबर प्लेट लगवाई हुई है नीचे, और भी जब रात को चलते तो भोले बाबा की जटाओं में से 20-25 फुट ऊपर गंगा जी विराजमान होती है।
2: अच्छा जी, तो कितने दिन में तैयार हुई है बनकर?
1: हमारी 2 से 3 महीने के अंदर तैयार हुई।
2: तो खुद ही करिए या किसे करवाई?
1: खुद ही करवाई
2: अपने हाथों से।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, जहाँ पे भी हम रुक रहे हैं भीड़ वहाँ से टूट नहीं रही है, उस देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
0: देवाधिदेव महादेव के कुछ ऐसे ही अनोखे और अलबेले भक्त सहारनपुर के कावड़ रूट पर भी देखने को मिले। यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसी कावड़ दिखी जिन्हें आर्टिफिशियल फूलों और लाइट से सजाया गया है। अलग अलग रंगों लाइटिंग और धार्मिक स्वरूपों से सजी ये कावड़ सहारनपुर की सड़कों पर गुजरते हुए अलग ही नजारा पेश कर रही है। लोग अपने मोबाइल से इन खूबसूरत कावड़ की वीडियो और फोटोज खींच रहे हैं। अनोखी कावड़ की तरह ही कुछ ऐसे अनोखे कावड़ यात्री भी हैं, जो अपनी कठिन कावड़ यात्रा के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इन्हीं में से एक है मंजीत दहिया, जो हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक करीब 200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रोजाना करीब 3500 सपाटे मारकर यात्रा कर रहे हैं। जीत बताते हैं कि वो ये कावड़ यात्रा किसी खास मनोकामना के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वो युवाओं को फिटनेस का संदेश देने के लिए कावड़ यात्रा पर निकले हैं।
4: 5 कदम भी 6 भी ऐसे चल के मैं एक अपना सपाटा लगाता हूँ।
5: कितने सपाटे आप लगाते हैं? वैसे बता रहे थे
4: पर डे के हो जाते हैं, 3000 करोड़ हो जाते हैं पर डे के।
5: क्या है इसके पीछे?
4: इसके पीछे यही है भाई, मैं तो युवा के लिए संदेश दे रहा हूँ, भाई फिट रहो, अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं है।
5: कहाँ से आप अब तक कितने दूर तक का सफर तय कर चुके
4: हैं? हरिद्वार से यहाँ तक देख लो अब कितना होगा, हुआ ये करीबन ये मान के चलो 65-70 के बीच में अभी मेरा गांव रह रहा है।
5: ये सपाटे वाला आइडिया कैसे आया?
4: ये बस मेरे को पिछले साल ही होगा था, मैं अगली बार लेके आऊँगा ऐसे ही लेके आऊँगा, युवा के लिए बढ़िया सोच।
0: शहर शहर निकाली जा रही कांवड़ यात्रा का एक रंग ये भी है कि कई लोग इन कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। कोई खाने पीने का लंगर लगाकर सेवा कर रहा है, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए सेवा में जुटा है। सेवा के इस काम में कोई भी पीछे नहीं है, क्या आम और क्या खास, हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही कांवड़ियों की सेवा में जुटा हुआ है। बागपत के दाहा गांव में एक ऐसा कांवड़ शिविर भी है जहां न चंदा लिया जाता है, न किसी से मदद मांगी जाती है और न ही सेवा के नाम पर कोई दिखावा होता है। यहाँ अगर कुछ है तो बस श्रद्धा, सेवा और परिवार का समर्पण। 31 साल तक वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले एक पूर्व फौजी राजकुमार राणा अब अपनी पेंशन से भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं।
6: पहले देश की सेवा करी, अभी मैं भोलों की सेवा करना चाहूँ और अपने पैसे से करता हूँ, ना किसी से कोई दान दक्षिणा किसी से लेता ना मांगता, और घर का ही यूज करता हूँ, आटा बेसन खुद का घर का बनाया हुआ करता हूँ, ना मुझे किसी से लोभ लालच है। मेरे दिल में आई भोलों की सेवा करनी, कि सबसे बड़ा जो दान है भूखे को खाना खिलाना है, जो बेचारे इतनी दूर से कावड़ लेकर आते हैं, इन्हीं के लिए मैं इनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँगा।
7: तंदूरी रोटी बनाते हैं, दो सब्जी बनाते हैं, कभी मटर पनीर आज ही खुद ही बनाते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं है।
8: क्यों आया ये मन में?
7: हाँ ये मन में आज ही उनकी सेवा करें, पेंशन से ही खुली है का, बोले एक साल की पेंशन से मैं दान करूँ।
0: सावन के इस महीने की एक अलग ही छटा इन दिनों बिखरी हुई है। शिवालयों से लेकर इन कांवड़ यात्राओं तक शिव भक्ति के कई रंग नजर आ रहे हैं, जो शिव के प्रति इनके अटूट समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, सहारनपुर से राहुल कुमार, बागपत से मनुदेव उपाध्याय और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: बात करते हैं दिल्ली सरकार के ऐसे अभियान की जिसने न सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसी मकसद के साथ दिल्ली सरकार ने अर्पण केंद्र योजना की शुरुआत की। रिपोर्ट देखिए।
10: आमतौर पर इस्तेमाल के बाद इस तरह के पुराने या फेंके गए कपड़े कचरा गाड़ियों से होते हुए दिल्ली के कई लैंडफिल साइट्स तक पहुंच जाते हैं और गाजीपुर, भलसवा या ओखला जैसे लैंडफिल साइट्स का ढेर कभी खत्म नहीं होता। हालांकि दशकों से दिल्ली में फटे पुराने कपड़ों के साथ होने वाले इस अंजाम को बदलने की तैयारी है। दिल्ली में आपके पुराने कपड़े अलमारी का बोझ या लैंडफिल साइट्स का हिस्सा न बने, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अर्पण केंद्र नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर पुराने कपड़े दान करने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इनमें से एक मयूर विहार फेज वन मेट्रो स्टेशन भी है। अर्पण वस्त्र दान केंद्र योजना का एकमात्र मकसद दिल्ली में रहने वाले लोगों को उनके पुराने इस्तेमाल करने लायक कपड़े दान करने के लिए प्रेरित करना है।
11: आपके कपड़े अगर पुराने हो जाते हैं तो आप उनका क्या करते हैं? या तो आप उसे अपनी मेड को या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान कर देते हैं, लेकिन जो कपड़े आपके फट जाते हैं इस्तेमाल होते होते या खराब हो जाते हैं, उनका रंग उड़ जाता है, तो उनका आप क्या करते हैं? आप शायद उन कपड़ों को फिर कूड़े में डाल देते हैं और आपके डस्टबिन से होते हुए वही कपड़े फिर दिल्ली के लैंडफिल साइट तक पहुंचते हैं और कूड़े का एक नया पहाड़ तैयार हो जाता है जिसमें आपका योगदान जाने अनजाने बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार एक ऐसी ही समस्या का हल लेकर आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार फेज वन मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से नए नए कियोस्क शुरू किए गए हैं। इनका नाम है अर्पण। अब अर्पण में आप लोग आकर अगर आपके कपड़े पुराने हो गए हैं, उनका रंग उड़ गया है, फट गए हैं वो, तो यहाँ आकर आप उन कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं।
10: 10 मेट्रो स्टेशन में शामिल मयूर विहार फेज वन मेट्रो स्टेशन में भी अर्पण वस्त्र दान केंद्र नाम का एक कियोस्क यानी छोटा सा बूथ बनाया गया है, जहां इस्तेमाल नहीं आने वाले कपड़ों को दान करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। यहां डाक विभाग के एक पोस्ट बॉक्स की तरह एक निश्चित और सुरक्षित जगह बनाई गई है, जिससे कियोस्क के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने पुराने कपड़े डाल सकता है।
11: देखिए बहुत आसान सा काम है, आप अपने कपड़े लेकर यहां पर आइए। दिल्ली के ऐसे 10 मेट्रो स्टेशन पर यह व्यवस्था शुरू की जा रही है और यहाँ पर आप देखिए कि एक स्कैनर लगा हुआ है। इस स्कैनर को आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना है, एक फॉर्म खुल के आएगा, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, नाम डालना होगा और कितने किलो कपड़े आपने डोनेट किए वो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन भरनी होगी। कपड़े जो आप लेकर आएंगे उनका वेट आप यहाँ पर जो कियोस्क है वहीं पर वेट मशीन रखी हुई है और उसी के जरिए आप उसका वजन कर सकते हैं और वजन करने के बाद आप इन कपड़ों को यहीं पर दान कर सकते हैं।
10: खराब, बेरंग, फटे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करने की भी पूरी तैयारी है। उनसे बहुत सारी उपयोगी और सुंदर चीजें बनाई जा रही हैं। उनसे मैट यानी पायदान, टेबल रनर, रसोई के लिए पोछे, बच्चों के खिलौने में भरने की कर्तन, शॉपिंग बैग या पुराने कपड़ों की कर्तन भरकर बैठने के लिए फ्लोर गद्दे भी तैयार किए जा सकते हैं। बेकार कपड़ों को दोबारा शानदार बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना भी है।
11: दिल्ली सरकार क्या करेगी कि उसने ऐसे एनजीओ से, ऐसे एजेंसी से टाइप कर रखा है जो लोग वेस्ट कपड़ों से नए प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यानी कि या तो कपड़ों को रिसाइकल करते हैं या अपसाइकल करते हैं। अपसाइकल करने के बाद इस तरह के तमाम सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो आप देख रहे हैं, यानी अगर आप कोई ख़राब जीन्स देते हैं, कोई ख़राब आप अपना सूट देते हैं, तो उससे तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे, चाहे वो हैंड बैग हो, फिर चाहे वो बहुत सारे दूसरे कैरी बैग हो, या फिर छोटे छोटे पाउचेस हों, इन कपड़ों से इन चीज़ों को नए तरीके से बनाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपके खराब कपड़ों को लैंडफिल साइट तक पहुंचने से रोका जाएगा।
10: इन केंद्रों पर लोग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपने साफ और इस्तेमाल योग्य पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। महज 2 दिन में सिर्फ मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर बने अर्पण वस्त्र दान केंद्र में 100 किलो से ज्यादा कपड़े दान में मिल चुके हैं।
12: बहुत ही सुंदर ऐसे डिस्प्ले काउंटर आपने बनाए जहाँ पे इस कपड़ों से
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर

जहां महादेव निराले रूपों में विराजमान है। ऐसे अनोखे शिवधाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना और निर्माण जामवंत ने खुद अपने हाथों से करी थी। इस धाम में इतिहास महादेव के साथ साथ श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रायसेन

0: शिव मंदिर जहां मौजूद है तीन युगों का संगम।
1: भगवान जामवंत जी ने इस मंदिर का निर्माण किया।
0: वो धाम जहां आज भी है युगों पुरानी शिव गुफा।
2: वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है।
0: जहां स्वयं सूर्य देव करते हैं महादेव का अभिषेक।
3: भगवान सूर्य अपने आदिदेव भगवान शिव का पहली किरण के साथ श्रृंगार करते हैं और अभिषेक करते हैं।
0: जहां आज भी मौजूद हैं जामवंत के पैरों के निशान।
4: यहां से जामवंत जी ने निकले थे और आगे तक पैरों के निशान देखे जा रहे हैं।
0: जहां द्वापर युग में हुआ था जामवंत और श्री कृष्ण का महायुद्ध।
3: जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है।
0: वो नगर जो आज भी श्री कृष्ण को मानता है दामाद।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते।
0: मध्य प्रदेश का रायसेन जहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों के मस्तक पर स्थापित है महादेव का युगों पुराना धाम। महादेव का ये धाम शिव गुफा मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में जामवंत ने की थी, उन्हीं के नाम पर इस इलाके को जामगढ़ कहा जाता है।
1: प्रत्यक्ष रूप से भगवान जामवंत की गुफा जामगढ़ में मौजूद है। भगवान जामवंत द्वारा भोलेनाथ की स्थापना यहाँ की गई और यहाँ दिव्य रूप में अभी संत लोग निवास कर रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जामगढ़ पधारे, विद्यासागर जी संत जामगढ़ पधारे
5: जी,
1: वो हीरापुर वाले गुरु जी जामगढ़ पधारे, उनने अनुभव किया कि भैया इन गुफाओं में अभी संत दिव्य रूप में रहकर वायुपान कर गए और यहाँ तपस्यारत हैं। ये प्रमाण उन तीनों संतों ने इस जगह का दिया। ये किंवदंती नहीं, संतों का वचन।
0: ये गुफा विंध्याचल पर्वत माला पर लगभग 200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास एक कुंड है जिसमें साल भर जल रहता है। इस कुंड से टपकता जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करता है।
2: यहाँ पर एक स्थान और है जिसे हम ये शिव मंदिर जो है ये गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये जल है, ये 500 मीटर फिट के ऊंचाई के बावजूद वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे इसके अंदर जाएंगे और जाने के बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां इसके अंदर है। आज भी जो संत योगी महात्मा है इसके अंदर निवास करते, ऐसे लोगों की मानता है, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों ने यहाँ ऐसे चमत्कार देखे हैं कि प्रातःकाल यहाँ आरती होती है, ढोलक झनकारे और ज्वाला को भी देखा है। दूसरा यह एक स्थान है जहाँ एक एक बूंद करके पानी टपकता है और ये जो पानी टपकता है इसकी एक विशेषता है कि इस जल को जो भी व्यक्ति धारण करता है या पी लेता है उसे किसी भी प्रकार की असाध्य जो बीमारी होती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। ये 12 महीने ये जल यहाँ से टपकता रहता है।
0: इस इलाके में मान्यता है कि इस गुफा के अंदर आज भी कई साधु संत जब तप में लीन है। स्थानीय लोग कई बार गुफा से भजन कीर्तन की आवाजें आने का दावा भी करते हैं।
3: भगवान शिव का जो प्राचीन शिव गुफा के नाम से विख्यात है और भगवान आदि काल से यहाँ है, ऐसी किंवदंती है कि जामवंत जी ने भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। तो यो युगों प्राचीन शिव गुफा है और इस स्थान की एक विशेषता है कि जो विंध्याचल पर्वत हैं वो स्वयं यहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं और बुजुर्गों ने ऐसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में गांव से यहाँ से जामगढ़ लगा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की जो पूजा है वो सिद्ध महापुरुषों द्वारा सिद्धों द्वारा की जाती है।

0: पती रही है।
1: खास बात यह है कि महादेव की आस्था से सींची गई ये पावन भूमि श्री कृष्ण की ससुराल भी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी जगह श्री कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवंती से विवाह किया था।
0: जामगढ़ अपने आप में प्रमाण है, कभी इसका नाम जामगढ़ रहा है, इस गांव का नाम अपभ्रंश होते होते जामगढ़ हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के रूप में भी यह जामवंत जी की गुफा है पास में ही, तो ये विख्यात है। तो अपने आप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इस समय जो कलयुग चल रहा है, तो तीन युगों का यह स्थान है। और जामवंत जी चिरजीवी रहे हैं, आज भी जामवंत जी माना जाता है कि हैं, वो अमृत तो उन्हें प्राप्त रहा है।
1: जामवंती और श्री कृष्ण से जुड़े इसी संदर्भ के चलते जामगढ़ के लोग श्री कृष्ण को अपना दामाद मानते हैं।
0: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते, कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई जीजा कहता है, तो वो जामाता है जामगढ़ के भगवान श्री कृष्ण। तो कितना भव्य और अद्भुत रिश्ता है जामगढ़ का और भगवान श्री कृष्ण का।
1: बताया जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने जामवंत को ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय घटनाओं का चक्र उन्हें इस स्थान पर लेकर आएगा, तब कृष्ण रूप में वे जामवंत से युद्ध कर उन्हें परास्त करेंगे।
0: श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह उल्लेख मिलता है कि समंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जामवंत पधारे विंध्याचल पर्वत पर, और जामवंत जी से उनका 27-28 दिनों तक महायुद्ध हुआ। उस युद्ध में जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए, तो उन्हें भान हुआ कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि प्रभु आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया, मेरी इच्छा है कि मैं कभी परास्त हूँ। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा, तो तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। तो एक तरह से अपने भगवान द्वारा भक्त को जो वरदान दिया था, उसकी पूर्ति का भी यह स्थान है।
1: जामगढ़ के पास भगदेई गांव में जामवंत ने द्वापर युग में एक और शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि भक्त जामवंत ने एक रात में महादेव के इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर जिस पहाड़ी पर मौजूद है, वहाँ आज भी पुरानी चट्टानों पर पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। दावा किया जाता है कि ये जामवंत जी के पैरों के निशान हैं।
2: रायसेन जिले के विंध्याचल की पर्वत की एक तलहटी है, जहाँ पे बसा हुआ है रायसेन जिले के बरेली तहसील का जामगढ़ गांव। जामगढ़ भगदे, ये दोनों गांव विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में। वो अभी हमने आपको बताया था कि द्वापर युग के समय जामवंत जी ने जो मंदिर का निर्माण कराया था, वो निर्माण के बाद जो किंवदंती आई थी, वो किंवदंती के बाद ये स्थिति थी कि जामवंत जी जिस जगह कूदे थे, वहां पर पैरों के निशान है। तो आप देख सकते हैं ये पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर एक बीजक भी लिखा हुआ है, दाया पैर का निशान है, बाएं पैर का निशान है, फिर दाएं पैर का निशान है, फिर बाएं पैर का निशान। ये निशान हमें कहाँ तक मिलेंगे? लगभग 1 किलोमीटर तक मिलेंगे, जहाँ गुफा है जामवंत जी की, वहां तक मिलेंगे।
1: भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की विवाह गांठ से लेकर भक्त जामवंत की अगाध आस्था तक महादेव का ये धाम युगों युगों से सनातन धर्म की कई कहानियों को खुद में समेटे आज भी शान से खड़ा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब मध्य प्रदेश से सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आपको दर्शन करवाते हैं उस पावन शिवधाम के, जहां पर पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। महादेव का वो धाम जिसकी स्थापना की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है, और उन्हीं के नाम पर भोलेनाथ यहाँ परशुरामेश्वर कहलाते हैं।
1: बोल बम का का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कांवड़ यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी और कांवड़ यात्रा की इस कहानी की डोर जुड़ी है बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तब पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। फिर हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। परशुराम के नाम पर कभी परशुरामेश्वर धाम कहलाने वाला ये मंदिर कालांतर में पूरा महादेव धाम कहलाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। बता दें कि पूरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डगा सका। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
4: ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित, ये भगवान परशुराम जी द्वारा, जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है। औरंगजेब ने भी प्रयास किया, उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया चरणों से बंधवा के, पर लेकिन आज भी आप देखोगे बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने उस पर स्पोर्ट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पोर्ट है।
5: एक और कहा जा रहा है कि मंदिर जो शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है।
4: हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा।
1: मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। हर साल सावन में पूरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुँचते हैं। योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। भविष्य में मंदिर प्रांगण को काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की भी योजना है। यानी भविष्य में पूरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जितने अद्भुत हैं महादेव उतने ही अनोखे हैं उनके ये धाम। ऐसा ही एक धाम मौजूद है बुंदेलखंड में, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजार रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात कही जाती है, बताया जाता है कि ये वही मंदिर है जहां पर किसी दौर में झांसी की महारानी यानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने के लिए जाती थी।

0: महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिवधाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारियां महादेव। महादेव का वो अनुपम धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण इसे हजारी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग के नजदीक जाने पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते हैं। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है।
1: ये 1108 छोटे छोटे शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम हजारिया महादेव है। छोटे छोटे पूरे राउंड है उनके, वो 1108 शिवलिंग है छोटे छोटे।
2: 1000 शिवलिंग का मतलब यह है कि 1101 अगर इधर दर्शन करते हैं तो एक बार में पूर्ण होते हैं भोलेनाथ के दर्शन, साक्षात एक ही शिवलिंग में।
0: बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं।
3: यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती वो पूरी होती है और उसके सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है कि उसके उस उपलक्ष में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं।
0: हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गोसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि कभी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई यहां रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है।
2: जे माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती थी पानीवरी धर्मशाला पे, और जे गोसाइयों के समय का मंदिर है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाए एक बार में पूर्ण होती है।
4: ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी।
5: ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं।
0: इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।
4: बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, यहाँ पे बावड़ी है, कुआ है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर वोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भरा था, तब जाके पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा दो बार हो चुका है, जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब ये इसी प्रकार का इनको वो करते हैं।
0: एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हजार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने आते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे उस शिव धाम की जहां पर महादेव एक पवित्र गुफा में विराजते नहीं। ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिला देगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिवधाम को छोटे अमरनाथ भी कहते हैं।

0: आस्था की एक वो यात्रा और आस्था की एक यात्रा ये भी कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम। पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नलदेश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नलदेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं।
1: लगभग 360 डिग्री सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिव जी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
0: बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो वहीं पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक बिल्वपत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्वपत्र चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है।

0: महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़। यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: चलिए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले उस बेटी की जिसने भारत का नाम रोशन किया है, जिसने भारत को गोल्ड दिलवाया है जूडो में। हम बात कर रहे हैं अस्मिता दे की, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हाल ही में भारत को जूडो में गोल्ड दिलवाया है। और सबसे बड़ी और खास बात ये है कि हम आज आपको उनके उसी गुरुकुल लिए चलेंगे जहां से उन्होंने जूडो की ABCD सीखी है। तो बिना वक्त गवाए चलिए आपको लिए चलते हैं अस्मिता के उसी एकेडमी में।

0: जूडो की ये वो नर्सरी है जहां ये बच्चे इस खेल के दांव पेच और बारीकियां सीखकर देश के लिए मेडल जीतने का सपना देख रहे हैं। इन बच्चों में 23 साल की अस्मिता देव भी शामिल है, जिन्होंने हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का पहला गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ देश का मान बढ़ाया बल्कि कोच और माता पिता का नाम भी रोशन किया। मेडल जीतने के बाद अस्मिता जब अपनी एकेडमी पहुंची तो वहां देश का मान बढ़ाने वाली इस बेटी का जोरदार स्वागत हुआ।
1: इतिहास में नाम दर्ज करना हो तो अस्मिता दे की तरह मेहनत और फिर उसके बाद हिस्ट्री क्रिएट करना, द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन जूडो, दिस इज आवर हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड बाय इंडिया इन जूडो इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अस्मिता, टेक्निक सबकी सेम होती है
2: जी।
1: तो ऐसा क्या हुआ कि एक 23 साल की इंडिया की लड़की ने जीत हासिल करी? क्या वो मेंटल कॉन्फिडेंस था या कोई ट्रिक थी जिसमें आप सक्सेसफुल हुए?
2: जी मैम, वो मेंटल का वो था और माइंडसेट था मेरा कि मुझे मारना ही है, तो शायद उसी वजह से मैं जीती हूँ।
0: महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में अस्मिता ने कनाडा की हेडी क्वाच को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ अस्मिता कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं। ये उपलब्धि अस्मिता ने कैसे हासिल की, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए।
1: कब आपको लगा कि ये जीत तो मुझे मिलने वाली है, क्योंकि बीच में जो कनाडा के ओपोनेंट थे थोड़ा सा मुश्किल हो गया था।
2: जी मैम, वो उसने पहले मुझे स्कोर मार दी थी तो मेरे पास बस 2 मिनट बची थी, तो मुझे तब लगा 2 सेकंड के लिए ये लगा था शायद मैं हार जाऊंगी, बट फिर मेरे जो कोच है यशपाल सोलंके सर, उन्होंने बोला ये गोल्ड हमारा है, तू मारेगी तू ले जाएगी, तो तब मेरे को फिर और मैं थोड़ा मोटिवेट हो गई थी कि हाँ मैं मार सकती हूँ। उसके 40 सेकंड बाद, मतलब उसने स्कोर मारने के 40 सेकंड बाद मैंने फिर मार दी, फिर बराबर हो गए। हमारे जूडो में ऐसे होता है 4 मिनट तक अगर दोनों बराबर चलते तो फिर उसके बाद गोल्डन स्कोर हो जाते, गोल्डन स्कोर के बाद जो पहला स्कोर मारते वो विनर होते, तो मैंने फिर उसके बाद पहला स्कोर मारे और मैं विनर बनी।
1: क्या अपने आप को आपने बोला कि ये अपॉर्चुनिटी मैं जाने नहीं दे सकती?
2: जी मैम, क्योंकि ये हमारे देश के लिए और भारत के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे फैमिली के लिए, सबके लिए, मुझे मैंने सोचा कि नहीं ये गोल्ड मेडल मेरे लिए बहुत जरूरी है।
0: त्रिपुरा की रहने वाली अस्मिता डे पहले 800 मीटर दौड़ की एथलीट थी। जिला स्तरीय ट्रायल के दौरान उनकी रुचि जूडो में बढ़ी, जिसके बाद उन्होंने एथलेटिक्स छोड़कर जूडो को अपना खेल बना लिया और अस्मिता ने कोच यशपाल सोलंकी की देखरेख में कड़ी ट्रेनिंग ली, जिसका नतीजा उनके गले में चमक रहा ये गोल्ड मेडल है। अस्मिता बताती हैं कि उनके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अस्मिता के पिता कुछ महीने पहले ही ब्रेन स्ट्रोक के कारण चल बसे थे। यही वजह है कि मेडल जीतने के बाद अस्मिता पिता को याद कर भावुक हो गई थी।
2: जो मेरे पापा थे वो 2025 में चले गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर दिसंबर में पापा जाने के बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, पर उसके 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के ट्रायल था, जिसमें मेरा नेशनल में मैं फर्स्ट आई थी और मैं अभी दोनों में सिलेक्टेड हूँ।
1: पिताजी कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे थे?
2: जी मैम, बहुत ज्यादा थे कि, और मैं अगर पिताजी को बोलती थी ना ये चाहिए मुझे, मतलब प्रोटीन के लिए थोड़ा पैसे, मैं कम ही बोलती थी क्योंकि मुझे पता है, तो मेरे पिताजी फिर उसी टाइम बोलते थे कि तू चिंता मत कर हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं से करके मुझे कर ही देते थे।
1: कैसे करते थे वो पता नहीं,
2: वो मुझे नहीं बताते थे, शायद जानबूझ के बोलते थे तुझे चाहिए तो तू ले, मुझे ये सब मतलब बताते नहीं थे पिताजी। तो
1: क्या मैं, काम करते
2: मैम? बस वही साइकिल मैकेनिक थे, ज्यादा पैसे नहीं मिलता था, लॉकडाउन में तो इतना हालत खराब था कि मतलब बस दाल चावल खाती थी और मेरा वेट भी उस टाइम बहुत कम हो गया था, और मतलब खाने का कुछ होता नहीं था, और बस 100 रुपए मिलता था कभी कभी, तो उसी से थोड़ा बहुत घर चलता था।
0: कोच यशपाल सोलंकी बताते हैं कि अस्मिता ने कभी भी चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और तैयारी पर फोकस बनाए रखा, जिसकी वजह से आज हर कोई अस्मिता पर गर्व कर रहा है।
3: जो मैं इसके लिए कर सकता हूँ या विजय के लिए कर सकता हूँ, मैंने वही सोच के किया। जब इनके फादर की डेथ हुई तो मैंने इसको बोला था, अच्छा ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, और कमाल की बात यह है, सिर्फ 1.5 साल पहले हम डिस्कस कर रहे थे, किसी और बच्चे के फादर की डेथ हुई थी, तो हमने पूरा गीता डिस्कस किया था, ये गीता पढ़ती है, मैं भी पढ़ता हूँ, हमने डिस्कस किया कि बेटा जो पैदा भी नहीं है उसको भी जाना है, अब आपके फादर जा चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट, आपके फादर का सपना तो जिंदा है, ही इज वॉचिंग यू। तो जिस दिन उनकी 13वीं हुई थी, सेम डे ये वापस आई थी, और जो फर्स्ट फ्लाइट टिकट मिली हमें क्योंकि मुझे पता था इंडिया में दोस्तों से मिलेगी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी, इमीडिएटली इसको यूरोप भेज दिया था और इसने बहुत हिम्मत दिखाई मैम। शी वॉज द लाइटेस्ट एंड सबसे यंग लड़की थी मेरी अकेडमी में जब मैं 2018 में साई ज्वाइन किया था। इसके अंदर वो मैडम विल पावर थी और वो विल पावर हमेशा से मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी कि ये लड़की पीछे नहीं हटती है।
0: पदकवीर अस्मिता आज इस अकेडमी के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। जूडो के दावपेच सीख रहे बच्चे भी अस्मिता जैसा ही देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इन बच्चों के सपने साकार हो सके इसके लिए अस्मिता उन्हें ट्रेनिंग भी देती हैं।
1: आप लोग ने भी देखा अस्मिता दीदी को जीतते हुए, कैसा लगा? गोल्ड मेडल जीत के आई है वो,
4: बहुत अच्छा लगा। हाँ? जब वो जीती तो लगा था भारत को रिप्रेजेंट कर रहे, तो भारत पहली बार जूडो में जीता, बहुत अच्छा लगा।
0: अस्मिता डे की इस गोल्डन सफलता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडो के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की है।
1: इस गोल्ड मेडल से एक बात जरूर हुई, यहाँ पर कितने और यंग बच्चे बच्चियां हैं जो आए हैं यहाँ पर जूडो सीखने के लिए, सिर्फ हॉबी नहीं लेकिन कल को वो भी भारत का तिरंगा पोडियम पर लेकर खड़े हों। यही होता है जब एक मेडल विनर अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी प्रॉब्लम साइड रखकर वो मेडल और पोडियम पे पहुंचते हैं। और भारत के लिए असली जेंजी से प्रेरणा लेना यही तो है। सत्या रोत्रे के साथ पूजा शाली।
5: तो चलिए अच्छी और सच्ची खबरों में, महाकाल की नगरी उज्जैन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये महाकाल कॉरिडोर की तस्वीर और रौनक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, देखिए कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यकीन मानिए लगातार, क्योंकि हम कहते हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और गुड न्यूज टुडे पर आप तमाम उत्सव देखते भी हैं। और हरिद्वार की चाहे कांवड़ यात्रा हो या फिर देवघर की कांवड़ यात्रा हो या फिर हम यहाँ उज्जैन की ही बात कर ले जहाँ से नर्मदा नदी से जल भर कर लोग यहाँ पर आकर जलाभिषेक करते हैं, तो वो तस्वीरें भी आज पूरे रास्ते हमने वो तस्वीरें भी देखी है कांवड़ यात्रा की। तो देश के अलग अलग शिवालयों में हर सोमवार भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। तो किस तरीके का जोश और उत्साह, एक तस्वीर यहां से आपको नजर आ रही है और दूसरी तस्वीर के लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: सावन का महीना और सड़कों पर कावड़ियों का रेला उमड़ आया है। जहां देखो जिधर देखो इस वक्त रंग बिरंगी और अनोखी कावड़ ही नजर आ रही हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में तो इन दिनों कावड़ यात्रा को लेकर अलग ही आस्था और भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी गवाही मेरठ से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें अलग अलग आकार और थीम पर आधारित कावड़ लेकर ये शिव भक्त निकले हुए हैं। कोई लग्जरी कार की रेप्लिका पर कावड़ सजा कर निकला है, कोई सैन्य शक्ति को समर्पित कावड़ लेकर निकला है और कोई शिव के औघड़ दानी स्वरूप की कावड़ लेकर निकला हुआ है। यानी जिसको शिव के जिस स्वरूप में आस्था नजर आई वो उसे कावड़ में ढालकर निकल पड़ा आस्था के पथ परीक्षा देने के लिए।
1: बजरंगबली जी को हमने ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, गणपति बापा को साइड पे बैठाया हुआ है, और भी हमने महाकाल की नंबर प्लेट लगवाई हुई है नीचे, और भी जब रात को चलते तो भोले बाबा की जटाओं में से 20-25 फुट ऊपर गंगा जी विराजमान होती है।
2: अच्छा जी, तो कितने दिन में तैयार हुई बनकर?
1: हमारी 2-3 महीने के अंदर तैयार हुई।
2: तो खुद ही करिए या किसे करवाई?
1: खुद ही करवाई
2: अपने हाथों से।
1: जी
3: बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, जहाँ पे भी हम रुक रहे हैं भीड़ वहाँ से टूट नहीं रही है, उस देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
0: देवाधिदेव महादेव के कुछ ऐसे ही अनोखे और अलबेले भक्त सहारनपुर के कावड़ रूट पर भी देखने को मिले। यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसी कावड़ दिखी जिन्हें आर्टिफिशियल फूलों और लाइट से सजाया गया है। अलग अलग रंगों लाइटिंग और धार्मिक स्वरूपों से सजी ये कावड़ सहारनपुर की सड़कों पर गुजरते हुए अलग ही नजारा पेश कर रही है। लोग अपने मोबाइल से इन खूबसूरत कावड़ की वीडियो और फोटोज खींच रहे हैं। अनोखे कावड़ की तरह ही कुछ ऐसे अनोखे कावड़ यात्री भी हैं, जो अपनी कठिन कावड़ यात्रा के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इन्हीं में से एक है मंजीत दहिया, जो हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक करीब 200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रोजाना करीब 3500 सपाटे मारकर यात्रा कर रहे हैं। जीत बताते हैं कि वो ये कावड़ यात्रा किसी खास मनोकामना के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वो युवाओं को फिटनेस का संदेश देने के लिए कावड़ यात्रा पर निकले हैं।
4: 5 कदम भी 6 भी ऐसे चल के मैं एक अपना सपाटा लगाता हूँ।
5: कितने सपाटे आप लगाते हैं? वैसे बता रहे थे
4: पर डे के हो जाते हैं, 3000 क्रॉस हो जाते हैं पर डे के।
5: क्या है इसके पीछे?
4: इसके पीछे यही है भाई, मैं तो युवा के लिए संदेश दे रहा हूँ, भाई फिट रहो, अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं।
5: कहाँ से आप अब तक कितने दूर तक का सफर तय कर चुके हैं?
4: हरिद्वार से यहाँ तक देख लो अब कितना होगा, ये करीबन ये मान के चलो 65-70 के बीच में अभी मेरा गांव रह रहा है।
5: ये सपाटे वाला आइडिया कैसे आया?
4: ये बस मेरे को पिछले साल ही होगा था, मैं अगली बार लेके आऊंगा ऐसे ही लेके आऊंगा, युवा के लिए बढ़िया सोच।
0: शहर शहर निकाली जा रही कांवड़ यात्रा का एक रंग ये भी है कि कई लोग इन कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। कोई खाने पीने का लंगर लगाकर सेवा कर रहा है, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए सेवा में जुटा है। सेवा के इस काम में कोई भी पीछे नहीं है, क्या आम और क्या खास, हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही कांवड़ियों की सेवा में जुटा हुआ है। बागपत के दाहा गांव में एक ऐसा कांवड़ शिविर भी है जहां न चंदा लिया जाता है, न किसी से मदद मांगी जाती है और न ही सेवा के नाम पर कोई दिखावा होता है। यहां अगर कुछ है तो बस श्रद्धा, सेवा और परिवार का समर्पण। 31 साल तक वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले एक पूर्व फौजी राजकुमार राणा अब अपनी पेंशन से भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं।
6: पहले देश की सेवा करी, अभी मैं भोलों की सेवा करना चाहूँ और अपने पैसे से करता हूँ, ना किसी से कोई दान दक्षिणा किसी से लेता ना मांगता, और घर का ही यूज करता हूँ, आटा बेसन खुद का घर का बनाया करता हूँ, ना मुझे किसी से लोभ लालच है। मेरे दिल में आई भोलों की सेवा करनी, कि सबसे बड़ा जो दान है भूखे को खाना खिलाना है, जो बेचारे इतनी दूर से कावड़ लेकर आते हैं, उन्हीं के लिए मैं इनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँगा।
7: तंदूरी रोटी बनाते हैं, दो सब्जी बनाते हैं, कभी मटर पनीर आज ही खुद ही बनाते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं है,
8: क्यों आया ये मन में?
7: हाँ, ये मन में आज ही उनकी सेवा करे, पेंशन से ही खुली है, बोले एक साल की पेंशन से मैं दान करूँ।
0: सावन के इस महीने की एक अलग ही छटा इन दिनों बिखरी हुई है। शिवालयों से लेकर इन कांवड़ यात्राओं तक शिव भक्ति के कई रंग नजर आ रहे हैं, जो शिव के प्रति इनके अटूट समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, सहारनपुर से राहुल कुमार, बागपत से मनुदेव उपाध्याय और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: महाकाल की नगरी उज्जैन में, और इस वक्त महाकाल कॉरिडोर का 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखा देते हैं। एक तरफ है क्षिप्रा और एक तरफ हम कॉरिडोर के पास खड़े, और ठीक मेरे सामने है मंदिर, जहां से आप आवाज भी सुन रहे होंगे, भजन कीर्तन की आवाज लगातार यहां पर सुनाई दे रही है। और भव्य खूबसूरत नजारा जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन का, जहां पर कल खासतौर पर आप धर्म संसद में भी शामिल होंगे, जो कि गुड न्यूज टुडे लगातार आपको दिखाएगा। कुछ ही समय बाद उज्जैन में भी कुंभ लगने वाला, उसकी तैयारियां कैसी हैं, सरकार ने कितनी तैयारियां की, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में रौनक कितनी है इस वक्त महाकाल में, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए एक और खबर, अच्छी और सच्ची खबरों में आपको बताते हैं, वो है अर्पण केंद्र योजना। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना की शुरुआत की गई है जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। बेकार कपड़े जो हम फेंक देते हैं वही आप एक जगह दान कर पाएंगे। ऐसे 10 मेट्रो स्टेशन को चिन्हित किया गया है, जहां पर जाकर आप अपने कपड़े दे सकेंगे, ताकि आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके।
10: आमतौर पर इस्तेमाल के बाद इस तरह के पुराने या फेंके गए कपड़े कचरा गाड़ियों से होते हुए दिल्ली के कई लैंडफिल साइट्स तक पहुंच जाते हैं, और गाजीपुर, भलसवा या ओखला जैसे लैंडफिल साइट्स का ढेर कभी खत्म नहीं होता। हालांकि दशकों से दिल्ली में फटे पुराने कपड़ों के साथ होने वाले इस अंजाम को बदलने की तैयारी है। दिल्ली में आपके पुराने कपड़े अलमारी का बोझ या लैंडफिल साइट्स का हिस्सा न बने, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अर्पण केंद्र नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर पुराने कपड़े दान करने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इनमें से एक मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन भी है। अर्पण वस्त्र दान केंद्र योजना का एकमात्र मकसद दिल्ली में रहने वाले लोगों को उनके पुराने इस्तेमाल करने लायक कपड़े दान करने के लिए प्रेरित करना है।
11: आपके कपड़े अगर पुराने हो जाते हैं तो आप उनका क्या करते हैं? या तो आप उसे अपनी मेड को या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान कर देते हैं। लेकिन जो कपड़े आपके फट जाते हैं इस्तेमाल होते होते, या खराब हो जाते हैं, उनका रंग उड़ जाता है, तो उनका आप क्या करते हैं? आप शायद उन कपड़ों को फिर कूड़े में डाल देते हैं, और आपके डस्टबिन से होते हुए वही कपड़े फिर दिल्ली के लैंडफिल साइट तक पहुंचते हैं, और कूड़े का एक नया पहाड़ तैयार हो जाता है, जिसमें आपका योगदान जाने अनजाने बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार एक ऐसी ही समस्या का हल लेकर आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से नए नए कियोस्क शुरू किए गए हैं। इनका नाम है अर्पण। अब अर्पण में आप लोग आकर अगर आपके कपड़े पुराने हो गए हैं, उनका रंग उड़ गया है, फट गए हैं वो, तो यहाँ आकर आप उन कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं।
10: 10 मेट्रो स्टेशन में शामिल मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन में भी अर्पण वस्त्र दान केंद्र नाम का एक कियोस्क यानी छोटा सा बूथ बनाया गया है, जहां इस्तेमाल नहीं आने वाले कपड़ों को दान करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। यहां डाक विभाग के एक पोस्ट बॉक्स की तरह एक निश्चित और सुरक्षित जगह बनाई गई है, जिससे कियोस्क के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने पुराने कपड़े डाल सकता है।
11: देखिए बहुत आसान सा काम है, आप अपने कपड़े लेकर यहां पर आइए। दिल्ली के ऐसे 10 मेट्रो स्टेशन पर यह व्यवस्था शुरू की जा रही है, और यहाँ पर आप देखिए कि एक स्कैनर लगा हुआ है। इस स्कैनर को आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना है, एक फॉर्म खुल के आएगा, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, नाम डालना होगा, और कितने किलो कपड़े आपने डोनेट किए वो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन भरनी होगी। कपड़े जो आप लेकर आएंगे उनका वेट आप यहाँ पर जो कियोस्क है वहीं पर वेट मशीन रखी हुई है, और उसी के जरिए आप उसका वजन कर सकते हैं, और वजन करने के बाद आप इन कपड़ों को यहीं पर दान कर सकते हैं।
10: खराब, बेरंग, फटे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करने की भी पूरी तैयारी है। उनसे बहुत सारी उपयोगी और सुंदर चीजें बनाई जा रही हैं। उनसे मैट यानी पायदान, टेबल रनर, रसोई के लिए पोछे, बच्चों के खिलौने में भरने की कर्तन, शॉपिंग बैग या पुराने कपड़ों की कर्तन भरकर बैठने के लिए फ्लोर गद्दे भी तैयार किए जा सकते हैं। बेकार कपड़ों को दोबारा शानदार बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना भी है।
11: दिल्ली सरकार क्या करेगी कि उसने ऐसे एनजीओ से, ऐसे एजेंसी से टाइप कर रखा है जो लोग वेस्ट कपड़ों से नए प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यानी कि या तो कपड़ों को रिसाइकल करते हैं या अपसाइकल करते हैं। अपसाइकल करने के बाद इस तरह के तमाम सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो आप देख रहे हैं, यानी अगर आप कोई ख़राब जीन्स देते हैं, कोई ख़राब आप अपना सूट देते हैं, तो उससे तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे, चाहे वो हैंड बैग हो, फिर चाहे वो बहुत सारे दूसरे कैरी बैग हो या फिर छोटे छोटे पाउचेस हों। इन कपड़ों से इन चीज़ों को नए तरीके से बनाया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर आपके खराब कपड़ों को लैंडफिल साइट तक पहुंचने से रोका जाएगा।
10: इन केंद्रों पर लोग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपने साफ और इस्तेमाल योग्य पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। महज 2 दिन में सिर्फ मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर बने अर्पण वस्त्र दान केंद्र में 100 किलो से ज्यादा कपड़े दान में मिल चुके हैं।
8: बहुत ही सुंदर ऐसे डिस्प्ले काउंटर आपने बनाए, जहाँ पे इस कपड़ों से रिसाइकिल होकर के और जो अपसाइकिल होकर के सामान बना है उसको भी आपने विंडो डिस्प्ले किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वहां खड़ी है, देने वाला व्यक्ति तोल के भाव से कपड़े देके जाएगा, एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा डोनेशन का, उसके पास रहेगा कि आपने इतने कपड़े डोनेट किए।
10: एक छोटा सा दान किसी के तन पर कपड़े नहीं होने की समस्या को दूर कर सकता है। इसके अलावा ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी पैदा करेगी।
12: लोग आते हैं यहाँ पे कपड़े डोनेट करने के लिए, तो सबसे पहले हम उनके कपड़ों को तोलते हैं और जितना भी कपड़ा होता है उनका एक स्कैनर लगा हुआ है यहाँ पे, उसको वो QR लगा हुआ है उसको स्कैन करते हैं। जैसे वो स्कैन करते हैं, एक फॉर्म होता है उनके फॉर्म में जो आता है, उसमें उनको कुछ अपना नाम डालना होता है प्लस फोन नंबर और जितने भी कपड़े डोनेट किए हैं वो कपड़ों की क्वांटिटी डालनी होती है। तो उसके बाद में जैसे ओके करेंगे वो डोनेशन पे, तो हमारे पास एक लिंक है उसमें सारा डेटा आ जाता है उनका, और वहाँ से हम ओके कर देंगे, उसके बाद में उनको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो अर्पण वस्त्र केंद्र के नाम से होगा, और वो इन फ्यूचर उनको, अभी तो नहीं, इन फ्यूचर उनको उसमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट पोर्टल पे अगर वो कहीं कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ डिस्काउंट मिल सकता है। ये सोच लो कल तक 72.5 kg थे,
11: 72 किलो आ चुके हैं,
12: 72 किलो आ चुके हैं कल तक, फिर कल और आए थे 25 किलो, फिर अभी 25 किलो और आ चुके हैं।
11: 1 टन से ऊपर हो चुका है लक्ष्य आपके पास,
12: इतना हो गया है सर।
10: तो नेक काम में देरी क्यों? ऐसे में अगर आपकी अलमारी में भी ऐसे कपड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करती, तो आप उन्हें फेंकने की बजाय अर्पण केंद्र तक पहुंचाइए, ताकि कपड़ों के इस्तेमाल में होने वाले कृत्रिम रेशे और रंग को, मिट्टी और भूजल को दूषित करने से रोका जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: देखिए सावन का महीना है, और सावन के महीने की अगर असली रौनक आपको देखनी है कहीं, तो आइए यहाँ पर महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहाँ पर खूबसूरत मौसम के साथ साथ भक्ति का एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिल रहा है महाकाल कॉरिडोर से। जैसा हम आपको बता ही रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें और साथ ही साथ अच्छी और सच्ची खबरें भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। चलिए अब दिल्ली सरकार की उस पॉलिसी की बात करते हैं जिसकी वो शुरू दिल्ली सरकार ने किया, लेकिन अब उसका एक तस्वीर हम कह सकते हैं कि नजर आने लगी, और ये है सरकार की ईवी पॉलिसी। लोगों को भरोसा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब तेजी से लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। नतीजा यह है कि ईवी की बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2026 में दिल्ली में 10,307 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो कि अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है, और सबसे ज्यादा रफ्तार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की दिखाई दे रही है, जबकि कमर्शियल ईवी की मांग की लगातार बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक गुड्स थ्री व्हीलर और इलेक्ट्रिक मोटर कैब दोनों की बिक्री में लगातार इजाफा हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो ईवी पॉलिसी लाई थी उसका असर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लोगों में भी अब ईवी व्हीकल को लेकर दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
14: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
15: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
2: सावन का महीना है, शिवजी का महीना है, ऐसे में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है। इन तस्वीरों में भी नहर के किनारे ये तमाम बच्चे मिलकर यहाँ रेत से बने हुए कई शिवलिंग की आराधना में जुटे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मौज मस्ती के साथ बच्चों की पूजा का ये तरीका सोशल मीडिया पर सबको लुभा रहा है। बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के खतरों के बारे में बताता ये वीडियो अब हर कोई देख रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक नाट्य के जरिए इन खतरों को बताया जा रहा है। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ा मोबाइल और उस पर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे छोटे बच्चों को मकर जाल में फंसा लेते हैं और बच्चा फिर वास्तविकता से दूर होकर अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर उसे इन प्लेटफॉर्म से काट दिया जाए तो उसे उसकी वास्तविकता से परिचय कराया जा सकता है। ये वीडियो वायरल है और अब स्कूलों में भी दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे इसके खतरों को समझ सकें। स्टेज पर सामूहिक डांस शो के बीच एक बच्ची स्टेज पर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कोई मूवमेंट नहीं करती। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बाकी बच्चियां तो डांस कर रही हैं, लेकिन ये बच्ची पहले तो खड़ी रहती है, फिर ऐसा इशारा करती है मानो उसे भूख लगी है और वो शायद दर्शकों के बीच बैठे अपने पेरेंट्स से कह रही है कि खाना खिला देते तो डांस ठीक से हो जाता। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्ची के हाव भाव देख कर उससे सहानुभूति रख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे ये अंकल जेंजी के सामने भी जबरदस्त एनर्जेटिक साबित हुए हैं। एक बच्ची ने उनको कुछ करतब दिखाए और फिर उनको आमंत्रित किया। फिर क्या था, अंकल ने साबित कर दिया कि उनकी उम्र बस एक नंबर है। उन्होंने जो एनर्जी दिखाई, तमाम जेंजी बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये वायरल तस्वीरें भावुक कर रही हैं। ये पुलिस वाला पुलिस अफसर बनने के बाद जब घर गया तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है। दोनों की मुलाकात सबके दिल को छू रही है क्योंकि उस दोस्त को न सिर्फ ये अफसर गले लगाता है बल्कि खर्च के लिए पैसे भी देता है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस अफसर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
3: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़। यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। सावन का महीना चल रहा है, आसमान से आस्था के बादल बरस रहे हैं और धरती पर शिव भक्ति की लहरें हिलोरें भर रही हैं। इस माहौल में आज गुड न्यूज टुडे स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश भर में मौजूद महादेव के उन अद्भुत और अनोखे मंदिरों में जहां महादेव निराले रूपों में विराजमान है। ऐसे अनोखे शिवधाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना और निर्माण जामवंत ने खुद अपने हाथों से करी थी। इस धाम में इतिहास महादेव के साथ साथ श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रायसेन में मौजूद यही वो स्थान है जहां पर शिव भक्त जामवंत की बेटी जामवंती से श्री कृष्ण ने विवाह किया था।

0: शिव मंदिर जहां मौजूद है तीन युगों का संगम।
1: भगवान जामवंत जी ने इस मंदिर का निर्माण किया।
0: वो धाम जहां आज भी है युगों पुरानी शिव गुफा।
2: वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है।
0: जहां स्वयं सूर्य देव करते हैं महादेव का अभिषेक।
3: भगवान सूर्य अपने आदिदेव भगवान शिव का पहली किरण के साथ श्रृंगार करते हैं और अभिषेक करते हैं।
0: जहां आज भी मौजूद हैं जामवंत के पैरों के निशान।
4: यहां से जामवंत जी ने निकले थे और आगे तक पैरों के निशान देखे जा रहे हैं।
0: जहां द्वापर युग में हुआ था जामवंत और श्री कृष्ण का महायुद्ध।
3: जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है।
0: वो नगर जो आज भी श्री कृष्ण को मानता है दामाद।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते।
0: मध्य प्रदेश का रायसेन जहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों के मस्तक पर स्थापित है महादेव का युगों पुराना धाम। महादेव का ये धाम शिव गुफा मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में जामवंत ने की थी, उन्हीं के नाम पर इस इलाके को जामगढ़ कहा जाता है।
1: प्रत्यक्ष रूप से भगवान जामवंत की गुफा जामगढ़ में मौजूद है। भगवान जामवंत द्वारा भोलेनाथ की स्थापना यहाँ की गई और यहाँ दिव्य रूप में अभी संत लोग निवास कर रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जामगढ़ पधारे, विद्यासागर जी संत जामगढ़ पधारे
5: जी,
1: हीरापुर वाले गुरु जी जामगढ़ पधारे। उनने अनुभव किया कि भैया इन गुफाओं में अभी संत दिव्य रूप में रह के वायुपान करके और यहाँ तपस्यारत हैं। ये प्रमाण उन तीनों संतों ने इस जगह का दिया। ये किंवदंती नहीं, संतों का वचन।
0: ये गुफा विंध्याचल पर्वतमाला पर लगभग 200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास एक कुंड है जिसमें साल भर जल रहता है। इस कुंड से टपकता जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करता है।
2: यहाँ पर एक स्थान और है जिसे हम ये शिव मंदिर जो है ये गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये जल है, ये 500 मीटर ऊंच फिट के ऊंचाई के बावजूद वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे इसके अंदर जाएंगे और जाने के बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां इसके अंदर है। आज भी जो संत योगी महात्मा है इसके अंदर निवास करते, ऐसे लोगों की मानता है, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों ने यहाँ ऐसे चमत्कार देखे हैं कि प्रातः काल यहाँ आरती होती है, ढोलक झनकारे और ज्वाला को भी देखा। दूसरा यहाँ एक स्थान है जहाँ एक, एक एक बूंद करके पानी टपकता है और ये जो पानी टपकता है इसकी एक विशेषता है कि इस जल को जो व्यक्ति धारण करता है या पी लेता है उसे किसी भी प्रकार की असाध्य जो बीमारी होती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। ये 12 महीने ये जल यहाँ से टपकता रहता है।
0: इस इलाके में मान्यता है कि इस गुफा के अंदर आज भी कई साधु संत जब तप में लीन है। स्थानीय लोग कई बार गुफा से भजन कीर्तन की आवाजें आने का दावा भी करते हैं।
3: भगवान शिव का जो प्राचीन शिव गुफा के नाम से विख्यात है वो भगवान आदि काल से यहाँ है, ऐसी किंवदंती है कि जामवंत जी ने भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। तो यो युगों प्राचीन शिव गुफा है और इस स्थान की एक विशेषता है कि जो विंध्याचल पर्वत हैं वो स्वयं यहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं। और बुजुर्गों ने ऐसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में गांव से यहाँ से जामगढ़ लगा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की जो पूजा है वो सिद्ध महापुरुषों द्वारा सिद्धों द्वारा की जाती रही है।
0: खास बात यह है कि महादेव की आस्था से सींची गई ये पावन भूमि श्री कृष्ण की ससुराल भी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी जगह श्री कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवंती से विवाह किया था।
3: जामगढ़ अपने आप में प्रमाण है, कभी इसका नाम जामगढ़ रहा है, इस गांव का नाम।

0: अपभ्रंश होते होते जामगढ़ हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के रूप में भी यह जामवंत जी की गुफा है पास में ही, तो ये विख्यात है। तो अपने आप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इस समय जो कलयुग चल रहा है, तो तीन युगों का यह स्थान है। और जामवंत जी चिरजीवी रहे हैं, आज भी जामवंत जी माना जाता है कि हैं, वो अमृत तो उन्हें प्राप्त रहा है।
1: जामवंती और श्री कृष्ण से जुड़े इसी संदर्भ के चलते जामगढ़ के लोग श्री कृष्ण को अपना दामाद मानते हैं।
0: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते, कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई जीजा कहता है, तो वो जामाता है जामगढ़ के भगवान श्री कृष्ण। तो कितना भव्य और अद्भुत रिश्ता है जामगढ़ का और भगवान श्री कृष्ण का।
1: बताया जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने जामवंत को ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय घटनाओं का चक्र उन्हें इस स्थान पर लेकर आएगा, तब कृष्ण रूप में वे जामवंत से युद्ध कर उन्हें परास्त करेंगे।
0: श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह उल्लेख मिलता है कि स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जामवंत पधारे विंध्याचल पर्वत पर, और जामवंत जी से उनका 27-28 दिनों तक महायुद्ध हुआ। उस युद्ध में जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए, तो उन्हें भान हुआ कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि प्रभु आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया, मेरी इच्छा है कि मैं कभी परास्त हूँ। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा, तो तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। तो एक तरह से अपने भगवान द्वारा भक्त को जो वरदान दिया था, उसकी पूर्ति का भी ये स्थान है।
1: जामगढ़ के पास भगदेई गांव में जामवंत ने द्वापर युग में एक और शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि भक्त जामवंत ने एक रात में महादेव के इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर जिस पहाड़ी पर मौजूद है, वहाँ आज भी पुरानी चट्टानों पर पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। दावा किया जाता है कि ये जामवंत जी के पैरों के निशान हैं।
2: रायसेन जिले के विंध्याचल की पर्वत की एक तलहटी है, जहाँ पे बसा हुआ है रायसेन जिले के बरेली तहसील का जामगढ़ गांव। जामगढ़ भगदे, ये दोनों गांव विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में। वो अभी हमने आपको बताया था कि द्वापर युग के समय जामवंत जी ने जो मंदिर का निर्माण कराया था, वो निर्माण के बाद जो किंवदंती आई थी, वो किंवदंती के बाद ये स्थिति थी कि जामवंत जी जिस जगह कूदे थे, वहां पर पैरों के निशान है। तो आप देख सकते हैं ये पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर एक बीजक भी लिखा हुआ है, दायां पैर का निशान है, बाएं पैर का निशान है, फिर दाएं पैर का निशान है, फिर बाएं पैर का निशान। ये निशान हमें कहाँ तक मिलेंगे? लगभग 1 किलोमीटर तक मिलेंगे, जहाँ गुफा है जामवंत जी की, वहां तक मिलेंगे।
1: भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की विवाह गांठ से लेकर भक्त जामवंत की अगाध आस्था तक महादेव का ये धाम युगों युगों से सनातन धर्म की कई कहानियों को खुद में समेटे आज भी शान से खड़ा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब मध्य प्रदेश से सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आपको दर्शन करवाते हैं उस पावन शिव धाम के, जहां पर पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। महादेव का वो धाम जिसकी स्थापना की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है, और उन्हीं के नाम पर भोलेनाथ यहाँ परशुरामेश्वर कहलाते हैं।
1: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है, तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है। लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी और कांवड़ यात्रा की इस कहानी की डोर जुड़ी है बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, फिर हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। परशुराम के नाम पर कभी परशुरामेश्वर धाम कहलाने वाला ये मंदिर कालांतर में पूरा महादेव धाम कहलाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। बता दें कि पूरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिव धाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डगा सका। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
4: ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित, ये भगवान परशुराम जी द्वारा, जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है।
5: दो चीजें हैं, तो कहा गया है औरंगजेब ने भी फाड़ने की कोशिश।
4: हाँ हाँ, औरंगजेब ने भी प्रयास किया, उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया चरणों से बंधवा के, पर लेकिन आज भी आप देखोगे बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने उस पर स्पॉट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पॉट है।
5: एक और कहा जा रहा है कि मंदिर जो शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है।
4: हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा।
1: मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। हर साल सावन में पूरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। भविष्य में मंदिर प्रांगण को काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की भी योजना है, यानी भविष्य में पूरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जितने अद्भुत हैं महादेव उतने ही अनोखे हैं उनके ये धाम। ऐसा ही एक धाम मौजूद है बुंदेलखंड में, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजार रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात कही जाती है, बताया जाता है कि ये वही मंदिर है जहां पर किसी दौर में झांसी की महारानी यानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने के लिए जाती थीं।

0: महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिव धाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारियां महादेव। महादेव का वो अनुपम धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण इसे हजारी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग के नजदीक जाने पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते हैं। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है।
1: ये 1108 छोटे छोटे शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम हजारिया महादेव है। छोटे छोटे पूरे राउंड है उनके, वो 1108 शिवलिंग है छोटे छोटे।
2: 1000 शिवलिंग का मतलब यह है कि 1101 अगर इधर दर्शन करते हैं तो एक बार में पूर्ण होते हैं भोलेनाथ के दर्शन, साक्षात एक ही शिवलिंग में।
0: बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं।
3: यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती वो पूरी होती है और उसके सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है कि उसके उस उपलक्ष में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं।
0: हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गोसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि कभी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई यहां रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है।
2: जे माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती थी पानीवरी धर्मशाला पे, और जे गोसाइयों के समय का मंदिर है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाए एक बार में पूर्ण होती है।
4: ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी।
5: ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं।
0: इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।
4: बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, ये यहाँ पे बावड़ी है, कुआ है, तो बाल्टियों से भरा था। उस टाइम मोटर वोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भरा था, तब जाके पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा दो बार हो चुका है, जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब इसी प्रकार का इनको वो करते हैं।
0: एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हजार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने आते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे उस शिव धाम की जहां पर महादेव एक पवित्र गुफा में बिराजते नहीं, ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिला देगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटे अमरनाथ भी कहते हैं।

0: आस्था की एक वो यात्रा और आस्था की एक यात्रा ये भी कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम, पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नलदेश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नलदेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं।
1: लगभग 360 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिव जी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
0: बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, तो वहीं पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे जहां पर एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्व पत्र चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है।

0: महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़ यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पनीर की, लेकिन उस पनीर की नहीं जो स्वाद का राजा और प्रोटीन का जरिया है। आज हम बात करेंगे एनालॉग पनीर की, जो दिखता तो पनीर की तरह है लेकिन इसे दूध से नहीं बल्कि वनस्पति तेल और स्टार्च की मशीनों से बनाया जाता है। सस्ता होने की वजह से बाजार में अब इसकी भरमार देखने को मिल रही है, लेकिन सेहत पर इसके खराब असर देखते हुए सरकारें अब सावधान हो गई हैं। इसलिए पहले महाराष्ट्र और अब गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है, यहां तक कि बनाने और बेचने पर जुर्माने और जेल तक का प्रावधान है। आज आपको बताएंगे कि एनालॉग पनीर क्या होता है और इसे बनाते कैसे हैं, साथ ही साथ सेहत पर पड़ने वाले इसके खतरनाक असर को भी हम समझाएंगे। इस सफेद धोखे से बचने के उपाय पर भी बात होगी और साथ ही साथ असली पनीर की पहचान का आसान तरीका भी आज हम आपको समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोटीन के नाम पर परोसे जा रहे सफेद झूठ से। दिखने में बिल्कुल असली लेकिन असल में दूध से नहीं बल्कि वनस्पति तेल और स्टार्च से मशीनों में ये बनाया जाता है एनालॉग पनीर। इसमें पनीर वाली कोई बात नहीं होती, पर ग्राहकों को असली बताकर ही इसको बेचा जाता है। सच्चाई ये है कि इस एनालॉग पनीर में ना तो स्वाद है और ना ये सेहत के लिए ठीक है, इसलिए सरकारों ने इसके लिए सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। पहले महाराष्ट्र और अब गुजरात में इस पर बैन लगा दिया गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि एनालॉग पनीर होता क्या है और इसके खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

0: आँखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है। गीत पुराना है पर ये फरेब नया नया है, एकदम ताजा और इस हद तक सफेद कि आँखें धोखा खा जाएं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो दूध से बना हुआ दिखे वो असली पनीर हो। यही तो खेल है कि पनीर जो बर्गर पिज्जा के इस दौर में हेल्दी खाने की मिसाल है, उस पनीर को भी बाजार ने प्योर न रहने दिया बल्कि एनालॉग बना दिया। जो दिखता तो डेयरी प्रोडक्ट है लेकिन इसमें पॉम ऑयल और केमिकल है। पनीर दूध को फाड़ कर बनाया जाता है लेकिन एनालॉग पनीर पॉम ऑयल यानी वनस्पति तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टार्च, इमल्सिफायर और कृत्रिम फ्लेवर को आपस में मिलाकर एक मशीनी प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। पर खूबी ये कि इस केमिकल वाले पनीर को देखकर इसके नकली होने का खेल समझ नहीं आता। सस्ता होता है इसलिए बड़े पैमाने पर होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है और डेयरी की दुकान पर बेचा जाता है। लेकिन देर से ही सही पर अब इस सफेद धोखे पर लगाम लगाया जा रहा है। यूं कहें कि नकली पनीर पर प्रहार की तैयारी है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने पहले की और अब गुजरात सरकार ने भी एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया है। पनीर के अलावा एनालॉग चीज और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है और सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी पार्लर और व्यापारियों को सिर्फ मानकों के अनुरूप असली डेयरी उत्पाद बेचने के निर्देश दिए हैं।
1: गुजरात सरकार ने आज से एनालॉग पनीर, चीज और बटर पे जो है बैन लगा दिया है। हमारे साथ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं।
2: एनालॉग पनीर, चीज और बटर में काफी भेलसेल होती है। एनालॉग बनाने का जो फ्रेमिंग है उसमें भी वो नियम का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए गुजरात सरकार हेल्थ विभाग ने आज से पनीर प्रोडक्शन पर, सेलिंग पर और परिवहन पर एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर हमने पूर्ण बैन लगा दिया है और आज से कोई बेच भी नहीं सकेगा, प्रोडक्शन भी नहीं कर सकेगा और परिवहन भी नहीं कर सकेगा।
1: हमने देखा है कि जब भी कोई चीज़ पर बैन लगता है तो उसका प्रोडक्शन या फिर उसकी बिक्री, इलीगल बिक्री, अवैध बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। वो ना हो उसके लिए जो है आपका विभाग क्या ध्यान रखेगा, FDCA किस तरह से जो है वो काम करेगा और उस पर रोक कैसे लगेगी?
2: हमने करीब 4 महीना से आज तक कई उत्पादकों पर हमने बैन लगवाया है, उसको सील कर दिया है और बेचने की परमिशन भी हमने कैंसिल कर दी है। जो जिसके पास लाइसेंस था वो भी कैंसिल कर दिया। इसलिए आज से हमारी पूरी टीम एक लक्ष्य के साथ चलेगी कि एनालॉग पनीर, चीज और बटर कहीं भी बेच भी नहीं सकते हैं और प्रोडक्शन भी नहीं।
0: शाकाहारी लोगों के लिए पनीर प्रोटीन का एक बड़ा जरिया है और जायके के हिसाब से भी मुंह लगा है, इसलिए कुछ और हो या ना हो पनीर तो प्योर होना ही चाहिए। इसलिए जब सरकार को केमिकल वाले पनीर की शिकायतें मिली तो एक्शन तुरंत शुरू हो गया। ये तस्वीरें जामनगर की हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और कई जगहों पर एनालॉग पनीर और चीज मिले, भरपूर मिले। इस एक्शन के बाद कारोबारियों को मैसेज मिल गया। इसी तरह राजकोट में भी एक फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारा और बड़ी संख्या में एनालॉग पनीर और चीज बरामद की गई और आइंदा ऐसा पनीर बेचने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन के बाद प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि केमिकल वाला पनीर ना तो बनाया जाए और ना ही बेचा जाए। अंदाजा लगाइए कि इस अकेले फैक्ट्री से रोज 30 किलो एनालॉग पनीर अलग अलग रेस्टोरेंट में सप्लाई की जाती थी।
3: जैसे सरकार ने अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि एनालॉग पर प्रतिबंध है, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सेल एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन करना वो बंद हो गया है, यानी कि नोटिफिकेशन में ये सब अभी ये डेयरी कॉन्टेक्स एनालॉग है वो प्रतिबंधित है। तो आज हम लोग लाती प्लॉट में ये फॉर्च्यून पनीर करके जो फार्म है उस पर, वहाँ पे हम लोग आए थे तो हम लोगों ने वहाँ पे पाया कि यहाँ पे एनालॉग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे एनालॉग बिक भी रहा है। सुबह सुबह ये लोग अभी खोल नहीं रहे थे, आधा घंटा मशक्कत करने के बाद ये अभी फार्म उसने खोली है, तो यहाँ फ्रीज में पाया गया है कि ऑन एन एवरेज 20-25 ऑन एन एवरेज 25-30 किलो यहाँ पे एनालॉग पनीर पाया गया है।
4: ठीक, क्या पूरा मामला है, आप यहाँ पे आए हैं?
5: ये जो फैक्ट्री है वो पहले से ही लाइसेंस उसके पास है और वो मैन्युफैक्चर फर्म है और डेयरी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर फर्म है, तो वहाँ पे वो अपनी ब्रांड में प्यूरिका करके ब्रांड के पनीर बना रहे थे। लास्ट टाइम जो लास्ट मंथ हमने जो उस पर यहाँ पे रेड किया था तब हमने पेटी को सील मार दिया था और वहाँ से सैंपलिंग भी पनीर का हुआ है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि इस नकली पनीर का नेटवर्क काफी बड़ा है जिस पर लगाम लगाना जरूरी है। महाराष्ट्र में FDA यानी खाद्य और औषधि प्रशासन का साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या कारोबारी एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है तो इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करना और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत अनुचित व्यापारिक गतिविधि माना जाएगा। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर एनालॉग पनीर के सेवन से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जब फूड सेफ्टी विभाग ने पनीर के सैंपल की जाँच की तो 35% से ज्यादा सैंपल कई तरह के टेस्ट में फेल पाए गए। इसके बाद सख्त कदम उठाना ही था। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है, जहां सस्ता एनालॉग पनीर बाजार में अपनी जगह बना चुका है। भोपाल के कई इलाकों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। हालांकि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन नहीं है, लेकिन इसे असली पनीर बताकर बेचना गलत है या कहें कि ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन है।
6: शीघ्र ही हम इसमें प्रभावी एक्शन पूरी स्टेट लेवल पर करने वाले हैं।
7: सर, क्या क्या नुकसानदायक है?
6: नुकसानदायक तो कोई भी नहीं है। एनालॉग चीज जो है वो वेजिटेबल फैट और अन्य फैटों से मिलकर बना होता है, उसमें दूध की कुछ मात्रा रहती है और जो पनीर होती है वो टोटल जो दूध का सॉलिड होता है और मिल्क फैट उससे बनता है, लेकिन दोनों की जानकारी आम जनता तक होना आवश्यक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग भाव है, उसी के आधार पर बाजार में बिकना चाहिए लेवलिंग के साथ।
0: नाश्ते में पनीर पराठे से लेकर लंच और डिनर में शाही पनीर या मटर पनीर तक भारत में इस डेयरी प्रोडक्ट के चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं। शादी विवाह और पार्टियों में भी इसकी जबरदस्त खपत है। अंदाजा है कि भारत में रोजाना लगभग 5 से 6 लाख किलोग्राम यानी 500 से 600 टन पनीर की खपत होती है। डिमांड ज्यादा है, इसलिए इस केमिकल वाले पनीर को खपाने की आशंका है।
8: तो बहुत तो अपन एक आए दूध गरम करो, गरम करने के बाद में उबाल ले के बाद में उसको फाड़ देते हैं।
7: क्या रेट बिक रहा है
8: वो? अभी बिक रहा है 320 रुपए के जी।
9: पहचान वाली दुकान से पनीर लेता हूँ और बाकी अन्य जगह से अगर पनीर लेते हैं अपन तो बहुत मिलावट वाला मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ज्यादा से ज्यादा तो डुप्लीकेट चीजें मिल रही है। कई नामी ग्रामी दुकान है उनपे जो थोड़ा ढंग का माल मिलता है, बाकी अपने वो नाम चला रहा है इसलिए, ये तो बाकी तो क्वालिटी बिल्कुल रद्दी मिल रही है। सारी डेयरी देख लो जो नई नई डेयरी खुली है उन डेयरियों पे बिल्कुल रद्दी माल मिलेगा और जैसे ये 320 रुपए किलो बेच रहा है वो माल थोड़ा अच्छा है। बाकी क्या है कि 200 में दे देते हैं, 250 में दे देते हैं, वो पनीर अपने को शादी ब्याह में इनमें उनमें ले जाते, बच्चे उनको सबको अपने को नुकसान होता है उससे।
0: मसला सिर्फ स्वाद भर का नहीं है, असली पनीर की जगह एनालॉग पनीर सेहत के लिए ठीक नहीं और इसलिए धोखे से इसे बेचना भी ठीक नहीं। सरकारों ने अब इसके खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। जरूरत है कि हम और आप यानी उपभोक्ता भी एनालॉग पनीर को लेकर जागरूक रहें। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी, मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और भोपाल से धर्मेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: देखिए देश में पनीर की डिमांड ज्यादा है और कीमत भी, ऐसे में वनस्पति तेल और स्टार्च से तैयार होने वाला एनालॉग पनीर एक सस्ता विकल्प बन जाता है जिसका बड़ी तादाद में होटल और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह सस्ता पनीर ग्राहकों की सेहत के लिए महंगा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स की राय यह है कि इससे न सिर्फ दिल की समस्या हो सकती है बल्कि ऐसे मिलावटी पनीर से कैंसर की भी आशंका बढ़ जाती है और ऐसा पनीर खाने से कोई फायदा नहीं जिसमें प्रोटीन नदारद है। चलिए आपको बताते हैं कि एनालॉग पनीर का सेहत पर क्या असर हो सकता है। इसके साथ ये जरूरी है कि आप असली और एनालॉग पनीर का फर्क पहचान सकें ताकि धोखा ना खाए। रिपोर्ट देखिए।
11: थाली में परोसा गया यह सफेद टुकड़ा पनीर हो यह जरूरी नहीं। बाजार में एक ऐसा उत्पाद भी मौजूद है जो दिखने में लगभग असली जैसा लगता है लेकिन इसे बनाने का तरीका पूरी तरह से अलग है। कहने को ये भी पनीर है पर इसे एनालॉग पनीर कहा जाता है। बात सिर्फ ये नहीं कि एनालॉग पनीर में प्रोटीन नहीं, चिंता इस बात को लेकर है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं क्योंकि असली पनीर में कैल्शियम, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन एनालॉग पनीर में दूध वाले पोषक तत्व अव्वल नहीं होते या बेहद कम होते हैं। कुछ एनालॉग पनीर में वनस्पति तेल या दूसरे फैट का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कैलोरी बढ़ सकती है और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर इसमें खराब क्वालिटी के तेल या अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल किया गया हो तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल हार्ट यानी दिल के लिए चिंता का सबब बन सकता है। सबसे अहम बात यह है कि अगर एनालॉग पनीर सही मानकों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है तो इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।
12: ये तो हर तरह की बीमारी में काज कर सकता है। आप पहले कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ये जो तेल है पाम ऑयल टू स्टार्ट विद हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाता है चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कार्डियक इवेंट हो, हार्ट फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क तो बढ़ा ही रहा है। दूसरा क्योंकि ये तेल है और ये गुड फैट नहीं है, ये जिसको हम सीड ऑयल कहते हैं वो है, और क्योंकि इसमें इसका कॉम्पोजिशन इतना खराब होता है तो ये हमारे शरीर में कोई इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बना रहा बल्कि जमा हो रहा है हमारी आर्टरीज में एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, सबक्यूटेनियस फैट के फॉर्म में, तो मोटापे के लिए भी जिम्मेदार है।
11: इसमें कोई दो राय नहीं कि घर हो या रेस्टोरेंट, पनीर की डिमांड बेहिसाब है और इसी वजह से एनालॉग पनीर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। दूसरी बात यह कि सस्ता है इसलिए मुनाफे के लिए मुफीद है, इसलिए घर से बाहर जब भी पनीर का व्यंजन खाएं तो सावधान रहें। लेकिन जहां तक घर के इस्तेमाल के लिए खरीदने की बात है तो असली पनीर की पहचान कीजिए। इसकी बड़ी पहचान ये है कि असली है तो हाथ से मसलने पर नरम और दानेदार होगा, मसलने पर यह आसानी से बिखर जाता है लेकिन रबड़ जैसा खिंचता नहीं। शुद्ध पनीर में दूध जैसी सौंधी और ताजी खुशबू आती है। उबालने पर पानी में नहीं घुले और आयोडीन डालने पर नीला नहीं पड़ेगा।
13: ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसका स्पेसिफिकेशन हमारा जो रेगुलेशन है 2.1.5 इसमें दे चुका है। इसमें एक्चुअली मॉइस्चर नॉट मोर देन 70% होना चाहिए और इसमें मिल्क फैट जो है नॉट मोर देन 15% ऑफ ड्राई मैटर होना चाहिए। और पनीर सिंथेटिक पनीर जो है पहले तो था ही नहीं, इसका स्टैंडर्ड भी अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो इसको अलाउ किया था एफएसएसआई में लेकिन ये अलाउ नहीं करना चाहिए और इसको जो इसका अगेंस्ट में जो कार्रवाई हो रहा है ये एकदम सही दिशा में हो रहा है क्योंकि एनालॉग पनीर का नाम में एडल्ट्रेशन हम लोग इनकरेज नहीं कर सकते हैं। तो चना पनीर जो है इसको क्या प्योर है क्या ओरिजिनल है वो इमिडिएटली वो आयोडीन डालने से पता चल जाता है, तो इसके और इसको रबरी टेक्सचर नहीं होता, स्मूथ होता है प्योर पनीर, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये जो सिंथेटिक पनीर जो और या एनालॉग पनीर जो बोल रहे हैं इसको एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहिए। सही दिशा में एफडीए महाराष्ट्र भी काम कर रहा है और इसको इसको बाकी स्टेट में भी ये लागू करना चाहिए।
11: डॉक्टर्स के अनुसार पनीर पोषण का अच्छा स्रोत माना जाता है जबकि एनालॉग उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले वनस्पति फैट, स्टार्च और दूसरे एडिटिव्स की वजह से पोषण कम हो सकता है। अगर इसमें खराब गुणवत्ता वाला तेल या अधिक संतृप्त वसा इस्तेमाल हुई हो इसकी वजह से कुछ लोगों को पाचन संबंधी परेशानी जैसे गैस, अपच या एलर्जी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।
12: हम खाना क्यों खाते हैं? अपने शरीर को नरिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। उस वो उल्टा हो रहा है। हम न्यूट्रिशन तो ना ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हम साथ में ऐसे सब्सटेंसेस और केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, कंटामिनेंट्स हो, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं नरिश करने की जगह। तो डेफिनेटली बैलेंस प्लेट जो हम बोलते हैं, बैलेंस डाइट, बहुत आसान है कहना कि सब्जियां खाओ, डेयरी का एक सोर्स लो और साथ में दालें खाओ, बट वो अवेलेबल कैसे हो कंज्यूमर को? उसी के लिए तो रेगुलेशन जरूरी है। कंज्यूमर अगर डेयरी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम अपने पेशेंट्स को डायरेक्टली मना कर देते हैं कि अगर आपको सीरियस जेनेटिक डिजीज है, डिस्पोजिशन है किसी डिजीज के लिए, तो आप ऐसी चीजें जैसे कि सफेद आटा, सफेद चावल, पनीर, डायरेक्ट डेयरी, सफेद चीनी, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए।
11: सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि इसे बिना जानकारी दिए असली पनीर बताकर परोस दिया जाता है, जबकि इस केमिकल वाले पनीर से ना सिर्फ दिल की परेशानी हो सकती है, बल्कि जानकार मान रहे हैं कि इससे कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा है।
12: जो एक बीमारी होती है कैंसर, जब किसी को हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस इंडिया में इतना कैंसर है इज बिकॉज ऑफ आर एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में पोल्यूशन के अलावा फूड एक बहुत बड़ा सोर्स है। और लोग बाहर जब जाते हैं या खाते हैं तो उनको एक भरोसा होता है कि जहां पर वो खा रहे हैं उसने हाइजीन का, क्वालिटी का, फूड का ध्यान रखा होगा। बट क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं है, लोग वो खाने से बीमार हो रहे हैं और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो रही हैं।
11: 3 राज्यों में एनालॉग पनीर पर प्रहार किया गया है, उसे बैन कर दिया गया। लेकिन जहां बैन नहीं है वहां भी होटल कारोबारी इस बात से सहमत हैं कि ग्राहक को सही जानकारी मिलनी चाहिए, इससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार फैसला ले सकेगा और बाजार में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। दूध से बना पनीर और फैक्ट्री में तैयार एनालॉग चीज दोनों अलग अलग उत्पाद है। समस्या तब पैदा होती है जब पहचान छिपाकर एक को दूसरे के नाम पर बेचा जाता है, इसलिए आमतौर पर लोग इस केमिकल वाले पनीर के खिलाफ है।
14: ये भी बड़ी मशहूर पनीर की एक शॉप है भोपाल में, और यहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन सबके मन में अब यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये एनालॉग पनीर और जो पनीर अब तक ये लोग खाते आए हैं, जिसे बताया जाता है कि असली पनीर है, शुद्ध पनीर है, ये अंतर ये लोग कैसे पहचानेंगे? तमाम वो लोग हैं जो अक्सर आमतौर पर पनीर का सेवन करते रहते हैं।
15: आप जो पनीर खाते हैं आपको कुछ अंतर समझ में आता है?
14: नहीं,
15: आपको लगता है कि जो पनीर आप खा रहे हो आपको पता होता है कि वो क्या है?
16: नहीं पता चलता कि वो पाम का है या शुद्ध पनीर, और उसमें सरकार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पता चल सके कि वो सही पनीर है या पाम का पनीर है।
14: सरकार तो बोल रही है कि आप जो है डेयरी वाले हों या रेस्टोरेंट वाले हों, वो बताएं आप लोगों को।
17: ये फूड एंड ड्रग्स से संबंधित मामला है तो गवर्नमेंट को इस पर और स्ट्रिक्टली कोई नियम बनाना चाहिए ताकि उससे पता लग सके कि ओरिजिनल है कि नकली।
14: अच्छा, आप लोग जाते होंगे रेस्टोरेंट वगैरह, कभी आपने पूछा खाने से पहले कि आप जो पनीर की सब्जी आप मंगा रहे हैं या फिर डेयरी में भी अगर पनीर आप लेने, कभी आपने सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है एनालॉग पनीर?
18: 99% लोग शायद इस भोपाल जैसे बड़े शहर में भी ये जानते ही नहीं होंगे कि पनीर की 2 वेराइटी आती है। सरकार को इस पर गहन मंथन करना चाहिए और इसके लिए बिल्कुल एक ऐसा जिससे कि लोगों को पता चल सके कि डेयरी पर, रेस्टोरेंटों में, ये बात आपके माध्यम से, आज जो आपने एक अच्छी पहल की उसके माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। ये तो मेरे हिसाब से किसी को पता ही नहीं है कि पनीर की 2 वेराइटी और इसके शरीर के लिए क्या लाभ नुकसान हो सकते हैं, ये भी शायद किसी
14: को
18: नहीं।
14: क्या करे सरकार या फूड डिपार्टमेंट, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे आम इंसान जब डेयरी पे जाए या रेस्टोरेंट में जाए तो उसे पता तो रहे कि कौन सा पनीर वो कंज्यूम कर रहा है?
18: सरकार ने जब इसके लिए परमिशन दी है तो सरकार को इसकी परमिशन के साथ सख्ती के साथ इस बात को बताना चाहिए कि डेयरी वालों के लिए या रेस्टोरेंट वालों के लिए, क्योंकि पनीर की बहुत ज्यादा यूजर है हमारे देश में, तो कम से कम लोगों को ये पता रहे, जिस रेस्टोरेंट में वो भोजन करे तो उनको पता रहे कि पनीर की कौन सी वेरायटी को वो ले रहे हैं, वो लेना चाहते हैं तो ले, या उनके पास ऑप्शन रहे वो चाहे तो इसका उपयोग नहीं करें।
11: शरीर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है और पनीर प्रोटीन के लिए आसानी से मिलने वाला सोर्स है, लेकिन ऐसे दिखावटी पनीर का क्या फायदा जो बीमारियों की वजह बन जाए, इसलिए एनालॉग पनीर से सावधान रहें। भोपाल से धर्मेंद्र साहू, मुंबई से दीपेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: लेकर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने कई मानक तय किए हैं। ये पैमाना ही पनीर की शुद्धता की पहचान है। इसके हिसाब से अगर हम देखें, देखिए तो पनीर में कम से कम 50% मिल्क फैट जरूरी होता है, इसमें नमी की अधिकतम मात्रा 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए इसमें यह है कि पनीर केवल गाय भैंस के शुद्ध दूध या उनके स्वीकृत मिश्रण से ही तैयार हो सकता है और पनीर का रंग सामान्य रूप से अगर हम देखें तो सफेद या कहें क्रीमी व्हाइट होना चाहिए। पनीर को चूने या काटने पर वो हल्का लचीला होना चाहिए। इसमें दूध की स्वाभाविक ताजा सुगंध होनी चाहिए। पनीर में किसी भी तरह की खटास या कड़वाहट मान्य नहीं है। और हाँ, पनीर बनाने में केवल पीने योग्य शुद्ध जल का ही उपयोग किया जा सकता है। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
21: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
22: सावन का महीना है, शिवजी का महीना है, ऐसे में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है। इन तस्वीरों में भी नहर के किनारे ये तमाम बच्चे मिलकर यहाँ रेत से बने हुए कई शिवलिंग की आराधना में जुटे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मौज मस्ती के साथ बच्चों की पूजा का ये तरीका सोशल मीडिया पर सबको लुभा रहा है। बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के खतरों के बारे में बताता ये वीडियो अब हर कोई देख रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक नाटक के जरिए इन खतरों को बताया जा रहा है। मेजा के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ा मोबाइल और उस पर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे छोटे बच्चों को मकर जाल में फंसा लेते हैं और बच्चा फिर वास्तविकता से दूर होकर अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर उसे इन प्लेटफॉर्म से काट दिया जाए तो उसे उसकी वास्तविकता से परिचय कराया जा सकता है। ये वीडियो वायरल है और अब स्कूलों में भी दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे इसके खतरों को समझ सकें। स्टेज पर सामूहिक डांस शो के बीच एक बच्ची स्टेज पर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कोई मूवमेंट नहीं करती। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बाकी बच्चियां तो डांस कर रही हैं, लेकिन ये बच्ची पहले तो खड़ी रहती है, फिर ऐसा इशारा करती है मानो उसे भूख लगी है और वो शायद दर्शकों के बीच बैठे अपने पेरेंट्स से कह रही है कि खाना खिला देते तो डांस ठीक से हो जाता। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्ची के हाव भाव देख कर उससे सहानुभूति रख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे ये अंकल जेंजी के सामने भी जबरदस्त एनर्जेटिक साबित हुए हैं। एक बच्चे ने उनको कुछ करतब दिखाए और फिर उनको आमंत्रित किया। फिर क्या था, अंकल ने साबित कर दिया कि उनकी उम्र बस एक नंबर है। उन्होंने जो एनर्जी दिखाई, तमाम जेंजी बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये वायरल तस्वीरें भावुक कर रही हैं। ये पुलिस वाला पुलिस अफसर बनने के बाद जब घर गया तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है। दोनों की मुलाकात सबके दिल को छू रही है क्योंकि उस दोस्त को न सिर्फ ये अफसर गले लगाता है बल्कि खर्च के लिए पैसे भी देता है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस अफसर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है
23: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है
2: फोर का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच फोर लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़ यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। सावन का महीना चल रहा है, आसमान से आस्था के बादल बरस रहे हैं और धरती पर शिव भक्ति की लहरें हिलोरें भर रही हैं। इस माहौल में आज गुड न्यूज टुडे स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश भर में मौजूद महादेव के उन अद्भुत और अनोखे मंदिरों में जहां महादेव निराले रूपों में विराजमान है। ऐसे अनोखे शिवधाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना और निर्माण जामवंत ने खुद अपने हाथों से करी थी। इस धाम में इतिहास महादेव के साथ साथ श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रायसेन में मौजूद यही वो स्थान है जहां पर शिवभक्त जामवंत की बेटी जामवंती से श्री कृष्ण ने विवाह किया था।

0: शिव मंदिर जहां मौजूद है तीन युगों का संगम।
1: भगवान जामवंत जी ने इस मंदिर का निर्माण किया।
0: वो धाम जहां आज भी है युगों पुरानी शिव गुफा।
2: वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है।
0: जहां स्वयं सूर्य देव करते हैं महादेव का अभिषेक।
3: भगवान सूर्य अपने आदिदेव भगवान शिव का पहली किरण के साथ श्रृंगार करते हैं और अभिषेक करते हैं।
0: जहां आज भी मौजूद हैं जामवंत के पैरों के निशान।
4: यहां से जामवंत जी ने निकले थे और आगे तक पैरों के निशान देखे जा रहे हैं।
0: जहां द्वापर युग में हुआ था जामवंत और श्री कृष्ण का महायुद्ध।
3: जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है।
0: वो नगर जो आज भी श्री कृष्ण को मानता है दामाद।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते।
0: मध्य प्रदेश का रायसेन जहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों के मस्तक पर स्थापित है महादेव का युगों पुराना धाम। महादेव का ये धाम शिव गुफा मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग

0: भोलेनाथ की स्थापना यहाँ की गई और यहाँ दिव्य रूप में अभी संत लोग निवास कर रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जामगढ़ पधारे, विद्यासागर जी संत जामगढ़ पधारे
1: जी,
0: वो हीरापुर वाले गुरु जी जामगढ़ पधारे, उनने अनुभव किया कि भैया इन गुफाओं में अभी संत दिव्य रूप में रहकर वायुपान करके और यहाँ तपस्यारत हैं। ये प्रमाण उन तीनों संतों ने इस जगह का दिया। ये किंवदंती नहीं, संतों का वचन।
2: ये गुफा विंध्याचल पर्वत माला पर लगभग 200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास एक कुंड है जिसमें साल भर जल रहता है। इस कुंड से टपकता जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करता है।
3: यहाँ पर एक स्थान और है जिसे हम ये शिव मंदिर जो है ये गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये जल है, ये 500 मीटर फिट के ऊंचाई के बावजूद वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे इसके अंदर जाएंगे और जाने के बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां इसके अंदर है। आज भी जो संत योगी महात्मा है इसके अंदर निवास करते, ऐसे लोगों की मानता है, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों ने यहाँ ऐसे चमत्कार देखे हैं कि प्रातः काल यहाँ आरती होती है, ढोलक झनकारे और ज्वाला को भी देखा। दूसरा यहाँ एक स्थान है जहाँ एक एक बूंद करके पानी टपकता है और ये जो पानी टपकता है इसकी एक विशेषता है कि इस जल को जो भी व्यक्ति धारण करता है या पी लेता है उसे किसी भी प्रकार की असाध्य जो बीमारी होती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। ये 12 महीने ये जल यहाँ से टपकता रहता है।
2: इस इलाके में मान्यता है कि इस गुफा के अंदर आज भी कई साधु संत जब तप में लीन है। स्थानीय लोग कई बार गुफा से भजन कीर्तन की आवाजें आने का दावा भी करते हैं।
4: भगवान शिव का जो प्राचीन शिव गुफा के नाम से विख्यात है वो भगवान आदि काल से यहाँ है, ऐसी किंवदंती है कि जामवंत जी ने भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। तो यो युगों प्राचीन शिव गुफा है और इस स्थान की एक विशेषता है कि जो विंध्याचल पर्वत हैं वो स्वयं यहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं और बुजुर्गों ने ऐसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में गांव से यहाँ से जामगढ़ लगा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की जो पूजा है वो सिद्ध महापुरुषों द्वारा सिद्धों द्वारा की जाती रही है।
2: खास बात ये है कि महादेव की आस्था से सींची गई ये पावन भूमि श्री कृष्ण की ससुराल भी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी जगह श्री कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवंती से विवाह किया था।
4: जामगढ़ अपने आप में प्रमाण है, कभी इसका नाम जामगढ़ रहा है, इस गांव का नाम अपभ्रंश होते होते जामगढ़ हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के रूप में भी यह जामवंत जी की गुफा है पास में ही, तो ये विख्यात है। तो अपने आप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इस समय जो कलयुग चल रहा है तो तीन युगों का यह स्थान है और जामवंत जी चिरजीवी रहे हैं। आज भी जामवंत जी माना जाता है कि हैं, वो अमृत उन्हें प्राप्त रहा है।
2: जामवंती और श्री कृष्ण से जुड़े इसी संदर्भ के चलते जामगढ़ के लोग श्री कृष्ण को अपना दामाद मानते हैं।
4: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते, कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई जीजा कहता है, तो वो जामाता है जामगढ़ के भगवान श्री कृष्ण। तो कितना भव्य और अद्भुत रिश्ता है जामगढ़ का और भगवान श्री कृष्ण का।
2: बताया जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने जामवंत को ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय घटनाओं का चक्र उन्हें इस स्थान पर लेकर आएगा, तब कृष्ण रूप में वे जामवंत से युद्ध कर उन्हें परास्त करेंगे।
4: श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह उल्लेख मिलता है कि समंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जामवंत पधारे विंध्याचल पर्वत पर और जामवंत जी से उनका 27-28 दिनों तक महायुद्ध हुआ। उस युद्ध में जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जिन्होंने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि प्रभु आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया, मेरी इच्छा है कहे मैं कभी परास्त हूँ। तो भगवान

0: श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा तो तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। तो एक तरह से अपने भगवान द्वारा भक्त को जो वरदान दिया था उसकी पूर्ति का भी ये स्थान है।
1: जामगढ़ के पास भगदेई गांव में जामवंत ने द्वापर युग में एक और शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि भक्त जामवंत ने एक रात में महादेव के इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर जिस पहाड़ी पर मौजूद है वहाँ आज भी पुरानी चट्टानों पर पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। दावा किया जाता है कि ये जामवंत जी के पैरों के निशान हैं।
2: रायसेन जिले के विंध्याचल की पर्वत की एक तलहटी है जहाँ पे बसा हुआ है रायसेन जिले के बरेली तहसील का जामगढ़ गांव। जामगढ़ भगदे ये दोनों गांव विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में, और अभी हमने आपको बताया था कि द्वापर युग के समय जामवंत जी ने जो मंदिर का निर्माण कराया था वो निर्माण के बाद जो किंवदंती आई थी वो किंवदंती के बाद ये स्थिति थी कि जामवंत जी जिस जगह कूदे थे वहां पर पैरों के निशान है। तो आप देख सकते हैं ये पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर एक बीजक भी लिखा हुआ है, दाया पैर का निशान है, बाएं पैर का निशान है, फिर दाएं पैर का निशान है, फिर बाएं पैर का निशान। ये निशान हमें कहाँ तक मिलेंगे? लगभग 1 किलोमीटर तक मिलेंगे, जहाँ गुफा है जामवंत जी की वहां तक मिलेंगे।
1: भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की विवाह गांठ से लेकर भक्त जामवंत की अगाध आस्था तक महादेव का ये धाम युगों युगों से सनातन धर्म की कई कहानियों को खुद में समेटे आज भी शान से खड़ा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब मध्य प्रदेश से सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आपको दर्शन करवाते हैं उस पावन शिवधाम के जहां पर पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। महादेव का वो धाम जिसकी स्थापना की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है और उन्हीं के नाम पर भोलेनाथ यहाँ परशुरामेश्वर कहलाते हैं।
1: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, और कांवड़ यात्रा की इस कहानी की डोर जुड़ी है बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तब पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, फिर हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। परशुराम के नाम पर कभी परशुरामेश्वर धाम कहलाने वाला ये मंदिर कालांतर में पूरा महादेव धाम कहलाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। बता दें कि पूरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डगा सका। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
4: ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित, ये भगवान परशुराम जी द्वारा, जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है। औरंगजेब ने भी प्रयास किया, उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया चरणों से बंधवा के, पर लेकिन आज भी आप देखोगे बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने एक उस पर स्पॉट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पॉट है।
5: एक और कहा जा रहा है कि मंदिर जो शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है।
4: हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा।
1: मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। हर साल सावन में पूरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। भविष्य में मंदिर प्रांगण को काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की भी योजना है, यानी भविष्य में पूरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जितने अद्भुत हैं महादेव उतने ही अनोखे हैं उनके ये धाम। ऐसा ही एक धाम मौजूद है बुंदेलखंड में, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजार रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात कही जाती है, बताया जाता है कि ये वही मंदिर है जहां पर किसी दौर में झांसी की महारानी यानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने के लिए जाती थी।

0: महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिव धाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारिया महादेव। महादेव का वो अनुपम धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण इसे हजारी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग के नजदीक जाने पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते हैं। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है।
1: ये 1108 छोटे छोटे शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम हजारिया महादेव है। छोटे छोटे पूरे राउंड है उनके, वो 1108 शिवलिंग है छोटे छोटे।
2: 1000 शिवलिंग का मतलब यह है कि 1101 अगर इधर दर्शन करते हैं तो एक बार में पूर्ण होते हैं भोलेनाथ के दर्शन साक्षात एक ही शिवलिंग में।
0: बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं।
3: यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती वो पूरी होती है और उसके सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है कि उसके उस उपलक्ष में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं।
0: हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गोसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि कभी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई यहां रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है।
2: ये माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती थी पानीवरी धर्मशाला पे, और ये गोसाइयों के समय का मंदिर है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाए एक बार में पूर्ण होती है।
4: ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी।
5: ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं।
0: इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।
4: बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, यहाँ पे बावड़ी है, कुआ है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर वोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भरा था, तब जाके ये पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा दो बार हो चुका है, जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब ये इसी प्रकार का इनको वो करते हैं।
0: एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हजार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने आते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे उस शिव धाम की जहां पर महादेव एक पवित्र गुफा में बिराजते नहीं। ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिला देगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिवधाम को छोटे अमरनाथ भी कहते हैं।

0: आस्था की एक वो यात्रा और आस्था की एक यात्रा ये भी कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम। पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नलदेश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नलदेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं।
1: लगभग 360 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिवजी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
0: बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था, तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो वहीं पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक बिल्वपत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्वपत्र चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है।

0: महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़, यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में बढ़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग के रंग में पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से जिनका लेना देना नहीं होता। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम बेनकाब करते हैं। तो देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ लोगों ने बिहार में तेंदुए के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि एक्टर ऋतिक रोशन ने अखिलेश यादव के शासनकाल की जमकर तारीफ की है। क्या है वायरल वीडियो के दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: बिहार में तेंदुए के साथ प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है हाल फिलहाल का है, नीट पेपर लीक के खिलाफ लोगों ने तेंदुए के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
6: पच्चीस जुलाई को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और वामपंथी छात्र संगठनों ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद किया था। इस दौरान राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। अब इसी विरोध प्रदर्शन से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों को भीड़ के बीच एक तेंदुए को ले जाते हुए देखा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार प्रोटेस्ट में वाइल्ड कार्ड एंट्री। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार में लोग जो हैं तेंदुए के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की और देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने इंटरनेट और बिहार के तमाम मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर नीट पेपर लीक में विरोध में तेंदुए के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया होता तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर उपलब्ध जरूर होती। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान गया वीडियो में आ रही आवाजों पर। देखिए, जब हमने इसे गौर से सुना, ये इशारा मिला कि इस तरह के जो शब्द हैं बिहार के लोग अपने भाषा के दौरान यूज करते हैं। इसके अलावा वीडियो में ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि शख्स जो है तेंदुए को अपने कंधे पर रखा हुआ है। कुछ लोग तेंदुए के पूंछ को पकड़े हुए हैं लेकिन इस दौरान तेंदुए के शरीर में कोई हरकत नहीं देखने को मिल रही। हमें थोड़ा अटपटा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तेंदुआ जिंदा नहीं है। आसपास खड़े लोग हंस रहे हैं, अपने मोबाइल के कैमरों में वीडियो बनाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी पुलिस के जवान भी नहीं नजर आए, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन वीडियो होता तो वहां पर पुलिस के जवान भी जरूर तैनात होते, नारे जरूर सुनने को मिलते, लेकिन कहीं भी कुछ हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो बिहार के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम बिहार के एक न्यूज पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर पहुंचे। न्यूज आउटलेट ने यह वीडियो 30 मई को शेयर किया था, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन इससे यह पक्का हो गया कि वीडियो पुराना है। लेकिन सर्च के दौरान हमें मई में यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें कहा गया था कि तेंदुए को बिहार के पूर्णिया में पकड़ा गया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान 27 मई को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया के टिक्कापट्टी पुलिस स्टेशन इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुए को मार डाला। यह जंगली जानवर 3 दिनों से गांव में घूम रहा था, खेतों को बर्बाद कर रहा था और मवेशियों पर हमला कर रहा था। इसने ग्रामीणों पर भी हमला किया जिससे 3 लोग घायल हो गए। 28 मई को छपी एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक तेंदुए ने 2 बछड़ों और 1 बकरी को मार डाला और 3 ग्रामीणों को घायल भी कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और काफी मशक्कत के बाद उसे मार डाला। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने तेंदुए का शव बरामद किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो मई का है, जब बिहार के पूर्णिया में ग्रामीणों ने पीट पीट कर एक तेंदुए की जान ले ली थी। इसका छात्रों के विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: क्या जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का समर्थन करने के बाद अब एक्टर ऋतिक रोशन ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की है। वायरल हो रहे दावे में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावे की कितनी सच्चाई है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांगे मान लेने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियोस और दावे सोशल मीडिया पर अब भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक दावा इन दिनों सोशल मीडिया के बाजार की सुर्खियों में है। इस दावे को लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और डांसर ऋतिक रोशन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फोटो में ऋतिक रोशन की तस्वीर के साथ एक बयान छपा है। इस बयान में लिखा है, छात्रों को लैपटॉप दिए, यूपी को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव के दौर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेता और समर्थक इस वायरल दावे को बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं। वायरल दावे को अखिलेश यादव के पुराने विकास कार्यों और लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस दावे का हवाला देकर एक्टर ऋतिक रोशन को निशाने पर ले रहे हैं। लोग इस बयान पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं और ऋतिक रोशन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक यूजर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और सैफई महोत्सव फिर से शुरू होगा तो गरीब की रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई न्यूज पोर्टल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस तरह की खबर शेयर की जा रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स भी इस दावे को बिना किसी पड़ताल के शेयर कर रहे हैं।
1: देखिए, जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उनकी तमाम मांगों को मानते हुए केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया है। उनकी जगह प्रहलाद जोशी की ताजपोशी भी हो चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया में सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े वीडियोस और दावों की बाढ़ सी आई हुई है। उन्हीं में से एक ये दावा भी किया जा रहा है। देखिए, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर कर रहे थे, उस दौरान एक्टर ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए इनका समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था कि फिल्म सुपर 30 की शूटिंग के दौरान उन्होंने छात्रों के दर्द को महसूस किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक शिक्षक का किरदार निभाया था। ऐसे में पहली ही नजर में यह मामला जो है सही नजर आता है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और सीजेपी का छात्र आंदोलन भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में माहौल में अगर ऋतिक रोशन जैसे बड़े एक्टर ने सचमुच अखिलेश यादव के बारे में ऐसा कोई बयान दिया होता तो उसके बारे में सभी जगह ये खबरें जरूर छपी होती, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने तहकीकात शुरू की, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि देखिए, अगर दावा सच है तो मुख्यधारा की मीडिया एजेंसियों या चैनल्स पर यह जानकारी हमें उपलब्ध क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं ऋतिक रोशन के नाम से गलत बेबुनियाद जानकारी शेयर तो नहीं की जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट ने किया।
0: अपने सवालों के आधार पर हमने वायरल हो रहे दावे की पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले वायरल हो रहे दावे को अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तलाश किया, लेकिन हमें इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमारी टीम ने ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया, लेकिन वहां भी हमें इस तरह का कोई बयान या जानकारी नहीं मिली। हालांकि हमें इस दौरान साल 2015 का एक वीडियो जरूर मिला जब ऋतिक रोशन ने सैफई महोत्सव में शिरकत की थी। वो इस वीडियो में स्टेज पर डांस करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस समारोह में यूपी के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। इसके अलावा 12 नवंबर 2016 को पब्लिश हुई एक न्यूज रिपोर्ट भी हमें मिली जिसमें ऋतिक ने अखिलेश की तारीफ की थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में ऋतिक के शिरकत करने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव उनके अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी चाहेंगे ऋतिक वहां जरूर जाएंगे। अब ये साफ हो चुका था कि ऋतिक रोशन के नाम से किया जा रहा वायरल दावा पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। ऋतिक ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लिहाजा फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में ये दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे।
1: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, यानी अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: वो बाहर का खाना खाने की जिद करने वाली बच्ची को समझाने के लिए माँ ने ऐसा अनोखा प्रैंक किया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लोग इसे जमकर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटी सी बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। उसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जिस पर पेट के अंदर की तस्वीर दिखाई देती है। स्क्रीन पर एक डरावना सा कन खजूरा जैसा कीड़ा नजर आता है और ये देखकर ऐसा महसूस होता है मानो सच में बच्ची के पेट में कोई कीड़ा हो और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हों। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा राज खुल जाता है। असल में ये कोई मेडिकल जांच नहीं बल्कि माँ का एक मजेदार प्रैंक होता है। बच्ची को बाहर का खाना ज्यादा पसंद है और शायद इसी आदत को छुड़ाने के लिए उसकी माँ ने ये अनोखा आइडिया अपनाया। उसने लैपटॉप पर पहले से एक फेक अल्ट्रासाउंड वीडियो चला रखा था। वहीं स्कैनिंग मशीन की जगह कंप्यूटर के माउस का इस्तेमाल किया गया। माँ माउस को बच्ची के पेट पर ऐसे घुमा रही थी जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते समय मशीन चलाते हैं। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान तो बच्ची के चेहरे पर जाता है। वो पूरे समय बेहद गंभीर नजर आती है और स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को बड़े ध्यान से देखती रहती है। ऐसा लगता है कि उसे सचमुच यकीन हो गया है कि बाहर का खाना खाने की वजह से उसके पेट में कोई कीड़ा पहुंच गया है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन इसे देखकर कई लोगों ने कहा कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए कभी कभार ऐसे मजेदार तरीके भी काम आ सकते हैं।
3: अगर मम्मी कभी कहीं चली गई और वापस कभी आएगी नहीं तो आप क्या करोगे?
4: मैं
3: चॉकलेट्स खाऊंगी।
2: ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। देखने में ये एक साधारण माँ बेटे की बातचीत लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में ये बातचीत इतनी भावुक हो जाती है कि इंटरनेट पर इसके बारे में खूब चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो की शुरुआत एक बेहद सामान्य सवाल से होती है। माँ अपने छोटे से बेटे से पूछती है, अगर मैं कहीं चली जाऊँ और फिर कभी वापस ना आऊँ तो तुम क्या करोगे? बच्चा बिना ज्यादा सोचे मासूमियत से जवाब देता है कि वो अपनी मम्मी की तस्वीर को प्यार करेगा। उसकी ये बात सुनकर पहले तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि जवाब बेहद भोला और प्यारा लगता है।
3: तो फिर क्या करेगा?
4: मैं
3: कभी नहीं आऊंगी।
4: मैं आपको फोटो से प्यार
3: करूंगी। तो तू रो क्यों रहा है?
2: लेकिन अगले ही पल बच्चे के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे जैसे उसे माँ के सवाल का मतलब समझ आने लगता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो इमोशनल होकर रोने लगता है। उसकी मासूमियत और माँ को खो देने का डर वीडियो देखने वालों का भी दिल छू लेता है। जब माँ उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है, तब बच्चा कांपती हुई आवाज में सवाल करता है, क्या आप मर जाओगे? ये सुनकर साफ महसूस होता है कि बच्चे ने माँ के सवाल को हमेशा के लिए बिछड़ जाने से जोड़ लिया है। उसकी आंखों में चिंता और आवाज में घबराहट साफ झलकती है। वो आगे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी मम्मी जल्द वापस आ जाएं। बच्चे की ये बात उसकी माँ के प्रति गहरे लगाव और प्यार को दर्शाती है। माँ को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसका पूछा गया सवाल बच्चे के मन पर असर डाल चुका है। वो तुरंत उसे प्यार से गले लगाती है और समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
3: नहीं। तो आप गंदी गंदी बातें करोगे?
4: नहीं।
3: आप किसी को मारोगे?
4: नहीं।
3: आप बैड बॉय बनोगे?
4: नहीं।
3: तो आप क्या करोगे?
4: नहीं।
3: तो फिर क्या करेगा? कभी नहीं आओगे?
4: मैं आपको फोटो से प्यार
3: करूंगी। तो तू रो क्यों रहा है?
4: आप पीछे से मर जाओगे? बहुत यार मुझे। मैं भगवान को प्रे करूंगा फिर मेरी मम्मी को जल्दी से फिर बता दो।
2: माँ का ये अंदाज जिसमें थोड़ी सख्ती और बहुत सारा प्यार था, सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस मजेदार बातचीत पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं।
5: पैन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है?
2: लोग इस पल को हर भारतीय घर की कहानी बता रहे हैं।
5: पैन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है।
2: दरअसल परीक्षा देने जा रही बेटी को माँ की दी गई ये प्यारी सी नसीहत लोगों को खूब पसंद आ रही है। माँ की कही एक लाइन ने तो परीक्षा के समय की भावनाओं को बखूबी बयां भी कर दिया है।
5: पेन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है, चलो।
2: असम में इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ऐसे मुश्किल मौसम में जहां ज्यादातर लोग घरों में रहने की कोशिश करते हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी घंटों सड़क पर खड़े होकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसी बीच गुवाहाटी में एक शख्स ने ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। गुवाहाटी के रहने वाले लक्ष्मण गोस्वामी ने बारिश में ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मदद करने का फैसला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बीच एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों के बीचों बीच खड़े होकर वाहनों को नियंत्रित कर रहा था। लगातार हो रही बारिश के बावजूद वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी लक्ष्मण गोस्वामी वहां पहुंचे, उनके हाथ में एक रेनकोट और वाटरप्रूफ पैंट थी जिसे उन्होंने खास तौर पर उस पुलिसकर्मी के लिए खरीदा था। रेनकोट देने से पहले लक्ष्मण ने पुलिसकर्मी से कहा कि इस पर पुलिस लिखा हुआ है ताकि ड्यूटी के दौरान कोई भी व्यक्ति उन्हें आम नागरिक न समझे। ये छोटी सी बात इस बात को भी दिखाती है कि उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि पुलिसकर्मी की पहचान और जिम्मेदारी का भी पूरा ख्याल रखा। पुलिसकर्मी ने मुस्कुराते हुए ये उपहार स्वीकार किया, उनके चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत वही रेनकोट और वाटरप्रूफ पैंट पहनी, जिसके बाद बिना समय गवाए वो फिर से अपनी जगह पर लौटे और पहले की तरह ट्रैफिक संभालने लगे। यूजर्स इस वीडियो पर अपना प्यार खूब लुटा रहे हैं। जिंदगी से उबने से तो बेहतर है कि बादलों के बीच कुछ रोमांचक किया जाए, ये कहना है 97 साल की कैसी जाबाज दादी का, जिन्होंने अपनी उम्र और सेहत की हर रुकावट को हवा में ही उड़ा दिया। ब्रिटेन की रहने वाली बेटी ब्रोमेज ने स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी को मात देने के ठीक एक साल बाद उड़ते हुए प्लेन के पंख पर खड़े होकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चेल्टनहैम की रहने वाली 97 साल की बेटी ब्रोमेज ने साइरेंस्टर के RFC रेंटकॉम एयरफील्ड में ये साहसिक कारनामा पूरा किया। जब उन्होंने ये उड़ान भरी तब उनकी सटीक आयु
6: इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता, राष्ट्रपति भवन में भी होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है। लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये एक खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है, जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई शैली से तैयार रेशम और सूती धागों वाले अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक स्वागत समारोह है जिसका आयोजन हर राष्ट्रपति की मेजबानी में किया जाता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है, क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है, क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है, राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण, ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी, गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़, यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में बढ़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। सावन का महीना चल रहा है, आसमान से आस्था के बादल बरस रहे हैं और धरती पर शिव भक्ति की लहरें हिलोरें भर रही हैं। इस माहौल में आज गुड न्यूज टुडे स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश भर में मौजूद महादेव के उन अद्भुत और अनोखे मंदिरों में जहां महादेव निराले रूपों में विराजमान है। ऐसे अनोखे शिवधाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना और निर्माण जामवंत ने खुद अपने हाथों से करी थी। इस धाम में इतिहास महादेव के साथ साथ श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रायसेन में मौजूद यही वो स्थान है जहां पर शिव भक्त जामवंत की बेटी जामवंती से श्री कृष्ण ने विवाह किया था।

0: शिव मंदिर जहां मौजूद है तीन युगों का संगम।
1: भगवान जामवंत जी ने इस मंदिर का निर्माण किया।
0: वो धाम जहां आज भी है युगों पुरानी शिव गुफा।
2: वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है।
0: जहां स्वयं सूर्य देव करते हैं महादेव का अभिषेक।
3: भगवान सूर्य अपने आदिदेव भगवान शिव का पहली किरण के साथ श्रृंगार करते हैं और अभिषेक करते हैं।
0: जहां आज भी मौजूद हैं जामवंत के पैरों के निशान।
4: यहां से जामवंत जी ने निकले थे और आगे तक पैरों के निशान देखे जा रहे हैं।
0: जहां द्वापर युग में हुआ था जामवंत और श्री कृष्ण का महायुद्ध।
3: जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है।
0: वो नगर जो आज भी श्री कृष्ण को मानता है दामाद।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते।
0: मध्य प्रदेश का रायसेन जहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों के मस्तक पर स्थापित है महादेव का युगों पुराना धाम। महादेव का ये धाम शिव गुफा मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में जामवंत ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस इलाके को जामगढ़ कहा जाता है।
1: प्रत्यक्ष रूप से भगवान जामवंत की गुफा जामगढ़ में मौजूद है। भगवान जामवंत द्वारा भोलेनाथ की स्थापना यहाँ की गई और यहाँ दिव्य रूप में अभी संत लोग निवास कर रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जामगढ़ पधारे, विद्यासागर जी संत जामगढ़ पधारे जी, वो हीरापुर वाले गुरु जी जामगढ़ पधारे। उनने अनुभव किया कि भैया इन गुफाओं में अभी संत दिव्य रूप में रह के वायुपान करके और यहाँ तपस्यारत हैं। ये प्रमाण उन तीनों संतों ने इस जगह का दिया। ये किंवदंती नहीं, संतों का वचन।
0: ये गुफा विंध्याचल पर्वतमाला पर लगभग 200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास एक कुंड है जिसमें साल भर जल रहता है। इस कुंड से टपकता जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करता है।
2: यहाँ पर एक स्थान और है जिसे हम ये शिव मंदिर जो है ये गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये जल है, ये 500 मीटर ऊंच फिट के ऊंचाई के बावजूद वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे इसके अंदर जाएंगे और जाने के बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां इसके अंदर है। आज भी जो संत योगी महात्मा है इसके अंदर निवास करते, ऐसे लोगों की मानता है, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों ने यहाँ ऐसे चमत्कार देखे हैं कि प्रातः काल यहाँ आरती होती है, ढोलक झनकारे और ज्वाला को भी देखा। दूसरा यहाँ एक स्थान है जहाँ एक एक बूंद करके पानी टपकता है और ये जो पानी टपकता है इसकी एक विशेषता है कि इस जल को जो व्यक्ति धारण करता है या पी लेता है उसे किसी भी प्रकार की असाध्य जो बीमारी होती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। ये 12 महीने ये जल यहाँ से टपकता रहता है।
0: इस इलाके में मान्यता है कि इस गुफा के अंदर आज भी कई साधु संत जब तप में लीन है। स्थानीय लोग कई बार गुफा से भजन कीर्तन की आवाजें आने का दावा भी करते हैं।
3: भगवान शिव का जो प्राचीन शिव गुफा के नाम से विख्यात है वो भगवान आदि काल से यहाँ है, ऐसी किंवदंती है कि जामवंत जी ने भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। तो यो युगों प्राचीन शिव गुफा है और इस स्थान की एक विशेषता है कि जो विंध्याचल पर्वत हैं वो स्वयं यहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं और बुजुर्गों ने ऐसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में गांव से यहाँ से जामगढ़ लगा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की जो पूजा है वो सिद्ध महापुरुषों द्वारा सिद्धों द्वारा की जाती रही है।
0: खास बात यह है कि महादेव की आस्था से सींची गई ये पावन भूमि श्री कृष्ण की ससुराल भी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी जगह श्री कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवंती से विवाह किया था।
3: जामगढ़ अपने आप में प्रमाण है, कभी इसका नाम जाम्बगढ़ रहा है, इस गांव का नाम। अपभ्रंश होते होते जामगढ़ हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के रूप में भी यह जामवंत जी की गुफा है पास में ही, तो ये विख्यात है। तो अपने आप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इस समय जो कलयुग चल रहा है, तो तीन युगों का यह स्थान है। और जामवंत जी चिरजीवी रहे हैं, आज भी जामवंत जी माना जाता है कि हैं, वो अमृत तो उन्हें प्राप्त रहा है।
0: जामवंती और श्री कृष्ण से जुड़े इसी संदर्भ के चलते जामगढ़ के लोग श्री कृष्ण को अपना दामाद मानते हैं।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते।

0: बताया जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने जामवंत को ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय घटनाओं का चक्र उन्हें इस स्थान पर लेकर आएगा। तब कृष्ण रूप में वे जामवंत से युद्ध कर उन्हें परास्त करेंगे।
1: श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह उल्लेख मिलता है कि स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जामवंत पधारे विंध्याचल पर्वत पर, और जामवंत जी से उनका 27-28 दिनों तक महायुद्ध हुआ। उस युद्ध में जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि प्रभु आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया, मेरी इच्छा है कि मैं कभी परास्त हूँ। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा तो तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। तो एक तरह से अपने भगवान द्वारा भक्त को जो वरदान दिया था उसकी पूर्ति का भी यह स्थान है।
0: जामगढ़ के पास भगदेई गांव में जामवंत ने द्वापर युग में एक और शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि भक्त जामवंत ने एक रात में महादेव के इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर जिस पहाड़ी पर मौजूद है वहाँ आज भी पुरानी चट्टानों पर पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। दावा किया जाता है कि ये जामवंत जी के पैरों के निशान हैं।
2: रायसेन जिले के विंध्याचल की पर्वत की एक तलहटी है जहाँ पे बसा हुआ है रायसेन जिले के बरेली तहसील का जामगढ़ गांव। जामगढ़ भगदे ये दोनों गांव विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में, वो अभी हमने आपको बताया था कि द्वापर युग के समय जामवंत जी ने जो मंदिर का निर्माण कराया था, वो निर्माण के बाद जो किंवदंती आई थी, वो किंवदंती के बाद ये स्थिति थी कि जामवंत जी जिस जगह कूदे थे वहां पर पैरों के निशान है। तो आप देख सकते हैं ये पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर एक बीजक भी लिखा हुआ है, दाया पैर का निशान है, बाएं पैर का निशान है, फिर दाएं पैर का निशान है, फिर बाएं पैर का निशान। ये निशान हमें कहाँ तक मिलेंगे? लगभग 1 किलोमीटर तक मिलेंगे, जहाँ गुफा है जामवंत जी की वहां तक मिलेंगे।
0: भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की विवाह गांठ से लेकर भक्त जामवंत की अगाध आस्था तक महादेव का ये धाम युगों युगों से सनातन धर्म की कई कहानियों को खुद में समेटे आज भी शान से खड़ा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब मध्य प्रदेश से सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आपको दर्शन करवाते हैं उस पावन शिवधाम के जहां पर पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। महादेव का वो धाम जिसकी स्थापना की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है, और उन्हीं के नाम पर भोलेनाथ यहाँ परशुरामेश्वर कहलाते हैं।
0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, और कांवड़ यात्रा की इस कहानी की डोर जुड़ी है बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी।

0: बताया जाता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तपश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, फिर हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। परशुराम के नाम पर कभी परशुरामेश्वर धाम कहलाने वाला ये मंदिर कालांतर में पूरा महादेव धाम कहलाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। बता दें कि पूरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डगा सका। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
1: ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित, ये भगवान परशुराम जी द्वारा, जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है। औरंगजेब ने भी प्रयास किया, उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया चरणों से बंधवा के, पर लेकिन आज भी आप देखोगे बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने उस पर स्पोर्ट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पोर्ट है।
2: एक और कहा जा रहा है कि मंदिर जो शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है।
1: हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा।
0: मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। हर साल सावन में पूरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। भविष्य में मंदिर प्रांगण को काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की भी योजना है, यानी भविष्य में पूरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जितने अद्भुत हैं महादेव उतने ही अनोखे हैं उनके ये धाम। ऐसा ही एक धाम मौजूद है बुंदेलखंड में, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजार रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात कही जाती है, बताया जाता है कि ये वही मंदिर है जहां पर किसी दौर में झांसी की महारानी यानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने के लिए जाती थी।

0: महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिवधाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारिया महादेव। महादेव का वो अनुपम धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण इसे हजारी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग के नजदीक जाने पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते हैं। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है।
1: ये 1108 छोटे छोटे शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम हजारिया महादेव है। छोटे छोटे पूरे राउंड है उनके, वो 1108 शिवलिंग है छोटे छोटे।
2: 1000 शिवलिंग का मतलब यह है कि 1101 अगर इधर दर्शन करते हैं तो एक बार में पूर्ण होते हैं भोलेनाथ के दर्शन साक्षात एक ही शिवलिंग में।
0: बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं।
3: यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है और उसके सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है कि उसके उस उपलक्ष में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं।
0: हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गोसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि कभी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के इस शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है।
2: जे माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती थी पानीवरी धर्मशाला पे, और जे गोसाइयों के समय का मंदिर है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाए एक बार में पूर्ण होती है।
4: ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी।
5: ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं।
0: इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।
4: बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, यहाँ पे बावड़ी है, कुआ है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर वोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भर रहा था, तब जाके ये पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा दो बार हो चुका है, जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब इसी प्रकार का इनको वो करते हैं।
0: एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हजार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने आते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे उस शिव धाम की जहां पर महादेव एक पवित्र गुफा में विराजते नहीं। ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिला देगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिवधाम को छोटे अमरनाथ भी कहते हैं।

0: आस्था की एक वो यात्रा और आस्था की एक यात्रा ये भी कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम। पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नलदेश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नलदेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं।
1: लगभग 360 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिव जी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
0: बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो वहीं पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्व पत्र चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है।

0: महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
1: के पावन माह में हर तरफ आस्था उमड़ रही है। कांवड़ियों की भक्ति साधना से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। अब तैयारियां सावन के शिवरात्रि की है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तमाम कांवड़िये इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी यात्रा संपन्न करेंगे।

0: सावन के पावन माह में हर तरफ भोले की भक्ति के अद्भुत रंग बिखरे हैं। शिव भक्तों की कांवड़ साधना के रंग निरंतर गहराते जा रहे हैं। पवित्र नदियों से कांवड़ लेकर लाखों कांवड़िए शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए निकल पड़े हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और सावन की शिवरात्रि पर तो शिवालयों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। इस बार सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त सुबह 4:53 पर शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि 12 अगस्त की रात 1:51 तक रहेगी। ऐसे में शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ज्यादातर कांवड़िए इस पावन दिन ही पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिवलिंग के अभिषेक से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तो हर तरफ कांवड़ियों के जत्थे ही दिख रहे हैं। यहाँ से कांवड़िए ट्रेन में सवार होकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इनमें से कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो यहाँ से निकलकर सुल्तानगंज पहुंचेंगे। वहां से पवित्र गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ेंगे। कांवड़ियों की भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सावन के पावन महीने का शिव भक्तों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस विशेष माह में पवित्र नदियों से लेकर शिवालयों तक भक्ति की अविरल धारा आस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के जयकारों से आसमान गूंज उठता है और कई दिनों की साधना के बाद कांवड़ यात्रा संपन्न करके शिव भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। चंदौली से उदय गुप्ता और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है, क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है, क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को स्वभाव को कमजोर करता है, राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण, ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी, गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़ यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह, चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में बढ़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदलती जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग के रंग में पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से जिनका लेना देना नहीं होता। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम बेनकाब करते हैं। तो देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ लोगों ने बिहार में तेंदुए के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि एक्टर ऋतिक रोशन ने अखिलेश यादव के शासनकाल की जमकर तारीफ की है। क्या है वायरल वीडियो के दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
5: बिहार में तेंदुए के साथ प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है हाल फिलहाल का है, नीट पेपर लीक के खिलाफ लोगों ने तेंदुए के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
6: पच्चीस जुलाई को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और वामपंथी छात्र संगठनों ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद किया था। इस दौरान राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। अब इसी विरोध प्रदर्शन से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों को भीड़ के बीच एक तेंदुए को ले जाते हुए देखा जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार प्रोटेस्ट में वाइल्ड कार्ड एंट्री। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार में लोग जो हैं तेंदुए के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की और देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने इंटरनेट और बिहार के तमाम मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान अब ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर नीट पेपर लीक में विरोध में तेंदुए के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया होता तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर उपलब्ध जरूर होती। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान गया वीडियो में आ रही आवाजों पर। देखिए, जब हमने इसे गौर से सुना, ये इशारा मिला कि इस तरह के जो शब्द हैं बिहार के लोग अपने भाषा के दौरान यूज करते हैं। इसके अलावा वीडियो में ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि शख्स जो है तेंदुए को अपने कंधे पर रखा हुआ है। कुछ लोग तेंदुए के पूंछ को पकड़े हुए हैं लेकिन इस दौरान तेंदुए के शरीर में कोई हरकत नहीं देखने को मिल रही। हमें थोड़ा अटपटा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तेंदुआ जिंदा नहीं है। आसपास खड़े लोग हंस रहे हैं, अपने मोबाइल के कैमरों में वीडियो बनाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी पुलिस के जवान भी नहीं नजर आए, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन वीडियो होता तो वहां पर पुलिस के जवान भी जरूर तैनात होते, नारे जरूर सुनने को मिलते, लेकिन कहीं भी कुछ हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो बिहार के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम बिहार के एक न्यूज पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर पहुंचे। न्यूज आउटलेट ने यह वीडियो 30 मई को शेयर किया था, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन इससे यह पक्का हो गया कि वीडियो पुराना है। लेकिन सर्च के दौरान हमें मई में यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें कहा गया था कि तेंदुए को बिहार के पूर्णिया में पकड़ा गया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान 27 मई को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया के टिक्कापट्टी पुलिस स्टेशन इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुए को मार डाला। यह जंगली जानवर 3 दिनों से गांव में घूम रहा था, खेतों को बर्बाद कर रहा था और मवेशियों पर हमला कर रहा था। इसने ग्रामीणों पर भी हमला किया जिससे 3 लोग घायल हो गए। 28 मई को छपी एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक तेंदुए ने 2 बछड़ों और 1 बकरी को मार डाला और 3 ग्रामीणों को घायल भी कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और काफी मशक्कत के बाद उसे मार डाला। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने तेंदुए का शव बरामद किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो मई का है, जब बिहार के पूर्णिया में ग्रामीणों ने पीट पीट कर एक तेंदुए की जान ले ली थी। इसका छात्रों के विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: क्या जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का समर्थन करने के बाद अब एक्टर ऋतिक रोशन ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की है। वायरल हो रहे दावे में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावे की कितनी सच्चाई है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांगे मान लेने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियोस और दावे सोशल मीडिया पर अब भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक दावा इन दिनों सोशल मीडिया के बाजार की सुर्खियों में है। इस दावे को लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और डांसर ऋतिक रोशन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फोटो में ऋतिक रोशन की तस्वीर के साथ एक बयान छपा है। इस बयान में लिखा है, छात्रों को लैपटॉप दिए, यूपी को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव के दौर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेता और समर्थक इस वायरल दावे को बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं। वायरल दावे को अखिलेश यादव के पुराने विकास कार्यों और लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ के रूप में पेश किया जा रहा है। वही सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस दावे का हवाला देकर एक्टर ऋतिक रोशन को निशाने पर ले रहे हैं। लोग इस बयान पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं और ऋतिक रोशन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक यूजर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और सैफई महोत्सव फिर से शुरू होगा तो गरीब की रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई न्यूज पोर्टल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस तरह की खबर शेयर की जा रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स भी इस दावे को बिना किसी पड़ताल के शेयर कर रहे हैं।
1: देखिए, जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उनकी तमाम मांगों को मानते हुए केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया है। उनकी जगह प्रहलाद जोशी की ताजपोशी भी हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया में सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े वीडियोस और दावों की बाढ़ सी आई हुई है। उन्हीं में से एक ये दावा भी किया जा रहा है। देखिए, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर कर रहे थे, उस दौरान एक्टर ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए इनका समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था कि फिल्म सुपर 30 की शूटिंग के दौरान उन्होंने छात्रों के दर्द को महसूस किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक शिक्षक का किरदार निभाया था। ऐसे में पहली ही नजर में यह मामला जो है सही नजर आता है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और सीजेपी का छात्र आंदोलन भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में माहौल में अगर ऋतिक रोशन जैसे बड़े एक्टर ने सचमुच अखिलेश यादव के बारे में ऐसा कोई बयान दिया होता तो उसके बारे में सभी जगह ये खबरें जरूर छपी होती, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने तहकीकात शुरू की, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि देखिए, अगर दावा सच है तो मुख्यधारा की मीडिया एजेंसियों या चैनल्स पर यह जानकारी हमें उपलब्ध क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल यह कि कहीं ऋतिक रोशन के नाम से गलत बेबुनियाद जानकारी शेयर तो नहीं की जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट ने किया।
0: अपने सवालों के आधार पर हमने वायरल हो रहे दावे की पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले वायरल हो रहे दावे को अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तलाश किया, लेकिन हमें इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमारी टीम ने ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया, लेकिन वहां भी हमें इस तरह का कोई बयान या जानकारी नहीं मिली। हालांकि हमें इस दौरान साल 2015 का एक वीडियो जरूर मिला जब ऋतिक रोशन ने सैफई महोत्सव में शिरकत की थी। वो इस वीडियो में स्टेज पर डांस करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस समारोह में यूपी के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। इसके अलावा 12 नवंबर 2016 को पब्लिश हुई एक न्यूज रिपोर्ट भी हमें मिली जिसमें ऋतिक ने अखिलेश की तारीफ की थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में ऋतिक के शिरकत करने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव उनके अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी चाहेंगे ऋतिक वहां जरूर जाएंगे। अब ये साफ हो चुका था कि ऋतिक रोशन के नाम से किया जा रहा वायरल दावा पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। ऋतिक ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लिहाजा फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में ये दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे।
1: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, यानी अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: बॉलीवुड बाहर का खाना खाने की जिद करने वाली बच्ची को समझाने के लिए माँ ने ऐसा अनोखा प्रैंक किया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लोग इसे जमकर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटी सी बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। उसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जिस पर पेट के अंदर की तस्वीर दिखाई देती है। स्क्रीन पर एक डरावना सा कन खजूरा जैसा कीड़ा नजर आता है और ये देखकर ऐसा महसूस होता है मानो सच में बच्ची के पेट में कोई कीड़ा हो और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हों। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा राज खुल जाता है। असल में ये कोई मेडिकल जांच नहीं बल्कि माँ का एक मजेदार प्रैंक होता है। बच्ची को बाहर का खाना ज्यादा पसंद है और शायद इसी आदत को छुड़ाने के लिए उसकी माँ ने ये अनोखा आइडिया अपनाया। उसने लैपटॉप पर पहले से एक फेक अल्ट्रासाउंड वीडियो चला रखा था। वहीं स्कैनिंग मशीन की जगह कंप्यूटर के माउस का इस्तेमाल किया गया। माँ माउस को बच्ची के पेट पर ऐसे घुमा रही थी जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते समय मशीन चलाते हैं। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान तो बच्ची के चेहरे पर जाता है। वो पूरे समय बेहद गंभीर नजर आती है और स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को बड़े ध्यान से देखती रहती है। ऐसा लगता है कि उसे सचमुच यकीन हो गया है कि बाहर का खाना खाने की वजह से उसके पेट में कोई कीड़ा पहुंच गया है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन इसे देखकर कई लोगों ने कहा कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए कभी कभार ऐसे मजेदार तरीके भी काम आ सकते हैं।
3: अगर मम्मी कभी कहीं चली गई और वापस कभी आएगी नहीं तो आप क्या करोगे?
4: मैं
3: चॉकलेट्स खाऊंगी।
2: ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। देखने में ये एक साधारण माँ बेटे की बातचीत लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में ये बातचीत इतनी भावुक हो जाती है कि इंटरनेट पर इसके बारे में खूब चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो की शुरुआत एक बेहद सामान्य सवाल से होती है। माँ अपने छोटे से बेटे से पूछती है, अगर मैं कहीं चली जाऊँ और फिर कभी वापस ना आऊँ तो तुम क्या करोगे? बच्चा बिना ज्यादा सोचे मासूमियत से जवाब देता है कि वो अपनी मम्मी की तस्वीर को प्यार करेगा। उसकी ये बात सुनकर पहले तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि जवाब बेहद भोला और प्यारा लगता है।
3: तो फिर क्या करेगा?
4: मैं
3: कभी नहीं आऊंगी।
4: मैं आपको फोटो से प्यार करूंगी।
3: तो तू रो क्यों रहा है?
2: लेकिन अगले ही पल बच्चे के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे जैसे उसे माँ के सवाल का मतलब समझ आने लगता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो इमोशनल होकर रोने लगता है। उसकी मासूमियत और माँ को खो देने का डर वीडियो देखने वालों का भी दिल छू लेता है। जब माँ उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है, तब बच्चा कांपती हुई आवाज में सवाल करता है, क्या आप मर जाओगे? ये सुनकर साफ महसूस होता है कि बच्चे ने माँ के सवाल को हमेशा के लिए बिछड़ जाने से जोड़ लिया है। उसकी आंखों में चिंता और आवाज में घबराहट साफ झलकती है। वो आगे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी मम्मी जल्द वापस आ जाएं। बच्चे की ये बात उसकी माँ के प्रति गहरे लगाव और प्यार को दर्शाती है। माँ को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसका पूछा गया सवाल बच्चे के मन पर असर डाल चुका है। वो तुरंत उसे प्यार से गले लगाती है और समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
3: तो आप गंदी गंदी बातें करोगे? आप किसी को मारोगे? आप बैड बॉय बनोगे? आप क्या करोगे? तो फिर क्या करेगा?
4: मुझे भगवान को प्रे करूँगा कि मेरी मम्मी को जल्दी से फिर बता दो।
2: माँ का ये अंदाज जिसमें थोड़ी सख्ती और बहुत सारा प्यार था, सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस मजेदार बातचीत पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं।
5: पैन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है?
2: लोग इस पल को हर भारतीय घर की कहानी बता रहे हैं।
5: पैन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है।
2: दरअसल परीक्षा देने जा रही बेटी को माँ की दी गई ये प्यारी सी नसीहत लोगों को खूब पसंद आ रही है। माँ की कही एक लाइन ने तो परीक्षा के समय की भावनाओं को बखूबी बयां भी कर दिया है।
5: पेन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है, चलो।
2: असम में इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ऐसे मुश्किल मौसम में जहां ज्यादातर लोग घरों में रहने की कोशिश करते हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी घंटों सड़क पर खड़े होकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसी बीच गुवाहाटी में एक शख्स ने ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। गुवाहाटी के रहने वाले लक्ष्मण गोस्वामी ने बारिश में ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मदद करने का फैसला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बीच एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों के बीचों बीच खड़े होकर वाहनों को नियंत्रित कर रहा था। लगातार हो रही बारिश के बावजूद वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी लक्ष्मण गोस्वामी वहां पहुंचे, उनके हाथ में एक रेनकोट और वाटरप्रूफ पैंट थी जिसे उन्होंने खास तौर पर उस पुलिसकर्मी के लिए खरीदा था। रेनकोट देने से पहले लक्ष्मण ने पुलिसकर्मी से कहा कि इस पर पुलिस लिखा हुआ है ताकि ड्यूटी के दौरान कोई भी व्यक्ति उन्हें आम नागरिक न समझे। ये छोटी सी बात इस बात को भी दिखाती है कि उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि पुलिसकर्मी की पहचान और जिम्मेदारी का भी पूरा ख्याल रखा। पुलिसकर्मी ने मुस्कुराते हुए ये उपहार स्वीकार किया, उनके चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत वही रेनकोट और वाटरप्रूफ पैंट पहनी, जिसके बाद बिना समय गवाए वो फिर से अपनी जगह पर लौटे और पहले की तरह ट्रैफिक संभालने लगे। यूजर्स इस वीडियो पर अपना प्यार खूब लुटा रहे हैं। जिंदगी से उबने से तो बेहतर है कि बादलों के बीच कुछ रोमांचक किया जाए, ये कहना है 97 साल की एक ऐसी जाबाज दादी का जिन्होंने अपनी उम्र और सेहत की हर रुकावट को हवा में ही उड़ा दिया। ब्रिटेन की रहने वाली बेटी ब्रोमेज ने स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी को मात देने के ठीक एक साल बाद उड़ते हुए प्लेन के पंख पर खड़े होकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चेल्टनहैम की रहने वाली 97 साल की बेटी ब्रोमेज ने साइरेंस्टर के RFC रेंटकॉम एयरफील्ड में ये साहसिक कारनामा पूरा किया। जब उन्होंने ये उड़ान भरी तब उनकी सटीक आयु
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता, राष्ट्रपति भवन में भी होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है। लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये एक खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई शैली से तैयार रेशम और सूती धागों वाले अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक स्वागत समारोह है जिसका आयोजन हर राष्ट्रपति की मेजबानी में किया जाता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: आत्मा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़। यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटबॉल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। सावन का महीना चल रहा है, आसमान से आस्था के बादल बरस रहे हैं और धरती पर शिव भक्ति की लहरें हिलोरे भर रही हैं। इस माहौल में आज गुड न्यूज टुडे स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश भर में मौजूद महादेव के उन अद्भुत और अनोखे मंदिरों में जहां महादेव निराले रूपों में विराजमान है। ऐसे अनोखे शिवधाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना और निर्माण जामवंत ने खुद अपने हाथों से करी थी। इस धाम में इतिहास महादेव के साथ साथ श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रायसेन में मौजूद यही वो स्थान है जहां पर शिव भक्त जामवंत की बेटी जामवंती से श्री कृष्ण ने विवाह किया था।

0: शिव मंदिर जहां मौजूद है तीन युगों का संगम।
1: भगवान जामवंत जी ने इस मंदिर का निर्माण किया।
0: वो धाम जहां आज भी है युगों पुरानी शिव गुफा।
2: वंश पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है।
0: जहां स्वयं सूर्य देव करते हैं महादेव का अभिषेक।
3: भगवान सूर्य अपने आदिदेव भगवान शिव का पहली किरण के साथ श्रृंगार करते हैं और अभिषेक करते हैं।
0: जहां आज भी मौजूद हैं जामवंत के पैरों के निशान।
4: यहां से जामवंत जी ने निकले थे और आगे तक पैरों के निशान देखे जा रहे हैं।
0: जहां द्वापर युग में हुआ था जामवंत और श्री कृष्ण का महायुद्ध।
3: जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है।
0: वो नगर जो आज भी श्री कृष्ण को मानता है दामाद।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते।
0: मध्य प्रदेश का रायसेन जहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों के मस्तक पर स्थापित है महादेव का युगों पुराना धाम। महादेव का ये धाम शिव गुफा मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में जामवंत ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस इलाके को जामगढ़ कहा जाता है।
1: प्रत्यक्ष रूप से भगवान जामवंत की गुफा जामगढ़ में मौजूद है। भगवान जामवंत द्वारा भोलेनाथ की स्थापना यहाँ की गई और यहाँ दिव्य रूप में अभी संत लोग निवास कर रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जामगढ़ पधारे, विद्यासागर जी संत जामगढ़ पधारे जी, हीरापुर वाले गुरु जी जामगढ़ पधारे। उनने अनुभव किया कि भैया इन गुफाओं में अभी संत दिव्य रूप में रह के वायुपान करके और यहाँ तपस्यारत हैं। ये प्रमाण उन तीनों संतों ने इस जगह का दिया। ये किंवदंती नहीं, संतों का वचन।
0: ये गुफा विंध्याचल पर्वतमाला पर लगभग 200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास एक कुंड है जिसमें साल भर जल रहता है। इस कुंड से टपकता जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करता है।
2: यहाँ पर एक स्थान और है जिसे हम ये शिव मंदिर जो है ये गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये जल है, ये 500 मीटर ऊंच फिट के ऊंचाई के बावजूद वंश पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे इसके अंदर जाएंगे और जाने के बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां इसके अंदर है। आज भी जो संत योगी महात्मा है इसके अंदर निवास करते, ऐसे लोगों की मानता है, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों ने यह ऐसे चमत्कार देखे हैं कि प्रातः काल यहाँ आरती होती है, ढोलक झनकारे और ज्वाला को भी देखा। दूसरा यह एक स्थान है जहाँ एक एक बूंद करके पानी टपकता है और ये जो पानी टपकता है इसकी एक विशेषता है कि इस जल को जो व्यक्ति धारण करता है या पी लेता है उसे किसी भी प्रकार की असाध्य जो बीमारी होती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। ये 12 महीने ये जल यहाँ से टपकता रहता है।
0: इस इलाके में मान्यता है कि इस गुफा के अंदर आज भी कई साधु संत जब तप में लीन है। स्थानीय लोग कई बार गुफा से भजन कीर्तन की आवाजें आने का दावा भी करते हैं।
3: भगवान शिव का जो प्राचीन शिव गुफा के नाम से ही विख्यात है वो भगवान आदि काल से यहाँ है, ऐसी किंवदंती है कि जामवंत जी ने भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। तो यो युगों प्राचीन शिव गुफा है और इस स्थान की एक विशेषता है कि जो विंध्याचल पर्वत हैं वो स्वयं यहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं। और बुजुर्गों ने ऐसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में गांव से यहाँ से जामगढ़ लगा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की जो पूजा है वो सिद्ध महापुरुषों द्वारा सिद्धों द्वारा की जाती रही है।
0: खास बात यह है कि महादेव की आस्था से सींची गई ये पावन भूमि श्री कृष्ण की ससुराल भी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी जगह श्री कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवंती से विवाह किया था।
3: जामगढ़ अपने आप में प्रमाण है, कभी इसका नाम जाम्बगढ़ रहा है, इस गांव का नाम। अपभ्रंश होते होते जामगढ़ हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के रूप में भी यह जामवंत जी की गुफा है पास में ही, तो ये विख्यात है। तो अपने आप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इस समय जो कलयुग चल रहा है, तो तीन युगों का यह स्थान है। और जामवंत जी चिरजीवी रहे हैं, आज भी जामवंत जी माना जाता है कि हैं, वो अमृत तो उन्हें प्राप्त रहा है।
0: जामवंती और श्री कृष्ण से जुड़े इसी संदर्भ के चलते जामगढ़ के लोग श्री कृष्ण को अपना दामाद मानते हैं।
3: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते, कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई जीजा कहता है, तो वो जामाता हैं जामगढ़ के भगवान श्री कृष्ण। तो कितना भव्य और अद्भुत रिश्ता है जामगढ़ का और भगवान श्री कृष्ण का।
0: बताया जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने जामवंत को ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय घटनाओं का चक्र उन्हें इस स्थान पर लेकर आएगा, तब कृष्ण रूप में वे जामवंत से युद्ध कर उन्हें परास्त करेंगे।
3: श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह उल्लेख मिलता है कि स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जामवंत पधारे विंध्याचल पर्वत पर,

0: हुआ कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि प्रभु आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया, मेरी इच्छा है कि मैं कभी परास्त होऊं। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा तो तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। तो एक तरह से अपने भगवान द्वारा भक्त को जो वरदान दिया था उसकी पूर्ति का भी ये स्थान है।
1: जामगढ़ के पास भगदेई गांव में जामवंत ने द्वापर युग में एक और शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि भक्त जामवंत ने एक रात में महादेव के इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर जिस पहाड़ी पर मौजूद है वहाँ आज भी पुरानी चट्टानों पर पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। दावा किया जाता है कि ये जामवंत जी के पैरों के निशान हैं।
2: रायसेन जिले के विंध्याचल की पर्वत की एक तलहटी है जहाँ पे बसा हुआ है रायसेन जिले के बरेली तहसील का जामगढ़ गांव। जामगढ़ भगदे ये दोनों गांव विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में, वो अभी हमने आपको बताया था कि द्वापर युग के समय जामवंत जी ने जो मंदिर का निर्माण कराया था, वो निर्माण के बाद जो किंवदंती आई थी, वो किंवदंती के बाद ये स्थिति थी कि जामवंत जी जिस जगह कूदे थे वहां पर पैरों के निशान है। तो आप देख सकते हैं ये पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर एक बीजक भी लिखा हुआ है, दाया पैर का निशान है, बाएं पैर का निशान है, फिर दाएं पैर का निशान है, फिर बाएं पैर का निशान। ये निशान हमें कहाँ तक मिलेंगे? लगभग 1 किलोमीटर तक मिलेंगे, जहाँ गुफा है जामवंत जी की वहां तक मिलेंगे।
1: भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की विवाह गांठ से लेकर भक्त जामवंत की अगाध आस्था तक महादेव का ये धाम युगों युगों से सनातन धर्म की कई कहानियों को खुद में समेटे आज भी शान से खड़ा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब मध्य प्रदेश से सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आपको दर्शन करवाते हैं उस पावन शिव धाम के, जहां पर पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। महादेव का वो धाम जिसकी स्थापना की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है और उन्हीं के नाम पर भोलेनाथ यहाँ परशुरामेश्वर कहलाते हैं।
1: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, और कांवड़ यात्रा की इस कहानी की डोर जुड़ी है बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तब पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, फिर हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। परशुराम के नाम पर कभी परशुरामेश्वर धाम कहलाने वाला ये मंदिर कालांतर में पूरा महादेव धाम कहलाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों

0: के लिए अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। बता दें कि पूरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डगा सका। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
1: ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित, ये भगवान परशुराम जी द्वारा, जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है। औरंगजेब ने भी प्रयास किया, उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया चरणों से बंधवा के, पर लेकिन आज भी आप देखोगे बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने उस पर स्पॉट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पॉट है।
2: एक और कहा जा रहा है कि मंदिर जो शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है।
1: हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा।
0: मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। हर साल सावन में पूरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। भविष्य में मंदिर प्रांगण को काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की भी योजना है। यानी भविष्य में पूरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जितने अद्भुत हैं महादेव उतने ही अनोखे हैं उनके ये धाम। ऐसा ही एक धाम मौजूद है बुंदेलखंड में, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजार रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात कही जाती है, बताया जाता है कि ये वही मंदिर है जहां पर किसी दौर में झांसी की महारानी यानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने के लिए जाती थी।

0: महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिव धाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारिया महादेव। महादेव का वो अनुपम धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण इसे हजारी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग के नजदीक जाने पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते हैं। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है।
1: ये 1108 छोटे छोटे शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम हजारिया महादेव है। छोटे छोटे पूरे राउंड है उनके, वो 1108 शिवलिंग है छोटे छोटे।
2: 1000 शिवलिंग का मतलब यह है कि 1101 अगर इधर दर्शन करते हैं तो एक बार में पूर्ण होते हैं भोलेनाथ के दर्शन, साक्षात एक ही शिवलिंग में।
0: बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं।
3: यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है और उसके सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है कि उसके उस उपलक्ष में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं।
0: हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गोसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि कभी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई यहां रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है।
2: जे माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती थी पानीवरी धर्मशाला पे, और जे गोसाइयों के समय का मंदिर है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाए एक बार में पूर्ण होती है।
4: ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी।
5: ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं।
0: इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।
4: बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, ये यहाँ पे बावड़ी है, कुआ है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर वोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भरा था, तब जाके पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा दो बार हो चुका है, जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब ये इसी प्रकार का इनको वो करते हैं।
0: एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हजार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने आते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे उस शिव धाम की जहां पर महादेव एक पवित्र गुफा में बिराजते नहीं। ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिला देगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटे अमरनाथ भी कहते हैं।

0: आस्था की एक वो यात्रा और आस्था की एक यात्रा ये भी कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम। पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नलदेश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नलदेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं।
1: लगभग 360 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिवजी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
0: बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, तो वहीं पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे जहां पर एक बिल्वपत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्वपत्र चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है।

महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिवधाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पावन माह में हर तरफ आस्था उमड़ रही है, कावड़ियों की भक्ति साधना से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। अब तैयारियां सावन के शिवरात्रि की है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तमाम कावड़िये इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी यात्रा संपन्न करेंगे।

0: सावन के पावन माह में हर तरफ भोले की भक्ति के अद्भुत रंग बिखरे हैं। शिव भक्तों की कांवड़ साधना के रंग निरंतर गहराते जा रहे हैं। पवित्र नदियों से कांवड़ लेकर लाखों कांवड़िए शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए निकल पड़े हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और सावन की शिवरात्रि पर तो शिवालयों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। इस बार सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त सुबह 4:53 पर शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि 12 अगस्त की रात 1:51 तक रहेगी। ऐसे में शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ज्यादातर कांवड़िए इस पावन दिन ही पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिवलिंग के अभिषेक से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तो हर तरफ कांवड़ियों के जत्थे ही दिख रहे हैं। यहाँ से कांवड़िए ट्रेन में सवार होकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इनमें से कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो यहाँ से निकलकर सुल्तानगंज पहुंचेंगे, वहां से पवित्र गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ेंगे। कांवड़ियों की भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सावन के पावन महीने का शिव भक्तों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस विशेष माह में पवित्र नदियों से लेकर शिवालयों तक भक्ति की अविरल धारा आस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के जयकारों से आसमान गूंज उठता है और कई दिनों की साधना के बाद कांवड़ यात्रा संपन्न करके शिव भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। चंदौली से उदय गुप्ता और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है,